ओम शांति। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विभिन्न परिस्थितियों में हमारी स्थिति न बिगड़े। परिस्थितियां तो आती हैं। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको विभिन्न परिस्थितियों से न गुजरना पड़ा हो। कोई गरीबी की परिस्थिति से गुजर रहा है, कोई धनवान है तो उसे अनेक तरह की टेंशन रहती हैं, उसकी अलग परिस्थिति होती है, डॉक्टर्स की अलग परिस्थिति, तो बिजनेस वालों की अलग परिस्थिति, अधिकारियों की अलग परिस्थिति, तो पॉलिटिशियंस की अलग परिस्थिति। परंतु परिस्थितियों में स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखना ही परिस्थितियों को समाप्त करने का तरीका है, क्योंकि जब हमारी स्वस्थिति श्रेष्ठ रहती है तो हमसे बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते हैं, हमारे संकल्प सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं, और इससे परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए हमें ये कला सीख लेनी है, अपने को इतना शक्तिशाली बना लेना है कि परिस्थितियां हम पर हावी ना हो जाएं, हमारी शक्तियां परिस्थितियों पर भारी पड़ें। इसके लिए हमें अपने पास ज्ञान का बल भी बहुत रखना है। ज्ञान के बल का अर्थ है ज्ञान की कुछ ऐसी पॉइंट्स जिनके चिंतन से हम परिस्थितियों में भी हल्के रहें। जैसे अपने सारे बोझ बाबा को समर्पित कर दें तो बाबा बोझों को हर लेता है। अपनी सारी समस्याएं बाबा के हवाले कर दें तो उनमें वो बहुत मदद कर देता है। जैसे बाबा के महावाक्य याद करें, बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे को तेरे में समर्पित करके बेफिक्र बादशाह बनकर जियो। तुम चिंता न करो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। इनको याद करने से हमें जो बल मिलेगा उसे ज्ञान का बल कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण काम है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है हमें परिस्थितियों में हल्का रखने में। दूसरी चीज है स्वमान का बल। हम कौन हैं और किसके हैं, हम कितने शक्तिशाली हैं। होता क्या है कि परिस्थितियां आने पर हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो परिस्थितियां हमें भारी लगने लगती हैं। छोटी सी बीमारी भी एक बड़ी परिस्थिति के रूप में अनुभव होने लगती है। लेकिन अगर हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो हमारा सारा ज्ञान भी इमर्ज रहता है और हमें अपनी शक्तियों की भी अवेयरनेस रहती है। इससे परिस्थितियों का दबाव कम हो जाता है। और तीसरा है हमें अपने अंदर योग की शक्ति बढ़ाते चलना है। योग ही एक ऐसी विद्या है, कनेक्शन है सर्वशक्तिवान से, कि योग की शक्ति के बिना न तो कोई माया जीत बन सकता और न ही शक्तिशाली। तो हमें योग अभ्यास बहुत बढ़ा देना है। योग के भिन्न भिन्न तरीके सीखकर कर्म में योग को जोड़ने का दृढ़ संकल्प कर लें, प्लान बना लें। विभिन्न कर्मों में घूमते फिरते, ड्राइविंग करते, बसों में यात्रा करते, हम कैसे कैसे अभ्यास करें ताकि हमारे अंदर योग की शक्तियां बढ़ती रहें। तो आज सारा दिन हम एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे जो बहुत सरल है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। स्वयं को आत्मा देखें और मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में देखें। फिर ज्ञान सूर्य से बाबा परम धाम से नीचे उतरकर मेरे सम्मुख आ गए हैं। सामने देखें उनको, 4-6 फुट की दूरी पर, और उनकी शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। ये अभ्यास आज बार बार करेंगे, घंटे में 2 बार तो इसको अवश्य करना है।
इससे एकाग्रता भी हमारी बहुत बढ़ जाएगी और हमें बहुत सुंदर अनुभव होंगे। अगर इस अभ्यास को हम बढ़ा दें तो हमें परिस्थितियां बहुत हल्की लगने लगेंगी। हम बहुत बड़े हैं और परिस्थितियां बहुत छोटी हैं, ये आभास होता रहेगा और हम उन पर विजयी होंगे। ओम शक्ति।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। जिज्ञासु ने पूछा, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? गुरु ने उत्तर दिया, जब प्रश्न ही गलत हो तो मुझसे उसका उत्तर पाने की उम्मीद तुम कैसे कर सकते हो? प्रश्न होना चाहिए था, जब अच्छे लोगों का बुरा समय आता है तब उनका क्या होता है? और उसका उत्तर होता है, वे और अच्छे हो जाते हैं। यह हमारी प्रज्ञा नहीं बल्कि हमारी प्रज्ञा की दिशा है जो हमारी प्रगति की गति को निर्धारित करती है, बशर्ते हमें पता हो कि सही प्रश्न कैसे किया जाए। अपनी हर परेशानी पर पूछें, मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा का उत्तर सुने। खुद को प्राप्त हुई असंख्य कृपाओं के लिए पूछें, मैं ही क्यों, और फिर अपनी प्रज्ञा की आवाज को दोबारा सुने। अंतर पर ध्यान दें, प्रश्न की सशक्तता को अनुभव करें। प्रश्न में बहुत शक्ति होती है। सही समय पर पूछा गया सही प्रश्न हमारी प्रज्ञा की दिशा बदल सकता है और इस तरह हमारे जीवन की भी। यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को उस दिशा में मोड़ देता है जो आपको स्वयं पर तरस खाने की ओर ले जाती है। लेकिन उसी परिस्थिति में यदि आप यह प्रश्न पूछें, इस स्थिति में मैं क्या सीख सकता हूँ या क्या सीख सकती हूँ, तो आपकी प्रज्ञा आपको उच्चतर परिपक्वता की ओर ले जाएगी। वह मुझे समझ क्यों नहीं रही है, यह प्रश्न आपकी प्रज्ञा को दूसरों पर दोषारोपण करने और खुद उत्पीड़ित होने की ओर ले जाएगा। इसके बजाय पूछें, वह मुझे समझ सके इसके लिए मैं क्या करूं, तो आप महसूस करेंगे कि स्थिति अभी भी आपके हाथ में है। यह प्रश्न आपको एक ज्यादा सूझबूझ वाला और ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बना देगा।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

यदि आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, यदि आप उतनी गति से नहीं बढ़ रहे हैं जितनी गति से आप बढ़ सकते हैं, यदि आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाने वाली नहीं है, यदि आपके सामने ऐसे मुद्दे आते रहते हैं जिन्हें बार बार सामने आना ही है, तो आप यह जान लें कि निश्चित रूप से आप सही प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, और इसी के चलते आप अपनी प्रज्ञा को सही दिशा नहीं दे रहे हैं। सीधे सरल प्रश्न जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकते हैं, जैसे कि अब क्या करना है, जो मैं अभी तक करता आया हूं उसे और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। हमारी प्रज्ञा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होती है, चाहे वह प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया हो या संसार द्वारा। इसीलिए अपने प्रश्न को ध्यान से चुनते रहें और अपनी प्रज्ञा को रचनात्मकता के दिशा में मोड़ते रहें। अपने आणविक चुंबकीय अनुस्पंदन अन्वेषण के लिए सुविख्यात भौतिक विज्ञानी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित इसिडोर आइजेक राबी ने कहा है, मेरी माँ ने अनजाने में ही मुझे वैज्ञानिक बना दिया। ब्रुकलिन में हर यहूदी माँ स्कूल से घर लौटकर आए अपने बच्चे से पूछा करती थी, तो आज स्कूल में तुमने क्या सीखा? लेकिन मेरी माँ ने यह कभी नहीं पूछा। वे हमेशा पूछा करती थी, बेटा क्या तुमने आज कोई अच्छा प्रश्न पूछा? इस अंतर ने, सही प्रश्न पूछने ने मुझे वैज्ञानिक बना दिया। एक व्यक्ति ने पूछा, सेब नीचे ही क्यों गिरता है? और इस प्रश्न के बाद दुनिया ही बदल गई। वास्तव में सभी अन्वेषण और सारे आविष्कार किसी न किसी प्रश्न से शुरू होते हैं। अर्जुन ने अपने प्रश्नों से कृष्ण की प्रज्ञा को एक दिशा ही तो दी थी, जो भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। चाहे आपके पास सारे उत्तर ना हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपके पास सही प्रश्न है। आपकी प्रज्ञा प्रतीक्षा कर रही है, सही प्रश्न पूछे तो सही उत्तर।

नमस्ते जी, मैं अजय कांत रुइया बोल रहा हूँ बम्बई से। मुझे बहुत खुशी हुई कि रेडियो मधुबन के श्रोताओं से बात करने का मौका मिला और मैं अभी राजस्थानी लैंग्वेज में भाषा में सब हार्दिक नमस्कार कर रहा हूँ और बोलना चाह रहा हूँ कि जब से मैं कई साल पहला ब्रह्म कुमारी का भाइयों और बहनों से मेरे संपर्क हुए, तब से मना जिंदगी को एक नयो दृश्य देखना मिलो है और मेरी कई प्रॉब्लम जो जिंदगी में आवा बिना हल करने के लिए इन्हा सा मार्गदर्शन मिलो है। और मैं यही एक संदेश सारा लोगों ना बोलूंगा कि अपना जो भी काम आप करा मन लगा कर करो और खूब मेहनत से करो और कदे हार नहीं मानो और जिंदगी में आगे ही बढ़ाऊंगा। नमस्ते, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप पर कोई विश्वास न करे। आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। भले ही किसी को विश्वास न हो कि आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यह विश्वास रखना होगा कि आप कर सकते हैं। और आप खुद पर तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप खुद से प्रेम करते हो। तो भले ही आपसे कोई प्रेम करे न करे, आपको खुद से प्रेम करना होगा। वास्तव में जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तभी यह संसार आपसे प्रेम करना शुरू करता है। कुल मिलाकर इस बात से बहुत कम अंतर पड़ता है कि संसार आपको कैसे देखता है, लेकिन इस बात से बहुत अंतर पड़ता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हम ऐसा कहकर कब तक खुद को सांत्वना देते रहेंगे? मेरे पिता यदि धूम्रपान करते हैं, पान तंबाकू या गुटखा खाते हैं, तो क्या हुआ? वे हैं भी तो बड़े आदमी। हम यह कहकर कब तक खुद को संतुष्ट करते रहेंगे? हमें अपने शिक्षक के चरित्र से क्या लेना देना? वह तो उसका व्यक्तिगत जीवन है, हमें तो उससे पढ़ना है बस। संसार में क्या सही है और क्या गलत, इसका निर्णय करने वाला मैं कोई न्यायाधीश नहीं हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि कोई चीज सार्वभौमिक तौर पर सही या गलत नहीं होती। किसी के द्वारा किए जा रहे चयन में हस्तक्षेप करने वाला मैं कौन होता हूँ? फिर भी साहस करके खुद से यह प्रश्न तो कर ही लें, यदि मेरे बच्चे वही ग्रहण कर लें जिसे मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ, तो क्या मुझे इससे सुख और खुशी मिलेगी? क्या मैं कभी कह सकूंगा कि मुझे अपने आप पर गर्व है, क्योंकि मुझ में फलां लते और आदतें हैं? क्या मेरी चारित्रिक विशेषताएं अनुसरण के लायक हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा जीवन क्या एक आदर्श होगा या एक खतरा? किसी विशेष अंश रूप में नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण रूप में। हमारे बच्चे सब कुछ देख रहे हैं। हम उनसे जो भी कहते हैं, उसकी अपेक्षा वे इस बात से ज्यादा सीखते हैं कि हम क्या करते हैं। नैतिकता पुस्तकों से कभी नहीं सीखी जाती, वह तो अपने आसपास रहने वालों को देख देख कर सीखी जाती है। संसार आपके आचरण के उदाहरण पर चलेगा, न कि आपकी सलाह या उपदेश पर।

0: लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा, इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा, आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा, आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देख कर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मम्मा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मम्मा पेड इन फुल, मम्मा पेड इन फुल बट इन डेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर में आपका

यह एक तथ्य है कि जब कोई गुरु मौन को, शांति को प्राप्त कर लेता है, तब ध्यान लगाने का उसका ध्येय पूरा हो जाता है और फिर उसे वैसी साधना की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अज्ञानी जिज्ञासु तर्क देता है, जब गुरुजी ही नियमित रूप से ध्यान नहीं लगाते तो मुझे नियमित होने की क्या जरूरत है। इसीलिए भगवद गीता हमें याद दिलाती है, कोई महान व्यक्ति जो कुछ करता है अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। वह जो भी मानक स्थापित कर देता है संसार उसी का अनुसरण करता है। दूसरों को उत्प्रेरित करने के लिए हमें कुछ तो प्रेरक कार्य करने ही चाहिए। अपने तर्क वितर्क एक और रखकर हम एक आदर्श बनने योग्य होना चाहिए। जो कर्तव्य है उसे किया जाना चाहिए और जो करने योग्य नहीं है उसे करना बंद कर दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक, एक बॉस, एक अभिभावक, किसी उद्योग के प्रमुख, किसी परिवार के मुखिया, किसी सरकारी कार्यालय के पदाधिकारी, किसी ऐसे या अन्य रूप में आपको, मुझे और हम में से हर एक को इस तरह से रहना और जीना चाहिए जो दूसरों के अनुकरण व अनुसरण के योग्य मानक स्थापित कर सके। आपका सोचना, बोलना, कार्य करना और रहना ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप दूसरों से चाहते हैं कि वे किस प्रकार बोलें, किस प्रकार कार्य करें और किस प्रकार रहें। जिस बात की अपेक्षा हम खुद से करने को इच्छुक नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, उस बात की अपेक्षा हम संसार से कैसे कर सकते हैं? कुछ समय बाद आपके आसपास का संसार आप ही की कार्बन कॉपी लगने लगता है। इसीलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसे मास्टर कॉपी बने जो इस योग्य तो हो कि उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सके। मार्क ट्वेन ने कहा है, नृत्य ऐसे करो जैसे आपको कोई भी नहीं देख रहा है। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसे जिएं, ऐसे रहें जैसे हर कोई देख रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुंच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अब आप सुनेंगे ब्रह्मा बाबा से जुड़े हुए उनके जीवन के कुछ कहे अनकहे अनुभवों के पल, उन राजयोगियों के मुखारविंद से जिन्होंने साकार में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से

0: को अमृत वेले कुछ टचिंग आती थी और वो लिखते थे और उनको वही लिखित जो उनको रियलाइज होता था कि ये एक विशेष है, अनुभव भी होता था और उसका रहस्य भी उस शब्दों में होते थे, तो वो फिर सिंध हैदराबाद में भेजते थे। उन्होंने 5 की टीम बनाई और उन 5 बहनों को, जैसे कि वो समय पर आते समय बहनें उस पर फिर विचार करके वो सभा से आने वालों से शेयर करती थी। उसमें से भी जिनको पिताश्री ने निमित्त बनाया, मातेश्री सरस्वती जगदम्बा, उनकी बुद्धि विशेष उस पर गहराई से विचार करती थी। वो भी अमृत वेले 2 बजे उठ जाती थी और जो पढ़ा, जो पत्र में आता था उसको अच्छी तरह से विचार करके उसको वो योग में अनुभव करती थी और उस अनुभव के आधार पर फिर वो सभा से शेयर करती थी आने वालों से। उसमें क्या हुआ, उसमें क्योंकि वो ईश्वरीय टचिंग थी, ब्रह्मा बाबा को भी टचिंग होती थी, मम्मा को भी टचिंग होती थी और उस एक्सपीरियंस को एडिशन जो अनुभव की शक्ति थी उसका जो प्रभाव था वो आने वालों पर पड़ा तो सभा बढ़ती गई। एक्चुअली जब बाबा गए तो सभा आने वाले थोड़े थे, परंतु बाबा की एब्सेंस में ये शिव बाबा ने कमाल किया कि ब्रह्मा बाबा इनको नहीं सुना रहे जो बता रहे हैं, ये परमपिता परमात्मा शिव का कार्य है परंतु ब्रह्मा द्वारा हो रहा है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य जो है वो श्रेष्ठ जीवन बनाने का है परंतु मनुष्य देवता बनने का है। यानी उस समय देवता शब्द नहीं था पर श्री कृष्ण नर से नारायण बनने का है, नारी से लक्ष्मी बनने का है। तो बहुतों को फिर ब्रह्मा का ही, पिताश्री का ही ऐसा साक्षात्कार होता था कि ये ब्रह्मा नर सो नारायण, क्योंकि उनका पुरुषार्थ न केवल उनके अपने तक सीमित था, वो वाइब्रेशन से एक पिक्चर बन जाती थी। अब वो तो वहाँ पर हैं परंतु प्रोजेक्शन उस एनर्जी का यहाँ मम्मा के थ्रू दूसरी आत्माओं को भी अनुभव होता था, इसलिए ब्रह्मा को भी साक्षात बाबा को कश्मीर में अनुभव हो रहा है और जगदम्बा माँ को यहाँ अनुभव हो रहा है और फिर सुनने वालों को उसका जो रस है उसकी जो गहराई पता चलती है तो उसका सुख, उस सुख में वो सतयुगी दुनिया के नजारे देख रहे हैं।
1: जी, जैसे आप साक्षात्कारों की बात कर रहे थे, किस प्रकार के साक्षात्कार या अनुभूति होती थी लोगों को? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें साक्षात्कार हुआ, हमने ये देखा।
0: बहुत करके बड़े सिंपल और सतयुगी नजारे, जैसे जो अपनी निर्मल शांता दादी थी वो बताती थी कि उनको साक्षात्कार हुआ जैसे कि कमल के फूल पर श्री कृष्ण आ गए। और अपनी गुलजार दादी जी बताती हैं, वो तो 7 साल की थी केवल, उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं कृष्ण देख रही हूँ। वो क्योंकि उस समय ओम की ध्वनि होती थी, ओम शब्द का उच्चारण करते सब इस देह के भान को भूल जाते थे, क्योंकि ओम निराकार परमपिता परमात्मा का नाम है, सत्यम शिवम सुंदरम ओम के नाम से वो याद करते थे। याद क्या करते, नहीं करते थे परंतु उच्चारण करते थे, ओम की ध्वनि
1: करते थे।
0: तो जब वो ओम की ध्वनि, तो अब वो जो गुलजार दादी जी थी वो तो 7 साल की थी, 8 साल की थी, वो तो एक बच्चे की तरह उनके पास, मतलब अपनी मदर के साथ गई। उस ओम की ध्वनि में उनको ऐसा लगा जैसे कि वो स्वप्न में चली जाती हैं, यानी बिल्कुल यहाँ नहीं थी, जैसे सोई हुई नहीं है, बैठी हैं परंतु ध्यान में चली गई, यानी कहीं ध्यान एकाग्र हो गया और उसमें वो खेलने लगी हैं जैसे किसी गेंद खेला जाता है, पकड़ा जाता है। तो वो उनको वो महसूस हुआ कि वो किसी के साथ, श्री कृष्ण के साथ गेंद खेल रही है। श्री कृष्ण शब्द उनके पास नहीं था, एक सुंदर बालक था। तो जब परंतु वो तो इतनी मस्त हो गई उसी में, जो उनको उनकी मदर को उतारना पड़ा कि अभी चलो घर चलने का है, तो वो ढूंढने लगी कि वो श्री कृष्ण कहाँ है, वो बालक सुंदर बालक कहाँ है। उन्होंने कहा तुमने क्या देखा, श्री कृष्ण देखा क्या? कहा नहीं, वो एक बहुत सुंदर बालक था, बंसुरी उनके हाथ में थी। क्यों क्यों? गुलजार दादी जी के पेरेंट्स गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे, तो उनके पास ये श्री कृष्ण की कहानी का नहीं था, तो इन्होंने बचपन में कोई श्री कृष्ण की बातें नहीं सुनी थी। पर उनकी मदर समझ गई या और जो माताएं थी वो समझ गई कि इनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ है, यानी साक्षात श्री कृष्ण दिखाई पड़ा है। साक्षात्कार यानी जिसको दर्शन किया, जिसको देखा, वो सिर्फ स्वप्न नहीं था, वो एक साकार रूप में प्रकट हुआ था, उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो वो जब नहीं बता सकी तो उनकी मदर, क्योंकि वो बाबा के घर था उमनेवास, तो बाबा के जो दरवाजे थे उस पर ये जो पुराने ज़माने में श्री कृष्ण के चित्र लकड़ी के बने होते थे
1: जी,
0: इस प्रकार का डिज़ाइन होते थे उस पर, तो उन्होंने कहा कि तुमने ये देखा क्या, वो जो बालक था तुमने ऐसा देखा? कहा नहीं, ये तो गंदा है। वो तो बड़ा सुंदर था, अब उसको तो कुछ मालूम नहीं कि ये लकड़ी का ये तो कुछ नहीं है, वो तो बहुत सुंदर था। तो भाव ये है कि उसको पहचान भी नहीं कि मैं श्री कृष्ण देख रही हूँ, और उनको भी है कि जैसे और किसी को सुंदर बगीचा नजर आया, उसमें बहुत फूल खिले हुए, झूला लगा हुआ है, उसमें हम झूल रहे हैं। तो छोटे बच्चों को इस प्रकार से यानी सुख की दुनिया के नज़ारे नज़र आते थे, और बड़ों को क्योंकि कुछ कैच करने की शक्ति ज़्यादा थी तो उस हिसाब से साक्षात्कार होते थे।
1: जैसे ओम मंडली के नाम से जब शुरू में सत्संग चल पड़ा, तो ये ओम मंडली नाम कैसे पड़ा, कौन कौन शामिल थे, कितने लोग थे इसमें?
0: ओम की ध्वनि ब्रह्मा बाबा ने जैसे अनुभव करना शुरू किया ना, तो ओम की ध्वनि करते थे, फिर ब्रह्मा बाबा से लोगों को साक्षात्कार होता था। तो बाबा तो ओम का उच्चारण करते ही थे, दूसरे लोगों ने भी ओम का उच्चारण करना शुरू किया। तो जैसे ही वो ओम का उच्चारण करते थे, वातावरण बड़ा विशेष हो जाता था, एनर्जी उस ओम ध्वनि में अथवा ओम के मंत्र में बहुत पावरफुल थी। जो भी आते थे वो उनको फिर ये साक्षात्कार किसी न किसी प्रकार का दर्शन होता था, ब्रह्मा से श्री कृष्ण का, या जो खुद किसी स्थान पर चली गई जहाँ कि वो श्री कृष्ण के साथ डांस कर रही हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं है पर श्री कृष्ण है और उनके साथ ऐसे गोपी हैं वो डांस कर रही हैं। तो ऐसे एक प्रसिद्ध हो गया कि ओम मंडली में साक्षात्कार ऐसा ही होता है जैसे 2 पैसे की कुल्फी मिलती है। जैसे है टके टके कुल्फी, तो ऐसे था जैसे 1 सेकंड में साक्षात्कार होते हैं। तो इस प्रकार से तो कई तो उस दर्शन के इच्छा से आए, परंतु ज़्यादा जो सभा बड़ी बड़ी बड़ी, बाबा तो कल वहाँ चले गए श्रीनगर में, जो बाबा की एब्सेंस में जो आए वो 350 हो गए। बाबा जब वापस आए तो इतनी बड़े जो आने वाले सत्संग में इतने ज़्यादा थे, तो वो ओम मंडली के नाम से यानी ग्रुप, मंडली माना ग्रुप, इस ओम मंडली ओम मंडली ओम ओम मंडली का सर्कल, तो नाम ओम मंडली लोगों ने दिया जिन्होंने ओम ध्वनि का अनुभव किया।
1: दीदी ओम राधे, इनका ओम मंडली में आना भी, वो कैसे जुड़ी और बाबा ने कब उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए इंचार्ज नियुक्त किया?
0: 17 या 18 साल की थी जब पहले दिन ही आई, अपनी मामी के साथ हुआ थी, मदर और आंटी के साथ, तो ओम की ध्वनि सुनी तो उनको वो बहुत टच किया, और उस टच कर जब उनको वो टच हुआ, वो नेचुरली वाइब्रेशंस थे और साथ साथ ध्वनि भी थी, साउंड साउंड और वाइब्रेशंस दोनों चीज़ों ने उनको कुछ हृदय में एक उत्साह उत्पन्न किया, फीलिंग्स बहुत अच्छी थी उनको। उन्होंने घर में जा कर के एक सॉन्ग लिखा जिसमें उन्होंने सिंधी में ही लिखा, ओम मंडली में मनीमू छा डिठोरी बहन, मेरी बहनों ओम मंडली में जाके मैंने क्या देखा। ये ओम शब्द इतना टच करने वाला था जैसे कि जादुई मंत्र था। उन्होंने अपनी आंटी को सुनाया, गा के सुनाया। वो सितार भी बजाती थी, गाती भी थी। तो उनकी आंटी ने कहा कि कल तुम मेरे साथ फिर चलना, और ये जो तुमने संगीत लिखा है अनुभव गीत में, ये तुम बाबा को सुनाना, बा सुनाना सबा। तो इस प्रकार से ये मम्मा की विशेषता को देखा बाबा ने। फिर धीरे धीरे जैसे ही मम्मा आती गई तो उनकी जो कैचिंग पावर थी वो बहुत तीक्ष्ण थी। एजुकेटेड भी थी, कॉन्वेंट में पढ़ रही थी, और अपना अंदर का अनुभव भी था। तो एक दिन बाबा ने पूछा, तुम्हारे जीवन का फैसला क्या है? तो मम्मा ने कहा कि मुझे, मेरे जीवन का फैसला यही है कि मुझे अपना जीवन ऐसा ही बनाना है। तो मम्मा की विशेषताएं क्या था, जो सुनती थी वो, उस पर वो फौरन न केवल विचार करती थी, उस समय योग शब्द नहीं था, वो ध्यान में बैठती थी एकांत में अमृत वेले उठकर, उससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती थी। तो जब ये बीच में जो बाबा गए श्रीनगर और मम्मा ने इतनों की पालना की, तो बाबा ने उनको मम्मा नाम दिया कि ये एक कुमार

0: इसमें इतनी दिव्यता है अथवा इतनी विजडम है, क्यों जो परमात्मा के शब्द है टचिंग थी उसको अपने जीवन में लाने के बाद अनेकों को जीवन दान दिया। तो बाबा ने इनको मम्मा कहना शुरू किया और दूसरों को भी अनुभव होता था उनकी दिव्यता से, गंभीरता से, कोई किसी बात का किसी में इंटरफेरेंस नहीं, परंतु मुस्कराहट से जैसे सबका मन हर लेती थी, सबको अच्छी भी लगती थी। तो ऐसे करते करते बाबा ने जो माताएं विशेष थी, कुमारियां विशेष थी, उनकी विशेषता करके समझा कि ये इस कार्य को संभाल सकती हैं। जैसे कि एक बाबा के पास परख शक्ति थी विशेषताओं को कैसे यूज़ करना होता है, तो बाबा ने आठ का ग्रुप बनाया। कुछ दो माताएं थी, अच्छे कुमारियां थी, ऐसा थी मतलब माताएं कुमारियों का कंबाइंड। और उस समय बाबा ने ये निश्चय किया कि ये मुझे कार्य मेरे को नहीं करना है, ये माताओं को। तब तक तो क्लियर हो चुका था वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होना है, दुनिया परिवर्तन होनी है, नई दुनिया आनी है, कौन करेगा इस कार्य को। तो बाबा ने विजन रखा अपने पास कि माताओं द्वारा ही ये कार्य होना है। तो बाबा ने वो आठ का जो ग्रुप बनाया उसको देख उनको अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको समर्पण किया ट्रस्ट बनाकर। उसमें जगदम्बा यानी ओम राधे को जो मेन ट्रस्टी बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और उनके साथ बाकी माताएं तो थी। फिर बाबा ने पत्र लिखवाने शुरू किए, इंग्लैंड में भेजा, क्वीन को पत्र भेजा, साथ साथ चित्र भेजते थे। और तो इस प्रकार से फिर किसके नाम से जाए तो ओम राधे, जो ओम मंडली थी उसमें मम्मा का नाम एक्चुअली राधे था, ये ओम मंडली से कनेक्टेड है और ओम स्वरूप में स्थित होने वाली और ओम स्वरूप में दूसरों को स्थित कराने वाली है। तो कर्तव्यवाचक नाम, गुणवाचक नाम के हिसाब से ओम राधे, यानी उनको आत्मिक नाम उनका ओम राधे। और फिर जब उसमें आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल में और बढ़ने लगी तो जगदम्बा माँ पत्र सब जो गए वो ओम राधे के नाम से, क्योंकि ओम राधे की मंडली की हेड जो थी वो ओम राधे थी।
1: दीदी, जैसे बाबा ने लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या को भी आवश्यक माना था, और साथ में हमने ये भी सुना है कि बहनें जो बहुत ही कम आयु में बाबा के पास आईं यज्ञ की शुरुआत में, तो उनकी शिक्षा और दीक्षा का प्रबंध कैसे किया गया, क्या होता था?
0: क्योंकि परिवार के परिवार आने लग गए थे, खाली माताएं नहीं थी, परिवार आए, उनके छोटे बच्चे भी थे, 3 साल से लेकर के 15 साल तक के बच्चे। तो बाबा ने जो छोटे बच्चे थे 10 साल तक के बच्चों का एक बोर्डिंग बनाया, बाल भवन जिसको बोलते थे, उस बोर्डिंग में उन्होंने जो ये 15 साल की कुमारियां थी उनको उनमें उनका टीचर बनाया, समझो किसने मैट्रिक पास किया हुआ था
1: जी।
0: तो छोटे बच्चों को पढ़ाने की तो उनके पास कला है ही
1: जी।
0: तो उनको निमित्त रखा और कुछ बहनों को, कुमारियों को उनकी पालना के निमित्त रखा, मैनर्स सिखाने के लिए, भाई भोजन खाना है तो कैसे खाना है, रात को सोना है तो पैर धुलाई करके सोने हैं, मिट्टी वाले पैर से नहीं सोना है, सोना है तो योग में परमात्मा को याद करके सोना है, खाना खाना है तो किस प्रकार साइलेंस में मैनर्स से खाना है, समय पर खाना है। तो एक रोज की दिनचर्या में अच्छा उनको तैयार करना है तो किस प्रकार से ब्रश जरूर करना है, पेस्ट जरूर करनी है, जो मैनर्स होते हैं मतलब जो माँ बाप सिखाते हैं ना, वो माताओं को ड्यूटी दूसरी थी। माताओं को अपने बच्चों को नहीं संभालना था, कुमारियों को अनुभव कराया एक माँपन का, ताकि वो हृदय का प्यार दे सके। और ये बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजी है कि उनकी, क्योंकि जब थोड़ा बड़े होते हैं तो नारी को, कुमारी को अंदर भावना होती है मैं माँ बनूं, और ये बाबा ने उन छोटी कुमारियों को 15-16 साल की कुमारियों को ये पालना करने का, बच्चे क्या करते हैं, कैसे चंचल होते हैं, कैसे सुधारना होता है, कैसे उनकी पालना करनी होती है, कैसे उनको प्यार से शिक्षा देनी होती है, तो ये बाबा ने उन माताओं को, कन्या को ऑटोमेटिकली मातापन का अनुभव कराया। और जगदम्बा माँ ने तो अपनी दिव्यता से, आध्यात्मिकता से, दिव्य बुद्धि से सबके दिल पर छाप डाली, तो वो तो मात बच्चों की माँ नहीं, परंतु जो बड़े बच्चे थे, माताएं जो थी जिनके वो बच्चे थे, उन माताओं के और भाइयों के, वो माँ उनको मत मां जी जगदम्बा माँ कहने लगे। यहाँ तक कि मम्मा की मामा, मम्मा की मामी, वो भी उनको मम्मा कहती थी, कहाँ वो उनकी माँ, परंतु उनको उसमें से जगदम्बा का अनुभव होता था कि जगत की माँ है, मेरी बेटी नहीं है, जगत की माँ है।
1: दीदी, जैसे आप ये बात बताते हैं कि बाबा ने बचपन से ही बच्चों में ये अच्छे और दैवी संस्कारों के बीज डाले, अच्छे डिवाइन मैनर्स और अच्छे मैनर्स बाबा ने सिखाए, अब ये जो दैवी संस्कार हैं इसका यज्ञ पर किस रीति से प्रभाव पड़ा?
0: क्योंकि संस्कार ही विचार व्यवहार, संस्कार अनुसार ही पहले विचार उत्पन्न होते हैं, व्यवहार बाद में होता है, पर वो संस्कार बनता है कुछ प्रैक्टिकल में कर्म करने से। तो ये जो मैनर्स थे, डिसिप्लिन था नेचुरल, आपस में मिल करके रहना है, बाबा बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छी पालना करते थे, बाबा का मामा का प्यार तो था ही था। रात को जब वो सोने जाते थे तो हर एक को मच्छरदानी के अंदर, जैसे बहनें योग में बिठाती थी, बाबा देखने जाते थे तो बाबा को ऐसे कहते थे कि ये मंदिर की मूर्तियां हैं, मैं इनका दर्शन करने आया हूँ। बहुत प्यार से बाबा उनको, कि वो योग में बैठे होते थे तो कहते थे बच्चे नहीं हैं ये, इस मच्छरदानी के अंदर मंदिर की मूर्तियां हैं। और बाबा जब भी सीजन का फल आता था तो पहले बच्चों को खिलाते थे, फिर बड़े बच्चों को तो मिलता ही था, खैर इस प्रकार से। तो ये जो दूसरों की पालना करनी है, आपस में मिल करके रहना है, और योग समझो कराते थे तो एक दो को सामने ऐसे, तू मुझको दृष्टि दे मैं तेरे को दृष्टि दूँ, समय दृष्टि शब्द नहीं था, तू मुझे देख मैं आत्मा हूँ, तुम यहाँ मुझे देखो, मैं तुमको वहाँ देखूँ। तो उस हिसाब से वो जब एक दो को आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते थे तो स्वाभाविक रीति से देह के भान से बाबा उठाते जाते थे, तो उसमें भी उनका आपस में आत्मिक भाव का स्नेह होने के कारण इनोसेंस में ही उनके अंदर ये संस्कार बन गया कि मैं आत्मा हूँ और ये आत्मा है। और दूसरी बात ये थी कि वहाँ बाबा ने साइलेंस का बिल्कुल एक प्रोग्राम ऐसा रखा था, यानी कुछ समय तक शब्द नहीं थे, साइलेंस में ही सब कुछ करना है, कम्युनिकेशन भी साइलेंस में है, प्रोग्राम है बोर्ड पर लिखा हुआ है, कुछ किसी को मैसेज देना है बोर्ड से, उस समय तो टेलीफोन का तो साधन शब्द ही नहीं था, मतलब साधन नहीं थे इस प्रकार से, तो कम्युनिकेशन आपस में जो करते थे वो शब्दों में नहीं करते, थोड़े में करनी होती थी, ज़्यादा की तो बात ही नहीं। भोजन भी बनाना है तो साइलेंस में बनाना है, खाना है तो भी साइलेंस में खाना है। तो साइलेंस की शक्ति से जो उनके मैनर्स थे वो डीप चले गए अंदर, क्योंकि एनर्जी बाहर वेस्ट नहीं हुई, विस्तार के बदले गहराई में चली गई। और उसमें उनके अंदर जो दिव्य गुण थे, आपसी स्नेह था और एक दो के प्रति सम्मान बहुत था, हर एक की विशेषता।

0: Namaskar and a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Om Shanti. हर बार ये जब हम शब्द सुनते हैं तो एहसास हो जाता है कि मेरी सच्चाई क्या है. मैं वो प्यार से भरी हुई पीसफुल आत्मा हूँ जिसके साथ एक गहरा रिश्ता है मेरा उस परमात्मा उस शिव बाबा के साथ, और फिर समय चक्र की सच्चाई को भी जाना, आगे बढ़े इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, उस शिव बाबा ने किस तरह से अवतरित होके अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बढ़ा, बहुत सी बातें जानी. अब थोड़ा कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी मान्यताओं को लेते हैं जो कि आपके दिलों में है. बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं, तो हर बार की तरह हमारे सभी सवालों का जवाब हमें देने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
1: ओम शांति.
0: सिस्टर शिवानी, बहुत कुछ हमने आपसे लिया है, बहुत कुछ हमने जाना है जो कि आपका ज्ञान नहीं होके हम समझते हैं अब ये बात कि शिव बाबा का सीधा ज्ञान हम तक पहुंचा है. कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी लोगों को कौंधते हैं मन में और ऐसा लगता है कि ये इसमें कुछ मिस्ट्री है. सो एक्चुअली थ्रू दिस प्रोग्राम वी वुड लाइक टू

0: you know, open up and sort out all the mysteries which are there. सबसे पहले तो एक सवाल सफेद लिबास. खैर अब ये बहुत अच्छा हो गया है, वाइट इज इन. और जहां लोगों को सफेद दिखता है लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी. लेकिन व्हाई वाइट एंड इज इट मैंडेटरी?
1: दिस वाइट साड़ी इज द यूनिफॉर्म ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज. ये एक यूनिफॉर्म की तरह है, जैसे एक लॉयर की यूनिफॉर्म होती है, एक नर्स की यूनिफॉर्म होती है, एक आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म है. उनको कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया. यू नो, एक नर्स भी वाइट ड्रेस पहनती है, हम कभी नहीं कहते व्हाई वाइट, यू नो. सो ये भी एक यूनिफॉर्म है, और जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल कलर है जो हमें बहुत अच्छा लगता. वाइट सिम्बलाइजेस प्योरिटी, वाइट सिम्बलाइजेस पीस. तो शांति और पवित्रता का प्रतीक सफेद रंग है. जैसे वाइट कोई अपने आप में कलर ही नहीं है, सारे कलर्स मिला के हम, यू नो, स्कूल में वो करते थे एक्सपेरिमेंट कि जब सारे कलर्स एक डिस्क पे होते थे, विबग्योर जो हम कहते थे रेनबो के कलर्स, और उस डिस्क को जो बहुत फास्ट घुमाते थे तो वो वाइट कलर लगता था. तो सारे रंग मिलाकर वो सफेद रंग बन जाता है. इट इज लाइट बेसिकली. तो और फिर भी जैसे आपने कहा कि ये मैंडेटरी है, तो बिल्कुल नहीं. परमात्मा ने जैसे एक एक श्रीमत हमारे लिए रखी, तो उसी तरह जो भाई बहने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित करते हैं. सी टुडे वी आर लैक्स ऑफ फैमिलीज जो इस विद्यालय की टीचिंग्स को रेगुलरली अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, जिन सबको हम ब्रह्मा कुमार्स ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, लेकिन वो सभी अपने घरों में रहते हैं. घर में रहते हैं, अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं. उसमें से एक बहुत छोटा सा नंबर, अप्रोक्सीमेटली 10,000 to 15,000, वो भाई बहने हैं जो अपने जीवन को इस सेवा में, परमात्मा की सेवा में सरेंडर करते हैं. दैट इज दे डू नॉट लीड अ नॉर्मल फैमिली लाइफ, दे लीड अ सरेंडर्ड लाइफ, जहां वो अपने घर से अलग होकर आकर सेंटर पर रहते हैं. कोई दुनिया से दूर नहीं चले जाते, क्योंकि सेंटर भी तो इसी दुनिया में ही बने हुए हैं, लेकिन सेंटर की सेवाओं को और सेंटर की एक्टिविटीज को संभालते हैं, ताकि जब सभी घरों से लोग वहां पर आते हैं तो उनके साथ ज्ञान की चर्चा, मुरली की क्लास, योग का अभ्यास, 7 days फाउंडेशन कोर्स कराना, हर आत्मा तक परमात्मा का परिचय पहुंचाना, तो वो उनका अपना पूरा जीवन इस सेवा में समर्पित है. आज इतने हजारों भाई बहने इस सेवा में जुटे हैं, तो उनकी एक ड्रेस कोड है, उनकी एक यूनिफॉर्मिटी है, क्योंकि एक डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है कि वी आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारी फिर एक ये यूनिफॉर्म है कि वी रिप्रेजेंट द ब्रह्मा कुमारीज इन दिस यूनिफॉर्म. लेकिन और उनके लिए ये वाइट यूनिफॉर्म कंपल्सरी है. एज लॉन्ग एज आई एम अ सरेंडर्ड brother or sister of the organization, I wear only white.
0: Because I stay there. They don't stay in the families, they stay in the center.
1: तो आप सोचो कि जहाँ हजारों लोग इकट्ठे रहेंगे तो एक सिस्टम भी तो सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम तरह की हर चीज सभी को देनी है. तो आप एक ड्रेस कोड रखते हैं और एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से चलते हैं.
0: अच्छा, लेकिन बाकी लोग जो रह रहे हैं,
1: हाँ,
0: वो जब सेंटर पे आते हैं तब वाइट पहनेंगे, उस यूनिफॉर्म में आएंगे?
1: नॉट नेसेसरी एट ऑल. जब हम सभी जो घरों में रहते हैं, हम थोड़े समय के लिए सेंटर पे जाते हैं, जैसे मॉर्निंग क्लास के लिए या इवनिंग क्लास या कोर्स करने या कभी भी, लेकिन उस समय हमें वाइट पहनना है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. यू वेयर वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर. यू आर वेरी नीटली ड्रेस्ड ऑफकोर्स, क्योंकि आजकल ड्रेसिंग के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. तो यू आर वेरी डिसेंटली एंड नीटली ड्रेस्ड, बट यू हैव टू वेयर वाइट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप अपने नॉर्मल रंगीन कपड़े जो पहनते हैं वो पहन कर ही सेवा केंद्र जाते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि घरों से जब हम सेंटर पर आते हैं, हमें वो व्हाइट कलर अच्छा लगने लगता है.
0: एक्चुअली यू नो, इवन आई वांटेड टू वेयर इट एट टाइम्स.
1: रिमेंबर, यू हैव सेड सो मेनी टाइम्स दैट आई वांट टू वेयर व्हाइट. We never asked you that you need to wear white. So similarly, a lot of the students, when they come to the center, they feel like wearing white. They are not asked to wear white. There's a lot of difference. So, kayon ko जो अच्छा लगता है कि मुझे भी व्हाइट पहनना, तो फिर वो व्हाइट पहनते हैं. वो उनकी अपनी स्व इच्छा होती है. कोई कभी कभी पहनते हैं, कोई किसी फेस्टिवल के दिन पहनते हैं, कोई रोज पहनते हैं आउट ऑफ चॉइस. लेकिन वहाँ सेंटर पर आने के लिए व्हाइट पहनना है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है.
0: आई थिंक इट्स मे बी बिकॉज यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट पीस सो मच, आई एम अ पीसफुल सोल, द नेचुरल इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स व्हाइट.
1: टुवर्ड्स व्हाइट, या. लेकिन वो भी एक, you know, it's just a state of mind. Otherwise, peace is here internally. It actually has nothing to do with what colored clothes I am wearing. It does feel good, but ye nahi hoga ki aaj agar hum white ki jagah koi aur color ki sari pehen le to yahan par koi bahut zyada asar hona chahiye, ye nahi ho sakta. इसलिए सभी को ये बहुत क्लैरिटी चाहिए कि सेंटर पर आने के लिए सफेद कपड़े पहनने हैं, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है. आप जिन कपड़ों में चाहें, जो रंग पहनना चाहें, काला रंग भी पहन सकते हैं. यू आर एब्सोल्युटली फ्री टू डू. इनफैक्ट सी, मोस्ट ऑफ द पीपल, दे कम टू द सेंटर एंड फ्रॉम द सेंटर दे गो फॉर देयर जॉब्स, दे गो टू स्कूल, दे गो टू कॉलेज. तो वो अपने नॉर्मल ड्रेसेस में आते हैं, मॉर्निंग क्लास के लिए आते हैं और वहां से अपने जॉब्स पर जाते हैं. तो यू विल हैव पीपल कमिंग इन ऑल कलर्स.
0: ओके, सो व्हाइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद व्हाइट, बट लेकिन जो मिथ जुड़ा है व्हाइट से, उसे हमने डिस्पेल किया. आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ. क्या मेंबरशिप है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप मिल सकती है, क्या कोई गुरु दीक्षा लेनी पड़ती है, क्या मैं मेंबर बन के इस ऑर्गेनाइजेशन का, या ब्रह्मा कुमारी अगर मैं बनना चाहूँ उसका क्या प्रोसेस है? ये तीन क्वेश्चन मैंने साथ साथ पूछे हैं.
1: ये एक परिवार है, इसको हम भले बार बार ऑर्गेनाइजेशन वर्ड रेफर करते हैं, बट वंस यू कम हियर यू विल रियलाइज दैट देयर इज, इट्स नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ फैमिली. तो फैमिली का हिस्सा बनने के लिए कोई मेंबरशिप नहीं होती है, कोई नाम भी नहीं लेना होता है. हम इस परिवार का हिस्सा कैसे बन जाते हैं? हम सेंटर पर आते हैं, हम ज्ञान लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं, हमें शिव बाबा का परिचय मिलता है. और जैसे ही आत्मा को उस पिता की पहचान मिलती, वो कनेक्शन जुड़ जाता और हम उस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं. जब हम इस राज्यों को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करते हैं, देन वी आर अ पार्ट ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज फैमिली. दैट्स ऑल, देयर इज नो कि नाउ आई एम अ मेंबर. No.
0: मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना,
1: कुछ भी कुछ नहीं. देयर इज नो सच थिंग, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई गुरु दीक्षा जो आपने कही, कोई नाम लेना. क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमने दूसरी कहीं जगह नाम लिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ आ सकते हैं? या अगर हम यहाँ आए तो क्या उसके बाद हम कहीं और नहीं जा सकते हैं?
0: क्या अपने धार्मिक स्थलों पर हम जा सकते हैं? ये भी एक सवाल है. मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, ये वो कंटिन्यू किया जा सकता है?
1: एब्सोल्युटली. आपकी जीवन जैसे चल रही थी पहले, आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च जहाँ जा रहे थे, आप बिल्कुल वहाँ जाते रहेंगे. लेकिन अब आप सब कुछ जो करेंगे, इट विल बी विद अ लिटिल मोर क्लैरिटी, विद अ लिटिल मोर अंडरस्टैंडिंग एंड विद अ लिटिल मोर प्रैक्टिकलिटी. कि आप जो कुछ आज दिन तक सुनते आए, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुनने तक ही रख दिया था, उसको हर पहलू पे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं लाया था. ज्ञान समझने के कारण और सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा से संबंध जुटने के कारण वो पावर मिल जाती है कि आप जो कुछ करते हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बाकी आप जहाँ जा रहे थे, जो कुछ कर रहे थे, आप बिल्कुल वैसे ही करते रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा.
0: आज का दिन हमने रखा है कि सारे वो डिस्पेल करने हैं, क्योंकि इतने सारे सवाल थे, सफेद कपड़ों से जुड़ा हुआ, मेंबरशिप से जुड़ा हुआ. एक और बात जो बहुत लोग बोलते हैं, यू नो, बहुत से मेरे पास भी लोगों के कॉल्स आए हैं कि हम जा नहीं सकते क्योंकि मम्मी पापा नहीं जाने देते. ये कहते हैं कि आपको भाई बहन बना देंगे, आप मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो परिवार के परिवार जुड़े हैं. सो व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट, व्हाट एक्चुअली रियली हैपेंस?
1: या, लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. वही, जब तक हम अंदर आकर नहीं देखते, तो बाहर सुनी सुनाई बातों पर चलने के कारण हमारे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं. पहली बात तो जैसे आपने कहा कि भाई बहन बना देंगे, ये एक बहुत बड़ा टैग ऑर्गेनाइजेशन पर लगा हुआ है कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाने से भाई बहन बना देंगे. आई वी नीड टू क्वेश्चन आवर सेल्फ दैट व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, यू नो, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से व्हेन वी से दैट द रिलेशनशिप विल चेंज. हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी न रहकर अब भाई बहन बन जाएंगे, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू फील इट मींस?
0: व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड, आई एम सेइंग व्हाटएवर, बिकॉज ऑल द thoughts, if we look at all the fear, if we look at, is related to somewhere celibacy,
1: right?
0: You know, absenting from that process. But is it being you know, what really happens? You're being taught, are people being taught there? Because there are a lot of myths attached to it.
1: So jab hum आत्मा का परिचय हमें मिलता है तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, और उसमें हमने ये समझा कि आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट अ बॉडी, बॉडी इज जस्ट माय कॉस्ट्यूम. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, प्योरिटी मेरा धर्म है, प्योरिटी मेरा ओरिजिनल संस्कार है. बट आई फॉरगॉट दिस, एंड बिकॉज आई फॉरगॉट दिस, आई लॉस्ट कंट्रोल ओवर my sense organs. Now I'm taking control back. So Raj Yoga is a journey from body consciousness to soul consciousness. Ke hum dehe ke abhiman mein itna toote hue the aur ab hum atma abhimani banne ki yatra par ja rahe hain. Aur ye jo purity ki dharna hai ya kahe celibacy ko practice karna, ye is process ko bahut easy bana deti hai. ये धारणा भी किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा नहीं बताई गई थी, ये बात भी निराकार परमात्मा शिव द्वारा ही बताई गई है कि पवित्रता को अपने जीवन में धारण करने से आप वो शुद्ध पवित्र आत्मा फिर बन सकते हैं. तो लेकिन फिर अगेन, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट दैट आपको ये करना ही होगा, नहीं. इट्स लाइक हम एक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगा देता है, और साथ साथ कह देता है कि आप इन एक दो चीजों की परहेज कर, प्रिकॉशन. अब कुछ पेशेंट प्रिकॉशन करते हैं, कुछ पेशेंट उस प्रिकॉशन को नहीं फॉलो करते, लेकिन वो दवाई तो फिर भी लेते हैं, उस ट्रीटमेंट को तो फिर भी लेते हैं, लेकिन शायद उनमें वो विल पावर नहीं है या वो सेल्फ कंट्रोल नहीं है जो उस प्रिकॉशन के ऊपर वो ध्यान रख ले. वो फिर भी तेल वाली चीज खा लेंगे, फिर भी मीठी वाली चीज खा लेंगे जो उनको डॉक्टर ने मना की है. इसी तरह ये भी एक ट्रीटमेंट है. आत्मा बहुत इम्प्योर हो चुकी है, वो सारे ओरिजिनल संस्कार्स मर्ज हो गए हैं. अब ये हीलिंग प्रोसेस ना, वी सेड मेडिटेशन इज हीलिंग, तो सारे पुराने संस्कारों की हीलिंग जो हो रही है, तो उसमें सेलिबसी या प्योरिटी ये भी एक प्रिकॉशन है कि अगर आप राजयोग सीखें, राजयोग का प्रयोग भी करें, दैट इज द ट्रीटमेंट. जो हम ज्ञान की मुरली रोज सुनते हैं, दैट इज द मेडिकेशन, रोज हमें वो मेडिसिन मिलती है. अब इसका असर जल्दी से आपके ऊपर हो और आप उस स्टेज को अचीव कर सके, तो प्योरिटी की अगर आप अपने जीवन में धारणा करते हैं, दिस प्रोसेस बिकम्स ईजियर. बट ऐसा नहीं है कि वहां जाना मतलब आपको ये करना ही होगा, एंड बिकॉज ऑफ विच आप जाते ही नहीं.
0: Yeah, that's what it is. In fact, अगर हम सारे धर्मों में देखें तो हर धर्म में प्योरिटी का यही एग्जाम्पल सामने आता है.
1: हर धर्म में हर महान आत्मा ने, हर संत आत्मा ने, हर यू नो, हर रिलीजन में भी प्योरिटी का एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है. सेलिबेसी इज अ पावर, इट इज एनर्जी. तो प्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ फिजिकल नहीं है,
0: थॉट.
1: We are talking of purity at the level of thought, जहां हर एक विकार का, और देखो आज दिन तक हम सुनते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो फिर उसको भूल क्यों जाते हैं कि it started with काम विकार. जब तक उस विकार के ऊपर विजय नहीं पाई, तब तक आगे के बाकी विकारों पर विजय नहीं पा रहे. इट इज सेड फर्स्ट इन द लिस्ट, तो फर्स्ट इन द लिस्ट ऑर्डर में ही तो जाना पड़ेगा ना, तब तो आगे का खत्म होगा. और इसीलिए उसको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल मेरा जो व्यवहार है, नेचुरल जो मेरी कॉन्शियसनेस है, वो सोल कॉन्शियसनेस है. और इंडल्जिंग इन समथिंग लाइक दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस,
0: बिकॉज़ आई थिंक इट्स ऑलवेज,
1: बिल्कुल आप बॉडी के बिल्कुल ही जैसे शरीर के वशीभूत हो जाते हैं उस आकर्षण की तरफ. तो आप उससे ऊपर जब तक नहीं उठेंगे, तो आत्म अभिमानी तो बहुत ऊंची जो कहें स्थिति हो जाएगी, और जब तक इसके ऊपर हम ओवरकम नहीं करते हैं तब तक आगे की क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट को नहीं पकड़ा।
0: लेकिन जहां आपने थॉट की बात की सिस्टर शिवानी, आज के इस वक्त में अगर हम देखें तो थॉट, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बात कही थी कि थॉट, क्योंकि हमें लगता है कि कोई तो देख नहीं रहा, तो हमारे अपने हैं और वो किसी को नहीं पता चलेंगे, लेकिन आज इस पर बच्चा बच्चा थॉट में आ चुका है, चाहे एक्शन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये भी एक बहुत गलत, जो मुझे लगता है कि पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है।
1: एंड आज जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कहते हैं कंसंट्रेशन पावर नहीं है, उसका फंडामेंटल रीजन यही है, इम्प्योरिटी इन थॉट। क्योंकि इम्प्योरिटी हमारी कंसंट्रेशन को टोटली ब्रेक डाउन कर देगी, और यही जब हम प्योरिटी को अपने जीवन में धारण करते हैं तो एकाग्रता शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सेलिबेसी, I don't think we need to argue about it. It is something which needs to be experienced. Try it out. If you feel it's difficult, please remember it's only one thought away. कोई भी परिवर्तन, और हम शुरू से ये देखते आए, कोई भी परिवर्तन करने में सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर हम हैं। हस्बैंड वाइफ सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं है, हमारे कितने सारे रिलेशनशिप्स हैं, मदर एंड चाइल्ड, ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रेंड्स सिर्फ दोस्त, टीचर एंड स्टूडेंट, आई मीन देर आर सो मेनी रिलेशनशिप्स, तो वाई ओनली द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को हम कहते हैं अब ये भाई बहन का रिश्ता बन गया है? वाई प्योरिटी इज देयर इन सो मेनी रिलेशनशिप्स, तो क्या एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इतना एक प्योर रिलेशनशिप नहीं हो सकता? राजयोग से क्या होगा, हम अपनी एनर्जी को प्योरिफिकेशन के प्रोसेस पे लेके जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरिफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन एज, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइफ राइट नाउ वेयर आई हैव सेल्फ कंट्रोल। सेलिबेसी प्रैक्टिस करने से जो अमाउंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, उसके बाद आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी विल पावर, क्योंकि इसको एक चीज ऐसा माना गया जो इम्पॉसिबल है। यू नो, दुनिया में लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है कि आप पवित्रता की धारणा करना इकट्ठे रहते हुए, इसीलिए तो आज दिन तक संन्यास किया। संन्यास क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्योरिटी की धारणा करना चाहते थे, लेकिन कहा कि इकट्ठे रहकर नहीं कर सकते, तो अलग हो गए। लेकिन जहां परमात्मा की शक्ति मिल जाती है, तब ये इतना ईजी हो जाता है। इट्स जस्ट वन thought, and when it's with understanding कि मैं कौन हूँ, एक पवित्र आत्मा, ये कौन है, वो भी एक प्योर सोल, शक्ति किसकी मिल रही है, तो impossible तो बहुत दूर की बात है। In fact, I would say it's very, very, very simple. It's just very simple. It just has to be tried out. उसको try करके उसका हम benefit देख सकते हैं। सबसे practical benefit जो हर एक को अनुभव होगा वो है energy. ब्रह्मा कुमारीज में आने से क्यों ये प्रिवेंटिव मेजर बताया जाता है? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन। आत्मा की एनर्जी डिस्चार्ज हो चुकी थी, हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात जहां कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी लीकेज है, तो इसको हमें रोकना पड़ता है, तो इसलिए ये बात सबसे पहले बताई जाती है। और जो आत्माएं या कहे जो भाई बहने इसको अपने जीवन में धारण करते हैं, वो एक नई ही शक्ति को जैसे अपने जीवन में देखते हैं, कि एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि उनको पता नहीं कहां से मिल गया है। द बॉडी इज वेरी एनर्जेटिक, वेरी फ्रेश, एंड बीमारियां भी कम होती हैं। इससे, इन विकारों में जाने से शरीर के ऊपर एक असर पड़ता ही जाता है। एंड दैट्स व्हाई नॉर्मली वी फाइंड पीपल हु से ओके द सिस्टर्स हियर लुक मच यंगर देन व्हाट दे आर, वेल दैट्स बिकॉज ऑफ दिस प्योरिटी। It's because of this practice. Yes. The body would not degenerate as much it would if you indulge in something like that. So purity retains the, you know, the body ki jo energy hai, usko bhi retain karta hai. Mind. Mind bhi bahut energetic ho jata hai, bahut fresh, chidchidapan, gussa, ye kam hone lagti hai.
0: Wonderful. Celibacy, clear. It actually makes sense. We come to the next question. Sister Shivani, I can really, you know, understand in puri baatcheet mein ki how we can actually conserve the energy by following celibacy. Lekin ye baat bhi samne aa rahi hai ki it's not compulsory. You know, if somebody comes to the center, it's not compulsory that they have to follow celibacy.
1: It's not compulsory at all. See, आप देखो, normally भी जीवन में सारे वर्ष के अंदर कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम इसकी धारणा करते हैं. You know, जब हम कोई तीर्थ पर भी जाते हैं तो भी हम पवित्रता की धारणा करते हैं. कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आत्मा को पता है कि जब आप परमात्मा से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, या एक पवित्र कार्य कर रहे हो, या एक पवित्र दिन है, उस दिन आप पवित्रता की धारणा करते हो.

0: अब जो संगम युग है वो एक दिन नहीं है, लेकिन ये पूरी पीरियड जो अभी चल रहा है ये एक पवित्र समय चल रहा है। जब आप परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहे हो तो आपका पवित्र दिन सिर्फ एक दिन नहीं, एक जीवन बन जाता है, बट ओनली इफ यू फील लाइक डूइंग इट। इट्स नॉट दैट इट इज कंपल्सरी, बट जैसे एक प्रिवेंशन बताई जाती है और कुछ लोग उसको करके देखते हैं और करके अगर उनको बेनिफिट लगता है उससे, और करना मतलब कुछ बहुत ऐसा फोर्सफुल नहीं होता, इट्स वेरी नेचुरल।
1: बिल्कुल। सिस्टर शिवानी, एक आखिरी सवाल अभी भी है जो कि मिथ्स में आ रहा है, या कुछ ऐसे सवाल है, फिनेंसेस।
0: अच्छा,
1: ब्रह्मा कुमारी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सुंदर माउंट आबू का, कई लोग मुझे बताते हैं कि इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे रिट्रीट सेंटर्स हैं, एंड दैट नीड्स लॉट ऑफ मनी टू एक्चुअली यू नो, सो बहुत सवाल है ये कि बहुत पैसा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, सो इज देयर सम एक्सप्लेनेशन फॉर दैट?
0: जिस परिवार में लाखों सदस्य हो तो वहां पैसा कहाँ से आएगा? परिवार के सदस्यों से आएगा। इनफैक्ट ये शायद एक ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां हर कोर्स, हर ट्रेनिंग, हर प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। नहीं तो हर जगह पर कोई ना कोई एक वैल्यू तो जुड़ती ही है, लेकिन परमात्मा का बच्चों को दिया जा रहा ज्ञान है, तो शिव बाबा का ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था कि इस पर कोई कॉस्ट नहीं लगाया जाएगा, 1 रुपये भी नहीं, क्योंकि अगर 1 रुपये भी कॉस्ट लगा तो मेरा कोई एक बच्चा ऐसा होगा जो 1 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये ज्ञान हर आत्मा का हक है इस ज्ञान पर, तो इसलिए कोई भी चार्जेस, कोई भी फीस नहीं ली जाती। फिर भी पूरा सिस्टम चलता है कैसे कि जो आत्माएं इस परिवार का हिस्सा बन जाती है, जिनके जीवन में इतना श्रेष्ठ परिवर्तन आता है और जो चाहते हैं कि ये परिवर्तन और आत्माओं तक भी पहुंचे, तो वो हर तरह से उस कार्य में सहयोग देना चाहते हैं, कोई अपना तन, कोई मन से और कोई धन से। यू कैन गिव मनी, स्किल्स, टाइम, एनर्जी और जस्ट माइंड थॉट पावर, दैट्स ऑल। इट्स बेसिकली एवरीबडी इज गेटिंग टुगेदर, कोऑपरेटिंग इन दिस टास्क ऑफ वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इसमें कोई भी फंडिंग बाहर से या कोई भी डोनेशंस बाहर से आए ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी रॉन्ग message that is out, that Brahma Kumaris means lot of money.
1: Lot of money, and it actually comes from not. Out of India. No. A lot of money out of India.
0: Actually not. You must see, it's very beautiful ke ek ek retreat center ya ek ek center kaise banta hai. Jaise abhi Gurgaon mein ek retreat center jo bana kuch varsh pehle, to dadi ji ne kya kiya ke har center par ye message bhej diya ke ye center banna hai फॉर सर्विस, तो हर आत्मा या हर भाई बहन जो आते हैं वो हर रोज 1 रुपये उस सेंटर के कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करें, अगर वो कर सकते हैं तो, नॉट अदरवाइज, नो कंपल्शन। अब लाखों लोग जुड़े हुए हैं, एंड 1 रुपये इज अ कॉस्ट विच एवरीबडी कैन अफोर्ड, तो अगर लाखों लोग सिर्फ रोज 1 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करें तो कितना हुआ? रोज का उतना जेनरेट हुआ, जिससे धीरे धीरे वो रिट्रीट सेंटर बन गया। यू नो, इट वॉज नॉट किसी एक ने आकर लाखों दे दिया और उससे वो बना। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल द वे वी सी इट गेटिंग डन, कि हर आत्मा का कण कण कण कण जुटकर वो एक परमात्मा का कार्य बनता है। तो हर एक के सहयोग से ये कार्य चल रहा है, किसी को कंपल्सरी नहीं देना पड़ता, गुप्त रूप से जो हर एक आत्मा अपना सहयोग दे, और वो भी वो आत्माएं जो ऑलरेडी परमात्मा से जुड़ चुकी हैं और जो अपने जीवन में वो परिवर्तन अनुभव कर रही हैं, जो वो औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उनके सहयोग से कार्य चलता है।
1: दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। और इससे एक सबसे बड़ी बात ये कि मैं एक इंडिविजुअल, एक आत्मा भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ, maybe not financially, but you know when they say that ki main kuch nahi kar sakta ya main kya hu itni badi srishti mein, so mera contribution really matters.
0: You know, it's also in terms of skills. Jaise koi doctor hai to wo aakar hospital ka dhyan rakhte hain Mount Abu mein, koi engineer hai, koi architect hai, wo construction mein madad karte hain, to aise parivar ka ek ek sadasya jaise ek normal parivar hota hai ghar mein, ki har ek ka role alag alag hota hai, to har ek is tarah se apna role contribute karke एक सुंदर कार्य को कर रहे हैं पूरे विश्व में।
1: बहुत सुंदर। तो आज ऐसा लगता है कि कई सारे जो क्वेश्चंस बौछार थी वो पहुंचे आप तक, और एक एक सवाल का एक एक बहुत आसान और बहुत सिंपल सहज हमें जवाब भी मिला, और सारी वो मिस्ट्री ऐसे लगता है कि अब छट गई है। सिस्टर शिवानी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। जब भी हम किसी ज्ञान की बात करते हैं, जब भी ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है, ही सवाल उठने नेचुरल होते हैं। और इतना पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा जो ज्ञान का एक कहा जाइए घर है, उसमें बहुत सी ऐसी बातें सचमुच हम तक पहुंच रही थी। आज हमने उनका उन रहस्यों को जानने की कोशिश की है, और कितना आसान था सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मिस्ट्री थी या नहीं दिखाई दे रहा था। अभी भी कोई सवाल आपके पास है अपने जीवन से जुड़ा हुआ, या फिर सृष्टि में क्या हो रहा है, परमात्मा से जुड़ी कोई ऐसी बात है जो आपको अभी भी परेशान कर रही है, स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9999 3 4 4 6 9 8 7 3 6 6 5, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में अब वक्त है कि आपसे इजाजत लें, लेकिन अभी हमने जो बात की, हमने जब मन के लेवल पर, जबकि थॉट के लेवल पर हमने जाना कि किस तरह से हम कॉन्शियसनेस में रह सकते हैं, उसी तरह से जो हमारा पूरा व्यवहार में आता है, स्पेशली खाना पीना, क्या उसका भी हमारे सोल कॉन्शियसनेस के इस एफर्ट में असर पड़ सकता है, जानने की कोशिश करेंगे अपनी अगली कड़ी में। दीजिए इजाजत। ओम शांति।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूँ विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

करे मन सा सेवा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड नई किरण में। आप सभी का स्वागत है। सदगुरुवार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और सदगुरु का आशीष आप पर हमेशा बना रहे ऐसी मंगल कामना के साथ आज दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशा करूंगा कि आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आ गए हम भूल जाओ गम। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। और आज 8 अक्टूबर 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार देखा जाए तो राष्ट्रीय शिखें 1948 16 अगस्त 22 अश्विन गुरुवार आज है। विक्रम संवत 2083 अश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी गुरुवार पुनर्वसु। और आज विशेष इस्लामी द्री 1448 26 रबीउल आखिर जुमेरात आज है। प्रदोष व्रत है आज और हर महीने में आने वाली एक शिवरात्रि आज मासिक शिवरात्रि भी है और इसके साथ में भारतीय वायुसेना दिवस भी आज है। तो चलिए, आप सभी को भारतीय वायुसेना दिवस की और मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। साथियों, आइए बात करेंगे आज भारतीय वायुसेना का कुछ ही देर में। और आज सदगुरुवार के दिन विशेष माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी में काफ़ी अच्छा जो है प्रोग्राम रहा। सुबह बाबा के लिए भोग लगाया गया और शाम को विशेष रूप है ब्रजमोहन जी के उपलक्ष्य में खास भोग रखा गया है उनके पहले पुण्य स्मृति दिवस पर। और यहाँ पर एक सम्मेलन भी सर्वधर्म सम्मेलन रखा गया है जिसमें काफ़ी गणमान्य व्यक्ति जो है अपने विचार साझा करेंगे। और आप भी मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो आप भी ज़रूर आ सकते हैं शांति वन के डायमंड हॉल में जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस चलने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ भारतीय वायुसेना की कुछ बातें शेयर करूँगा और आप भी अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप भारतीय वायुसेना को लेकर क्या सोचते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा भजन आपको सुनाएंगे, अभी सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: Hawaii jazz women, उसने 180 जनों की पायलट ने भारतीय पायलट ने 180 जनों की जान बचाई और आराम से वो हवाई जहाज का लैंडिंग किया। जबकि हुआ हो तो भी उसने आराम से वो हवाई जहाज लैंडिंग किया। को सभी देशों से उसका शौर्य के बारे में बधाई धन्यवाद तो लोग दे ही रहे, तो ये बात मुझे याद आ गई तो शेयर किया। सभी को नमस्कार और ओम शांति भाई जी, ओम शांति,
1: ओम शांति। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने पायलट स्मिथ का नाम लिया और उन्होंने जिस तरह बहादुरी दिखाकर जो है बहुत सारे लोगों का जान बचाया है और अभी अमेरिका में भी उनका नाम गूंजा है और उनको विशेष सम्मान दिया जाएगा। जी हां, इंडियन पायलट कैप्टन स्मिथ को विशेष रूप से अमेरिका का सम्मान प्राप्त होगा, अमेरिका की संसद में उनका नाम लिया गया है। तो आइए वायुसेना दिवस की बातें आज करेंगे। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी मौके को याद करते हुए हर साल इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ और वायुसेना दिवस को आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय साम्राज्य की सहायक वायुसेना के रूप में मनाया जाता है। 2017 में केंद्रीय वायु कमान 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की 50वीं वर्षगांठ को पूरा देश के विभिन्न हवाई स्टेशनों पर बहुत उत्साह के साथ मनाया। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन मेघदूत जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों में तैनात विमान और हेलीकॉप्टर भी प्रदर्शित किए जाते हैं और इसके साथ साथ विभिन्न अभियानों के लिए तैयार किए गए विमान भी प्रदर्शित किए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी विशेषताओं और इसके उद्देश्य को भी समझाया जाता है। तो आइए एक और तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
1: नमस्ते सुरेश जी, बताइए कैसे हैं आप?
2: और कई लोगों की जान बचाई है, ऐसे जामाद हम को धन्यवाद देते हैं और ऐसे ही हमारे जो जामाद हमारे भाई है तो इसका नाम अमर कर दिया।
1: जी जी जी,
2: बहुत गुरुवार है, बाबा का वार है, सभी सबको गुरु की कृपा बनी रहे, अपनी शुभकामना। और चलिए, गाना भी मैंने बाबा का सुना है, शायद आप सुना जाना की
1: जी जी
2: लिख गया तो हमारे बुराराम जी नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है। बुराराम जी कई दिनों से कॉल नहीं किया, शायद आप पता करना पड़ेगा मुझे।
1: जी जी जी सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा भजन याद करने के लिए। और गुड़ीलाल जी को रेडियो सुनाई नहीं दे रहा है, उसके वजह से उनकी थोड़ी दिक्कतें चल रही, देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा ठीक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए, भारतीय सेना के बारे में, वायुसेना के बारे में बातें हो रही हैं और आपने भी बहुत ही अच्छा अपने अनुभवों को साझा किया, सुरेश जी और सुभाष जी ने याद किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। मुझे मिल गया मन का मीत, क्या जाने भाई क्या जाने। तो आइए इस खूबसूरत गीत के साथ ही मैं आप सभी को फिर वापस जोड़ना चाहूँगा भारतीय वायुसेना के इतिहास के साथ। 1932 में इसकी स्थापना के बाद भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों का उल्लेखनीय इतिहास रहा है। भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने और संघर्ष के दौरान हवाई युद्ध का आयोजन करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य का पालन करते हुए भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध और चीन के साथ 1 युद्ध में शामिल किया गया है। वायुसेना ने दूसरे विश्व युद्ध में भी जापानी सेना को बर्मा में रोककर सक्रिय भूमिका निभाई थी। वायुसेना के अन्य महत्वपूर्ण कार्य में ऑपरेशन विजय, गोवा का दावा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत और इस तरह के कई जो है ऑपरेशंस किए गए। और उत्तराखंड के फैलश बाढ़ में पीड़ित लोगों के बचाव का राहत शामिल है ऑपरेशन राहत में। इसके अलावा वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी शामिल है। भारतीय वायुसेना में लगभग 1,70,000 कर्मियों की ताकत है और 1,400 से अधिक विमान है और इसे दुनिया के अग्रणी वायुसेना में एक माना जाता है। भारतीय क्षेत्रों को सभी जोखिम से बचाने और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेवारी है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। 8:48 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ यानी आरजे रमेश के साथ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बजले तू राम का नाम, तेरा हो

जाएगा बेड़ा पार। तो आइए 8:54 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ और बातें चल रही हैं वायुसेना की। जी हाँ, भारतीय वायुसेना की बात करते हैं। 8 अक्टूबर को परेड के साथ वायुसेना उत्सव की शुरुआत हो जाती है और सभी वायुसेना स्टेशन अपने हवाई अड्डों पर अपने संबंधित परेड आयोजित करते हैं। पारंपरिक रूप से सैन्य परेड एक ही प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हैं और बगुल की आवाज़ सुनते ही दाहिने ओर से परेड की शुरुआत होती है। आकस्मिक रूप से दोनों उड़ानों में से प्रत्येक में 4 स्क्वाड्रन शामिल होते हैं और इसकी कमान एक किंग कमांडर के हाथ में होती है। पूरे उत्साह के साथ परेड की शुरुआत हो जाती है और एक बैंड होता है। एक बार जब परेड ग्राउंड पर परेड का जुलूस होता है तो सभी उपस्थित लोगों के सम्मान में सभी वर्दीधारी वायुसेना परेड की सलामी देते हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं भारतीय वायुसेना के उत्सव के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित हिडन वायुसेना स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा एयर बेस है। भारतीय वायुसेना के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक ये अपने ध्येय वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम नभ स्पर्श दीप्तम के मार्ग पर चल रहा है और इसका अर्थ है कि गर्व के साथ आकाश को छूना। वायुसेना के इस ध्येय वाक्य को भगवद गीता के 11वें अध्याय में बताया गया है और ये महाभारत के महायुद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। इसी आदर्श वाक्य के साथ भारतीय वायुसेना अपने कर्मों को अंजाम देती आई है। तो है ना कमाल की बात। आशा करूंगा आप सभी को बड़ा ही आनंद आ रहा होगा। और वायुसेना ध्वज की बात करें तो वायुसेना ध्वज वायुसेना निशान से अलग नीले रंग का है जिसके शुरुआती 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना है और बीच के हिस्से में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग अर्थात केसरिया श्वेत और हरे रंग से बना एक वृत्त गोलाकार आकृति है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया था जो अभी तक चल रहा है। तो यह है ना कमाल की बात। तो आप सभी को भारतीय वायुसेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आइए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ जो देशभक्ति को इंगित करता है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM। चलिए, देश रंगीला, ये प्यारा सा गीत आपने सुना और आनंदित होकर आप भी आनंद मगन हो जाइए। और चलिए, अब वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं और समाचार सुनते हैं। अभी सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल शुरू हुआ यह आयोजन 10 अक्टूबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का विषय है स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी सीमाओं से परे विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका आयोजन संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का आयोजन 9 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है।
2: इस वर्ष के आयोजन में 5G और 6G, AI, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, क्वांटम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यावरण से जुड़े तकनीकी समाधान जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 4 नए क्षेत्रों स्मार्ट मोबिलिटी, स्टेडियम एक्सपीरियंस, औद्योगिक रोबोट और परिवहन तकनीक पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यक्रम में इस वर्ष 100 से अधिक देशों से 1.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। साथ ही 500 से अधिक साझेदार और प्रदर्शक, 600 स्टार्टअप और 900 विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी।
3: इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार जीएसटी व्यवस्था में सुधार के अगले चरण के लिए एक 5 सूत्रीय योजना का प्रस्ताव रखेगी। इन प्रस्तावों में प्रशासनिक को स्वचलित और आसान बनाना शामिल है, जिससे खासकर छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम हो सके। इस योजना के तहत प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधार, जीवन और कारोबार को आसान बनाना तथा सेवाओं के निर्यात और ई कॉमर्स से जुड़े बदलाव शामिल हैं। प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में खरीदार और विक्रेताओं के बीच इनवॉइस का स्वतः मिलान, कागजी कार्रवाई कम करना और छोटे कारोबारियों के लिए कई राज्यों में पंजीकरण की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी इस साझा बयान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली गैर बाजारी नीतियों पर रोक लगाना है। ये कदम हाल ही में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के मिलवाकी शहर में हुई G20 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक के बाद उठाया गया है। बयान में कहा गया है कि दुनिया के कई देश अपनी स्थानीय उद्योगों, श्रमिकों और अर्थव्यवस्थाओं को ऐसी व्यापारिक विकृतियों से बचाने के लिए कदम उठा रहे हैं। सभी देशों ने जोर दिया है कि आपसी सहयोग, सूचनाओं के आदान प्रदान और मिलकर की गई कार्रवाई से इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 15 भागीदारों में भारत और अमेरिका के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे किए हैं। उनकी ये यात्रा सेवा और सुशासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की मिसाल रही है। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको ऐसी ही एक पहल के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें सेवा और सुशासन की ये सोच धरातल पर दिखाई देती है। ये पहल है केरलम में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो सेवा।
5: कोच्चि के जलमार्ग हमेशा से शहर की पहचान रहे हैं। आज वही जलमार्ग कोच्चि वाटर मेट्रो के जरिए यात्रियों की एक नई पीढ़ी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया और अगले ही दिन वाटर मेट्रो ने यात्रियों के लिए सेवा शुरू कर दी। तब से ये शहरी सार्वजनिक परिवहन में एक नई पहल के तौर पर उभरी है जो कोच्चि के द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वाटर मेट्रो से कोच्चि में ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी।
6: वाटर मेट्रो से कोच्चि के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोच्चि की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा।
5: कोच्चि के लेखक टीएन वेणुगोपाल ने बताया कि वाटर मेट्रो ने शहर में जल परिवहन को बदल दिया है।
7: वाटर मेट्रो ने कोच्चि में जल परिवहन की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये अलग अलग द्वीपों और मुख्य भूमि के बीच पहुंच प्रदान करती है। परिवहन के किफायती साधन के तौर पर वाटर मेट्रो धीरे धीरे आम आदमी के लिए एक लग्जरी सुविधा के रूप में उभर रही है। इसने पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि अब देश विदेश के पर्यटक कोच्चि के बैकवाटर्स में वाटर मेट्रो की यात्रा को अपनी यात्रा की योजना का अहम हिस्सा मानते हैं, जिससे सड़कों पर यातायात की समस्या काफी हद तक कम करने में सहायता मिलेगी।
5: कोच्चि भारत का पहला शहर है जहां वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये वाटर मेट्रो 15 रूटों पर चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो एयर कंडीशनड और बैटरी से चलने वाली नाव है जिनमें चार्जिंग की खास सुविधाएं और यात्रियों के लिए आधुनिक टर्मिनल बने हैं। यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस साल 2 अक्टूबर तक वाटर मेट्रो में 77 लाख से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। 2 अक्टूबर को ही 11,670 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ उठाया। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात आबुजान में कोटे डी आइवर के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तेने बिरहामियामा आउट उतारा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास, क्षमता निर्माण और साझा हितों पर आधारित बढ़ती रक्षा साझेदारी पर चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण और संस्थागत स्तर पर आदान प्रदान बढ़ाने सहित रक्षा और आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया। आबुजान में हुई ये बैठकें डॉक्टर जयशंकर की घाना, कोटे डी आइवर और इथियोपिया की 5 दिन की आधिकारिक यात्रा का एक हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य इन तीनों अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन के कीव और करीब 12 अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाते हुए 70 मिसाइलें और दर्जनों ड्रोन दागे। यूक्रेन पर किए गए हमले में कल 25 लोगों की मौत हो गई और 100 लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन की सेना ने 44 मिसाइलों को रोक दिया और 117 ड्रोन को निष्क्रिय किया, लेकिन वह पूरे हमले को रोकने में सफल नहीं रही। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा के जानबूझकर किए गए प्रदर्शन का रूप बताया। ईरान समर्थित सशस्त्र समूह हूती ने सऊदी अरब के 2 हवाई अड्डों पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इस बीच हूती अधिकारियों ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने यमन के दक्षिण पश्चिमी तट के प्रमुख इलाकों धुबाब अल जदीद और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। हालांकि यमन सरकार के एक अधिकारी ने इन दावों को खारिज किया है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे। आज सुबह गोवा स्थित उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से 75 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। एक श्रद्धांजलि।
8: मैं इंडस्ट्री का हूँ नहीं, मैं यहाँ आता हूँ, काम करता हूँ, वापस भाग जाता हूँ। मैं गांव खेड़े का हूँ और वही का रहूंगा और वही अच्छा लगता है। जरूरतें सीमित होना तो बहुत आसान हो जाता है, इसी है नहीं। बड़ा बड़ा मजा आता है। सिर्फ अपने यहाँ शहर में जैसे दीवारें होती है ना, घर में हमारे यहाँ पहाड़ है, इस तरफ पहाड़, इस तरफ बीच में हम रहते हैं।
9: अपनी काबिलियत और दमदार अभिनय से सबके दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर आज हमारे बीच नहीं है। सबकी आंखें नम है, फिल्म उद्योग से लेकर उनके फैंस के बीच शोक की लहर है। अभिनेता नाना पाटेकर ने 1978 में आई फिल्म गमन से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। नाना ने करीबन 8 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। फिल्म परिंदा में अन्ना की भूमिका को लोगों ने काफी सराहा।
10: न भाई न बहन न बीवी न बेटा,
11: कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं जा अब्दुल।
9: फिर आई 1994 में क्रांतिवीर, जहां उनके दमदार अभिनय को नई पहचान मिली। इसके बाद अग्नि साक्षी, तिरंगा, डॉक्टर प्रकाश, बाबा आमटे द रियल हीरो, नट सम्राट और वेलकम जैसी फिल्मों ने उनकी विरासत को और मजबूत किया। फिल्म अग्नि साक्षी में उनके नेगेटिव किरदार को खूब सराहा गया।
12: क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किस बात के लिए खुश हो इतने? अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर, और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें?
9: अभिनेता नाना पाटेकर फिल्मों में अभिनय से 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं।
11: कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को, किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूँ, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी।
9: इसी के साथ उन्हें 3 बार अपनी एक्टिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं।
3: नाना पाटेकर ने हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी सिनेमा में भी अपना लोहा मनवाया। और अब मौसम का समाचार। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही आज बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खेलों में पेचिंग में मानुष शाह और दिया चिताली ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए WTT चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। मानुष और दिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी बन गई है। आज भारतीय वायुसेना दिवस है और इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने का समाचार कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री का संकल्प प्रकाशित किया है, भारत के विकसित होने तक ना थकूंगा ना रुकूंगा। दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी की वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात का भी चित्र प्रकाशित किया है। RBI द्वारा त्योहारों से पहले रेपो दर बढ़ाने का समाचार भी कई अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, रेपो दर में 0.25% की वृद्धि, कर्ज की किश्त बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने आज भारतीय वायुसेना दिवस पर खबर दी है, जहां हौसलों की उड़ान वहीं भारतीय वायुसेना, 94 साल में बदली वायुसेना की रणनीति। दैनिक जागरण लिखता है, छठी कक्षा में देखा सपना और ऑपरेशन सिंदूर से फलक पर छा गई व्योमिका। नाम के अनुरूप आकाश में उड़ान भरने वाली, देश का गौरव है लखनऊ की बेटी, बनी फौजियों के गांव की बहू। ठंडे इलाके के बजाय गर्म क्षेत्र में आ रहे जीव जंतु, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने किया शोध, हिंदुस्तान की खबर है।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। भारत ने अमेरिका और 13 अन्य देशों के साथ मिलकर प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में वैश्विक अतिरिक्त क्षमता और उत्पादन की समस्या से निपटने के लिए संयुक्त मंत्री स्तरीय बयान पर हस्ताक्षर किए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर नहीं रहे, 75 वर्ष की आयु में आज गोवा में निधन। केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना। और मानुष शाह और दिया चिताली की भारतीय जोड़ी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना ग्रैंड स्मैश टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ।
1: मैया मोरी मैं नहीं माखने खायू,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है समाचारों के बाद। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और बहुत सारी खुशियों के साथ। आइए मैं आप सभी को ले चलता हूं आज के दिन विशेष में। भारतीय वायुसेना की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए एक खास व्यक्तित्व के बारे में बातें करेंगे। और आज विशेष पद्मनाभम बालकृष्ण आचार्य जी का जन्मदिन है, जिनकी कहानी आपको सुनाएंगे। और ये एक भारतीय राजनीतिक है, भारतीय राज्य नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम के राज्यपाल रहे हैं। पद्मनाभम बालकृष्ण आचार्य जी

तब चर्चा में आए थे जब आसाम के राज्यपाल होने के दौरान उन्हें हिंदू शरणार्थियों पर बयान दिया था उन्होंने, और 2015 में एक समारोह के दौरान कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, किसी भी देश का हिंदू यहाँ रह सकता है, वो बाहरी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि इसमें डरने जैसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था कैसी की जाए ये बड़ा सवाल है और हमें इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बांग्लादेश में सताया गया कोई भी हिंदू भारत आने का अधिकार रखता है, निम्न भारतीय राज्यों के राज्यपाल रहकर उन्होंने अपने कार्यभार संभाला था। नागालैंड में 19 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2019 तक हो रहे, मणिपुर के राज्यपाल रहे 27 जून 2019 से 23 जुलाई 2019 तक, और फिर तीसरा अरुणाचल प्रदेश में 28 जनवरी 2017 से 3 अक्टूबर 2017 तक रहे, चौथा त्रिपुरा में 21 जुलाई 2014 से 19 मई 2015 तक वो रहे, आसाम 12 दिसंबर 2014 से 17 अगस्त 2016 तक ये रहे। तो ये थी कुछ खास बातें पद्मनाभम बालकृष्णाचार्य जी की जीवन कहानी से आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए एक और खूबसूरत गीत आपके नाम। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हुए आप सभी को बता दें, 8 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जो हम सब के लिए दुखद का समाचार भी लेकर आया है। और अभी हमें सुभाष जी ने याद कराया नाना पाटेकर का। जी हाँ, नाना पाटेकर अभी नहीं रहे हैं। आज सुबह 5:30 बजे के करीब हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। नाना पाटेकर एक अच्छे अभिनेता रहे हैं और उनकी जीवन कहानी से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी फिल्मों में उनको रियल एक्टर के रूप में जाना जाता है। अर्थात वो कभी भी मेकअप वगैरह नहीं करते थे, जैसा वो दिखते हैं वैसे ही फिल्मों में एक्शन के लिए आ जाते थे। तो इस वजह से इनकी एक अपनी अलग पहचान थी और इनकी दमदार डायलॉग डिलीवरी और एक्शन लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो आज वो 5:30 बजे उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक के कारण। तो मैं उनकी कुछ जीवन कहानी से जुड़ी हुई बातें आपसे शेयर करूंगा, अभी सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: विश्वनाथ नाना पाटेकर, जन्म 1 जनवरी सन 1951। नाना पाटेकर साहब का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले मुरुद जंजीरा में हुआ। पिता दिनकर पाटेकर एक टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेसमैन थे और मां का नाम संजना बाई पाटेकर। नाना पाटेकर ने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से अपनी पढ़ाई की और ये बात भी कम लोग जानते हैं कि कई मर्तबा ये पुलिस की मदद कर देते हैं जब कभी क्रिमिनल्स के स्केचेस बनाने होते हैं। हालांकि एक्टिंग में आने से पहले ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए काम किया करते थे और फिल्मों में आए क्योंकि स्मिता पाटिल ने जोर दिया था। स्मिता पाटिल इन्हें पुणे के दिनों से जानती थी। स्मिता ही ले गई इन्हें मशहूर प्रोड्यूसर रवि चोपड़ा के पास। फिल्म थी आज की आवाज और इन्हें एक रेपिस्ट का किरदार दिया गया। ये सुनते ही नाना पाटेकर को जरा बुरा लगा। नाना साहब ने उसे जरा भला बुरा सुना दिया और उसके बाद इन्हें एक बेहतर किरदार दिया गया। पर जरा पलट के देखें तो नाना पाटेकर की जिंदगी के उतार चढ़ाव इन्हें दरअसल एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे थे। इनके पिता एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे टेक्सटाइल पेंटिंग का। हालांकि उन्हें अपने बेटे नाना पाटेकर के नाटक देखने में बड़ा लुत्फ आता। यही नहीं, वो शुरुआत में नाना पाटेकर को नाटक दिखाने ले जाया भी करते थे। नाना पाटेकर साहब अपने गांव में ही नाटक किया करते थे और इन्हें यह भी लगता था कि इनके पिता इनके बड़े भाई को इनसे ज्यादा प्यार करते हैं। और तब वो घटना घटी जब इन्होंने एक नाटक वाल्मीकि में काम किया और इनके पिता एक लंबा सफर तय करके उस नाटक को देखने पहुंचे और तब नाना पाटेकर के मन से वो एहसास जरा कम हुआ। नाना पाटेकर जब मात्र 13 बरस के ही थे तब इनके परिवार को एक अजब त्रासदी से गुजरना पड़ा। पिता को व्यापार में भारी नुकसान हुआ था, इनकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई और तब मात्र 13 बरस की उम्र में नाना पाटेकर सुबह स्कूल जाते और शाम को काम करते। अपने घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर चूनाभट्टी जाकर ये फिल्म के पोस्टर पेंट करते और इन्हें 35 रुपए महीने मिल जाते। और जब भी इनके पिता कहते कि लो बच्चों के दिन आए खाने के और मेरे पास कुछ नहीं है, नाना पाटेकर का दिल रो पड़ता। कई मर्तबा यूं भी होता कि नाना पाटेकर लंच या डिनर के वक्त अपने किसी दोस्त से यूं ही दुआ सलाम करने पहुंच जाते, ये सोचते कि खाने का वक्त है, क्या पता इनका दोस्त इन्हें 2 रोटी के लिए पूछ ले। पर फिर भी नाना पाटेकर ने रंगमंच नहीं छोड़ा। मशहूर रंगकर्मी विजया मेहता के डायरेक्शन में इन्होंने काम किया और वो रोल इतना पसंद किया गया कि सभी समझ गए कि आगे जाकर ये बड़े नामी एक्टर बनेंगे। ये नाटक कर ही रहे थे कि इनकी शादी हुई नीलकंठी जी से। नाना पाटेकर उस जमाने में मात्र 750 रुपए महीना कमाते थे क्योंकि इन्हें 50 रुपए मिलते थे पर शो।
2: जितने पैसे वो तय करता है वो दे देता है।
1: पर इनकी वाइफ 2500 रुपए महीना कमाती थी क्योंकि वो एक बैंक में काम करती थी और वो हमेशा ये कहती कि तुम जब तक नाटक करना चाहते हो करो, पैसे मैं कमाऊंगी और ये भी यकीन है मुझे एक दिन तुम बहुत से पैसे कमाओगे। प्यार बढ़ा और मात्र 27 बरस की उम्र में इन दोनों ने शादी की। शादी से इन्हें एक बच्चा भी हुआ पर जन्म के समय कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं कि वो बच्चा बहुत ही जल्द गुजर गया। उसके बाद इन्हें एक और बेटा हुआ जिसका नाम रखा मल्हार। सलाम बॉम्बे में इनके अभिनय प्रदर्शन को देखकर फिल्म इंडस्ट्री भी इनकी तरफ झुक रही थी और इन्हें फिल्म अंगार के लिए साइन किया गया। इस फिल्म के लिए इन्हें अवार्ड भी मिला और ये विलेन और हीरो दोनों ही रूप में फिल्म इंडस्ट्री में नजर आए। चाहे वह मराठी सिनेमा हो या फिर हिंदी सिनेमा, नाना पाटेकर का जवाब नहीं। फिल्म क्रांतिवीर ने यह साबित किया था कि नाना पाटेकर की डायलॉग डिलीवरी सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। चाहे वो अमोल पालेकर की म्यूजिकल थोड़ा सा रोमानी हो जाए हो या फिर विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा, हर किरदार में नाना पाटेकर पूरी तरह से डूब जाते हैं। धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब ये फिल्म के डायरेक्टर बने। फिल्म का नाम प्रहार द फाइनल अटैक। इसके लिए इन्होंने बकायदा आर्मी की ट्रेनिंग ली। ये फिल्म भी बहुत मकबूल हुई। दूरदर्शन पे एक कार्टून सीरीज आया करती थी, द जंगल बुक। उसमें शेर खान का किरदार इन्होंने निभाया, मतलब शेर खान की आवाज नाना पाटेकर बने थे। किरदार कैसा भी हो, हीरो का या फिर विलेन का या फिर कॉमेडी, हर रोल नाना पाटेकर जिस अंदाज में निभाते हैं वैसे निभाना किसी भी साधारण अभिनेता के लिए नामुमकिन है।
2: तो मुझे सबसे सुकून उस बात का है, बाकी की तो बातें फिल्में होती रहती है।
1: ने कई मर्तबा नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया, चाहे वो फिल्म परिंदा रही, क्रांतिवीर या फिर अग्निसाक्षी। ये फिल्मों की फेहरिस्त यकीनन बहुत लंबी है। जिस तरह की ये फिल्म्स करते हैं उससे पता चलता है सिर्फ अभिनय ही नहीं, ये जीवन के प्रति भी उतना ही जुनून रखते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में नाना पाटेकर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM। चलिए, नाना पाटेकर के बारे में आपने काफी कुछ जानकारी हासिल की है और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी एक्टिंग हमारे साथ हमेशा के लिए रहेगी। तो चलिए बात करते हैं आगे। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो जाने कहाँ चले जाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में, क्या कह सकते हैं हम लोग, एक ट्विस्ट बना रहता है। जब तक हम इन चीज़ों को समझ पाते हैं तब तक ये चीज़ें हमसे जो है दूर हो जाती है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं नाना पाटेकर का एक गाना बहुत हिट सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा और अंकुश फिल्म का इतनी शक्ति हमें देना दाता भी इनका बड़ा जो है फेमस है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम बनारस के भैया। हेलो जी, नमस्कार।
3: नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा गाना गुंदा
0: जी,
3: इतनी शक्ति न दे हमें दाता, मैं विश्वास न कम। नमस्कार सर देते हैं
0: जी।
3: उनके हर कार्य को और उनके चाहने वाले को और मधुबनी क्या है पूरे विश्व में आज उनको उनके बोलने का, चलने का, देखने का ढंग, जो कोई भी पैसन उनके पास नहीं थी, जो कपड़ा लेगा उसमें वो करते थे, जो देते थे वही कर देते, मगर रोल को निभाते थे। इस तरह निभाना, कैसे करना, इसके साथ क्या, जैसा आदमी वैसा ही करा दे। इसे हम नमस्कार करते हैं और आपको भी नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को और जानस का सुना है आप और सभी को नमस्कार और हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी नमस्कार है। और आज हम भी रेडियो मधुबन सुन रहे हैं, इसलिए मतलब रेडियो में नहीं आ रहा है और हम सुन रहे, अच्छा लग रहा है और लगा दिए गाना और आपको बहुत बहुत नमस्कार सर।
0: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मदन जी, अच्छा लगा आपने बात किया, याद किया। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं आज के दिन जन में, उन लोगों के बारे में बातें करेंगे। और बनारस के भैया ये गीत नाना पाटेकर पर पिक्चराइज किया गया था, अमिताभ बच्चन और सुदेश भोसले की आवाज़ में ये गीत है। अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर का कॉम्बिनेशन वाला ये सुंदर गीत है जो आप सबके लिए अभी सुनाते हैं। कोराम फिल्म का सुनते रहो।

नमस्कार। हिंदी बंगाली का बड़ा कॉम्बिनेशन अमिताभ बच्चन को हिंदी में गाने के लिए इसमें बताया गया और नाना पाटेकर बंगाली में कॉमेडी स्टाइल में बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन एक तरफ जो है बड़ा आनंदित होकर ये चीज़ें चल रही थी। आप समझ सकते हैं कि उनको नाना पाटेकर को चाहे किसी भी तरह का रोल दिया जाए, कॉमेडी हो, विलन का हो, हीरो का हो, सब रोल वो बहुत अच्छी तरह से किया करते थे। तो चलिए, आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेगी। और अब बात करते हैं आज के दिन जन्म में उन लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आज है। तो आइए बात करते हैं आज के दिन जन्म में 8 अक्टूबर को जन्मे उन लोगों के बारे में, 8 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन है उनके बारे में बात करते हैं। तो दिव्या काकरन भारत की फ्रीस्टाइल महिला पहलवान है। 1998 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। भारतीय राजनीतिक पद्मनाभन बालकृष्ण आचार्य, 1931 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता बद्रुद्दीन तोयब जी, 1844 में इनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज हुआ है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

समय मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खम्मा गणिसा। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। कैसे वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। अगर तेली त्वचा है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। और जी हाँ, जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। वो भी आप आशियाना सुनिए, आपसे चर्चा जरूर करेंगे और कुछ बनाएंगे खास। तो वो खास रेसिपी क्या बनाने वाली हूँ वो भी सस्पेंस रहेगी, अभी नहीं बताऊंगी। और आपको टंग ट्विस्टर पूछने वाली हूँ, तैयार हो ना सभी? तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास न करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा न करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। आपकी समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी कि अवलदीन और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक करके जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों ही चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि तो नहीं। अवलदीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है, घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, आप चिंता की कोई बात नहीं, बेटा अवलदीन ये लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर करके खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा करके आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल सुबह अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा, हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर के शहर से बाहर एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर के पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतर करके सीधे अंदर चले जाऊं, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठा करके जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा, पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। वृद्ध ने कहा कि भाई पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर को गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक करके वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुँचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कह करके एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर ध्यान देंगे। और आइए सुनेंगे एक गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अगर तेली त्वचा है तो क्या करेंगे, यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो, तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगो करके चेहरे पर होले होले मलिए। इस क्रिया से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव करोगे। मेरी प्यारी बहनों, फिर से दोहरा रही हूँ कि यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो, तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगोइए, फिर उसको चेहरे पर होले होले मलिए। ऐसा करने से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव होगा। तो जिसके भी तेली त्वचा है तो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई त्वचा, वो कहते हैं ना कि चेहरे का ध्यान सभी रखते हैं। अब चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, झाइयाँ हो जाती है, दाग धब्बे होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं खुद को। ऐसा नहीं कि सामने वाले को, सामने वाले को क्या पड़ी है भाई, सामने वाले को तो सभी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चेहरे पर झाइया वाइया हो गई है। तो इस नुस्खे को आप आजमा सकते हो। अगर शुष्क और रूखी त्वचा है तो फिर आप आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का टुकड़ा भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथों, इन सब मतलब इन अंगों पर आप 5-10 मिनट तक फेरिए नरमी से। आप देखेंगे कि रुई कितनी मेली हो गई है। 20 मिनट के बाद ठंडे या गुनगुने पानी से धो दीजिए। दुग्ध स्नान से त्वचा स्निग्ध बनती है। दूध के रोज प्रयोग से मुहासे, चेहरे की झाइया, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, ये सब दूर होता है, ठीक हो जाता है, और मुख मंडल की शोभा और कांति बढ़ती है और रंग भी निखरता है। कितने सारे फायदे, खाली एक चीज दूध बस, लेकिन कितने सारे फायदे हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनेंगे कि आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का फोहा डालना है, ठीक है। फोहे को भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथ या सभी को आपको मलना है, ठीक है। भले खाली चेहरे को मलिए, वो आप पर छोड़ा है कि आप कहाँ कहाँ दूध लगाते हैं, वो आप पर छोड़ा है। आप देखेंगे कि रुई, अगर हम इस तरह फोहे से दूध लगाएंगे तो फोहा तो मेला हो ही जाएगा। 20 मिनट के बाद ठंडे या फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। तो ऐसे करने से चेहरे की झाइया, मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, यह सब ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ेगी और रंग निखरेगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। और लास्ट नुस्खा यह है कि देखिए, त्रिफला तो आप सभी जानते हैं, त्रिफला का पाउडर होता है ना, उसको आप पानी में गर्म कर दीजिए। गर्म करके फिर आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये, इस पानी को छानना नहीं है, डायरेक्ट इस पानी से चेहरे को धोइए, ठीक है। और चेहरे को धो करके 5 मिनट बाद आप स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस आपकी ये तेली त्वचा होगी ना, उसमें तुरंत ही फर्क पड़ेगा। आप तुरंत महसूस करेंगे, 2-3 दिनों में आप कहेंगे कि वास्तव में तेली त्वचा, जो बार बार पिंपल हो जाते थे, क्योंकि तेली त्वचा में बार बार पिंपल हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चेहरे पर शाइनिंग भी आएगी, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे और पिंपल जो निकलते होंगे वो बंद हो जाएंगे। त्रिफला का पाउडर लीजिए। पाउडर को पानी में उबालना है। आपको क्या करना है, रोज रोज ये नहीं कर सकते हो ना, तो आप इकट्ठा ऐसे करके बोतल में भर दीजिए और बस खाली चेहरा धोना है, ठीक है। और चेहरे पर ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं, खाली एक बार आप एक कटोरी में निकाल दीजिए, आधी कटोरी से चेहरे को धो लीजिए, उसके बाद आप 5-7 मिनट रहने दीजिए और फिर स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए बस। तो इससे चेहरे पर शाइनिंग आएगी, तेली त्वचा की वजह से पिंपल्स निकलते होंगे वो भी नहीं निकलेंगे, निकलना ही बंद हो जाएगा, और झाइया, किल, मुहासे, दाग धब्बे, ये भी सब छूट जाएंगे और चेहरा एकदम चमक उठेगा। ठीक है, तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब हैं, आप आजमा सकते हो। इसमें कोई मोटा मोटा खर्चा भी नहीं है और ऐसे कुछ टिप्स हम आजमाते हैं तो उसके लिए कोई डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाता है, वो अपने आप करते रहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब मैं आपको टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ जो आपको बोल के सुनाना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो आप जरूर टंग ट्विस्टर बोल करके सुनाएंगे। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में ये विषय आपके सामने रखा है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: हम अच्छे हैं। सभी दोस्तों को, सुनने चाहने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: और बहुत ही सुंदर खुशनुमा जीवन के विचार लेके आए हो, और जो विचार भी बहुत ही सुंदर था
1: जी। थैंक यू।
2: कितनी तारीफें करें, कुछ शब्द ही नहीं है। मतलब शब्द कम पड़ गए, क्या तारीफ करें। इतना सुविचार तो बहुत ही सुंदर था
1: जी।
2: और मैं खुशनुमा जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए, जिंदगी मतलब ऐसी है कि इसको वो आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। कोई भी कार्य अपन

0: कोई भी हो, मतलब कहीं भी मतलब झगड़ा हो रहा है या कुछ भी उलझे हुए हैं, तो वहाँ भी अपन कुछ शांति देना चाहे तो मतलब अपने को पहले मन से दोनों को समझाने की कोशिश, शांति से पहले अपन को शांत होना पड़ेगा
1: जी।
0: तो अपन दूसरों को शांत करेंगे तो उनका मतलब झगड़ा निपटाने में अपन आसानी पैदा कर सकते हैं, नहीं तो अपन खुद ही शांत नहीं होंगे तो वहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है
1: जी, जी।
0: तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करते हो तो अपने मतलब सोचकर अपने मन से दिल लगा के करना चाहिए।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत अच्छी तरह आपने स्पष्ट किया इसके लिए। और विषय बहुत ही अच्छा है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है, कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नजर अंदाज करना पड़ता है। तो ये आज का विषय है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जो लगभग आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि अक्सर जब महफिल जुड़ती है तो इस तरह की बातें, इस तरह के टंग ट्विस्टर सुनाए जाते हैं। तो मैं सुना रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा सा घेप लेकर के आप लिख भी सकते हो। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत ही सरल है, आप इजी वे में जवाब दे सकते हो। तो नंबर हमारे है 9914141415, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो और टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुना सकते हो। तो जैसा कि आज का विषय रखा है कि भाई जिंदगी आसान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी आसान नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वो बचपन से जब गुजरता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है, उसको ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है और ये जीवन इसी तरह चलता रहे। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो पढ़ाई की टेंशन होने लगती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो टेंशन, आ जाए अगर अच्छा तो और भी उम्मीदें बढ़ जाती है कि भाई इस बार 80% आए तो अगली बार 85% लाने ही है, फिर 90, फिर 95, आकांक्षाएं बढ़ती जाती है पेरेंट्स की भी और बच्चे की। फिर भी कोशिश करते हैं, लाते हैं, फिर जिम्मेवारी आती है बड़े होते, कुछ पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जो भी करते हैं, शादी ब्याह होता है, बहुत सारे वो कहते हैं कि परिस्थितियां आने लग जाती हैं। कभी कभी तो पैसे टकों से भी आती है, तो कभी कभी लोगों के द्वारा आती है, संबंधों के द्वारा आती है, व्यवहार बिगड़ने लगता है, बहुत सारी बातें आ जाती है जिंदगी में। हम ना चाहते हुए भी किसी न किसी से तकरार हो जाती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सुलझेंगे भी या नहीं, या रिश्तों में ऐसा ही चलता रहेगा। हेलो,
2: हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल अच्छे, आप सुनाइए।
2: बस हम भी अच्छे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा रिश्ता भी है, दोनों विषय अच्छे हैं, दो बात अच्छी है
1: जी।
2: एक जिंदगी की बात कही, जिंदगी आसान नहीं होती है लेकिन उसके लिए हमको कुछ करके आसान करना पड़ता है।
1: हाँ जी,
2: कैसे करें ये भी सही बात है, और कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि जीवन में हम जो रिश्तेदार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, रिश्तों को भी निभाना पड़ता है और रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कई रिश्ते टूट रहे हैं
1: जी।
2: और हमारे थोड़ी सी सहन शक्ति भी करनी पड़ती है
1: जी।
2: तो जिंदगी आसान बनाने के लिए दीदी पहले तो एक बात है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमको कुछ प्रॉब्लम आए
1: जी।
2: और आसान बनाने के लिए भी दीदी क्या है कि आसान इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और कुछ कहते हैं हमारे गुजराती में कुछ गड़ी पी जाना पड़ता है, जाने पे कुछ सहन करना पड़ता है
1: जी जी जी।
2: और सहन करके सहन किए भी करना पड़ता है, लेकिन सहन की जो हद होती है ये भी सही है। कई बार हम सहन करते हैं तो सहन करते करते करते हम खुद
1: थक जाते हैं,
2: हमारा भी देहाल हो जाता है, ऐसा ना हो
1: जी।
2: हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी बना रहेगा और

0: कुछ बर्दाश्त करके भी हम आसानी से रिश्तेदारी निभा सकते हैं। अब देखते हैं, मैं बताऊं दीदी कि जो हम शादी का कुछ मौसम होता है घर पे, और कई रिश्तेदारों को तो इतना मनाना पड़ता है, इतना मनाना, हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है
1: जी,
0: फिर भी मनाना पड़ता है। इसी वक्त ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको खुद वहाँ जाना पड़ता है और कहते हैं कि भाई चलो भाई हमारी कोई भी भूल हो हम बर्दाश्त कर लेते हैं
1: जी जी,
0: और आप आइए और हमारे शामिल हो जाइए हमारे शादी में या कुछ प्रसंग में।
1: बिल्कुल, भले हम इजी वे में उनके यहाँ जाते हो, लेकिन कभी कभी कोई कोई रिश्तेदार थोड़े भाव खाते हैं।
0: हाँ ऐसा होता है दीदी, जो अच्छे लोग हैं तो ऐसा करते नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए आसानी से चले जाते हैं।
1: जी जी जी, जाना है तो जाना ही है।
0: कई लोग
1: हैं जी,
0: कई लोग तो दीदी ऐसे ही होते कि जब जब ऐसा मौका मिला तो यही मंगा लेते, फिर चलो भाई मौका मिल गया है जो जो हम कुछ करेंगे तो उसको हम कहेंगे तो करना पड़ेगा। ऐसा लोग कई लोग ऐसे होते हैं तो बस जिंदगी तो आसान नहीं होते, लेकिन हमको कुछ आसान करना पड़ता है तो इसी वजह से।
1: जी जी जी
0: ठीक है दीदी, और आपने जो शिक्षा देना आया है तो मैं बताऊं आपको।
1: हाँ जी,
0: चंद की चाची ने चंद के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: क्या बात है,
0: वो गाना बना दिया मैंने।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी जी नमस्कार। तो टंग ट्विस्टर देखिए, सुरेश भाई ने भी बोल के सुनाया है, आप भी सुना सकते हो, बहुत ही सरल आपको दिया है, आप आसानी से बोल के सुना सकते हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। रेडियो मधुबन एक अपना परिवार है, पूरा ही परिवार रेडियो मधुबन से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी परिवार के सदस्य ही हुए, तो इसमें हिचकिचाने की तो बात ही नहीं है, बहुत ही सरल है, मैं सुना रही हूँ, आप जरूर सुनाइएगा। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो बोल करके जरूर सुनाएंगे, हमारे नंबर है 94-1415-1415 पर आप फोन कॉल कर सकते हो और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए सुन लेते हैं एक गीत, फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: जिंदगी हंसने खाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भाई खुशनुमा जीवन की बात चल रही है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान इसको बनाने पड़ती है, कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। हेलो। हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी थोड़ा बाहर निकला हूँ बाइक लेके, तो आपका प्रोग्राम अभी बदल सुना तो साइड में रख के बाइक बात कर रहा।
0: जी जी, तो टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
1: हाँ वो तो सुना, सुरेश भाई ने सुनाया, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ हाईवे पे, साइड में गाड़ी रख के बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी हाँ जी, आपने फोन लगाया तो हम पूछ रहे हैं, आप हाँ, सुनाना हाँ, चाहो तो भले सुनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
1: और आज क्या है आपका?
0: आज का विषय नहीं सुना आपने?
1: नहीं सुना तो था, लेकिन रेडियो तो सुनता था, लेकिन बाइक चालू था।
0: जी जी, तो जिंदगी आसान नहीं, इसको आसान बनानी पड़ती है, बहुत कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप, क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल सही बात है, जीवन है ना, एक एक संघर्ष है, हमें कुछ घुमाना भी पड़ता है, कोई हमारे ये होता है तो सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, ये सब रखना पड़ता है।
0: जी
1: हाँ जी, तो इसमें तो ये कोई सगे संबंधी है, कोई उग्र स्वभाव का हो तो हमें शांत से पेश आना पड़ता है, घर परिवार में समाज में सबका स्वभाव देख के हमें रहना पड़ता है।
0: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। जी
1: जी बहन जी, थैंक यू
0: जी। तो बहुत ही सुंदर विषय है कि देखिए जिंदगी आसान नहीं होती, जो दिखाई देती है, लोग हमेशा खुश दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंदर झांक करके देखेंगे तो कुछ न कुछ टेंशन परेशानियां उनके जीवन में भी है। और सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोग रंग कब दिखाते हैं, जब हमारे घर में प्रसंग आता है, प्रोग्राम आता है, तब लोग भाव खाएंगे, आना है, ऐसे नहीं कि उनको नहीं आना है, लेकिन कुछ लोग क्या है, वो चाहेंगे कि यही मौका है कि इन लोगों से थोड़े से मनुहार कराई जाए, ये लोग थोड़े हमारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, फिर देखेंगे। बहुत जनों की आदत होती है, कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं, और जब घर में इस तरह शादी ब्याह या कुछ प्रोग्राम आता है और उनको न्योता देने जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है और आइए, तो उस समय अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, फिर पुरानी बातें कुछ हुई होगी, भले गलती उन्हीं की होगी तो भी दोहराएंगे, उस वक्त ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो कहते चोरी और सीनाझोरी, उस समय भी झगड़ा उन्होंने ही किया, फिर भी इस समय भी वो इस तरह नखरे दिखाते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, रामा भाई बोल रहे? हाँ जी रामा भाई नमस्कार, कैसे हो?
2: ओम शांति, ओम शांति और मजे में।
0: हाँ जी ओम शांति। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: आज का विचार भी अच्छा बहुत है, ये उल्टा बोलना है कि ऐसे बोलना है?
0: नहीं सीधा ही बोलना है, जैसे मैंने बोला वैसे ही बोलना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
2: तो चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: एक शब्द का फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं चलेगा, अच्छी कोशिश की है।
2: तो फिर बढ़ाइए।
0: कोई बात नहीं चलेगा। और विषय के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके खुद के अनुभव कैसे रहे हैं, जिंदगी के अनुभव थोड़े सुनाएंगे? आपके
2: अनुभव ऐसा है कि जो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है और मेहनत का फल होता है सभी को,
0: इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमको नजरअंदाज करना पड़ता है, जिंदगी आसान नहीं है, सब्र करना पड़ता है, तो धैर्यता रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप?
2: तो ये रखना ही पड़ता है, ये आपने सभी ने बोला, यही मैं कहता हूं और क्या।
0: जी जी हाँ जी, आभार आपका। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि अक्सर जैसा कि मैंने आपको कहा है, सुरेश भाई ने भी सुनाया है कि जब घर में प्रोग्राम आते हैं तब लोग जरूर उस समय कोई ना कोई रंग जरूर बताएंगे अपना असली रंग। हेलो, उस समय वो चाहेंगे कि मनुहार करे और करते क्या करे, क्योंकि आज का समय तो थोड़ा चेंज हो गया। आज का समय में तो आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग दीदी।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
3: विजय कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी विजय कुमार जी, स्वागत आपका, कैसे हो?
3: ठीक है, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं।
3: काफी दिनों बाद बात हो रही है अभी दीदी। प्रॉब्लम हो गया था, मेरा फोन तो खराब हो गया था, और दूसरी बात के मेरा फोन जो लिया दूसरा तो उसमें ये स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, तो काफी मकसद के बाद ये सब किया।
0: अच्छा अच्छा, चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: यही तो आप जो आज का सब्जेक्ट है जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी का तो यही विषय है कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
0: लेकिन यहाँ पर तो परिवार की बात है कि जिंदगी आसान भी नहीं होती, सब्र भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है और नजरअंदाज भी करना पड़ता है।
3: सब सब सब कुछ करना पड़ता है, परिवार पालना है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है।
0: जी जी जी, अपनों का ही
3: जो मतलब जो आज आज का जो आपने किया वो चंदू के चाचा वाला जो बताया आपने।
0: हाँ जी,
3: तो उसमें क्या है कि बताओ आप।
0: खाली उसको आपको दोहराना है, टंग ट्विस्टर है,
3: स्पीड से कि स्लो में,
0: मीडियम बोल सकते हैं आप, बहुत ही स्लो नहीं, बहुत फास्ट ही नहीं, मीडियम बोल सकते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
3: चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
0: वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका विजय भाई।
3: हाय, ये दीदी ये जो पहेली है ना, ये जो अभी है और वो पके पेड़ पर पका पपीता और वो सभी हम जब पढ़ते थे तभी ये सब ट्राई करते थे।
0: जी जी जी बिल्कुल, ये बचपन की बातें फिर से याद आ रही है।
3: आज आपने बचपन याद दिला दिया। थैंक यू।
0: हम भी बचपन में इस तरह का एक मतलब फ्रेंड्स के साथ चिट चिट करते थे इस तरह बोल बोल के।
3: यही तो नहीं, आज आज जो आपकी जो पहेली जो आपने दोहराए ना, इसके हमें बचपन याद आ गया था। मंगल दीदी को फोन लगा था, दीदी से बात करते हैं।
0: बहुत बहुत आभार आपका,
3: बचपन की याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
0: ओहो ऐसा। ओके जी, आभार आभार।
3: ठीक है दीदी।
0: तो बहुत ही सुंदर बात है कि देखिए आज की युवा पीढ़ी थोड़ी चेंज हो चुकी है। आज की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, अगर वो आएंगे तो हम भी उनके याद जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मनुहार नहीं करेंगे, हम भी इजी वे में जाएंगे और एक बार प्यार से बुलाया तो वो भी इजी वे में आवे। तो सही है, सही भी है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी अब अभी की लाइफ क्या है, हमारी एकदम फास्ट लाइफ हो चुकी है। पहले तो लोग बाग इतने बिजनेस में मतलब खेती बाड़ी में इनमें ही लगे रहते थे, अब तो आज बच्चे भी बाहर रहते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, अब उनको इतना समय नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ करके छुट्टियां लेकर के आए और रिश्तेदारों के मनवार करते फिरे, उनको समय नहीं मिलता। पहले तो लोगों के पास काफ़ी समय मिलता था, पहले शादी ब्याह में भी तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज तो जैसे कि अभी ये विधि चल रही है तो विधि के कोई 10 मिनट पहले आएंगे, कोई 1 घंटा पहले आएंगे, ऐसा हो गया है। इसलिए समय के साथ परिवर्तन हुआ है। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर प्रोग्राम था और कुछ रिश्तेदार उनसे बिना कारण ही नाराज थे। उन्होंने एक बार प्यार से उनको घर पर जाकर के उनकी मनुहार की कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है, ये विद्या आपको आना है। बोले कि देखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद वो नहीं आए तो दूसरे रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आपके वो रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहे, फोन कर दो। वो बोले नहीं, फोन अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं अपने घर में विधिया है तो उन विधि को मैं संपूर्ण करूंगा या मैं फोन करता फिरूंगा, अगर वो नहीं आए तो कल मुझे भी नहीं जाना है। और नहीं आए वो जबरदस्ती नाराज हो गए तो वो भी फिर उनके प्रोग्राम में नहीं जाते, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए बर्दाश्त ठीक है, एक हद तक सभी बर्दाश्त करते हैं, सब्र भी करते हैं, नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि चलो जाने दो जाने दो जाने दो, भले वो बोल रहे हैं, भले उल्टा सुल्टा सुना रहे हैं, काफी कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो लोग थक जाते हैं। फिर यही या तो रिश्ता टूटता है या फिर उनके सामने पूरे ही दंडवत हो जाते हैं, झुक जाते हैं कि भाई आना ही है आपको, कोई भी गलती नहीं है। तो लेकिन समय के साथ चेंज आया है, तो अब ऐसा है कि मैं आपके यहाँ आऊंगी, अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी आऊंगी, बिना मनुहार आपको भी आना है, बिना मनुहार मैं भी आऊंगी। अगर मनुहार किया तो आजकल कोई मनुहार नहीं करता है, वो लोग क्या है जबरदस्ती नहीं आए, उन्होंने सोचा कि ये लोग फिर से एट ए टाइम आएंगे और हमारे हाथ जोड़ेंगे, वो इंतजार करते रहे, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमने कभी कोई गलती नहीं की, इनके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम थे हम इजी वे में गए, तो आज हम हाथ क्यों जोड़े, वो भी आओ सरलता से आ जाओ, उनका ही कार्य है आकर के अपने हाथ से करें। लेकिन नहीं आए तो वो प्रोग्राम तो हो गया, उसके बाद लोगों ने बातें की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बोले कि हमारी मनुहार नहीं की। सामने वाले को पूछा तो बोले कि भाई मनुहार जब मैंने कभी करा ही नहीं तो मैं क्यों करूं, मैं भी आराम से जा रहा था, वो भी आ जाते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आजकल तो ऐसा ही है जैसे को तैसा, इसलिए ध्यान रखे, बर्दाश्त की हद होती है, बर्दाश्त जो बर्दाश्त की सीमा टूटती है, सब्र की सीमा टूटती है, नजरअंदाज की सीमा टूटती है, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। अब इसको संवारना है या बिखेरना है वो अपने हाथ में है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, बहुत सरल है। आप जवाब दे सकते हो, बोल के सुना सकते हो, हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। और आइए फिर से सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: प्यार में हंसी मजाक नोक झोंक चलता ही रहता है। पत्नी जब पति को कहती है कि उसे नीम की निमोली कड़वी लगती है, तो पति उसको मिश्री का बाग लगाने के लिए कहता है। यही तो प्यार है।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's Community Radio Station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिए, आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बालूशाही। तो बालूशाही आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। इसको आप बना करके 8-10 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं, 8-10 दिन की खट्टी भी बना सकते हैं। तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी ले लीजिए 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, खाने वाला सोडा थोड़ा सा, मीठा सोडा बोलते ना जिसको, वो। फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ। बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, फिर खाने वाला सोडा थोड़ा सा। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि मैदे को छान लीजिए, छान करके फिर बराबर का घी डालिए मैदे में, ठीक है, और सोडा भी डाल दीजिए, और फिर दही डाल करके अच्छी तरह मथिए। मैदे को इस तरह आपको गूंद लेना है, फिर छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है। उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके इसको थोड़ा सा दबाइए। अब आप कढ़ाई में घी डालिए, घी गर्म हो जाए तो हल्की आंच पर आप बालूशाही को तल लीजिए। अगर ये दोनों तरफ से लाल हो जाए तो फिर निकाल दीजिए। फिर 3 तार की चाशनी बनानी है, उसमें थोड़ी देर तक डुबोइए बालूशाही को, उसके बाद निकाल दीजिए। तो ये बन गई बालूशाही। बहुत स्वादिष्ट लगती है बालूशाही भी, और अक्सर राजस्थान में तो देखा है कि प्रतिभोज होते हैं ना, उसमें बालूशाही बनती है। तो फिर से मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ कि मैदे को छानिए, छान करके ये इसमें बराबर का घी डालिए मोवन के तौर पर, फिर सोडा भी डाल दीजिए, दही को मथ लेना है, और फिर मैदे में डाल करके अच्छी तरह गूंदना है, ठीक है। फिर छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लीजिए, और उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके दबाइए हल्का सा। अब आप घी रखिए, कढ़ाई में डालिए, गरम करिए, और हल्की आंच पर बालूशाही को तल लीजिए। दोनों तरफ से लाल लाल हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए। इस तरह सारी बालूशाही तल लीजिए, और आपको दूसरे गैस पर चाशनी बना देनी है 3 तार की, और बालूशाही को उसमें डालना है, और डुबो डुबो करके उसको निकालना है, ठीक है। थोड़ी सी देर ही उसमें रखना है, फिर निकाल देना है। इस तरह सारी बालूशाही आपको बना लेनी है। तो बहुत ही सरल तरीका, आराम से आप बना सकते हो, और इजी वे में बना करके खा सकते हो। बहुत ही तरीका इसका सरल है, और स्वादिष्ट मिठाई है ये, तो आराम से आप बना सकते हो। चलिए अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर से एक आपको एक रेसिपी खाऊंगी। तो आज का ट्विस्टर आपको सुना रही हूँ। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई, ये टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाना है। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आज टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। अब बढ़ते हैं फिर से गीत की तरफ, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोवन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोवन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। और आज का टंग ट्विस्टर था, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो जवाब आज सभी का सही रहा है। विषय में भी आपने बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, जीतू भाई खेड़ब्रह्मा से और रामा भाई वासना से, विजय कुमार जी, कंचन भाई ने विषय पर चर्चा की लेकिन टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया, बाकी सभी ने सुनाया। आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं एक प्यारा सा आपको भाव भजन सुनाऊंगी। आज का अनमोल वचन है कि बात सीधी सी है, आप कुदरत का ख्याल रखिए, कुदरत आपका ख्याल रखेंगे। और अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, कृष्ण भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। जग

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है। तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वंदे मातरम गीत देश के क्रांतिकारियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत था। ये आजाद हिंद फौज के सैनिकों का भी मूल मंत्र था। वही आजाद हिंद फौज जिसकी नींव भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे महान नेताओं और सूत्रधारों में से एक राज बिहारी बोस ने की थी, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली गई। कहते हैं कि अगर अरबिंदो घोष को यंग इंडिया का मैजनी माना जाता है, तो राज बिहारी बोस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का कैवूर कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने विदेशी धरती पर रहकर भारतीय राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में हम सुनेंगे भारत के इन्हीं दिलेर क्रांतिकारी राज बिहारी बोस की वीरता एवं जाबाजी की कहानी।
1: दीदी, ये वही क्रांतिकारी तो नहीं जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के मुख्य सूत्रधार थे?
2: बिल्कुल सही पहचाना बन्नू, तुम्हें याद रहा? ये बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी, भिकाजी कामा और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साहसिक किस्से सुनाते समय आपने इनका जिक्र किया था।
2: दरअसल राज बिहारी बोस तभी चर्चा में आए थे जब उनका नाम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमले में आया था।
0: बड़ी शानदार योजना बनाई गई थी क्रांतिकारियों द्वारा चंदन नगर में हुई उस बैठक में। हार्डिंग पर हमले का सुझाव देने वाले कोई और नहीं, राज बिहारी के निडर दोस्त श्रीश घोष थे। लेकिन बैठक में मौजूद कुछ लोगों को ये अव्यवहारिक लगा।
3: मुझे शंका है कि हम हार्डिंग पर बम से हमला कर पाएंगे, उसके आसपास बहुत सुरक्षा रहती है।
4: हम तैयार और दृढ़ हैं, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। हमें शक्तिशाली बम दिया जाए और पक्के क्रांतिकारी चरित्र वाला एक युवा मिले।
0: राज बिहारी की दोनों शर्तें पूरी की गईं। 1911 की दिवाली पर चारों ओर पटाखों की आवाज के बीच पहली रिहर्सल भी हुई। बम राज बिहारी की उम्मीद के मुताबिक फटे, लेकिन उन्हें एक साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। फिर आया 22 दिसंबर 1912 का दिन। राज बिहारी बोस अपनी युवा गर्लफ्रेंड को टोंगा में बिठाकर चांदनी चौक की सड़कों पर ले गए, जहां अगले दिन हमले की योजना बनी थी।
4: बसंत, तुम चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के पास क्लॉक टावर वाले जगह पर रहोगे, महिलाओं के बीच महिलाओं के वेश में। बम तभी फेंकना जब वायसराय का हाथी ठीक सामने हो। अगर तुम चूकोगे तो मैं और अवध बिहारी हमले को अंजाम देंगे।
5: जी गुरुजी।
6: तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बसंत?
5: नहीं, डर किस बात का, महीनों अभ्यास किया है, आज के दिन का ही तो इंतजार था।

0: वाइसरॉय और उनकी पत्नी हाथी पर सवार गली में प्रवेश करते हैं। महिलाएं जुलूस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बसंत, जो कि एक लड़की के भेष में था, वो भी उन्हीं के बीच उपस्थित था। तभी अचानक राज बिहारी का ध्यान आता है और वो अपनी शंका अवध बिहारी से साझा करते हैं।
1: देहरादून में सिगरेट के डिब्बे में बम फेंकने की जो प्रैक्टिस की गई थी, यह काम नहीं आएगी।
2: क्यों? ऐसा क्या हो गया?
1: यह हमें पहले जमीन से हाथी पर बैठे टारगेट तक की ऊंचाई का अंदाजा लगाना होगा। वसंत, तुम अपना कपड़ा बदल लो और नीचे आ जाओ।
0: कहने को तो लॉर्ड हार्डिंज पर हमले के पूरे ऑपरेशन की योजना बहुत चतुराई से बनाई गई थी, लेकिन 23 दिसंबर 1912 का ये हमला दुर्भाग्य से विफल रहा। बसंत बिल्डिंग के नीचे गया और फुटपाथ पर भीड़ में घुल मिल गया, लेकिन बम अवध बिहारी ने फेंके। इसमें वॉइसरॉय पूरी तरह घायल हो गए। उन्हें पास के एक डॉक्टर एस सी सेन के पास ले जाया गया। राज बिहारी तो बच निकले, मगर हत्या की नाकाम कोशिश के बाद बोस के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला। उनमें से एक को उम्र कैद की सजा हुई, बाकी अवध बिहारी गिरफ्तार समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। जबकि बोस भारत में क्रांतिकारियों के बीच मशहूर हो गए। उनके समकालीन क्रांतिकारी साथी बोस के बारे में कुछ यूं बताते हैं।
2: उनके जैसा निडर तो देखा ही नहीं। वायसराय पर हमला करने के बाद वो रात को ही ट्रेन से देहरादून लौट गए। अगले दिन दफ्तर में ऐसे काम पर लग गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने वायसराय पर हुए हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के नागरिकों की एक बैठक भी बुलाई। इस वजह से किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ कि इस बेहद अहम क्रांतिकारी कार्रवाई की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले वही थे।
3: मुझे 1908 की घटना याद आ रही है। उन्हें अलीपुर बम केस में फंसाया गया था, जेल भी भेज दिया गया, लेकिन वहां से रिहा होते ही फिर से वे क्रांतिकारियों के साथ गुप्त रूप में संपर्क में रहने लगे।
4: दीदी, भिकाजी कामा ने भी राज बिहारी जी से बम और हथियार इकट्ठा करने को कहा था ना?
5: हाँ, दरअसल राज बिहारी बोस एक बहुत ही काबिल क्रांतिकारी नेता थे। स्कूली दिनों से उनकी दिलचस्पी क्रांतिकारी गतिविधियों में रहने लगी थी। मैट्रिक पास करने से पहले ही देसी बम बनाना सीख लिया था। ऐसे में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी भूमिका बढ़ गई। उन पर लेखक, कवि और विचारक बंकिम चंद्र चटर्जी के क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ का काफी प्रभाव था।
0: आनंद मठ के अलावा राज बिहारी ने मशहूर बंगाली कवि नवीन सेन की देशभक्तिपूर्ण कविताओं का संग्रह प्लासीर युद्ध भी पढ़ा। समय के साथ उन्होंने और भी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। उन्होंने वक्ता और क्रांतिकारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी भाषण पढ़े। चंदन नगर में उनके शिक्षक चारू चंद्र, जो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्होंने राज बिहारी को क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
6: मैंने फोर्ट विलियम में तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली है, तुम वहाँ चले जाओ।
1: जी, जैसा आप कहे।
0: राज बिहारी फोर्ट विलियम चले गए, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा था। पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनका तबादला शिमला में सरकारी प्रेस में हो जाए। इस तरह उन्हें प्रेस में कॉपी होल्डर नियुक्त किया गया। राज बिहारी ने अंग्रेजी और टाइपराइटिंग में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद वो कसौली के पाश्चर इंस्टीट्यूट चले गए, लेकिन ये नौकरियां उन्हें रास नहीं आ रही थी। वो खुश नहीं थे।
1: मुझे ये काम अच्छे नहीं लग रहे, क्या करूं, उलझन में हूँ।
7: आप देहरादून क्यों नहीं जाते? वहां प्रथमनाथ टैगोर के घर पर गार्जियन ट्यूटर की जगह खाली है। मैं बात करता हूं।
1: जरूर करें बात मेरे लिए।
0: इस तरह वो एक ट्यूटर के तौर पर काम करने लगे। फिर उन्हें देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां कड़ी मेहनत से वो हेड क्लर्क बन गए।
5: जानती हो बन्नो, बोस का मन नौकरी में क्यों नहीं लग रहा था?
4: क्यों दीदी?
5: वजह थी 1905 में हुआ बंगाल का बंटवारा और उसके बाद हुई घटनाएं। तब रास बिहारी बोस अपनी किशोर अवस्था में थे। बंटवारे का कारण प्रशासनिक बताया गया था, लेकिन असल में वो धार्मिक आधार पर किया गया प्रतीत हो रहा था। दूसरे बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह बोस इससे बहुत नाराज थे।
0: भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का मुख्य केंद्र बंगाल था। बंगाली हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ये बंटवारा कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस कदम का काफी समर्थन किया। पूरे बंगाल में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। द न्यू एशिया ऑफ रास बिहारी बोस, इंडिया जापान एंड द लिमिट्स ऑफ द इंटरनेशनल 1912 से 1945 के लेखक जोसेफ मैकक्वेड के अनुसार,
8: अहिंसक गुट ने आर्थिक बहिष्कार के जरिए ब्रिटिश शासन को कमजोर करने की कोशिश की, जबकि एक ज्यादा कठोर गुट ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की।
0: रास बिहारी बोस गदर क्रांति के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे। मैकक्वेड अपनी एक किताब में लिखते हैं,
8: जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, तब रास बिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह जैसा ही एक विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। तब ब्रिटिश शासकों के अधीन काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी थी। पहले विद्रोह शुरू करने की तारीख 21 फरवरी 1915 तय की गई थी। स्थान था लाहौर। 1914 तक लगभग 4000 गदर आंदोलनकारी हथियार और पैसे लेकर अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व से भारत आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई सही नेता नहीं था। तब रास बिहारी बोस ने उनका नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया। जनवरी 1915 के मध्य में रास बिहारी ने बनारस में एक निजी बैठक में आगामी क्रांति को लेकर पहली बार चर्चा की।
1: यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका है। देश में केवल 30,000 सैनिक ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं, और उनकी वफादारी आसानी से जीती जा सकती है। योजना यह है कि भरोसेमंद गदर आंदोलनकारियों को सेना की छावनियों में भेजा जाए। देशभक्तों की क्रांतिकारी कार्रवाई के बिना ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी।
9: आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ।
0: रास बिहारी द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप खैरों, फिरोजपुर और लाहौर में कुछ रिहर्सल भी आयोजित किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। वो जल्द ही विफल हो गई। यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। एस्टन और कवाबे अपनी किताब में लिखते हैं,
8: जैसे ही जासूसों ने आंदोलन में घुसपैठ की, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से हथियार छीनना शुरू कर दिया। बिना डरे बोस ने विद्रोह शुरू करने की तारीख 19 फरवरी कर दी, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए इस योजना को दबा दिया गया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जेल में डाला गया और यहां तक कि देश निकाला दे दिया गया।
0: ब्रिटिश अधिकारियों के पीछे पड़ने और सिर पर इनाम घोषित होने के बाद रास बिहारी बोस ने तय किया कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। 12 मई 1915 को रास बिहारी कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार का भेष बदलकर कोलकाता बंदरगाह से जापान के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो गदर पार्टी के हैरम लाल गुप्ता और भगवान सिंह से मिले।
1: मैं एक भगोड़े की तरह रहकर थक चुका हूँ। 17 बार अपना ठिकाना बदला है।
3: आपको और हैरम लाल को जापान से वापस भेजने की कोशिश करता हूँ।
0: भले ही 1902 से 1923 के बीच जापान ब्रिटेन का सहयोगी था, बावजूद इसके उसने उन क्रांतिकारियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे जो भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना चाहते थे। पता चला कि हैरम लाल अमेरिका भाग गए और रास बिहारी ने तोसिको सोमा से शादी करके जापान की नागरिकता ले ली।
5: बन्नो, रास बिहारी बोस ने ही जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसकी कमान बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। हालांकि इस संगठन का प्रमुख स्लोगन वंदे मातरम ही रहा। बंगाल के सभी क्रांतिकारियों की तरह रास बिहारी बोस के लिए ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नारा था।
0: जापान में 3 दशकों से ज्यादा समय तक निर्वासित रहने के दौरान रास बिहारी भारत की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे। वहां उन्होंने एक भारतीय बुद्धिजीवी, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी प्रतीकों को बढ़ावा दिया। रास बिहारी का मानना था कि INA उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एकता के प्रतीक के तौर पर काम करेगी, ताकि वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पा सकें। असल में INA रास बिहारी बोस के आजादी के लिए उनके सशस्त्र संघर्ष के 30 साल की लंबी कोशिश का परिणाम था। वो कहते थे,
1: मैं एक व्यवहारिक और राष्ट्रवादी सोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में एकता और एकजुट रुख की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। यह संगठन दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जनमत और समर्थन जुटाने में एक असरदार और गतिशील संस्था के रूप में काम करेगा। वैसे ही वंदे मातरम महज एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता का बड़ा प्रतीक है। इसमें प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने की क्षमता है।
0: रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दादा कालीचरण की देखरेख में सुबलदाहा में हुई। उनका निधन 1945 में हुआ, यानी 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी मिलने से ठीक पहले। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

करते हैं तब जब उसकी रहमत हो। उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। नहीं अब हक मुझको।

0: सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है, उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है। उस गांव का नाम आइए जानते हैं, और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है। मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है, और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपिपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया, डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपिपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपिपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा
0: जी
1: व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
1: हाँ,
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान, मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य, सेवा किए कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ।
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोयल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, ये बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है, और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है, और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और दो तीन लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं, और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो, और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है। क्योंकि देखो, सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं,
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे हैं।
0: भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें, और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल, वही
0: अवेयरनेस
1: वही वही काम इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम,
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे, और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
0: जी
1: क्योंकि देखो, मेरे को जॉब भी मिल सकती है लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी श्रोताओं जो
1: और
0: हमसे जी
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप उनसे साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर
1: हाँ बस।
0: कोई बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल, देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल, ऐसा
0: रास्ते।
1: ही
0: जी
1: मेरे साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ, उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
0: जी
1: और उनके
0: निश्चित
1: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
0: आपकी
1: मैं।
0: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं। स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं। हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
0: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
0: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली, आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: मेरी मदर।
0: जी, तो
1: हाँ
0: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी। सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है, मतलब
0: जी,
1: पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
0: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
0: जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
1: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
0: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए? कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े? तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए, ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन जी
1: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
0: कम्युनिटी हाउसिंग,
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए, उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी कितने
1: बिल्कुल,
0: लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: ये आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपीपला प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
0: जी, नर्मदा और बड़ोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों।
1: बिल्कुल नजदीक है। मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
0: जी,
1: सेवेंटी फाइव यस।
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ देखो, मैंने बहुत के कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है और
1: बिल्कुल,
0: लोगों से जुड़ने की आवश्यकता है।
1: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवाज सत्य रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
1: बिल्कुल,
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना वो बहुत ही एक्साइटेड बात है। आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है, उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है, भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
0: जी, तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जारोन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, पर मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद आप यहां तक कैसे पहुंचे, उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना, मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में, जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परिपक्व नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूं। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि क्यों कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी
0: खासतौर पर
1: सर,
0: प्राइमरी
1: मैं
0: एजुकेशन, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी जी सर मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूं कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने
0: जी
1: उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु

0: इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गए या टकरा गया, तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीड़ा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से, वो एक दिन मुझसे मिलने आए। तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उनने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पर बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था, और मुझे पढ़ाई की तो इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई, तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता। तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा, तो मैं गया। पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी, जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 KD, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको नहीं आती थी जो मुझे सिखाएं, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया, तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं, दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन
1: जी
0: मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था, वो उनने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन
1: जी
0: सेकंड क्लास में बैठा, तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माताजी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर
1: जी
0: थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गए, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास में
1: जी
0: पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है। तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने 12th के एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, और लिखने वाला दूसरा लिया एक बच्चे से, और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब वो
1: जी
0: सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया, तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला, और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है, तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए, तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स
1: जी
0: क्लास में हमने एक, जब जैसे क्या है कि फिजिक्स वो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने ली है, स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड
1: जी
0: CBSE से
1: जी
0: हुई है, तो सर वहां पे 6th क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहां पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीजें साइंस पढ़ाने लग गए, EBS खत्म हो गई, तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर है, मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो, थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया, तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे, तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखे तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो
1: जी
0: वो आए फिर 6th क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा, तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा, मैंने कहा समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं, बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो, हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे। हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब फिफ्थ सिक्स पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं। तो सर मैंने सेवन्थ क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ एट्थ में। अब मैं डायरेक्ट एट्थ में गया तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है एक साल का। आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में एक साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले, और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पर नई कंपनी, कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है, कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक दो महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं एट्थ क्लास में गया। फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छठी जगह मिली। हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे, ख्याल वगैरह जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की। तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने नाइन्थ क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है नाइन्थ क्लास, एट्थ क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर नाइन्थ क्लास आई तो सर नाइन्थ क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दी इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका। और फिजिक्स, में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है। तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की और सर मैं नाइन्थ निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं। लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा, सब लोगों का सहयोग मिला। टीचर से हमने, प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कोऑपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी, हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताए। तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे, तो उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये CBSE में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%। अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं, मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब, मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं उसको इतना ध्यान से पढ़ता था और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और CBSE का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कंसेप्ट पे बात ज्यादा होती है। तो जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी 9th क्लास का था तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स। अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले, उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी। मैं उस समय 3rd रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में। मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो TC लेकर चले गए कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं, इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी, ऐसी भी फीलिंग आई उनकी।
1: आपने अपनी
0: फिर सर
1: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक चुनौती
0: हाँ, मानसिक
1: दे
0: चुनौती दे दी मैंने, तो उनको इस चीज में मतलब एक तरीके से
1: दी।
0: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने TC भी ले ली, दो तीन
1: जबकि
0: बच्चे को
1: हमारा
0: किसी चक्कर
1: उद्देश्य
0: नहीं
1: नहीं
0: थे,
1: था, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था।
0: मेरा ऐसा नहीं था। लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
1: बचपन से ही लेती है ना।
0: हाँ फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहां पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी। सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कम ही बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और मुझे इसमें मजा आने लग गया। मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी NCERT रिवाइज हो गई उससे। अब वो पढ़े, मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे NCERT याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से, सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, NCERT इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको। और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई, फिर मैंने एक PTET का एग्जाम दिया, यहाँ पे BA+ BEd इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का। उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका ही हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया। एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पर जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं। मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग की इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया है आप।
1: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, वो ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
0: जी
1: खाएगा
0: जी
1: कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकलकर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
0: जी
1: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन, ये
0: जी
1: तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th-10th में एक एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
0: जी सर, मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा। आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर CBSE में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया। तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के, मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर, फॉर्मूले वगैरह याद करके। और एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बराबर ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे A+ B का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो। तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले जा रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे,
1: नहीं, निश्चित
0: और
1: रूप से वो एक
0: मैंने
1: चुनौती है, वो एक
0: मैंने
1: चुनौती।
0: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जैसे बायोलॉजी, जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
1: तो तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मानवीय आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खासतौर पे गणित और इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया है नया। और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 में से 100 आप भी ला रहे होते हैं। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है, या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
0: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RAS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से। फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं, तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RAS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं। मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे, वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
1: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
0: और मैं चाह रहा हूं कि हम
1: परफॉर्मेंस, उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
0: आप देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में, उनके मेडल देखिए। तो
1: जी, मुझे तो हंसी आ रही है
0: हाँ,
1: सकलांग लोगों पर आज।
0: तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, मैं सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज। आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा, हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी। क्योंकि हमको, यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना ये कि ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम ये भी समझे कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, और शायद हम आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़े, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें। और अवश्य ही यदि हम, वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
1: डेफिनेटली हमारा देश देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टिबाधित
0: जी
1: में चलते हुए। छोटा सा
0: जी
1: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने उनको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
0: जी
1: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में, तो उन
0: जी
1: सज्जन ने उनके लिए दो सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
0: जी
1: उनको
0: सर
1: लेके आने के लिए। और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर
0: यही
1: वापस
0: यही
1: गए।
0: चीज
1: तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना, या कई बार आप
0: जी
1: देखेंगे कि आपसे लोग पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवार जन उससे पूछेंगे कि ये चाय
0: जी
1: पीते हैं क्या। अरे भाई साहब मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं
0: जी
1: सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ महाशय, कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
0: एक
1: चलते।
0: बार हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में। उस समय मैं उस क्लास में नहीं था कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे। मैं शायद थर्ड फोर्थ
1: जी
0: थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
1: जी जी
0: तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है। तो वो बोल रहे थे किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे। मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो
1: जी
0: उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है।
1: हाँ तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
0: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
1: जी, नहीं, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं, तो हम उनको
0: जी
1: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
0: जी
1: फ्रेंड्स, लेस डायलॉग विद अस।
0: जी
1: तो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
0: जी
1: श्रोताओं
0: सर
1: आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे FM बैंड 107.8 पर। और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। श्रोताओं एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया,
0: ठीक
1: नमस्कार।
0: है।

0: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के आज हमारे साथ विशेष मेहमान जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं विजय किसवे सर उपस्थित हैं। MPT आप बहुत ही अच्छे कवि हैं और राइटर भी हैं, काफी लंबे समय से आप कविता पाठ करते हैं और आपके साथ में आज हमारे इस प्रोग्राम में मिथिलेश जी भी हैं, आप इन्हें स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर, आप कविता पाठ करते हैं, कुछ किताबें आपकी रिलीज हुई हैं जिसके बारे में हम लोग आप ही से जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा में सुनेंगे आपसे ही कि कैसे इस और आपका जुड़ना हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक हमारे मित्र जो अभी थोड़ा सा जुड़ने में टाइम लग रहा है उन्हें, लेकिन वो भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, विजय बघेरी जी भी आने वाले हैं। तो आप सभी की तरफ से विजय जी का भी स्वागत करेंगे थोड़ी देर में और अच्छा लग रहा है। तो आइए विजय जी से शुरू करते हैं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं और एक सुंदर रचना के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जी नमस्ते, ओम शांति। विजय जी बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका। स्वागत है,
1: ओम शांति। मैं बहुत पहले से ही मधुबन रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी जी,
1: आदरणीय हमारे रमेश खाड़े जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है और सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हम जबलपुर वासियों को इस कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया। मैं पहले ही उन्हें धन्यवाद और आभार प्रदर्शित कर देता हूं। मैं इसके साथ ही मैं अपनी रचनाएं सुनाना शुरू करता हूं। मैं
0: जी जी,
1: जड़ता नाशक अभयदा पूजित देव प्रधान, जड़ता नाशक अभयदा पूजित देव प्रधान, तुम्हें नमन मां शारदे दूर करो अज्ञान, तुम्हें नमन मां शारदे दूर करो अज्ञान। इसी क्रम में बुद्धि विनायक गणेश जी की भी मैं आराधना कर लूं। लंबोदर लंबोदर गजमुख सुमुख धूम्र केतु विघ्नेश, लंबोदर गजमुख सुमुख धूम्र केतु विघ्नेश, विकट विनायक गज करण दंती कपिल गणेश, विकट विनायक गज करण दंती कपिल गणेश। और इसके साथ एक प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना है, प्रेम का उपहार दो। ओ प्रभु इंसान को तुम प्रेम का उपहार दो, ओ प्रभु इंसान को तुम प्रेम का उपहार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो, पापों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। आज फैला है फिजा में बेईमानी का जल, आज फैला है फिजा में बेईमानी का जल, आज सुख सच्चाई पर भी घाए जाते हैं कहर, आज फैला है फिजा में बेईमानी का जहर, आज सुख सच्चाई पर भी घाए जाते हैं कहर। ओ विधाता ज्ञान दाता, ओ विधाता ज्ञान दाता, हम सभी को प्यार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो। अगला अंतरा देखिए, ईश वंदन स्थली है, ईश वंदन स्थली है दीन दुखियारों के घर, ईश वंदन स्थली है दीन दुखियारों के घर, नित्य सेवा साधना में जाए कत सारी उम्र, नित्य सेवा साधना में जाए कत सारी उम्र, प्रार्थना करते तुम्हारी, प्रार्थना करते तुम्हारी खुशनुमा संसार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो, ओ प्रभु इंसान को तुम प्रेम का उपहार दो। निष्कपट बन कर चलेंगे हम मनुजता की डगर, निष्कपट बन कर चलेंगे हम मनुजता की डगर, लाएंगे सारे जहां में भाईचारे की लहर। निष्कपट बन कर चलेंगे हम मनुजता की डगर, लाएंगे सारे जहां में भाईचारे की लहर। कर सके संकल्प पूरा, कर सके संकल्प पूरा, जन्म सौ सौ बार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो, ओ प्रभु इंसान को तुम प्रेम का उपहार दो, पापियों को माफ कर तुम ज्ञान का भंडार दो, ज्ञान का भंडार दो।
0: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विजय जी, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ विजय बघेरी जी भी उपस्थित है, शायद उनकी आवाज आ रही है अभी। नमस्ते बघेरी जी, आप हेडफोन निकाल दीजिए, शायद जिस वजह से आपका वॉइस नहीं आ रहा, हेडफोन निकाल के डायरेक्टली बात कीजिए एक बार। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिथिलेश जी, आपको आ रही है क्या आवाज उनकी?
2: जी, मेरे को आपकी आ रही है सर।
0: अच्छा, विजय जी की नहीं,
2: भाई साहब की नहीं आ रही? नहीं।
0: ओके ओके, हेडफोन निकाल दीजिए, शायद आपका आवाज आ जाएगा।
1: ये निकाल दीजिए।
0: हाँ विजय जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी बातें हो जाए हमारे साथ। संतोष कुमार जी ने सुपर्ब लिख के भेजा है आपके लिए, और दिव्या जी ने भी याद भेजा है बड़े प्यार से, ओम शांति गुड इवनिंग सभी को करके मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ में हमारे अंजना जी ने भी याद भेजा है, आप भी यहाँ पर है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अंजना जी, आपने भी याद भेजा है। और इसके साथ में मैं विजय जी चाहूंगा कि कविताओं का जो रुझान है वो कैसे हुआ आपके जीवन में, कविताओं के प्रति आपका प्यार या आपने उसको कैसे समझा, और किनको देखकर या किनको पढ़कर या किसी संगत से ये चीजें आपके पास आई, उसके बारे में बताइए।
1: जरूर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिता श्री एच पी तिवारी जी है, वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और ये ऑफिसर भी थे ऑर्डिनेंस कंवरिया फैक्ट्री जबलपुर में। तो उनका एक तो साहित्यिक रुझान था, बचपन से ही वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे कि आप स्कूली जीवन में, शालेय जीवन में आप कुछ सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम में भाग लिया करें, तो एक तो ये हुआ। और हाँ, जैसे ही मैं विद्यालयीन परिवेश में गया तो वहां मुझे कुछ ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे बेहद प्रेरित किया, उनमें से मैं सबसे पहला नाम निजामुद्दीन निहाल तांबा जी हैं, बहुत अच्छे शायर थे और बहुत अच्छा वो गाया करते थे। इसके बाद में एक वयोवृद्ध करीब अभी वर्तमान में भी हैं, वो करीब 90 साल उनके हो रहे हैं, वो है सनातन कुमार वाजपेयी
0: जी।
1: तो वो इन दोनों के सानिध्य से मेरी जो साहित्यिक जो रास्ता है, जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, वो तेज हुई। और ईश्वर की कृपा से कुछ मेरे मन में कुछ ऐसा जिज्ञासा बनी रहती है कि ये बड़े लोग यदि कविताएं लिख सकते हैं तो मैं क्यों ना लिख पाऊंगा। तो बस यही प्रेरणा, यही मेरे जो आत्मस्फूर्त रूप से जो मैं अपने विचार करता था उस पर मैंने लेखन शुरू किया, और निरंतर अभ्यास, निरंतर अध्ययन से, और बड़े बड़े जो हमारे कवि हैं महादेवी वर्मा से लेके निराला जी तक, महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेके सूर्यकांत त्रिपाठी तक, इन लोगों के कारण, इन लोगों की रचनाएं पढ़ पढ़ के। और मैं आपको ये बड़े गर्व के साथ बताना चाहूंगा कि जबलपुर साहित्य धानी भी है, संस्कार धानी भी है, और यहाँ पर आप सभी ने जानते होंगे खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी है, सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे जबलपुर की ही है, हरिशंकर परसाई जी बहुत बड़े साहित्यकार व्यंग्यकार रहे हैं वो जबलपुर के हैं, तो निश्चित रूप से इनका असर हम लोग पर जरूर पड़ा है, ये मेरी प्रवृत्ति रही।
0: जी विजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि ऐसी आपका जो है कविताओं के साथ जुड़ना हुआ, ये आपने बताया। और बचपन से ही आप शिक्षकों को इसके लिए सम्मान देते हैं, इसका श्रेय उनको देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके अंदर ये कला आ गई है। आप एक काव्य के रूप में लोगों के बीच में जाने जाते हैं, कवि के रूप में। तो ये बचपन के आपके जो टीचर्स थे, गुरुवर थे, उनके जो है आशीष से ये चीज़ें मिल गई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, और चाहेंगे कि और भी रचनाएं आपके सुने हम, और हम चाहेंगे कि अभी मिथिली जी से आपको जोड़ना चाहूंगा। मिथिली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मुझे बड़ा अच्छा लगा
2: जी,
0: जब विजय जी ने
2: थैंक
0: आपका नाम घोषित किया। तो
2: यू
0: मैं चाहूंगा कि एक सुंदर रचना से शुरू करते हैं।
2: जी जी बिल्कुल। सर्वप्रथम माँ बागेश्वरी के चरणों में सादर नमन निवेदित करते हुए चार
0: जी
2: पंक्तियां कि हम गीत रचना किस तरह कर पाते हैं,
0: स्वागत।
2: चार पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ कि वीणा पाणी माँ शारदे अपना आशीष लुटाती हैं, वीणा पाणी माँ शारदे अपना आशीष लुटाती हैं, छंदों गीतों की रचना भी वो कलम पकड़ करवाती हैं, सच्चे स्वर स्वतः निनादित हो जग को झंकृत कर देते हैं, हर ओर हमारी जय होती वो मन ही मन मुस्काती हैं, हर ओर हमारी जय होती वो मन ही मन मुस्काती हैं। तो ये तो थी मेरी चंद पंक्तियां जो माँ शारदा को समर्पित की मैंने। अब मैं आपको कुछ दोहे सुनाना चाहूंगी जिसमें कुछ प्रेम के हैं कुछ भक्ति के हैं, तो सादर समर्पित हैं।
0: स्वागत है, सुनाइए।
2: कि पथिक बने हम प्रेम के पहुंचे प्रिय के गांव, पथिक बने हम प्रेम के पहुंचे प्रिय के गांव, प्रेम नगर निर्मित हुआ जीवन भर का ठाव, प्रेम नगर निर्मित हुआ जीवन भर का ठाव। अगला है कि नैनों के मझधार में डूबी मन की नाव, नैनों के मझधार में डूबी मन की नाव, जाने कब इसको मिले थोड़ा सा ठहराव। अगला दोहा देखें कि रघुनंदन श्री राम का अभिनंदन आभार, रघुनंदन श्री राम का अभिनंदन आभार, देने को अपवर्ग सुख आए शबरी द्वार।
1: आवाज में बहुत हमिंग हो रही है, बहुत हमिंग आ रही है आवाज में।
2: जी उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। जीवन उत्सव बन गया तुमको पाकर राम, जीवन उत्सव बन गया तुमको पाकर राम, तोड़ धनुष तुमने किया मुझको अपने वाम। अगला दोहा देखें कि गुरुवर के आशीष की मिली हमें जब छाओ, आत्म चेतना खिल उठी खिला हृदय का गांव। अब मैं आपको एक प्रेम गीत से जोड़ना चाहूंगी।
0: बिल्कुल।
2: आवाज ठीक आ रही है सर?
0: हाँ जी, हाँ
1: नहीं,
0: जी।
1: हमें आ रही, बहुत ज्यादा खर खर आ रही है आवाज।
2: अच्छा
0: मेरे पास क्लियर आ रही है आपकी आवाज, आप सुनाइए।
2: अच्छा जी चलिए ठीक है, चलिए एक प्रेम गीत सुनाती हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी।
2: प्रेम क्या है? प्रेम को हम अनेकों रूप में परिभाषित करते हैं, सबकी नजर में प्रेम अलग अलग होता है। तो मेरी नजर में प्रेम क्या है, मैं उसको अपने शब्दों में बयान करना चाहूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: प्रेम सिया की सतत प्रतीक्षा, प्रेम राधिका की पायल है। प्रेम सिया की सतत प्रतीक्षा। फोन बंद करो ना।

0: जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद,
0: चलिए मिथिला जी, बहुत ही प्यारा सा जो कविता आपने सुनाया प्रेम पर और प्रेम की बहती धारा को जो है आपने बताया। और यहाँ संतोष कुमार जी आपके लिए मैसेज किया, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया, बहुत ही अच्छा लगा उन्हें। तो आइए इसके साथ ही मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगा, आपका कैसे कविताओं के साथ जुड़ना हुआ उसके बारे में जरूर बताइए। और हमारे साथ विजय बगारी जी जुड़ गए हैं। विजय जी
2: जाने लग गए, आपको आ रही है आवाज?
0: बिल्कुल आ रही है,
3: मेरी आवाज सुनाई पड़ रही?
0: हाँ जी, हाँ जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है?
1: अब आ रही है,
3: आ रही है
1: जी।
3: अभिवादन स्वीकार करें,
0: स्वागत है।
1: हाँ जी, तो आपसे
0: आप भी थोड़ा सा बताइए हमें।
1: दरअसल साहित्य से ही मेरा रुझान था और मैं भी बचपन से ही हिंदी विषय में काफी कुशाग्र विद्यार्थी थी और धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों को पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर भी ये भावना जगी कि क्यों ना मैं भी अपने भावों को शब्दों में पिरोने का प्रयास करूं। तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मुझे भी एक दिन अवश्य मिलेगा। और एक ऐसी घटना हुई कि मुझे पढ़ने का बहुत अवसर मिला, हिंदी कवियों को और साहित्यकारों को पढ़ने का जो मुझे अवसर मिला उससे मुझे प्रेरणा बनी और आपको जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि मेरे साहित्य गुरु आदरणीय विजय बागड़ी विजय जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और मैं उनके सामने काव्य पाठ कर रही हूँ और प्रणाम करती हूँ भैया जी आपको, बहुत प्रणाम। तो इस तरह से प्रेरणा और ये मिला हमको, मार्गदर्शन मिला तो लिखना शुरू किया और ईश्वर की दया से आज माँ सरस्वती का आशीर्वाद है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मिथिले जी अपने बारे में बताने के लिए, अपने काव्य की यात्रा कैसे शुरू की उसके बारे में आपने बताया। तो आइए विजय जी को मैं जोड़ना चाहूंगा।
2: ये रमेश जी,
0: स्वागत है आपका।
2: द्वारी,
0: विजय जी मेरी आवाज आ रही है?
2: आरजे रमेश।
3: हाँ जी, अभिवादन करता हूँ
0: जी। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक सुंदर रचना सुनाइए उसके बाद फिर हम जी। अच्छा, आपके यहाँ कुछ फैन वगैरह चल रहा है क्या? थोड़ी देर के लिए बंद करेंगे तो शायद अच्छा होगा, उसकी आवाज आ रही है।
4: दो नंबर की
0: हाँ जी, हाँ जी, विजय जी सुनाइए।
3: मैं सुनाता हूँ जी।
0: और इस बीच हमारे संध्या जी ने याद भेजा है, उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता करके आपके लिए मैसेज दी।
3: ओम शांति।
0: ओम शांति जी, स्वागत है
3: इस कार्यक्रम में उपस्थिति दे रहे हमारे परम मित्र आदरणीय विजय तिवारी किसले जी और हमारी बहन जी मिथिलेश बड़गैया जी का भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ और एक गीत रखता हूँ आपके सामने, सुनिएगा।
0: स्वागत।
3: ये पुराण आगम निगम ऋचाएं पवित्र वेदांत सार मानस, पुराण आगम निगम ऋचाएं पवित्र वेदांत सार मानस और उपासना अर्चना नियम व्रत सुगम्य कल्याण द्वार मानस, सुगम्य कल्याण द्वार मानस। ये रामचरित मानस के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां एक गीत के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है, वो आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा।
5: स्वागत है।
3: सुकर्म उत्सर्ग भक्ति निष्ठा सदाचरण नीति विघ्नहारी और अमर कथामृत सुरा पगासी पयोधरा योग क्षेमकारी और सुपुंड फल रिद्धि सिद्धिदात्री कृपा यतन की पुकार मानस, पुराण आगम निगम ऋचाएं पवित्र वेदांत सार मानस।
0: क्या बात।
3: और ये पंक्तियां सुने कि सिया लखन राघवेंद्र प्रभु की कथा त्रिवेणी सरिस सुपावन, सिया लखन राघवेंद्र प्रभु की कथा त्रिवेणी सरिस सुपावन और मिले जहां पुण्य तीर्थ का फल जहां निमज्जन करें तपोधन, मिले जहां पुण्य तीर्थ का फल जहां निमज्जन करें तपोधन और जहां प्रतिष्ठित स्वयं सदाशिव जहां प्रतिष्ठित स्वयं सदाशिव रितंभरा कंठहार मानस पुराण आगम निगम ऋचाएं पवित्र वेदांत सार मानस, पवित्र वेदांत सार मानस। और ये पंक्तियां सुने, विपत्ति में धैर्य धर्म साहस रखें कथाराम की सिखाती। विपत्ति में धैर्य धर्म साहस रखें कथाराम की सिखाती, और पुनीत कर्तव्य क्या हमारा सुनीति का पथ हमें दिखाती। पुनीत कर्तव्य क्या हमारा सुनीति का पथ हमें दिखाती। और मिला महाग्रंथ संत भूषण प्रणीत दिव्योपहार मानस पुराण आगम निगम ऋचाएं पवित्र वेदांत सार मानस। और इसका अंतिम बंद सुने कि हुए जगत में प्रसिद्ध तुलसी, हुए जगत में प्रसिद्ध तुलसी सुकवि शिरोमणि कथा प्रणेता, और युगों युगों तक कृतार्थ कलयुग, और हुआ परम धन्य धन्य त्रेता। युगों युगों तक कृतार्थ कलयुग, हुआ परम धन्य धन्य त्रेता, और विजय सदा मूल्य निष्ठ जीवन हृदय करे निर्विकार मानस। विजय सदा मूल्य निष्ठ जीवन हृदय करे निर्विकार मानस पुराण आगम निगम ऋचाएं पवित्र वेदांत सार मानस, और उपासना अर्चना नियम व्रत सुगम्य कल्याण द्वार मानस, सुगम्य कल्याण द्वार मानस।
1: बहुत बढ़िया,
5: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब बहुत।
0: विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाई। और आइए मैं चाहूँगा कि आप कैसे कविताओं से जुड़ना हुआ उसके बारे में बताइए, आपकी क्या कहानी है।
3: ये देखिए, मैं अपने स्कूली लाइफ जो थी मेरी, स्कूली जीवन में मेरे एक हमारे प्राचार्य हुआ करते थे, वो जबलपुर संस्कारधानी के महाकवि थे, और वो भी बड़े सुप्रसिद्ध कवि राष्ट्रीय स्तर के थे। उनका नाम था डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल।
0: अच्छा,
3: वो
0: डॉक्टर गार्गी शरण
3: मिश्र मराल जी,
0: मित्र मराल,
3: मिश्र मिश्र मिश्रा
0: मिश्र, अच्छा मिश्र,
3: यस, वो हमारे प्राचार्य हुआ करते थे। तो बगराजी हायर सेकेंडरी में इस तरह के सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम साल भर विद्यालय में हुआ करते थे। तो मेरी कविता के प्रति और साहित्य के प्रति जो मेरी अभिरुचि थी, वो निसंदेह थी तो बचपन से, और कविता का एक तत्व जो अंदर था उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इस बीच में कहीं कवि सम्मेलन देखने जाना या कहीं कवि गोष्ठी अटेंड करना, बस धीरे धीरे। और फिर जबलपुर संस्कारधानी से एक वर्तिका संस्था है, वहाँ से मेरा जुड़ाव हुआ, और आज जो हमारे साथ हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय विजय तिवारी किसले जी हैं, इनसे हमारी मित्रता थी। इन लोगों ने, सब लोगों ने मुझे वहाँ वर्तिका से जोड़ा, और धीरे धीरे मुझे ऐसा अवसर मिला और मैं कुछ टूटा फूटा लिखने लगा, और फिर धीरे धीरे निरंतर अभ्यास चल रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत अच्छा कवि हूँ, लेकिन मैं साधना जो है वो अपनी निरंतर करता रहता हूँ और नित्य प्रति सीखता रहता हूँ। मेरी 6-7 किताबें भी प्रकाशित हो गई हैं, और लोगों का बहुत प्यार मिलता है, बहुत दुआएं मिलती हैं, और कविता तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बन गया है, और कविता के बिना जीवन अधूरा लगता है मुझे, बस यही कहना चाहूँगा।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपने जो सुंदर कविता पाठ किया और किस तरह से आपका जुड़ना हुआ ये भी आपने बताया। संतोष कुमार जी ने आपके लिए मैसेज किया है कि बहुत ही अच्छी कविता पाठ हुई है आज के इस प्रोग्राम में, तो याद भेजा है। तो आइए, एक छोटी सी बच्ची हमारे साथ पूना महाराष्ट्र से जुड़ गई है, समर्था। समर्था, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
6: स्वागत है।
0: समर्था, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार रिस्टार्ट करके वापस एंटर कीजिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं चाहूंगा कि वापस एक बार री एंटर करिए। तो चलिए मैं फिर से आप सभी को जोड़ना चाहूंगा विजय जी से, और विजय जी ने जैसे अपने बचपन से ही कविताओं के साथ जुड़ना हुआ शिक्षकों के माध्यम से उन्होंने कहा, और आज जब हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं चाहूँगा विजय जी कुछ पुरानी यादें जैसे कि माउंट आबू की हो या फिर आपने कविता पाठ किसी बड़े मंच पे किया हो, वो ऑफलाइन जब हम लोग करते हैं तो बड़ी अच्छी बातें होती हैं, लोगों से मिलना होता है, तो मैं चाहूँगा कोई एक आज प्रसंग जो आपको याद ताज़ा हो जाए आपके भी और हमें भी ताज़ा कराइए, कोई एक छोटा सा इंसिडेंट जो यादें बन गई हैं आपकी उसके बारे में बताते हुए एक छोटी सी रचना।
6: बिल्कुल बिल्कुल सर जी, आपने इतनी अच्छी बात कह दी, उससे अच्छा और कोई प्रसंग तो हो ही नहीं सकता। जब मैं माउंट आबू आया था और यहाँ पर मधुबन में करीब 5 दिन में रहा हूँ, और इतने विशाल प्रेक्षागृह में पूरे इंडिया से केवल 5 कवि थे और मैं मंच पर बैठा हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह है कि 137 कंट्रीज में इसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था
0: जी।
6: तो ये जो कवि सम्मेलन है, कितने भी कवि सम्मेलन में देश विदेश प्रदेश में जाके मैंने क्यों ना अटेंड किए हुए, लेकिन ये माउंट आबू का एक वो दैवीय जैसा, वहां की हमारी जितनी भी ब्रह्म कुमारी बहने हैं भाई हैं, उनका जो सानिध्य मिला वो जीवन पर्यंत भुलाया नहीं जा सकता। और वहां का जो मैंने अपना जो काव्य पाठ किया था वो अपने आप में उतना श्रेष्ठ तो नहीं है, लेकिन जीवन के लिए बहुमूल्य जरूर हो गया है मेरा वो। और इतना आनंद आया था उसमें, पूरे आप लोगों का जो सहयोग था, आपके द्वारा रेडियो मधुबन द्वारा मेरा इंटरव्यू 1 घंटे तक लिया गया था, वो मेरी बहुत बड़ी याददाश्त है, और वो स्नेह बरकरार है इतने साल बाद भी, 10-12 साल बाद भी आप मेरे को उसी तरह से करते हैं, तो ये एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा उस समय, भले ही हम साहित्य में कहीं भी जुड़े हुए हूँ, बस यही एक बहुत बड़ा। इसके यदि मैं कोई दूसरा संस्मरण सुनाऊंगा तो फिर इसकी गरिमा समाप्त हो जाए, इसीलिए मैं कोई दूसरा संस्मरण नहीं सुनाना चाहूंगा।
0: जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस समर्था, आपको मेरी आवाज आ रही है?
7: जी सर आ रही है।
0: चलिए
6: स्वागत
0: है, बहुत बढ़िया है, और मैं चाहूंगा हमारे साथ आज एमपी से कुछ विशेष कवि जुड़े हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिथिलेश।

0: सुनाइए आप, हम सुन रहे हैं आपको।
1: दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की,

छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल।

देह है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की, भोली सी आशा।

0: धन्यवाद, ओम शांति।
1: ओम शांति,
2: ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यार से आप जी, शुक्रिया। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम लोग अपने जो है विशेष विजय जी और मिथिली जी और ये बघेरी जी को सुन रहे हैं, और वहीं पर समर्था जो है हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गई और एक सुंदर कविता सुनाई। सुमन तिवारी जी ने भी याद भेजा है, फिर से मधुबन की यादें ताजा हो गई करके। अमृत पाल सर ने भी याद भेजा है, वेरी नाइस करके। अमृत पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप पंजाब से हमें देखते हैं, सुनते हैं तो हमें खुशी होती है। आइए इस बीच मैं वापस विजय जी को कहूंगा कि एक सुंदर रचना सुनाए। जी
1: जी, एक मुक्तक के बाद एक रचना, पहले मुक्तक लिखें। नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो ना दे सुख चैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसी शिक्षा जो दे कलुषित रैन मुझे, नहीं चाहिए ऐसे अपने दुख दे जिनके बैन मुझे, लगे धरा अपने घर जैसी, लगे धरा अपने घर जैसी, मात्र मिले दो नैन मुझे, मात्र मिले दो नैन मुझे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, आदरणीय खाड़े सर जहां पर है वहां तो ठंड है, 21-22 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ जबलपुर में 40 के ऊपर 45 करीब 44 डिग्री सेल्सियस है, गर्मी बहुत ज्यादा है। तो मैं इस गर्मी पर ही अपनी एक रचना सुनाना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है उफ ये कैसे गर्मी के दिन।

छोटी होती भोर सुहानी, वे दिन कल खुद कहे कहानी। छोटी होती भोर सुहानी, स्वे दिन कल खुद कहे कहानी। शाम ढले गांव में पहले, शाम ढले गांव में पहले, धूलिकणों की अलग जुबानी। नींद उड़ाती गरम हवाएं, नींद उड़ाती गरम हवाएं, कटती रातें।

0: गर्मी के दिन उफ ये कैसे गर्मी के दिन, शीतल छाया सबको भाती, दिन में निष्ठुर धूप सताती, जीव जगत व्याकुल हो जाता, जीव जगत व्याकुल हो जाता, दया नहीं क्यों प्रभु को आती। श्रमिकों का श्रम, श्रमिकों का श्रम बाहर करना हो जाता है बड़ा कठिन, उफ ये कैसे गर्मी के दिन, उफ ये कैसे गर्मी के दिन। और अगला अंतरा और आखिरी अंतरा,
1: जी
0: उगले सूरज ज्वाला सी जब, उगले सूरज ज्वाला सी जब, सूख

0: हो जाता है और दूर तब वन उपवन घर रहे उजड़ते, वन उपवन घर रहे उजड़ते, जाएंगी सब खुशियां छिन, उफ ये कैसे गर्मी के दिन, उफ ये कैसे गर्मी के दिन। धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर प्रासंगिक कविता आपने सुनाया आशा करूंगा हमारे
0: बहुत
1: को भी अच्छा लग रहा है। सुमन जी ने लिखा है शानदार प्रस्तुति करके, और सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। सुमन तिवारी जी मैसेज कर रहे हैं। आइए इसके साथ में मैं वापस आपको मिथिलेश जी से जोड़ना चाहूंगा एक सुंदर रचना। जी मिथिलेश जी स्वागत है आपका फिर से एक
0: जी,
1: बार।
0: पुनः आपको नमस्कार। एक
1: स्वागत।
0: प्रसंग है जी, एक प्रसंग है कि रुक्मणी जी ने जब कृष्ण भगवान को अपने स्वयं के विवाह का निमंत्रण भेजा था, उस संबंध में मैंने एक मुक्तक लिखा है, सादर समर्पित करती हूं, कि तुम ही मेरी वरमाला के सबसे सच्चे अधिकारी हो। रुक्मणी जी ने जो कृष्ण भगवान के लिए पत्र लिखा था उसकी मैं बात कर रही हूं। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरी वरमाला के सबसे सच्चे अधिकारी हो,
1: क्या
0: बिना
1: बात।
0: मिले ही मैंने तुमको अपना सब कुछ मान लिया है। सहस मुखों से राजसभा में कीर्ति तुम्हारी सुनती आई, सहस मुखों से राजसभा में कीर्ति तुम्हारी सुनती आई, ब्याह करूंगी केवल तुमसे, मन ही मन ये ठान लिया है। पाकर आमंत्रण की पाती आ ही जाना तुम मनमोहन, पाकर आमंत्रण की पाती आ ही जाना तुम मनमोहन, गोवर्धन धारण कर तुमने दंभ इंद्र का चूर किया था, तुम अपने भक्तों की विनती पल भर में सुनते हो कान्हा, तुम अपने भक्तों की विनती पल भर में सुनते हो कान्हा, दुखियों के मन की पीड़ा का तुमने ही संज्ञान लिया है, तुमने ही संज्ञान लिया है। चलिए अब
1: जी
0: एक गीत से जोड़ती हूँ आपको, एक
1: जी
0: ऐसा गीत जो हमारे जीवन की संध्या काल जो होता है, जीवन का संध्या काल, उसमें हर मनुष्य के दिमाग में जो ख्याल आते हैं कि एक 60-70 साल का व्यक्ति जब अपने जीवन के कैलकुलेशन करता है अंत में कि क्या खोया क्या पाया, और मैं अपनी कहानी किससे कहूं, जीवन भर मैंने
1: बिल्कुल
0: सिर्फ देना सीखा है लेकिन मैंने क्या पाया।
1: सही
0: तो
1: बात।
0: सादर समर्पित करती हूं कि
1: जी स्वागत है आपका।
0: सूखा, जी सूखा विटप, इसको प्रतीकों के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा, कि सूखा विटप विवश हो कहता, सूखा विटप विवश हो कहता जग से अपनी करुण कहानी, सूखा विटप विवश हो कहता जग से अपनी करुण कहानी, जिसको सुनकर भर आता है, जिसको सुनकर भर आता है आंखों में रह रह कर पानी। बंद देखे कि झंझावातों ने जीवन के मुझसे सब कुछ छीन लिया है, झंझावातों ने जीवन के मुझसे सब कुछ छीन लिया है, हरी भरी थी मेरी दुनिया पतझारों ने हीन किया है, हरी भरी थी मेरी दुनिया पतझारों ने हीन किया है, आज सूख कर ठूठ हुआ हूँ भूला मैं पहचान पुरानी, जिसको सुनकर भर आता है आंखों में रह रह कर पानी। बंद देखे कि
1: जी
0: एक भले मानुष ने आकर पुण्य धरा पर मुझे लगाया, एक भले मानुष ने आकर पुण्य धरा पर मुझे लगाया, मेघों ने जल किया समर्पित, दिव्य सूर्य ने तेज लुटाया, पाकर सबका प्रेम असीमित, बन पाया मैं औघड़ दानी, जिसको सुनकर भर आता है आंखों में रह रह कर पानी। मैंने अपने फल फूलों से सबका कर्ज चुकाना सीखा, मैंने अपने फल फूलों से सबका कर्ज चुकाना सीखा, तेज हवा के झोंकों में भी मैंने तो लहराना सीखा,
1: क्या बात।
0: थाम रखा मिट्टी ने मुझको हारी आंधी की मनमानी, जिसको सुनकर भर आता है आंखों में रह रह कर पानी। देखिए सूख चुका हूं फिर भी मन में, सूख
1: जी
0: चुका हूं फिर भी मन में बस देने की आस बची है, सूख चुका हूं फिर भी मन में बस देने की आस बची है, जलकर भी मैं फर्ज निभाऊं तन में जितनी श्वास बची है, जलकर भी मैं फर्ज निभाऊं तन में जितनी श्वास बची है, परहित में सर्वस्व समर्पण, परहित में सर्वस्व समर्पण, मैंने तो मन में है ठानी, जिसको सुनकर भर आता है आंखों में रह रह कर पानी, सूखा विटप विवश हो गया जग से अपनी करुण कहानी, जग से अपनी करुण कहानी।
2: वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मिथिले जी, बहुत ही प्यारी सी कविता आपने सुनाई और आशा करूंगा हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और बड़ा सुमन जी ने भावपूर्ण जो है बहुत ही सुंदर जो है आपने काफी कविता भावपूर्ण अभिव्यक्ति रही करके मैसेज किया है। सुमन जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि विजय बघेली जी तो नहीं दिख रहे हैं, शायद नेटवर्क इश्यू हो गया था, कोई बात नहीं हम इंतजार करेंगे। और जैसे कि अब मैं एक छोटे छोटे बंद आपसे दोनों से चाहूंगा कि चार चार लाइनें आप जरूर सुनाइएगा। और कई बार कुछ रचनाएं जो है हमारी प्रस्तुतिकरण हम लोग जब करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी सुनकर अच्छा लगता है। हीरा लाल जी ने भी याद भेजा है, वाह वाह तेज हवा के जो कौशिक करके मैसेज किया, धन्यवाद। और विजय जी मैं चाहूंगा कि चार लाइनें आप जो है जो हम सभी को खुशी प्रदान करे ऐसी कुछ सुनाए।
2: जी सर जी, मेरी एक छोटी सी रचना बिना लाइक में सुनाना चाहूंगा, बिल्कुल दिशा बोधी बस मुक्तक टाइप के हैं, तीन चार मुक्तक होंगे वो, लेकिन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, सभी को अच्छे लगेंगे। सीधा मैं बिना भूमिका के शुरू करता हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: कभी आपके मन में आया, कड़ी धूप में बहा पसीना कोई लू से झुलस रहा था, कड़ी धूप में बहा पसीना कोई लू से झुलस रहा था, उसे बुलाकर पानी देना कभी आपके मन में आया। उसे बुलाकर पानी देना कभी आपके मन में आया। और दूसरा अंतरा देखिए कि बीच सड़क पर दुर्घटनावश कोई घायल तड़प रहा था, बीच सड़क पर दुर्घटनावश कोई घायल तड़प रहा था, अस्पताल तक ले जाने का, अस्पताल तक ले जाने का कभी आपके मन में आया।
1: क्या बात है।
2: विवश वृद्ध जब खड़ा अकेला सोच रहा था मदद मिलेगी, विवश वृद्ध जब खड़ा अकेला सोच रहा था मदद मिलेगी, उसे सड़क के पार कराना कभी आपके मन में आया। किसी गांव में मजदूरों के बच्चों को जब देखा तुमने, नए खिलौने उनको देना कभी आपके मन में आया। और है बहुत सारे अंतरे, लेकिन अंतिम देखिए, अगर ना आया मन में तब भी एक बार तुम लाकर देखो, अगर ना आया मन में तब भी एक बार तुम लाकर देखो, परहित करके तुम्हें लगेगा सच में जैसे ईश्वर पाया।
1: बहुत चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं समर्था भी कविता सुनाती हैं, तो एक कविता सुनाइए समर्था।
2: स्वागत है बेटे।
1: हाँ जी,
3: ये कविता मैंने मातृ दिवस पे लिखी है।
1: हाँ क्या बात है, सुनाइए।
3: ममता भरी दो आंखें जिसकी, प्यार भरी उसकी डांट, जब जब मैं लड़खड़ाती हूँ थाम लेती वो मेरा हाथ, नाचे खेले मेरे संग पढ़ने में भी देती साथ, जागू सो हंसू या रो हर पल रहती मेरे पास, जग में सबसे प्यारी जो है वो तो बस है मेरी माँ, वो तो बस है मेरी माँ। थैंक यू।
1: चलिए बहुत सुंदर रचना सुनाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए मिथिलेश जी, थोड़ा सा कैमरा आपका नजदीक कर लीजिए, ऊपर का स्पेस कम कर सकते हैं, ऊपर अच्छा। खाली स्पेस। ठीक है बस
0: नहीं।
1: और मैं चाहूंगा कि चार लाइनें आप भी सुनाइए अपनी
0: जी।
1: और
0: जी,
1: दीपक कुमार जी ने याद भेजा है अंदाज, ये बयां बहुत खूब रहा करके मैसेज किया। धन्यवाद दीपक
0: जी, धन्यवाद जी। चार लाइनों का एक मुक्तक है कि नजर से दूर हो तो क्या, नजर से दूर हो तो क्या, हृदय के पास में तुम हो, हमारी प्रीति में तुम हो, गहन विश्वास में तुम हो, तुम्हारी प्रीत की सरगम से ही संगीत है जीवन, तुम्हारी प्रीत के सरगम से ही संगीत है जीवन, नहीं बाहों के घेरे में मगर एहसास में तुम हो, मगर एहसास में तुम हो। एक थोड़ी चुलबुली सी रचना है, मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ
1: जी, सुनाइए। स्वागत है।
0: मौसम

धड़कन, सुधियों के झूले में चाहत की रीत, मन को भरमाती है चलिए की प्रीत, गुड़ होता चीटी को जैसे पसंद, गुड़ होता चीटी को जैसे पसंद, बात लगे प्रियतम कि जैसे गुलकंद, कान

0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा,
1: बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत
2: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विजय किसले सर को और विप्लेश जी को सुना, और साथ में विजय बगेरी जी भी एक रचना सुना के चले गए, तो निश्चित तौर पर जब हम लोग कविताओं को सुनते हैं, रचनाओं को सुनते हैं, तो एक अभिव्यक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग एक मैसेज भी प्राप्त करते हैं। तो विजय जी की जो कविताएं थी उसमें कहीं ना कहीं कुदरत का एक मैसेज है, गर्मी में जो है पेड़ लगाएंगे तो ठंडी छाव आपको मिलेगी, ये मैसेज था उनकी कविताओं में। और कहीं ना कहीं आखिरी चार चार पन्न जब उन्होंने सुनाया तो उसमें भी बड़े प्यारे छोटे छोटे मैसेज थे कि हमें अपने कर्तव्य को, एक इंसान इंसानियत से भरपूर हो जाए इस कर्तव्य को बताने की कोशिश की थी। मिथिलेश जी ने भी बड़ी सुंदर रचनाएं हमारे साथ शेयर की, और निश्चित तौर पर उनकी रचनाओं में जहाँ पर कृष्ण राधा और सब जो है देवी देवताओं का प्रसंग हमारे जीवन में आई, यशोदा मैया की बात आई, और साथ ही साथ आखिरी रचना में भी उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी जो है मिठास हम सबको दी। तो कहने का भाव यही है कि जीवन में खुशी हो, प्यार हो, मिठास हो, तो कई बार हम लोग उन चीजों को पाने के लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं, लेकिन कितना आसान है अगर आप चार लाइनें किसी कवि की सुन ले और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। मैं चाहूंगा कि कभी कभी आप जो है बहुत मेहनत मत कीजिए, विजय जी, मिथिलेश जी या विजय बगेरी जी जैसे लोगों को चार लाइनें उनकी जरूर याद कर लीजिए, शायद आपके चेहरे पे वो मुस्कान आ जाएगी और जिस चीज को आप करना चाहते हैं उसकी विज्ञापन भी आपको मिल जाएगी। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर, तब तक आप बने रहिए, एंड समर्था को थैंक यू सुंदर कविता और गीत सुनाने के लिए, और फिर मिलेंगे कल इस वादे के साथ, अपना और अपना रखिए।
0: मैं रेडियो मधुबन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आपने हम लोग को अवसर दिया।
1: जी जी जी, अवसर चलता रहेगा, आप सुनाते जाइए। तो मित्रों आज के
2: लिए बहुत बहुत शुभाशीष।
1: जी जी, सलाम नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति।

0: है दोस्तों। भाई आज मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। वो हुआ यूं कि अभी रास्ते में मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चे दिखे स्कूल जाते हुए। मुस्कुराते चेहरे, रंग बिरंगे बस्ते, एकदम साफ सुथरी जगमगाती वर्दियां। उन्हें देखकर मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। चलो अब चलते हैं मीना से मिलने। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही मीना, स्कूल की छुट्टी के बाद कृष्णा, रोशनी और गोलियों के साथ घर वापस लौट रही है।
1: मीना, याद है ना, आज हम सब घूमने जाएंगे पुराने किले में।
2: हाँ कृष्णा, ये भी कोई भूलने की बात है, वहाँ चल के हम खूब खेलेंगे और खाना भी खाएंगे।
3: खाना भी खाएंगे, गाना भी गाएंगे।
2: कृष्णा, रोशनी, गोलू, हम सब ठीक आधे घंटे बाद बड़े मैदान के पास मिलेंगे और वहाँ से चलेंगे
4: घूमने।
5: आधे घंटे बाद क्यों मीना, अभी चलते हैं ना।
2: गोलू, घर जाके मुंह हाथ धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, खाना लेंगे।
5: कपड़े क्यों बदलेंगे, स्कूल की वर्दी पहनी तो हुई है।
6: गोलू, अगर हम घर जाके अपनी वर्दी उतार के घर के कपड़े नहीं पहनेंगे तो फिर माँ हमारी वर्दी कैसे धोएंगे। बहन जी कहती है कि हमें स्कूल में हमेशा साफ सुथरी और इस्त्री की हुई वर्दी ही पहननी चाहिए। भूल गए
5: हैं? मैं तो 3-4 दिन तक पहनता हूँ अपनी वर्दी। देखो क्या मेरी वर्दी गंदी है।
3: गंदी है, बहुत गंदी है।
2: भूल गए गोलू, कल स्कूल में शिक्षा अधिकारी जी ने भी आना है। बहन जी ने कहा था कि हर बच्चे की वर्दी साफ होनी चाहिए और
5: पता है। और तुम मेरी वर्दी की चिंता मत करो, मेरी वर्दी साफ है, कुछ दिन पहले ही तो धुलवाई थी।
6: अच्छा भाई अब चलो, सर्दियों में वैसे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है, समय से घूमने जाएंगे तो जल्दी लौटेंगे भी।
0: और थोड़ी देर बाद मीना और उसके दोस्त पुराने किले की तरफ चले। गोलू अभी भी स्कूल की वर्दी पहने हुए था जबकि मीना, रोशनी और कृष्णा कपड़े बदल के आए थे। किले में पहुंच के उन्होंने खूब मजे किए और फिर पकड़न पकड़ाई खेलते हुए।
7: गोलू और तेज,
8: तेज भागो गोलू, वरना मीना तुम्हें आउट कर देगी।
9: अरे गोलू तो गिर गया।
2: गोलू तुम ठीक तो हो ना?
5: हाँ मीना मैं ठीक हूँ।
8: अरे गोलू तुम्हारी वर्दी तो,
5: ओहो मेरी वर्दी पर तो कीचड़ लग गया, अब मैं कल स्कूल में क्या पहन के जाऊंगा।
6: तुम घर जाके ये वर्दी धुलवा लेना।
5: रोशनी, अंधेरा होने वाला है, अगर माँ ने अब मेरी वर्दी धोए भी तो ये कल तक सूखेगी नहीं।
2: तुम उदास मत हो गोलू, कुछ सोचते हैं। कृष्णा, क्या तुम्हारे पास स्कूल की एक और कमीज?
1: मेरे पास तो एक ही वर्दी है मीना, जो मैं रोज स्कूल से लौटने के बाद धुलवा लेता हूँ।
5: अब मैं क्या करूँ मीना,
2: चलो जल्दी से घर वापस चलते हैं।
0: मीना और उसके दोस्त जल्दी से वापस लौटे और जब गोलू अपने घर पहुंचा तो,
10: तुम्हें रोज कहती हूँ गोलू बेटा कि स्कूल में साफ वर्दी पहन के जाया करो, लेकिन नहीं, तुम तो स्कूल से लौटने के बाद अपनी वर्दी उतारते ही नहीं। अपने दोस्तों से कुछ सीखो, वो सभी रोज साफ वर्दी पहन के स्कूल जाते हैं। अब तुम ही बताओ, अगर मैं ये गंदी वर्दी अभी धोऊं भी तो ये सुबह तक सूखेगी कैसे।
5: अब मैं क्या करूं माँ, कल स्कूल में शिक्षा अधिकारी जी ने भी आना है।
10: सबसे पहले तो हाथ मुंह धो के कुछ खा लो, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या करना है।
0: गोलू ने हाथ मुंह धो के कपड़े बदले, खाना खाया और अगले दिन के बारे में सोचते सोचते उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब गोलू उठा तो,
5: माँ, अरे माँ कहाँ गई? पिताजी, माँ कहाँ है?
11: बेटा हो सकता है तेरी माँ गीता के घर गई हो, सुबह कह रही थी कि उसे कुछ मसाले देने हैं तो।
5: पिताजी यहाँ मेरी स्कूल की वर्दी पड़ी थी, क्या आपने देखी थी?
11: नहीं तो, क्यों क्या हुआ?
5: जी वो मैं अभी आता हूँ।
11: अरे कहाँ चला?
5: गीता दीदी के घर।
0: गोलू भागा भागा गीता दीदी के घर पहुँचा, लेकिन उसकी माँ वहाँ से जा चुकी थी। गोलू मुँह लटकाए वापस अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि उसे मीना मिली।
2: गोलू उदास क्यों लग रहे हो?
5: मीना मेरी वर्दी पता नहीं कहाँ गई, माँ भी घर पे नहीं है। काश मैंने तुम सब की बात मानी होती, अगर मैंने दोपहर को ही घर के कपड़े पहन लिए होते तो मेरी स्कूल की वर्दी धुल गई होती।
2: तुम चिंता मत करो गोलू, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मीना तुम कहाँ से आ रही हो,
5: और तुम्हारे हाथ में ये लकड़ियाँ एक दोस्त की मदद करनी है, इसलिए दोस्त की मदद करनी है लकड़ियों से। मैं कुछ समझा नहीं।
2: सब समझ जाओगी गोलू, अभी मैं चलती हूँ।
0: मीना तो मुस्कुराती हुई वहाँ से चल दी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, भला लकड़ियों से वो किस दोस्त की मदद करने वाली है? आओ जरा देखे तो।
2: माँ ये लो लकड़ियाँ।
4: शाबाश मीना, ये लो गोलू की माँ लकड़ियाँ भी आ गईं। अब हम जल्दी से इन्हें जला के गोलू की धुली हुई वर्दी सुखा देंगे।
3: वर्दी सुखा देंगे, साफ सुथरा बना देंगे।
10: मीना बेटी, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारे आग जला के वर्दी सुखाने के सुझाव से अब मेरे गोलू की वर्दी जल्द ही सूख जाएगी।
3: जल्दी ही सूख जाएगी, इस्त्री होके जगमगाएगी।
0: और अगली सुबह जब गोलू सो के उठा,
5: अरे माँ मेरी वर्दी तो जगमग चमक रही है।
10: हाँ गोलू बेटा,
5: लेकिन ये सब
10: मीना की समझदारी से। कल उसी ने मुझे लकड़ियाँ जला के तेरी वर्दी सुखाने का सुझाव दिया था।
5: अब समझा, कल मीना मेरी मदद करने के लिए ही वो लकड़ियाँ लाई थी।
3: लकड़ियाँ लाई थी, वर्दी सुखाई थी।
5: मीना तुम?
2: हाँ गोलू, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ।
3: तैयार हो जाओ, स्कूल जाओ।
0: और उस दिन गोलू की जगमगाती वर्दी देखकर बहन जी और शिक्षा अधिकारी बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से गोलू ने रोज स्कूल से लौटने के बाद वर्दी उतार के घर के कपड़े पहनने शुरू कर दिए, और अब वो रोज धुली हुई और बढ़िया सी स्त्री की हुई वर्दी पहन के ही स्कूल जाता है। देखा, बातों बातों में फिर सिखा गई ना नई बात अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता।
2: चाहे धूप हो या हो बारिश, गर्मी हो या सर्दी,
3: जगमग करते स्कूल में जाना, साफ पहन के वर्दी।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात कही है मीना और मिट्ठू ने। आप सब भी साफ सुथरी वर्दी पहन के ही जाते हो ना स्कूल। शाबाश, चलो इसी बात पे हो जाए एक साफ सुथरा, मेरा मतलब है एक मजेदार गाना।

0: जो साफ वही सिकंदर।
1: भाई वाह, मजा आ गया। और अब वक्त है खेलने का।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली
3: तोड़।
2: हाँ, मैं तुम सबको तीन कड़ियां बताकर एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
3: जी बहन जी।
2: ठीक है, तो सुनो पहली कड़ी। कभी मैं चलती धीरे धीरे, कभी मैं चलती तेज, छूती सबको नजर न आती, हूँ हैरत अंगेज।
4: हैरत अंगेज का मतलब क्या होता है बहन जी?
2: मिली, हैरत अंगेज का मतलब होता है हैरान कर देने वाली कोई चीज। बच्चों फिर से बोलती हूँ पहली कड़ी। कभी मैं चलती धीरे धीरे, कभी मैं चलती तेज, छूती सबको नजर न आती, हूँ हैरत अंगेज।
5: मैं समझ गया, सही जवाब है भोलू भैया की बकरी भूरी।
2: वो कैसे दीपू?
5: बहन जी वो इसलिए क्योंकि भूरी कभी धीरे धीरे चलती है और कभी बहुत तेज।
2: अच्छा, और भूरी हमें नजर भी नहीं आती। भूल गए, छूती सबको नजर ना आती।
5: ओ हाँ बहन जी, ये तो मैं भूल ही गया था।
6: बहन जी दूसरी कड़ी बताइए ना।
2: ठीक है सोमा। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। मेरा कोई रूप नहीं है ना ही कोई रंग, अगर मैं चलना बंद करूं तो रुक जाए जीवन।
7: क्या हो सकता है?
8: समझ नहीं आ रहा।
9: तीसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है कृष्णा। लो बच्चों सुनो तीसरी कड़ी। अपनी इस पूरी धरती पर हर एक जगह मैं रहती, नदी नहीं हूँ फिर भी सब कहते के मैं हूँ बहती।
4: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है हवा।
2: बिल्कुल सही जवाब मीना। तो मजा आया ना बच्चों?
3: बहुत मजा आया बहन जी।
1: भाई मजा तो हमें भी खूब आया। तो जल्दी मुलाकात होती है एक नई कहानी, नए गाने और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
4: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधर क्या पहुँचा दोगे है? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो।

0: जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे हैं? कोई ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? कोई जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना क्या? और समझे? हाँ, मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
1: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 20वां पाठ किसके जंगल, पृष्ठ संख्या 182। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक महिला के साथ कुछ बच्चे पोटली लेकर जंगल में जा रहे हैं। जंगल की बेटी, सोच सकते हो कि ये बच्चे पोटलियां लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे? जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा तुम ऐसे करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़ुक भाषा में गीत गाते हैं, गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मजा लेते हैं, तरह तरह के पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती हैं इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती हैं। बच्चों को जंगल में लगी ऐसी क्लास में खूब मजा आता है। जंगल को पढ़ना, किताबें पढ़ने जितना ही जरूरी है, कहती हैं सूर्यमणि। वह कहती हैं, हम आदिवासियों की जिंदगी जंगलों से ही जुड़ी है, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। पृष्ठ 183। चर्चा करो, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्यों होते हैं? कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हों तो क्या वह जंगल बन जाता है? पता करो और लिखो, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? सूर्यमणि कहती हैं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार आया, जंगल से एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वह कहती, इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी जरूरत है उतना ही हम जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। पृष्ठ 184। छोटी सी खेती के सहारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहने लगे, पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी, मनिया चाचा ने समझाया। भूखों क्यों, यह जंगल है ना, सूर्यमणि का जवाब तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं जंगल उनके हैं, मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि मनिया चाचा की बात कुछ कुछ समझ पाई। सोचो और लिखो। तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है? ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों? क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? चर्चा करो। तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। सूर्यमणि का सफर। बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा। स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी वजीफा लेकर बीए पास किया। पृष्ठ 185। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान वासवी दीदी से हुई जो पत्रकार थीं। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का काम करने लगी। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिताजी को यह बात पसंद ना थी पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। इसमें उसका साथ दिया उसके बचपन के साथी विजय ने। सूर्यमणि का एक सपना था कि वह अपने कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर जो गर्व उसे महसूस होता है वह सभी गांव वालों को भी हो। सूर्यमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो दिन रात उसके साथ रहता। सूर्यमणि अपने सपने और मन की हर बात उसे बताती। मिर्ची सुनता और कहता, ची ची। सोचो और लिखो। क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? कई लोग जंगल से इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की जिंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना सही क्यों नहीं है? आदिवासी कैसे रहते हैं इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चित्र बनाओ। क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? सूर्यमणि का तोरांग। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब है जंगल। पृष्ठ 186। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला भी बच्चे सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़िक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल, ये भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो, किसी को डर हो कि उसकी जमीन हड़प ली जाएगी, कोई रोजगार छिन जाने से परेशान हो, जिस किसी को भी मदद की जरूरत होती वह सूर्यमणि की मदद लेता। सूर्यमणि सबके हक के लिए लड़ती है। सूर्यमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है। दोनों साथ में काम करते हैं। आज उनके काम को कई लोग सराहते हैं। उन्हें विदेश भी बुलाते हैं उनके अनुभवों से सीखने के लिए। जंगल के नए कानून बनाने के लिए भी आज वहां लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे।

बहुत कुछ करती हैं। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज को बचाए रखना चाहोगे? पढ़ो और बताओ। ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सिकिया ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। उसका एक हिस्सा सुनो। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते यह सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे और रोजी रोटी का क्या होगा। इन जंगलों में रहने वाले लाखों जानवर कहाँ जाएंगे? अगर जंगल ना रहे, खानों में से एल्यूमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें, तो बचेगा क्या? सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली बंजर जमीन। यह था सिकिया का पत्र मुख्यमंत्री के नाम। अब बताओ, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है? क्या कोई फैक्ट्री है? उसमें किस तरह का काम होता है? फैक्ट्री की वजह से जमीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहां के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? पृष्ठ 188। इस पृष्ठ पर भारत का नक्शा दिया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत में कहां कहां जंगल हैं और कहां नहीं। पृष्ठ 189। पता करो और लिखो कि नक्शा किस बारे में है। तुमने सिकिया की चिट्ठी सुनी। नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है। क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र है? नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ है कैसे पहचानोगे? ये कैसे पहचाना कहाँ ज्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं? नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा घने जंगल हैं? अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम लिखो। मिजोरम में खेती की लॉटरी। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी में पढ़ा। अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहां लोग कैसे रहते हैं, कैसे खेती करते हैं, इसके बारे में पढ़ो। टन टन टन टन, स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लॉमटे आ, डिंगा, डिंकी माँ, इन्होंने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने पानी पिया वहीं पर रखे बांस के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके साइमा सर भी गांव पहुंचने की जल्दी में हैं। आज शाम गांव की खास सभा बैठने वाली है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली गई। वाह, साइमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वे बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झीरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ अकेले खेती का काम करना मेरे लिए मुश्किल है। सायरा सर ने तीन टीन जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, तीन टीन जमीन? चामुई ने समझाया, एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं उसे ही एक टीन जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए बाकी जमीन मिल गई। पता करो, नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो। तुमने जमीन को टीन से नापने का

तरीका पढ़ा। जमीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है, जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा और क्यों? जंगलों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? झूम खेती। झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी जमीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। पृष्ठ 191। बस उस परिवार को उन्हें खिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो हैं ही नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लादकर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। चराव नाच के बारे में पता करो, कक्षा में नाच करो। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे मस्ती से पत्तों से सीटी बजा रहे हैं। ऐसी कई सीटियां तुमने भी तो बनाई हैं। हम क्या समझे, भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फर्क है? सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। अपने शब्दों में समझाओ क्यों। झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी? किसके जंगल। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 20वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ चैलेंज, जीवन एक सुंदर एक चुनौती है, एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, है ना। मैं एक बार एक बहुत सुंदर आर्टिकल पढ़ रहा था जिसे मैं काफी मोटिवेट हुआ। उसमें था कि एक रिपोर्टर बच्चों के पेंटिंग कॉम्पिटिशन में गए, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो रिपोर्टर ने देखा कि एक व्यक्ति एक 10 वर्ष के बच्चे को स्टेज पर लेकर जा रहे हैं टू रिसीव द सेकंड प्राइज। तो रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उस बच्चे के पास जाकर पूछे, एनी प्रॉब्लम विद योर लेग्स, आपके पैरों में कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर 10 वर्ष का बच्चे ने कहा, मैडम वन ऑफ माय लेग इज एम्प्यूटेड, मेरे एक पैर को काटा गया। तो उन्होंने कहा, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ऐसे कैसे हुआ? बोला, जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने उस 10 वर्ष के बच्चे से एक बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी उम्र के बच्चे इतना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष बच्चा का ब्यूटीफुल जवाब था, मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय? क्या हम उनसे कुछ सीख सकते क्या? है ना, परिस्थिति आई लेकिन उस परिस्थिति को चैलेंज समझकर एक्सेप्ट किया, फेस किया और आगे बढ़े। आज हम देखते हैं समाज में इतने सारे सुसाइड रेट्स क्यों हो रहे हैं। उसका एक कारण हो सकता है कि वो परिस्थिति को चैलेंज के रूप में वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और विशेष तौर पर मैं उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो प्लीज आप जो भी रिजल्ट्स आए उसको आप एक्सेप्ट करो, और अगर आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो यू फेस इट एंड देन ट्राई अगेन टू स्कोर मच गुड मार्क्स। हम देखते हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट्स डिक्लेयर होने होता ना तो उसके एक दिन पहले बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और हर एक न्यूज़पेपर का हॉरोस्कोप पढ़ेंगे, राशिफल। ऐसे स्टूडेंट के लिए हम कहते हैं, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो बीच बीच में अपने लाइफ को रिफ्लेक्ट करो और इंट्रोस्पेक्ट करो और अपनी जो जीवन की जो खुशी, the happy moments, share it with everyone and that is what life is all about.
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है बच्चों की दुनिया। और बच्चों की दुनिया होती है बहुत ही स्पेशल क्योंकि उनके माइंड में लर्न करने की बहुत ज्यादा शक्ति भी होती है, वो सीखते भी रहते हैं और बहुत कुछ इमेजिन भी करते हैं। तो उसी इमेजिनेशन के अंदर जाएंगे और आज बच्चों की दुनिया में एक अलग स्टोरी बनाएंगे हम सब मिलके। तो स्टोरी में एडवेंचर होने वाला है, डर होने वाला है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले ये तो पता कर लें कि है कौन कौन आज स्टूडियो में हमारे साथ। तो एक बार आपके नाम और क्लास तो बता दीजिए सब लोग।
3: मेरा नाम है हर्षिता, मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ।
4: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
5: मेरा नाम है शिवन्या, मैं 2nd क्लास में हूँ।
6: मेरा नाम है आराध्या, मैं 2nd क्लास में।
7: मेरा नाम सक्षम है, मैं 6th क्लास में हूँ।
8: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
2: ओके, तो एक काम करते हैं, ये एक गेम है, इसमें हमें अपनी स्टोरी बनानी है और वो स्टोरी कैसी भी हो सकती है, आपको जो मन में आए, मतलब वो आसमान पे, जमीन पे, एनिमल्स पे, लोगों पे, कुछ भी आ सकता है उस स्टोरी में। स्टोरी तो सबने सुनी है ना, स्टोरी तो अच्छी लगती है। तो यहाँ आपको अपनी स्टोरी बनानी है, लेकिन नई स्टोरी नहीं बनानी है, जो फर्स्ट पहले जैसे राघव बोलेगा वो जो स्टोरी जहाँ छोड़ेगा वहां से आपको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ओके, सब लोग समझ गए? तो चलो राघव,
5: इसके बाद से।
2: हाँ, उसके बाद से आपको बोलना है। राघव स्टार्ट करो।
8: एक 10 साल का बच्चा था, उसके मतलब उसके पास एक मीटेरॉइड गिरा।
2: उसका नाम क्या था?
8: उसका नाम राहुल।
7: वो मीटेरॉइड से बचने के लिए भागा।
2: ओके,
5: और वो भागते रहे,
2: भागते रहा। फिर क्या हुआ?
5: फिर क्या हुआ, उसको एक वो लायन दिख लिया और वो बोला, वो जो लायन था रॉड से बोला,
2: लायन जल्दी से घुर्राया। फिर क्या हुआ?
8: फिर राहुल भागा और लायन से उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, उस मीटर रॉड के पास चले जाओ। फिर लायन तो उसके पीछे ही पड़ गया। फिर वो भागते भागते बच गया लायन से, पर वो एक अंधेरी जगह पे पहुंच गया।
9: उस अंधेरी जगह पे बहुत सारे लॉयन थे और वो एक लॉयन के ऊपर सैडल लगा के उसके ऊपर राइड करने लगा।
2: वाह, लॉयन पे राइड करने लगा।
9: वो लॉयन उसको काट गया।
5: उसके बाद उसको एक गुफा मिली। फिर उस राहुल के पास पावर आ गया तो उसको एक जाल था वहीं पे उसको ऐसे बंद कर
2: लाइन को बंद कर दिया जाल में।
8: उसके बाद राहुल बड़ी शांति से उसके बाद राहुल बड़ी शांति से अपने कमरे पे गया। उसने कमरा खोला और जाके लेट के सो गया।
2: लाइन के काटने के बाद सो गया जाके। बड़ा ब्रेव राहुल है। और ये क्या किया उसने, तो अपना इलाज भी नहीं कराया। अच्छा बताओ आगे क्या हुआ। काटा था। चलो आगे क्या हुआ। सो गया राहुल, फिर क्या हुआ
8: दीदी? जब वो सो गया थोड़ी देर के बाद, इतने में बहुत सारा खून बह गया था तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। और फिर वो वापस, क्योंकि उधर उसके घर पे तो कोई नहीं था, फिर वो भागे भागे भागे भागे बाहर गया। और बाहर जाने के बाद उसको ऐसे लगा कि मेरे सामने ऐसे सारे भूत खड़े हैं।
2: फिर क्या हुआ
9: दीदी? जब उसको लगने लगा कि भूत उसके सामने खड़े हैं तो उसने अपनी कटाना उठाई और उसने भूत को काट के रख दिया।
2: भूत काट दिया। ओके,
7: फिर वो वापस घर पे गया और सोने लगा तो उसने देखा कि उसके बेड पे चींटियां हैं बहुत सारी।
2: ओके, भूत गए तो चींटियां आ गई। फिर क्या हुआ?
5: फिर वो सुबह तक सोते रहा।
2: सुबह तक सोता रहा।
5: और वो खुद भूल गया कि वो रोबोट है।
2: अच्छा, तो असल में राहुल एक रोबोट था। बताओ
8: दीदी, फिर राहुल जब उठा ना सोके तो उसे पता चला ये पूरा सपना था। तो फिर वो अपने जो भी वो उसका मीटराइट तो सच में गिरा हुआ था, तो उसकी जो लैब थी जिधर वो साइंटिस्ट के साथ काम करता था वो लैब टूट गई थी, तो इसलिए वो फिर कहीं और ढूंढ रहा था कि कोई साइंटिस्ट मिल जाए अमेरिका में, इजिप्ट में।
2: तो मतलब सपना था ये सब कुछ। तो लैब भी टूट गई और सपना भी खुल गया। तो सपने में राहुल रोबोट भी बन गया था और उसने भूतों से लड़ाई भी कर ली थी। पावर भी आ गई थी स्पेशल राहुल में। क्या बात है।
8: और फिर इजिप्ट और अमेरिका भी ढूंढ रहा था साइंटिस्ट।
2: तो राहुल को तो बड़ी सारी कंट्रीज ढूंढ रही थी। क्या कहानी बनाई आप लोगों ने। वाह वाह, एक और बनाएंगे कहानी।
5: हाँ, भूत वाली।
2: कौन शुरू करेगा इस बार?
5: दीदी भूत वाली। लेकिन
2: इसमें एक से ज्यादा जो मर्जी बना सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं।
9: मैंने तो बस ये बोला था कि मीटियोराइट।
2: अच्छा मेरी बात सुन लो, आप लोगों को स्टोरी बढ़ानी है आगे, ठीक है? लेकिन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, दो तीन चीजें होनी चाहिए उसमें, ठीक है? तो अभी स्टोरी आप स्टार्ट करो।
5: दीदी आप भूत वाला बोले।
2: कुछ भी आप बना सकते हो स्टोरी, जो आपको मन में आए, बस जोड़ना चाहिए, पीछे वाली स्टोरी से जुड़ना जरूरी है। माइक नहीं भी लाओगे तो चलेगा।
7: करनाल में एक गांव था जो बहुत पुराना था।
2: उस गांव में क्या था कुछ तो बताओ, इंट्रो दो।
5: उस गांव में तीन लड़के थे।
2: ओके।
5: वहाँ पे एक बुढ़िया रहती थी और वो जब रात में सोने गई अपने बच्चों के साथ, तब उसके साथ फिर उसको आवाज आया कि छन छन की। फिर बाहर जाके देखी कोई नहीं है। फिर बाहर आके देखी कि इधर उसको आवाज आया, इधर आ इधर आ। जब बाहर गई तो उस चुड़ैल ने अपना फेस ही बदल लिया, तो उसकी फ्रेंड बन गई। वो चुड़ैल बोली कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? हाँ। तो वो बुढ़िया बोल रही हाँ। तो फिर उसके घर में सो गई वो चुड़ैल। फिर
2: तो तीन लड़के थे वहाँ पे और एक
8: दीदी। वो तीन लड़के दोस्त थे। वो बुढ़िया है ना, उनके बगल में पड़ोस में रहती थी। हाँ। तो उनको लगा कि है ना किसी की चिल्लाने की आवाज आई, तो वो अपने कमरे से तीनों बाहर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक है ना, एक जो भूत था वो है ना उसकी दोस्त के रूप में था, तो उन्हें भी समझ नहीं आया। तो वो तीनों है ना वापस कमरे में चले गए, उनको बुढ़िया ही नहीं दिखी थी।
2: ओके।
8: दीदी फिर उसके बाद वो जब कमरे में गए सुबह उठ गए, उठने के बाद उनके साथ बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई, जैसे कि अब वो रोज ऐसे ही मतलब उनके पास जो गाय थी उनको मतलब छोड़ते थे लैंड में ऐसे चारा खिलाने के लिए। तो फिर उस टाइम में ना उनको ऐसे आवाजें आ रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, ऐसा वैसे।
2: फिर क्या हुआ?
8: फिर उसके बाद है ना
2: बोलो।
9: दीदी उसके बाद है ना किसी मतलब एक है ना काली जादू वाली बुढ़िया है ना, वो काला जादू कर रही थी तो वो उसने बुढ़िया को जिंदा कर दिया, वो जो मरी थी। और फिर उसने बोला तुम कौन हो, तो उसने बोला कि हाँ मेरे को मेरी दोस्त ने मार दिया था। पर फिर उसने बोला कि ना वो तुम्हारी दोस्त नहीं थी, वो चुड़ैल थी, वो तुम्हारा दोस्त का रूप लेके आई थी। तो उसने बोला उस चुड़ैल को तो मैं मार दूंगी।
2: ओके
7: और सबसे खास बात जो वो तीन लड़के थे वो भूत एक्सप्लोरर थे, वो रात को भूत को ढूंढने के लिए निकले थे उसी।
2: अच्छा भूत
5: उनमें से एक लड़के को तीर चलाना आता था,
2: तीर चलाना आता था।
5: और जो एक लड़का था उसका नाम था राहुल, वो भूत ही नहीं था,
2: वो भूत नहीं था, और बाकी दोनों भूत थे।
8: वो भूत थे और वो दूसरे भूतों को एक्सप्लोर करते थे।
2: ओके
8: दीदी वो दोनों भूत थे और उन्होंने एक साथ राहुल को मार दिया। फिर वो जो राहुल था उसकी आत्मा निकली और वो भी एक भूत बन गया और वो उनको छोड़ने नहीं वाला
9: दीदी। फिर है ना और राहुल ने उठ के देखा तो वो तो उसका सपना था। फिर वो अपने उन दोनों दोस्तों के पास गया, फिर उन दोनों दोस्तों को उसने बोला कि क्या तुम भूत हो, तो उसने बोला नहीं हम तो तुम्हारे दोस्त ही हैं। तो उसको पक्का पता चल गया था कि उसके वो दोस्त ही हैं ना कि भूत, वो बस उसको सपने में आया था और ना उनके पास वाली कोई बुढ़िया मरी थी,
2: कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ सपना था।
9: सब कुछ सपना था।
8: उसने उठ के सब कुछ देख लिया कि हाँ ये सपना था, कन्फर्म करा और बस वो अपने खुशी खुशी फिर काम पे चला गया।
2: ओके अच्छा तो इतनी भूत वाली स्टोरी सुनाई आप लोगों ने, ये आपको क्या लगता है सच में भूत होते हैं कि नहीं होते
5: हैं? नहीं होते
7: हैं।
2: एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ओके
5: लेकिन मेरे को तो डर लगता है भूत।
2: डर लगता है भूत से?
5: हनुमान चालीसा,
2: हनुमान चालीसा पढ़ते हो?
5: आता है हनुमान चालीसा लेकिन मैं पढ़ती नहीं।
2: क्यों नहीं पढ़ते? आती है तो पढ़नी चाहिए ना, है ना? थोड़ी थोड़ी आती है क्या, है ना? अभी आप छोटे हो ना इसलिए पूरी नहीं आती होगी आपको, है ना? कोई बात नहीं, सीख लेना।
9: मैं ये बोल रहा था कि वो पूरा उसका सपना था और उसने सपने में कुछ किया ही नहीं था। और जो ये भूत भूत होते हैं वो रियल में नहीं होते हैं, मतलब अगर आप सोचेंगे कि हाँ भूत रियल में होते तो अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी घूमती रहे, पर हमको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना चाहिए।
5: लेकिन भगवान रियल में होते हैं,
2: भगवान रियल में होते हैं
8: दीदी। बोलते ना अगर मतलब पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा।
2: लेकिन भूतों से डर लगता है क्या? किसको लगता है डर? लगता है, लगता है
5: मुझे रात को लगता है।
2: रात को लगता है ना? हाँ मुझे भी लगता है कभी कभी, लग सकता है डर
5: कभी,
8: थोड़ा बहुत जो डर होता है ना सोचते हैं हमें तो डर नहीं लगता, बिल्कुल ब्रेव, पर कहीं ना कहीं डर थोड़ा बहुत तो होता ही,
2: थोड़ा बहुत होता है ना। राघव लगता है?
7: नहीं दीदी,
2: आगे
9: दीदी पहले लगता था अब नहीं लगता, अब तो ऐसा लगता है कि भूत को पकड़ के उसको पूरा कूट के फेंक दूंगा।
2: ऐसा लगता है? ओके आपको
7: पहले लगता था अब इतना नहीं लगता, पहले लगता ही नहीं।
2: पहले कब लगता था मतलब?
7: पहले जैसे जब मैं थोड़ा छोटा था तब लगता था।
2: कितने छोटे थे आप?
7: 7 या 7 से नीचे
2: तब लगता था ना। तो क्यों लगता था? आप लोगों ने क्या भूत वाले वीडियोस या मूवीज देखे हैं?
5: मैं तो खाली भूत वाला वीडियो देखती रहती।
2: खाली भूत वाले वीडियो देखते हो? और आप?
5: मैंने भूल भुलैया मूवी देख रखी है।
2: हाँ उसमें भूत होता है ना
8: दीदी। मैंने भूल भुलैया 1 से लेके 3 तक सारी देखी है
9: दीदी, मैंने भी देखी है।
2: अच्छा यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो आप लोग?
9: नहीं दीदी, टीवी पे भी आती है। हाँ या फिर हम चला लेते हैं।
2: चला लेते हो? तो जैसे भूत के वीडियोस वैसे तो देखो ना, अगर वीडियोस तो जो हम देखते हैं वैसा हमको लगने लगता है, मालूम है? अगर हम जो जैसे आप कोई ऐसे पोएम वाले वीडियो देखोगे, गाने वाले वीडियो देखोगे तो गाना सीख लोगे ना, वीडियो देख के याद हो जाता है ना।
5: स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता
2: है ना, तो याद हो जाता है ना फिर। तो ऐसे अगर क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल है ना, तो अगर आप भूत वाले वीडियोस देखोगे ना तो वो ब्रेन को याद हो जाता है, तो वो हर जगह फिर हमको भूत दिखाता है और डराता है। तो इसलिए
5: मेरे को ऐसा लगता है इस घर में कोई आत्मा भटकती है
2: ना। तो अगर हम वीडियोस देखते हैं ना तो फिर हमको और डर लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ऐसे हमको डरा देता है, क्योंकि उसको याद हो जाता है वो भूत वाला वीडियो। तो अगर हमको थोड़ा डर कम करना है ना, तो हमको वो वीडियो नहीं देखने हैं, हमको ना और कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपको बहुत मजा आता है देखने में, भूत के अलावा जिसमें बहुत मजा आता है?
5: सोसो सासा।
2: उसमें क्या होता है?
5: उसमें दो बहन होती है।
2: दो बहनें होती है, कार्टून है क्या?
5: बस ऐसे थोड़ा बहुत कार्टून है,
2: थोड़ा बहुत है।
10: यूट्यूब
2: चैनल है। ओके, और आपको क्या अच्छा लगता है?
5: कार्टून।
2: कार्टून अच्छे लगते है ना आपको?
5: मेरे को वीर वाला
2: कार्टून अच्छा लगता है।
5: मुझे ब्लू विंग वाला।
2: ओके, और आपको?
7: कार्टून ब्लू लॉक।
2: ओके, और आपको? हाँ, एनिमे भी अच्छा लग सकता है। और आपको?
11: दीदी मैं इतना कार्टून देखती नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलता। वैसे तो मैं फिर यूट्यूब चैनल में आयुपीयू का एक चैनल है वो देखते।
5: मैं भोजपुरी देखती पिक्चर,
11: तो वो जो उसके अंदर वो ऐसे चैलेंजेस करवाते हैं।
2: हाँ, उसमें मजा आता है ना, चैलेंजेस करते हैं, गेम्स करते हैं। शिक्षा, आप तो सबसे बड़े, आपको क्या अच्छा लगता है?
12: दीदी शिनचैन और डोरेमोन।
5: दीदी आपने वही कभी चाली चाली खेला है?
2: नहीं, मैंने तो नहीं खेला। मैं आप लोगों से सीख लूंगी अभी इसके बाद, ठीक है? तो इसलिए जो ये भूत वाला है,
11: और कभी कभी ऐसे वीडियो में दिखाते हैं कि वो एकदम पेंसिल अगर चलती है ना तो भूत से चलते ऐसे होता है वो।
2: तो
5: अगर खुद हो जाता है, अगर यस पे हो जाता है, तो अगर सच्चे में भूत हो तो वो यस पे ऐसे हो जाता है,
2: पेंसिल घूम जाती है। तो आपने खेला है वो? नहीं खेला है ना, देखा है उसके बारे में वीडियो?
7: दीदी जब राघव और मैं तो शाम में थे, तो हमने राघव के दोस्त के घर पर जाके कुछ भूतिया वीडियो देखी थी।
2: अच्छा,
7: रात को बहुत डरे थे,
2: बहुत डर लग रहा था,
11: तो अपने घर चला गया था, उसी टाइम भी चला गया था।
2: डर तो लगता है ना देख के।
11: दीदी फिर मेरे को बाद में फोन करके बोल रहा था, यार कुछ होता नहीं है, चल मैं रह ही जाता।
2: है ना, लेकिन डर लगने लगता है उस वक्त, तो डर लगने तो मन करता है घर भाग जाओ फटाफट।
11: दीदी वो ऐसे बोलते थे कि हेल में किसी बंदे ने बनाई है, उसके मतलब एक डॉग था, उसके साइड में हाथ मतलब वो हेल के हाथ भी थे खून के।
2: अरे बाप रे।
11: और वो उसके मतलब वो ना डॉग इकलौता था जो हंस रहा था, हंसता हुआ डॉग किसी को नहीं दिखता,
2: डरावना हंसता हुआ डॉग। ओके
5: दीदी, मैं किशनगंज में एक रात सो रही थी, तो मेरे को रात में ऐसे आवाज आया बहुत जोर से।
2: आवाजें सुनाई दी। ओके, तो जैसा हम बात कर रहे थे, जब हम वीडियोस देखते हैं ना, तो आप ना वीडियोस देख के फिर भूल जाओगे, कुछ और करने लगोगे, है ना? लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें सबकॉन्शियस, वो आप बाद में पढ़ोगे जब बड़े हो जाओगे ना, एक ऐसा ब्रेन होता है जिसको सब कुछ याद होता है, छप जाता है। तो अगर आप भूत वाले वीडियोस या गेम्स खेलोगे ना, तो आपको डराएगा वो, रात को डराएगा, है ना, अलग अलग टाइम पे डर लगेगा। तो ऐसे वाले गेम्स या वीडियोस की जगह आपने जो और कार्टून्स बताए ना, वो अच्छी अच्छी चीजें देखो, क्योंकि डरना किसी को अच्छा लगता है क्या?
11: नहीं दीदी,
2: नहीं लगता है ना,
5: देखने का मन करता है लेकिन डर लगता है।
2: डर लगता है ना, तो डर जब लगता है तो मजा आता है क्या? आज तो बड़ा अच्छा लगा डरने में, ऐसा होता है? नहीं ना, तब तो लगता है घर भाग जाओ, डर लगता है ना बहुत, अकेले जाने में भी डर लगता है।
5: हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते
2: हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो डर ना लगे उसके लिए हमको क्या करना है, ऐसे वाले वीडियोस की जगह
5: और कुछ देखना
2: है। कितना अच्छा आंसर दिया आपने, वाओ।
11: दीदी क्या हुआ था, जब मैं 6 में थी और मेरे गली में ना मेरे थोड़े फ्रेंड्स थे और एक दो रिलेटिव्स भी थे, तो उस टाइम में ना वो एक लाइट होती है ना लेजर लाइट करके, वो छोटे बच्चे से घुमाते हैं, तो ना हम ऐसे वो मतलब इधर से घुमा रहे थे, मेरे जो छत थे ना उधर से हम वो घुमा रहे थे, और फिर कल परसों ना लिटरली हमको ऊपर आसमान में ना ऐसे लेजर लाइट कोई नहीं घुमा रहा, ऐसे दिखता तो है, सब तरफ देख के आ जाता है, कोई नहीं घुमा रहा, पर वो कहीं ना कहीं से तो वो आता ही है लेजर लाइट, और हम पे ही गिरता है वो लेजर लाइट, ऐसे होता है। और फिर रात को मतलब एकदम से ये होता है, फिर मेरे वो जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो बोलते हैं कि हमारे घर पे आवाज़ें आ रही थी। वैसे वो उस टाइम पे बहुत डर लग रहा था, वो सबसे मेरा एकदम डरावना सीन था।
2: तो अभी हमें ये समझ में आया कि अगर हमें डर लगता है, एक तो किसी बड़े को बताना है अगर ज़्यादा डर लगे तो, है ना, बताना ज़रूरी है, फिर ऐसे नहीं तो आपको अकेले और डर लगेगा। और दूसरा, जैसा आपने बताया कि और दूसरे तरह के वीडियोस देखने हैं, है ना, नहीं तो हमारा ब्रेन फिर वो याद करके, हो सकता है आज डराए कल डराए, और फिर बाद में भी डरा सकता है हमको, और डरते हैं तो फिर वीक लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, फिर हमको कभी कभी ऐसे घबराहट होने लगती है ना, और भागने का मन करता है, यहाँ से भाग जाओ फटाफट कहीं पे, है ना। और अकेले जाने में तो बहुत ही डर लगता है, पानी पीने या वॉशरूम जाने में भी डर लगता है ना, अकेले रात को अंधेरे में।
5: हाँ, मैं पापा जब सोते हैं मेरे को वॉशरूम लगता है, तो मैं पापा के साथ ही जाती हूँ।
2: हाँ, तो इसलिए कौन से वीडियोस देखने हैं, अच्छे वाले, ठीक है, पक्का। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे जिसमें मजा है, जिसको हम एंजॉय करें, है ना। ओके
9: दीदी, मेरा एक दोस्त है, उसका एक और दोस्त है, उस वो है ना, मतलब उसके साथ बहुत ज्यादा होरन चीज हुई थी। मतलब है ना, मैं आपको बता नहीं सकता।
2: कोई बात नहीं,
9: वो बहुत ज्यादा,
2: कोई बात।
5: दीदी, एक भूत के बारे में बताऊं?
2: बताओ।
5: तो एक लड़का था, वो रात में सो रहा ही नहीं था, और जब वो बाहर पानी पीने गया तो उसको बहुत अजीब सा लगा डरने।
2: उसने भी कोई हॉरर स्टोरी देख ली होगी इसलिए। आराध्या तो नहीं देखती है भूत वाले वीडियोस? नहीं ना। हाँ, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे वीडियोस देखना, ठीक है।
5: डेडी जब मुझे रात में वॉशरूम आते हैं, मैं अकेले चली जाती हूँ।
2: हाँ, क्यों? क्योंकि आप भूत वाले वीडियोस नहीं देखते ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर आपको लगता भी है ना डर लगने लगा है, कोई बात नहीं, जैसे ब्रेन में वो वाले वीडियोस छप गए थे, दूसरा कुछ अच्छा देखोगे तो वो भी छप जाएगा। तो इसलिए अच्छा अच्छा देखो, है ना। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, भगवान को दोस्त बना के उनको साथ लेकर जा सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा मेडिटेशन सीख सकते हो, तो उससे डर फिर छू मंतर हो जाएगा, गिली गिली छू हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
13: गिली गिली छू।
2: चलो, डर को करते हैं गिली गिली छू, और हमारे दोस्तों को करते हैं बाय बाय।

0: हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, आप सुन रहे हैं तंदुरुस्त बूम्बा।
1: छोटी बड़ी बातें, इनमें छुपी है बच्चों के दिल की बात।

0: दिन में काले चश्मे पहनकर ये देख रहा था कि रात कैसे होती है।
1: अच्छा?
0: अब ये खेल मैं रात को तो नहीं खेल सकता।
1: क्या?
0: क्योंकि रात को तो अंधेरा छा जाता है ना।
1: तो है।
0: तो मेरे यारों, तैयार हो जाओ गुगली और चमकी से मिलने के लिए।
2: गुगली,
3: हाय चमकी, चलो कुछ खेलते हैं।
2: एक बड़ा मजेदार खेल खेलें। रिपोर्टर रिपोर्टर।
3: रिपोर्टर रिपोर्टर, लेकिन इस खेल में हमें करना क्या होगा?
2: मैं बताती हूँ, मैं बनूंगी रिपोर्टर और तुम बंदा मेरे फोटोग्राफर।
3: हाँ, इस खेल में बड़ा मजा आएगा। मुझे वैसे भी फोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है।
2: हेलो, मैं हूँ आपकी प्यारी रिपोर्टर चमकी।
3: और मैं हूँ रिपोर्टर चमकी का स्पेशल फोटोग्राफर गुगली।
2: गुगली, मेरी एक और फोटो खींचो ना।
3: ओके, कैमरे की तरफ देखो। हाँ, थोड़ा राइट देखो। राइट राइट राइट। अब थोड़ा लेफ्ट। हाँ,
2: थैंक यू गुगी।
3: यू आर वेलकम रिपोर्टर चमकी।
2: अब हम आपको सुना रहे हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिन पहले हमारे अखबार ने एक कंपटीशन रखा था जिसका नाम था सबसे तंदुरुस्त कौन, और वो कंपटीशन जीता है यहाँ रहने वाले बुम्बा ने। तो चलिए मिलते हैं सबसे तंदुरुस्त बुम्बा से, उन्हें सुनाते हैं ये खास खबर और लेते हैं उनका इंटरव्यू। फोटोग्राफर गुगली,
3: बोलो रिपोर्टर चमकी।
2: ये गली कितनी साफ सुथरी है ना।
3: हाँ, और यहाँ कितनी हरियाली भी है। मुझे तो लगता है कि ये साफ सफाई और हरियाली ही बुम्बा के तंदुरुस्त होने का कारण होगा, है ना?
2: ये तो बुम्बा से बात करके ही पता लगेगा।
3: चलो।
2: हाय बुम्बा, मैं हूँ रिपोर्टर चमकी।
3: और मैं हूँ रिपोर्टर चमकी का फोटोग्राफर गुगली।
4: तो आज तुम दोनों अखबार के रिपोर्टर बने हुए हो।
2: हाँ बुम्बा, और तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि तुमने सबसे तंदुरुस्त कौन कंपटीशन जीत लिया है।
4: सच?
2: बिल्कुल
3: सच।
4: ओह, थैंक यू
3: बुम्बा। एक फोटो और प्लीज। जरा कैमरे की तरफ देख के स्माइल कीजिए। हाँ,
2: और अब हम शुरू करते हैं बुम्बा का इंटरव्यू।
4: मेरा इंटरव्यू?
2: हाँ, जिसे हम अपने अखबार में छापेंगे
3: तुम्हारी फोटो के साथ।
4: हाँ, क्यों नहीं, ले लो इंटरव्यू।
2: तो ये रहा मेरा पहला सवाल, तुम्हारी तंदुरुस्ती का राज क्या है?
4: हेल्दी खाना, साफ सफाई, कसरत और एक राज।
3: राज?
4: हाँ, और वो राज है सूरज।
2: सूरज?
4: हाँ, क्योंकि सूरज की वजह से ही रात के बाद सुबह होती है, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम और शाम के बाद रात।
2: लेकिन सूरज से तंदुरुस्ती?
4: देखो, जब सूरज उगता है तो मुझे पता चल जाता है कि सुबह हो गई है।
3: फिर
4: मैं फटाफट उठता हूँ, दांत साफ करता हूँ, नहाता हूँ और नाश्ता करता हूँ, जिससे मैं साफ रहता हूँ और मुझे ताकत मिलती है।
2: अरे हाँ, सुबह उठकर तो मैं भी ये सब करती हूँ और स्कूल भी जाती हूँ।
3: इसी बात पे एक और फोटो।
2: बुम्बा, आगे बताओ ना।
4: हाँ हाँ रिपोर्टर चमकी, फिर सुबह के बाद होती है दोपहर।
2: और दोपहर में तुम क्या करते हो?
4: दोपहर में मैं खाना खाता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ, और फिर जब सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है तो मुझे पता चल जाता है कि अब हो गई है
2: शाम।
4: हाँ, और शाम को मैं खेलता कूदता हूँ और पार्क में सैर करता हूँ, और उसके बाद
3: जब सूरज पूरी तरह डूब जाता है तब होती है रात।
4: तब मैं खाना खाता हूँ और ठीक समय पे सो जाता हूँ। तो देखा, खाने पीने और कसरत के साथ साथ सूरज भी मुझे रखता है फिट और तंदुरुस्त।
2: बिल्कुल, क्योंकि सुबह हो या दोपहर, रात हो या शाम, तुम सही समय पे करते हो अपना हर काम।
0: चलो जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। ओके टाटा, होम प्लीज। रोवर दी गड्डी चली, छलांगा मार के।
1: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, यूबीएस ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 10वां पाठ बोलती इमारतें, पृष्ठ 87। पहुंचे गोलकुंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकुंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती हैं और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। शैलजा बोली, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है ये किला। श्रीधर बोला, और कितनी ऊंचाई पर है। कल्याणी बोली, अरे ये दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा बोली, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। कल्याणी ने कहा, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। शैलजा ने कहा, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर कहने लगा, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी ने कहा, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी बोली, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। पृष्ठ 88। सोचो, इतने सारे बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे, बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे। सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा। बुर्ज के पीछे खड़े होकर छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी। किले में कितना कुछ। शैलजा बोली, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, यह कितना पुराना होगा। कल्याणी बोली, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी बोली, हाँ उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा बोली, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर बोला, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं, और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा ने कहा, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे, किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी ने कहा, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा।

पृष्ठ 89। सुल्तान का महल। श्रीधर बोला, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। शैलजा बोली, उस जमाने में भी दो मंजिला इमारतें थीं। कल्याणी बोली, अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर बोला, और यह देखो, दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी बोली, एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी बोली, हाँ, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे, जिनमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग। सोचो, आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है। यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे, तब भी ये इमारतें कितनी समझ से बनाई गई थीं। सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ, सोचो और चर्चा करो। फव्वारे कैसे चलते होंगे? हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होगा? सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा? हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है, अगर वहां एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। पृष्ठ 90। कहाँ है पूर्व पश्चिम? तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है? पता करो कि तुम जहां खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। पृष्ठ 91। यहाँ पर गोलकोंडा का एक नक्शा दिया गया है। बताओ और लिखो। गोलकोंडा के नक्शे को देखो। चारों दिशाएं तीर के निशान से दिखाई गई हैं। अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है? अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा? बाला हिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओ? किले की बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं? गिनकर बताओ किले में कितने महल हैं? पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी, कुएं, हौज? नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ, नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार रिक्त स्थान सेंटीमीटर की दूरी पर है। जमीन पर यह दूरी रिक्त स्थान मीटर होगी। मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी दूर है? पृष्ठ 92। ये हमले क्यों? हम आपसे बात कर रहे हैं कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज दी। तोप को देखने की उत्सुकता से हम सब भी तेजी से वहां पहुंचे। शैलजा बोली, यह तोप तो कुतुबशाही सुल्तान की ही होगी। दीदी बोली, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहाँ हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। शैलजा बोली, दिल्ली से इतनी दूर यहाँ तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी? दीदी ने कहा,
बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सकें, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सकें और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सकें। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। कल्याणी बोली, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई? सैलजा ने कहा, अरे इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी, और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती? श्रीधर बोला, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहाँ बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी बोली, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए आगे बढ़ रही है। यहाँ सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात हैं। सैलजा बोली, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों हैं? पृष्ठ 93। श्रीधर, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम हैं, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है। चर्चा करो, क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो? पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे, किस किस तरह का नुकसान हुआ, पता करो। श्रीधर ने कल किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है, तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है? बताओ क्या? कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीजें थीं या आज भी हैं? रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है, जब टेलीफोन नहीं था। दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गईं। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में यहाँ सुनाई देता है। पृष्ठ 94। पानी का इंतजाम। यहाँ एक चित्र बना है, उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो, बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस झंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा, उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा, हाथ के इशारे से बताओ। देखो, दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है। बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को ऊपर चढ़ाती है। कैसे चढ़ाती है? अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा? आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं, इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता होगा। तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहां देखा है, जैसे साइकिल में गियर या और कहीं?
अपने आसपास देखो और पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है, बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है, बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे। पृष्ठ 95। हाल किया बेहाल क्यों। आवाजें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। श्रीधर बोला, पत्थर के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा बोली, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर बोला, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, उस पर लिखा है दीवार पर लिखना मना है, फिर भी इस दीवार का यह हाल। शैलजा बोली, ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूँ कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नज़ारे देखे होंगे, कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी बोली, पता नहीं लोग इन दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। आंखें बंद करके पहुंचो उस जमाने में। मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ। चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हो। सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं किन फिक्रों में, और हाँ, किस भाषा में बात कर रहे हैं। पृष्ठ 96। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे ना। अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है, और गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है, किस किस चीज के कारखाने देख पा रहे हो, कारखानों में कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कितनी देर काम करते होंगे। अरे वहां देखो, वह कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितनी सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है। म्यूजियम पहुंचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम में भी गए। म्यूजियम यानी संग्रहालय। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं। इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजें भी थीं, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। शैलजा बोली, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं, वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा तो चीनी मिट्टी का सा लगता है। दीदी बोली, इन्हीं सब चीजों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते। पृष्ठ 97। लिखो, तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है। अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो या उसके बारे में सुना है, वहाँ क्या क्या होता है। इमारत का सर्वे। लिखो, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं, यदि है तो कौन सी। क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो, कौन सी। वह तुम्हें क्या कुछ बोलती सी लगी, क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी, वह कितनी पुरानी है, तुम्हें कैसे पता लगा।
वह किस चीज से बनी है, किस रंग की है, क्या उसमें कुछ खास तरह के डिजाइन बने हैं? अगर बने हैं तो तुम भी बनाओ। उसमें कौन लोग रहते होंगे? वहां क्या क्या काम होता होगा? क्या अभी भी उसमें लोग रहते हैं? पृष्ठ 98। तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीजें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियाँ, छतरियाँ, लकड़ी की खड़ाऊँ यानी चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीज़ें जैसी होती हैं वह भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। यहाँ एक चित्र बना है जो लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है, जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा है। चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं, कितनी औरतें और कितने मर्द काम कर रहे हैं। देखो यह भारी खंभा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या सीधी ऊपर ले जानी? क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए? हम क्या समझे। संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीजें संभाल कर रखना बेकार है। तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम होना कितना जरूरी है? तुम्हें क्या लगता है इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया? बोलती इमारतें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 10वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सफर कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज 8 अक्टूबर है, 8 अक्टूबर की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं आज विशेष रूप से वायुसेना दिवस है, 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और इसके साथ ही बद्रुद्दीन तायुब जी, पद्मनाभम बालकृष्णाचार्य जी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही प्रेमचंद, जयप्रकाश नारायण, रामविलास पासवान, कमलापति त्रिपाठी और केदारनाथ साहू, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में यादगार बातें कुछ आपसे शेयर करने वाला हूं और कुछ खास लोगों के जीवन से आपको रूबरू कराने की कोशिश मेरी रहती है। तो आइए बद्रुद्दीन तायुब जी के बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। उसके पहले वायुसेना की बातें आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। और वायुसेना भी देश सेवा में यूं हवाई जहाज के साथ उड़ते हुए दुश्मन को हरा देती है। तो ऐसे विशेष वायुसेना की बात आज हम लोग करेंगे। और 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई और 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो बैनर्जी भारतीय नौसेना के एक संस्थापक सदस्य के प्रथम भारतीय वायुसेना मुख्य कार्यकारिणी संभाला। समय गुजरने के साथ भारतीय वायुसेना ने अपने हवाई जहाजों और उपकरणों से अत्यधिक जो है संपन्नता अपनाई। और इस प्रक्रिया में भाग के रूप में इसमें 20 नए प्रकार के हवाई जहाज शामिल किए गए उस समय। और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारतीय वायुसेना में महिलाओं को शामिल करने की पहल के लिए संरचना में असाधारण बदलाव किए गए, जिन्हें अल्प सेवा कालीन कमीशन हेतु लिया गया। और ये ऐसा समय था जब वायुसेना ने अब तक के कुछ अधिक जोखिमपूर्ण कार्य हाथ में लिए हुए थे। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी इतिहास मैं आपको सुनाने वाला हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपको सीधे ले चलता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और उसके पहले कहते हैं, भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपको आपकी विरासत से जुड़ना पड़ेगा, यही आपकी सफलता का आधार बनेगा। इस सुंदर विचार के साथ एक सुंदर गीत आपके नाम। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहा और मुस्कुराता।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे थे भारतीय वायुसेना के बारे में। जी हाँ, भारतीय वायुसेना विशेष सशस्त्र सेनाओं का सबसे नया अंग है और 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय विधायक द्वारा भारतीय वायुसेना विधायक पारित करने के साथ ही वायुसेना अस्तित्व में आ गई। हालांकि 1 अप्रैल 1933 को पहले हवाई दस्ते का गठन हुआ जो 1 नंबर स्क्वाड्रॉन का हिस्सा बना। इसमें 6 रॉयल एयर फोर्स ट्रेनिंग अधिकारी, 19 हवाई सिपाही और 4 वेस्टलैंड विपत्ति आई ए सैन्य सहयोग विमान थे। और दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने पर नंबर 1 स्क्वाड्रॉन भारतीय वायुसेना का एकमात्र संगठन था। उस समय वायुसेना में 16 अधिकारी और 662 सैनिक थे। 1939 में ये प्रस्ताव किया गया कि मुख्य बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए 5 हवाई दस्ते की स्वैच्छिक आधार पर व्यवस्था किया जाए। और फिर कहानी आगे बढ़ी, मद्रास, जवरतान, चेन्नई, पहला हवाई दस्ता बम्बई, मुंबई वर्तमान में, और दूसरा कलकत्ता में, तीसरा कराची, चौथा कोचीन में, पांचवा बाद में विशाखापट्टनम में, छठा हवाई दस्ता बनाया गया। तो 1944 के अंत तक वायुसेना में 9 स्क्वाड्रॉन बन चुके थे, है ना कमाल की बात। अब तो और बढ़ा दिए हैं लेकिन पहले की तुलना में अब बेहतर और बहुत ही ज़्यादा जो है चीज़ें उपकरणों के साथ वायुसेना संपन्न है। पहले स्थापित वायुसेना केंद्र आगरा, पुणे, अंबाला, चंडीगढ़ और बेंगलोर में है। मार्च 1945 में भारतीय वायुसेना को रॉयल का उपसर्ग दिया गया था और फिर ये सम्मान उसे दूसरे विश्व युद्ध में प्रशासनिक योगदान के लिए दिया गया था। अगस्त 1945 की बात करें तो युद्ध की स्थिति समाप्त होने पर रॉयल इंडियन एयरफोर्स में 28,500 कर्मी थे जिनमें से 1,600 अधिकारी थे। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स की समाप्ति को संपत्ति को भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किया गया। अग्र मोर्चे के 10 स्क्वाड्रॉनों में से 2 नवनिर्मित रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स को दिए गए और जनवरी 1950 में ब्रिटिश राष्ट्रकुल के अंतर्गत भारत के गणतंत्र बनाने का रॉयल उपसर्ग हटा दिया गया। और फिर उस समय भारतीय वायुसेना के पास स्विफ्ट फायर, वाइपर और टेपस्ट के 6 लड़ाकू स्क्वाड्रॉन थे। आने वाले वर्षों में इन स्क्वाड्रॉन की संख्या और बढ़ी और पुराने और घिसे चुके वायुयानों को हटा दिया गया और उन्हें आधुनिक व बेहतरीन वायुयानों से बदल दिया गया। धीरे धीरे बदलाव तो आता गया और चीज़ें जो है चलने लगी। आइए आगे बढ़ते हैं और वायुसेना की कुछ और बातें आपसे शेयर करूँगा, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनना है, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। और वायुसेना की बात अगर हम लोग करें, 1932 में अब तक भारतीय वायुसेना के विभिन्न देशों द्वारा निर्मित 73 विभिन्न प्रकार के वायुयानों को उड़ाया है। और 1930 और 50 के दशकों के दौरान इसने विपित और टाइगर मौत जैसे एक इंजन वाले विमानों को उड़ाया है। 1940 के दशक में टर्बो प्रोपेलर युक्त वायुयान की शुरुआत हुई, जिनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध स्विफ्ट फायर फाइटर और डाकू ट्रांसपोर्टर है। 1948 और 72 के बीच में भारतीय वायुसेना ने पहले टर्बोजेट वायुयानों में से एक वाइपर का इस्तेमाल किया। भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ाया जाने वाला यह पहला हेलीकॉप्टर था, जिसका उपयोग 1954 से लेकर 66 के बीच में किया गया था। और 57 में भारतीय वायुसेना ने एक छोटा हेलीकॉप्टर बेल प्राप्त किया, जिसका 1972 तक उपयोग किया गया। आज भारतीय वायुसेना के पास 500 से अधिक हेलीकॉप्टर और MI-26 भारी होली कैप्टर है, जो सेना का गौरव बताया जाता है। तो ये है ना कमाल की बात भारतीय वायुसेना की। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए, भारत की आज़ादी के समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स के मुख्य कमांडर इन चीफ कहा जाता था और उसका दर्जा एयर मार्शल का होता था। एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू आर्मस्ट्रांग रॉयल इंडिया एयरफोर्स के पहले कमांडर इन चीफ थे। 1 अप्रैल 1954 को एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने वायुसेना के पहले भारतीय प्रमुख बनने के साथ ही ये खत्म हो गया। और 1 अगस्त 1964 से वायुसेना के प्रमुख के पास एयर चीफ मार्शल का पद भी है। तो ये विशेष रूप से वायुसेना की कुछ बातें मैंने आपसे शेयर किया। और आखिरी भी बात बताऊं तो भारत अब 1973 से 1994 तक सोमालिया में शांति बहल करने का काम किया था और इसमें संयुक्त राष्ट्र की सहायता कर रहे भारतीय दस्ते के एक हिस्से के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया था। भारतीय वायुसेना ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ज़्यादातर काम प्राकृतिक आपदाओं में वायुसेना का रहता है और ऐसी स्थिति में हमेशा ही नागरिक प्रशासन की सहायता की है। और एयरफोर्स वेलफेयर एसोसिएशन युद्ध और शांति काल के दौरान प्रशासन को सहायता देती है। और भारत के महत्वपूर्ण शहरों में वायुसेना के बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के निकट ड्रिंगल स्थित एयरफोर्स एकेडमी भावी वायुसेना अधिकारियों को ट्रेनिंग देती है। और कर्नाटक में बेंगलुरु एयरफोर्स ट्रेनिंग कॉलेज अधिकारियों व सैनिकों को तकनीकी प्रशिक्षण देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर जी हाँ सफ़र इस कार्यक्रम को। भारतीय वायुसेना दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। आप सुनाए हैं अब सफ़र, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए अब कुछ खास लोगों की जीवन कहानी से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा, बद्रुद्दीन तायब जी के बारे में। जी हाँ, आइए इनके बारे में बात करते हैं। ये अपने समय के बहुत ही पॉपुलर वकील, नायरिश और विशेष नेता थे। धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना करते थे और अपनी निष्पक्षता के लिए उनकी बड़ी ख्याति थी। बाद में जब उनकी नियुक्ति मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर हुई तो बाल गंगाधर तिलक पर सरकार द्वारा चले गए राजद्रोह के मुकदमे में तिलक को जमानत पर छोड़ने का साहसिक कार्य तायब जी ने ही किया था। आइए इनके बारे में जानते हैं। तायब जी का जन्म आज के दिन यानी 8 अक्टूबर 1844 को मुंबई के एक धनी परिवार में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद कानून की परीक्षा प्राप्त की थी, इंग्लैंड चले गए और वहां से बैरिस्टर बनकर लौटे। मुंबई में जिस समय वकालत शुरू की तब वहां ना तो कोई न्यायाधीश भारतीय था और ना कोई वकील। प्रतिभा और योग्यता के बल पर शीघ्र ही तायब जी ने गन्ना उनकी उच्च कोटि के भारतीय वकीलों में होने लगी। फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद्र चटर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी आदि के संपर्क में आने पर वे सार्वजनिक कार्यों में भी रुचि लेने लगे और मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और शिक्षा का प्रचार करने के लिए अंजुमे इस्लाम नामक संस्था को जन्म दिया। वे महिलाओं की आज़ादी और शिक्षा के भी समर्थक थे। उन्होंने अपने पुत्रियों का उच्च शिक्षा दिलाई और अपने परिवार की महिलाओं का पर्दा भी समाप्त कराया, जो उन दिनों बड़े साहस का काम था। अब ये धर्मनिरपेक्ष समाज की कल्पना करते थे, अपनी निष्पक्षता के लिए उनकी बड़ी ख्याति थी। बाद में जब उनकी नियुक्ति मुंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर हुई तो उस समय बाल गंगाधर साहब का जो है सरकार द्वारा चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में तिलक साहब को उन्होंने जमानत पर छोड़ने का साहसिक कार्य किया था और उनकी गणना भारत के मुख्य नेताओं में होती थी। अब 19वीं शताब्दी थी के अंत में भारत के एक मुख्य नेता थे। जब आज़ाद देश की शुरुआती जंग के चरण में था तो अब जी अनेक प्रतिभाओं के व्यक्ति थे। वे एक बड़े नेता, सामाजिक सुधारक, शिक्षाविद और कानून के ज्ञाता। उन्हें मुंबई उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय अधिवक्ता होने का गौरव भी प्राप्त है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तायब जी के बारे में और आगे बात करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो चलिए एक और गीत आपको सुनाते हैं। हमारे सभी लिसनर्स सुरेश जी जुटाना, सुरेश जी पिंडवाड़ा, सुरेश जी अहमदाबाद और इसके बाद दयाराम जी लाखनी से और कंचन बाई मंदाली से, भूपत सिंह जी सिद्धपुर से, कुपाराम जी कोटड़ा से, सुभाष जी जलगांव से और फिरोज जी हमारे गुजरात से और ओल्ड इज गोल्ड गुजरात से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। और हमारे विभा जी, अर्षिता जी, खुशी जी, अंजिता जी, सुगना जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ लीजिए आपके नाम ये गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। और हाँ, हमारे रमेश जी राधनपुर से भी याद कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं रेडियो तो रेगुलर सुनता साहेब, लेकिन फोन नहीं करता हूँ, लेकिन सब सुनता हूँ मैं। चलिए, राधनपुर के रमेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बात ही अच्छा लगता है जब आप बात करते हैं, और मदन जी भी हमारे याद करते रहते हैं और बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं, और हमारे भरत जी याद करते रहते हैं, और दोषी जी भी फ़ोन करते हैं हमें, बड़ा अच्छा लगता है उनको याद करना। आप सबका नाम तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि जिनकी याद हो, जो रेगुलर फ़ोन करते हैं उनकी यादें रह जाती हैं, लेकिन जो कम फ़ोन करते हैं उनकी याद करना पड़ता है मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए आगे बढ़ते हैं। और अर्जुन जी महाराष्ट्र वाले, वो भी पहले रेडियो बहुत सुनते थे लेकिन आजकल नहीं, बिजी हो गए हैं, बिजनेस शुरू किया तो वो रह गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी एक हाथ मैसेज आ जाता है और कहते हैं कि मैं थोड़ा व्यस्त हूँ लेकिन रेडियो कभी कभी आपको सुनता हूँ। चलिए, अच्छी बात है।

होना चाहिए, आप कंधे से कंधे मिला के आगे देश के हित में काम करना चाहिए। तो ये उनकी जो बात थी वो सभी को पसंद आई थी। और भारत के मुख्य नेता होने के नाते जब देश आज़ादी की कगार पर था तो जी अनेक जो है काम किए, और उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होने के कारण उन्हें वो गौरव था और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और दोनों को वो पक्षपात कभी नहीं करते थे, वो सभी को समान रूप से उनके कार्यवाही किया करते थे। 1932 के बैच के आईएएस अधिकारी बद्रीनाथ जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उस दिन इंडिया गेट में आयोजित समारोह में इतनी भीड़ थी कि माउंट बेटन और उनकी पत्नी को सभा स्थल तक ले जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। जहां से जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे वहां तक पहुंचने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। पहली बार जब लोगों ने तिरंगा झंडा फहराते हुए देखा तो उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। 19 अगस्त 1909 में तोयब जी का देहांत हो गया। तोयब जी का यह चाहते थे कि जिस प्रकार अन्य धर्म के लोग शिक्षा हासिल करके आगे बढ़ रहे उसी प्रकार इस्लाम धर्म को भी मानने वाले लोग भी अच्छी शिक्षा हासिल करें और वहाँ भी जिंदगी में एक सफल आदमी बने। इसी उद्देश्य के साथ अंजुमन इस्लाम नाम के एक इंस्टीट्यूशन को तोयब जी ने चालू किया था। इसके अलावा उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को भी बनाया ताकि जो इस्लाम को मानने वाले लोगों में शिक्षा ग्रहण करने की भावना जागे। तोयब जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो महिलाओं को आज़ादी देने के पक्षधर थे, साथ ही वो सभी लोगों को शिक्षा देने के लिए कहते थे और यही वजह है कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी को भी अच्छी पढ़ाई करवाई। और धर्म से संबंधित रखने के बावजूद भी तोयब जी ने इस बात को हमेशा कहते थे कि लड़कियों को या फिर महिलाओं को पर्दा प्रथा का त्याग करना चाहिए। तो ये थी कुछ खास बातें तोयब जी के बारे में आपके लिए। आप सुना है रेडियो माधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो लीजिए एक और खूबसूरत गीत आपके ही नाम, सुनते रहो मुस्कुरा।

0: उदयपुर बोल रहा हूँ। आशा भुंडिया और रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहो, हंसता
1: रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, और शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सभी के साथ मैं हूँ। और शाम के समय में चाय और शरबत की बात मैं हमेशा करता हूँ। अगर आप गर्मी है तो बिल्कुल आप अभी जो है चाय पी सकते हैं, लेकिन अगर आप ठंड आपके यहाँ है, आपको ठंड लग रही, तो आप गुनगुना पानी ज़रूर पीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ अगर आप ग्रीन टी अगर बना के पीते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्टअप करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग जो है कभी कभी उसमें मसाले डालते हैं, इतने मसालों की ज़रूरत नहीं। आप एरोमा ग्रीन टी पी सकते हैं, जिनको मसाले सहन हो जाते तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा मसाला डालना चाहिए। लवंग भी डालते तो 4-5 लवंग कूट के आप अगर डाल देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लवंग हमेशा थोड़ा सा होना चाहिए आपका, आधा लवंग जो है पीस के उसमें डालें। और बाकी आप गुलाब के पत्ते या फिर जो सफ़ेद फूल आते हैं बहुत ही सुंदर, इन सारे फूलों को जो है वो 8 से 10 फूल, और गुलाब के एक फूल से भी काम हो जाता है, उसकी पत्तियां आप तोड़ के डाल लिए और बढ़िया से गर्म होते ही पत्तियों के कलर चेंज हो जाएंगे। लाल गुलाब के पत्ते आप डाल दे तो सफ़ेद हो जाता है। बस उसके बाद आपको उसको छलनी से छान के बढ़िया, अगर उसमें आपको कुछ मिठास चाहिए तो गुड़ का इस्तेमाल करें और उसको जो है उसमें डाल सकते हैं, और धीरे धीरे वो पिघलने के बाद आप एक एक सिप का आनंद उठाइए और रेडियो सुनते रहे मेरे साथ, है ना। तो आइए अब एक और शख्सियत के बारे में बात करना होगा, जहाँ पद्मनाभम बालकृष्ण आचार्य के बारे में। ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे, भारत के राजनीतिक रहे और भारतीय राज्य नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और आसाम के राज्यपाल रहे हैं। पद्मनाभन जी की बात करें तो ये बालकृष्ण आचार्य तब चर्चा में आए जब आसाम में राज्यपाल होने के दौरान उन्होंने हिंदू शरणार्थियों पर बयान दिया था। 2015 में एक समारोह के दौरान कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, किसी भी देश का हिंदू यहाँ रह सकता है, वो भारी नहीं है। उन्होंने कहा था इसमें डरने जैसा कोई नहीं है बात, लेकिन उनके रहने की व्यवस्था कैसे की जाए ये बड़ा सवाल है और हमें इस बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में सताया गया कोई भी हिंदू भारत आने का अधिकार रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और बातें आपसे शेयर करूंगा। आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात बता सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ, बातें हो रही हैं पद्मनाभम बालकृष्णाचार्य के बारे में। ये राज्यपाल के रूप में पद्मनाभन जी का जो कार्य रहा वो नागालैंड में रहे 19 जुलाई 2014 से 31 जुलाई 2019 तक। मणिपुर में ये राज्यपाल के रूप में काम किया 27 जून 2019 से 23 जून 2019 तक। अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने 28 जनवरी 2017 से लेकर 3 अक्टूबर 2017 तक इन्होंने काम किया, और त्रिपुरा में 21 जुलाई 2014 से 19 मई 2015 तक काम किया। आसाम में 12 दिसंबर 2014 से 17 अगस्त 2016 तक ये राज्यपाल रहे। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें राज्यपाल का, शायद रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। लीजिए एक और खूबसूरत सा गीत आपके ही नाम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: अस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोभ्यं क्षुभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भया ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति।
1: दिस इज आदित्य राज कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्म कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंचे हैं और विशेष 8 अक्टूबर में जन्मे उन लोगों के बारे में भी बातें की। और आइए मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आपको जोड़ना चाहूँगा। और कहानी में, जैसे कि पिछले एपिसोड में शायद मैंने एक कहानी आपको बताया था, लोमड़ी और अंगूर और उसके बाद हमने बातें की थी अहंकार वी गुलाब के बारे में, और बिनबिल की कहानी मैंने सुनाई थी कौवे की गिनती उसके बाद हमने एक लालची आदमी जो चाहता है कि सब कुछ मेरा सोना सोना सोना, वो कहानी। अब आइए मैं एक और व्यक्ति की कहानी मैं आपको सुनाने चाहूँगा। और ये कहानी है लोमड़ी और सरस की। अब पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं पशु प्राणियों की बात बताते हुए, उसमें मानव मूल्यों को कितने सुंदर तरीके से जोड़ा, तो पंचतंत्र कहानियाँ लिखने वाले हमारे मित्र पंडित जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने उस समय लिखी थी और आज भी वो हमें कहानियाँ शिक्षा देती रहती। एक दिन की बात है, एक स्वार्थी लोमड़ी ने एक सारस को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। सारस निमंत्रण से बहुत खुश तो हुआ, क्योंकि उसे खाने का काफ़ी शौक रहता है। वह समय पर लोमड़ी के घर पहुंची और अपनी लंबी चोंच से दरवाजा खटखटाया। लोमड़ी ने उसे घर पर आमंत्रित किया और अंदर अंदर आने को कहा। फिर उसे खाने की मेज पर ले गई और उन दोनों के लिए उतले कटोरे में कुछ सूप परोसा। चूंकि कटोरा सारस के लिए बहुत उतला था, इसलिए वह सूप बिल्कुल नहीं पी सकती थी, लेकिन लोमड़ी ने जल्दी से अपना सूप पी लिया। आप क्योंकि ये चोंच से पीती हैं, इसको या तो आप ग्लास में देते तो कहानी बन जाती, लेकिन वो प्लेट में अगर सरस को वो दे दिया तो वो तो उसे पी नहीं पाएगी, है ना। तो अब सरसा अंदर से गुस्सा भी आ रहा था और परेशान भी हो रही थी, लेकिन उसने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। तो ये समझदार व्यक्ति की कहानी है दोस्तों। जब भी आपको ऐसी कोई तकलीफ हो जहाँ पर गुस्सा दिखाने के लिए आपका मन उतावला हो, तो अपने गुस्सों को काबू कर लीजिए। गुस्सा जो है दिखाना नहीं होता है। तो सारस ने गुस्सा नहीं दिखाया और विनम्रता से व्यवहार किया। वही उसने मन ही मन एक योजना बनाई लोमड़ी को सबक सिखाने का। बस फिर क्या था, अब सरसा को तो सूप पीने का आनंद मिला नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहमान निवाजी की पूरी रस्म को निभाई और फिर उसने लोमड़ी को अगले ही दिन रात के खाने पर आमंत्रित किया। जब लोमड़ी उसके घर पर आई तब उसने भी सूप परोसा, लेकिन इस बार सूप को दो लंबे फूलदानों में परोसा गया। जिस तरह से लोमड़ी ने प्लेट में परोसा, वैसे सारसा ने फूलदानों में परोसा। सारसा ने अपने फूलदान से सूप को तुरंत पी लिया, लेकिन अब बाहरी लोमड़ी जो है अपनी गर्दन उसमें डाल ही नहीं पा रही थी और कुछ भी नहीं पी सक रही थी, क्योंकि वो काफ़ी लंबा फूलदान था। अब ये सब देखकर लोमड़ी को अपनी गलती का बिल्कुल एहसास हो गया और वो भूखा कर चला गया। तो कहने का भाव ये है साथियों, कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन कहानी में कभी कभी इसके पात्र हम भी हो जाते हैं। हमें भी कभी कभी क्या हो जाता है, हम भी ऐसी बेवकूफ़ी वाली कामें कर लेते हैं और हम लगते हैं कि हम बहुत होशियार है ना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक स्वार्थी कार्य जल्दी या बाद में उल्टा अवश्य पड़ ही जाता है, इसलिए हमेशा निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करें, सबका सम्मान करें, सबका आदर सत्कार के साथ जीवन को यापन करें। है ना कमाल की स्टोरी, आपने पहले भी सुनी, अब भी सुनी, शायद आपको वो मैसेज क्लियर हुआ होगा आज। कोई बात नहीं, फिर कभी सुनाएंगे और एक सुंदर कहानी। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सफर कार्यक्रम में फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, दुआओं में याद रखिएगा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
1: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स इन टुडेज लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशन ऑफ सहयोग। You are watching our today's Sahyog session on PM Avidya channel 6 to 12 and also on our official YouTube handles NCERT Official and NCERT PM Avidya class 6 to class 12 YouTube channels. My name is Rajan Rajput and here to make our session inclusive, we are joined by our sign language interpreter, Ms. Dharna. Dharna, warm welcome you in this session. In today's Sahyog session, we are going to discuss this important topic as topic is on your screen. Screen to Serenity, Managing Digital Stress and Building Digital Well-being. So what is digital stress and how we can make a digital well-being? So I have many questions to ask from panelists. If you have any, so please connect with us. But first note down what means we are presenting Sahyog sessions. As you all know that our Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Mano Darpan under the initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for psychosocial support and mental well-being of our students who are watching this session live from various parts of our country. So dear viewers, let's know how you can connect with us. First note down Mano Darpan counselor's number that is on your screen. It's 844-844-0632. You can also connect to our IVRS number. It's 8800-440-559. To write on our mailbox, please write on sahyog.ncert@cert.nic.in. Viewers who are watching this session on our official YouTube handle, so check there is a live chat box option to drop your comment and query. Time to meet our esteemed guest of panelist. We are joined by Dr. Wai Singh Tangpu, Associate Professor in Geology, NIRI NCERT, Shillong. Sir, thank you so much to be with us. Namaskar.
2: Namaskar.
1: और हमें ज्वाइन किया है मिस बबीता सिन्हा ने आर प्रैक्टिसिंग काउंसलर मैम नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम
3: नमस्कार एवरीवन
1: सो डियर व्यूअर्स लेट्स स्टार्ट विद नोइंग फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिजिटल स्ट्रेस बबीता मैम आपसे जानना चाहेंगे एंड डज इट अफेक्ट आवर डेली लाइफ
3: थैंक यू मैम फॉर योर क्वेश्चन डिजिटल डिस्ट्रेस को एक्सप्लेन करने के पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी हम सबके साथ ऐसा होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम 6 बजे का अलार्म लगाते हैं पढ़ने के लिए कई बार 5 बजे का अलार्म लगाते हैं लेकिन क्या हम उस 5 बजे उठ के हम पढ़ने बैठ जाते हैं हम कई बार उसको थोड़ी देर के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं 6:05 हो गए 6:10 हो गए और फिर हम उठते हैं और उठने के बाद हम कई बार क्योंकि हमारा मोबाइल हमारे पास है तो हम उसमें देखते हैं कि भाई कोई मैसेज तो नहीं आया कोई इम्पोर्टेंट चीज तो मैंने कहीं मिस ना कर दी ये ही दिस ये जो टेंशन ये जो प्रेशर हमारे ऊपर होता है दिस स्ट्रेस दिस स्मॉल स्ट्रेस अ कॉन्स्टेंट बैकग्राउंड टेंशन जो हम फील करते हैं दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ डिजिटल स्ट्रेस It is mental and emotional exhaustion caused by being perpetually plugged in, juggling between 2 or 3 things. हमें उठना भी है पढ़ना भी है टाइम पे हमें मैसेजेस भी चेक करने हैं हमारा कुछ मिस भी ना हो जाए सो इन सारी चीजों को मिला के हमारे पे डिजिटल स्ट्रेस फील होता है राइट और ये होने के कई कैसे ये हमें इफेक्ट करता है डे टू डे लाइफ में वो जो कांस्टेंट हमें नोटिफिकेशन एंजाइटी है जो हमें चेक करना होता है कि भाई कोई मैसेज तो नहीं आया कई बार हमें वो सडनली लगता है पढ़ने के बीच में हमें लगता है कि मैं अपना मोबाइल चेक कर लूँ कोई मैसेज तो नहीं आया कई बार जस्ट एक स्क्रोल हमें लगता है कि हम अपने आप को 5 मिनट का हमने 25 मिनट्स पढ़ लिया और मैं अपने आप को 5 मिनट का ब्रेक दे देती हूँ तो मैं अपने मोबाइल को लेकर सिर्फ एक 5 मिनट्स का स्क्रोल करती हूँ वो 5 मिनट कब 10 मिनट बन जाता है और वो 10 मिनट कब 15 मिनट बन जाता है ये भी हमें स्ट्रेस देता है ये सब स्ट्रेस पढ़ाई की स्ट्रेस नहीं है, ये हमें डिजिटली होने का स्ट्रेस है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी हार्मिंग अस. अगेन वन मोर थिंग इज लाइक ब्रेन फॉगिंग और मेंटल फटीग. इसमें क्या होता है, हम जब पढ़ रहे हैं, हमने जब पढ़ाई शुरू करी और हम किसी चीज को, काम को बहुत ध्यान से, लगन से, किसी असाइनमेंट को कर रहे हैं, या हम कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं, या हम कोई चैप्टर याद कर रहे हैं, आप देखोगे आप कुछ समय के बाद, लाइक 40 मिनट पढ़ लिया या 45 मिनट अपने पढ़ लिया, सडनली आपको लगेगा कि आपका दिमाग थक गया है, आप थक गए हो, आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. दैट इज अगेन अ मेंटल फटीग ड्यू टू डिजिटल स्ट्रेस. और एक और चीज जो हमें फील होती है कि हम बार बार कहीं, कई बार हमने जैसे कुछ प्लान किया है, जैसे हम किसी वीकेंड पे प्लान करते हैं, या हम कोई चीज़, कोई और चीज़, हमारे फ्रेंड्स ने कोई चीज़ प्लान करी है और हमें लगता है कि हमें इसमें भी जाना है, पढ़ना भी है बट हमें वहाँ भी जाना है, तो हम कोशिश करते हैं, कॉन्स्टेंटली हम रिप्लाई करें, कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि हम वहाँ भी नहीं कर पा रहे और हम यहाँ भी नहीं जा पा रहे. जा इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हमें पढ़ना भी है और हम वहाँ पे पहुँच भी नहीं, हम वहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो हम अपने मोबाइल पे ही जो बच्चे गए हैं या हम कोई भी मैसेजिंग करते जा रहे हैं बट हम पढ़ भी नहीं रहे और हम वहाँ भी नहीं हैं. सो दिस ऑल्सो गिव्स अ मूड डिप. इसके वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है. सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें डिजिटल स्ट्रेस फील होता है और आज की डेट में इन सब चीज़ों के ऊपर भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है.
1: Right, ma'am. So, my next question is from you, Mr. Tangpu. Dr. Tangpu, what are some common signs that a student may be experiencing digital stress?
2: Well, thank you, Srijan. Poor academic performance, social isolation, disrupted sleep patterns. See, when students show this kind of signs, having poor academic performance or social isolation, and having poor sleep patterns. Now, these are the signs. When they show this, then we can say that our students, our children are experiencing digital stress. Well, whether you call it digital stress or digital fatigue, or some may call it techno stress, or even some say screen burnout, whatever you call it, this is the term we are talking about today. Every parent is talking about this digital stress. Teachers are talking about this digital stress or techno stress faced by our students. Now, driven by a mix of online learning, even social media saturation, and constant notifications from the gadget, digital stress impacts a student's well-being across physical or cognitive, it could be emotional or mental, and even behavior domains of every student, every individual students. Now, on the cognitive domains, there are signs of difficulty in focusing. Now, we see that students have lost the power of concentration in their studies. Even not only studies, their attention span is drastically shortened. They experience a less attention span, struggle to think clearly, or they become easily distracted even during the classes. And their independent study that teachers give to them, that yields no visible result. So this is to do the
1: Yes, sir. So fine, we are now well aware of...
2: And there are signs of the glucose's cognitive overload. Hello, Srijan, can you hear me?
1: Yes, sir, you're audible.
2: Srijan, are you able to hear me?
1: Yes, yeah, you're audible.
2: Right. I was talking that there is a decline in retention and memory power among the students nowadays. See, today we see too much dependence on digital screens, and excessive reliance has weakened the memory power. So a vocabulary retention, and therefore it impairs the ability to absorb complex reading materials. Second point, I want to talk about the psychological domains. There is an increased anxiety among the children. Minor disruption or technological issues, such as a slow internet connection, that triggers this appropriate frustration among the children. They have anger or induced anxiety attacks. So there is a sign of decreased motivation, a strong indicator.
1: So yes, now we are well aware of the theme of our today's title, which is we are discussing in today's Sahyog session. As we are discussing the topic, Screen to Serenity, Managing Digital Stress and Building Digital Well-being. So now we are move on to our next question from you, Babita ma'am. So Babita ma'am, aapse yahan par janna chahenge, what are some simple ways students can reduce unnecessary screen time?
3: Okay. There are many ways, but मैं जिस पे emphasis करना चाहूँगी सबसे पहले, मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप अपने smartphone को हटा दीजिए या फेंक दीजिए. It is not about that. It is about using this smart gadget very nicely. कितना आप उसको properly use कर सकते हो. No technology कभी भी goal नहीं है.
1: Okay, let's we begin with the more about today's topic. We are showing you our topic once again. We are discussing in Sahyog session, Screen to Serenity. मैं दोनों ही experts.

0: विल नाउ प्रोसीड विद आवर क्वेश्चन. मैंने अब बबीता मैम आपसे यहाँ पर जानना चाहा है, व्हाट आर सम सिंपल वेज स्टूडेंट कैन रिड्यूस अननेसेसरी स्क्रीन टाइम?
1: So the very first way is that the golden 60 minutes bookends. इसमें हमें क्या करना है, जब हम उठते हैं तब के 60 minutes और सोने के पहले के 60 minutes. Stop using any of the gadget, any mobile, any laptop, any screen at all. Use your physical alarm for getting up. 70% time the research work has shown globally that बच्चे जब मोबाइल पे अलार्म लगाते हैं तो वो उसको अपने पास रखते हैं. अगेन दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल. उठते के साथ वो अपना टाइम वहां पे वेस्ट करते हैं. सो गोल्डन थिंग इज गोल्डन 60 मिनट्स इज मॉर्निंग 60 मिनट्स एंड स्लीपिंग टाइम 60 मिनट्स. देर शुड बी नो स्क्रीन एट ऑल. अनदर थिंग इज टेम योर नोटिफिकेशंस. जो आपके नोटिफिकेशंस आते हैं उसको पहले आप टर्न ऑफ कर दो. कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर दो मिनट पे आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ पॉपअप हो और एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड और यू गेट एनी मैसेजेस और यू गेट एनी कॉल. यू हैव टू फिक्स अ स्लॉट फॉर योर सेल्फ दैट ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम और आफ्टर टू आवर्स आई विल बी सीइंग माई नोटिफिकेशन और आफ्टर थ्री आवर्स और इवनिंग 6 o'clock और एट नाइट 9 o'clock before sleeping, before 1 hour, I will check my notification and then I'll go to the bed. That's it. You have to stop that notifications popping up again and again. That will also help you in reducing your digital stress. Another thing is out of sight of the sleep zone. आप जहां सोते हैं उसके आसपास mobile, there should be no mobile at all. The charging point of your child's mobile should be outside the room. या तो आप अपने रूम में रखिए, अपने बच्चे के रूम से बाहर रखिए, या कोई एक कॉमन पॉइंट आप बनाइए जहां पे कि आप सबका मोबाइल एक साथ चार्ज होता हो. अनदर थिंग इज एक्टिव ब्रेन ब्रेक. आप अपने ब्रेन को जैसे पढ़ने के बीच में भी ब्रेक देते हैं, वो ब्रेक शुड बी टेकन एज अ ब्रेक, not as a license to use your digital screen or laptop or anything. Do something physical. Go in the balcony, stretch, drink some water, listen to soft music, do some any game in the sense physical game. Chess khel liya aapne, stretching kar li aapne, koi ek workout kar liya, kuch bhi, anything. You can even, many children, they start painting, sketching also in between the break. The break has to be meant as a break other than screen. Talk and don't text. आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजना है या मुझे मेरे फ्रेंड से कुछ पूछना है डिजिटली, स्टॉप टेक्सटिंग. आप उसको फोन करके अपने दोस्त को, यू टॉक टू योर फ्रेंड एंड फिनिश ऑफ दैट कन्वर्सेशन so that you are able to focus, because whatever you will speak, he or she will reply and you will get the final reply and you can focus on your studies. Messaging mein kya hota hai, aap message karke rakh dete hain aur aap wait karte rehte ho mobile ki taraf, mere friend ne dekha ki nahi dekha, kya reply kiya, fir mujhe reply karna hai. So that same conversation takes around more than 1 hour, kyunki wo aap unko ek text ka message karenge, fir wo aapko uska reply karenge, fir aap unko reply karoge. So it's a more time wasting process. So rather than doing that, call up your friend, call up the person whom you want to whom you want to interact. Another thing is 3 second pause. जब भी आप कोई भी gadget खोलने जा रहे हैं या कोई भी काम आपको screen पे है, पढ़ने से ही related चाहे क्यों ना हो, first you take a pause, think, is it that important? Can it be done via textbook? Can it be done via my help books? Can it be done via my sample question papers? अगर वो book से वो हो सकता है, screen पे जाने की जरूरत नहीं है. That 3 minutes of dopamine जब आप अपने आप को रोक लेते हो, आपका आधा stress वहीं खत्म हो जाता है. These are the few ways you can implement and reduce your digital stress.
0: Thank you so much, ma'am. और आप, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे प्रयास हैं जो कि हर लर्नर, हर स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए जो कि डिजिटल स्ट्रेस से बचना चाहते हैं और डिजिटल वेलबींग की तरफ बढ़ना चाहते हैं. सो डॉक्टर वारसिंह टांगपू, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स? वट आर सम वेज लाइक टू डेवलप? बबीता मैम आप प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ.
1: ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. आजकल पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा जरूरत है गाइड करने की बच्चों को. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारे पेरेंट्स से कि बच्चे हमेशा दे लीड बाय एग्जांपल. अगर मैं मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं मेरे बच्चे को बोल रही हूँ कि बेटा आप मोबाइल रख दो पढ़ने बैठ जाओ, वो नहीं करेगा. सबसे पहले हमें हमारा मोबाइल साइड में रखना पड़ेगा बिफोर हम बच्चों को कोई चीज बोले. हमें वो चीज करनी है तब बच्चा उसे फॉलो करता है. कोई भी बच्चा किसी भी चीज को देख के जितनी जल्दी सीखता है बोलने पे उससे कम जल्दी सीखता है. सो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम हमेशा उसे करके दिखाएं. अनदर थिंग इज वी नीड टू को क्रिएट अ बाउंड्री, राइट? वी हैव टू. हम कभी भी ये नहीं कर सकते कि नहीं अच्छा तुम्हारे मार्क्स कम आए बेटा, नाउ आप अब आज से आपका सब कुछ बंद. नहीं, यू हैव टू क्रिएट अ बाउंड्री. यू हैव टू सेट सर्टेन रूल्स कि ओके टुडे यू विल बी यूजिंग फॉर दिस मच टाइम, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू डू अ गुड जॉब और दिस थिंग सो वी कैन इंक्रीज 5 मिनट्स और 10 मिनट्स. बट यू नीड टू क्रिएट अ बाउंड्री. आप आज के डिजिटल फेज में बच्चे को टोटली अलग सेपरेट जोन्ड आउट करके नहीं रख सकते हो. आपको ये चीजें भी सिखानी उतनी ही जरूरी है, बट कैसे बैलेंस करना है दैट इज इम्पोर्टेंट. एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया, एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया, वो पक्का उस चीज को फॉलो करते हैं, राइट? अनदर थिंग इज

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं, एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा।

0: नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? गॉड्स ब्यूटीफुल आंसर वॉज, द थिंग दैट सरप्राइजेस मी द मोस्ट अबाउट दीज ह्यूमन बींग्स इज दीज ह्यूमन बींग्स दे इन्वेस्ट देयर कंप्लीट हेल्थ टू गेन वेल्थ एंड आफ्टर मेनी मेनी इयर्स दे हैव टू री इन्वेस्ट देयर कंप्लीट वेल्थ टू रीगेन हेल्थ। कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें टू डू सम एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मींस माइंड और फिजिकल मींस शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस बाई डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो, और जब मैं कहूंगा टू तो महसूस करना है कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ चलिए, ओके हियर वी गो, वन टू। खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके एक और बार करेंगे, वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वी बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा वन तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो, या या या। फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए, ओके? ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से भोजन बनाया, यही हमारा जीवन है क्या, जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहें? अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट? भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना? जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना, और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस. ओके, यू नीड टू हेल्प एवरीवन. इसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड, मैं कहता हूं मैं आज के दिन भोजन बनाता हूं. एंड टेक कुकिंग एज योर हॉबी. जैसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है. ऐसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए, और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल बनता है.
1: சைபர் மோசடியில பணம் போயிடுச்சே, இனி

0: मलेशियस ऐप इंस्टॉल होने के बाद फोन में कौन से वार्निंग साइंस दिखाई दे सकते हैं?
1: कुछ ना कॉमन वार्निंग साइंस होते हैं जो यूजर्स को हमेशा नोटिस करने चाहिए ऐसे कंडीशंस में। सबसे पहले तो फोन में ऐसी एप्स दिखना जो उन्होंने खुद इंस्टॉल नहीं की। दूसरा, बैटरी जो है फोन की या डिवाइस की अचानक तेजी से ड्रेन होने लगती है या फोन गर्म रहने लगता है। थर्ड नंबर पे आता है डाटा यूजेज जो है वो आपका अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जो डाटा है वो साइलेंटली कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। अचानक आपके फोन में बहुत सारे एड्स या पॉपअप्स आने लगते हैं, फोन स्लो हो जाता है या ऐप खुद ब खुद ओपन होने लगती है या क्लोज होने लगती है। डिवाइस पर एक नया वीपीएन कनेक्शन दिखना शुरू हो जाता है, हमेशा ऑन रहता है जबकि यूजर ने खुद कभी कोई वीपीएन सेटअप ही नहीं किया होता। कुछ मैलिशियस एप्स जो होती हैं वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि जो उनका ट्रैफिक है वो ट्रैफिक अपने हिसाब से वो खुद कंट्रोल कर सके, उसका रूट खुद के खुद प्लान कर सके। इसका सेकंड लास्ट है सेटिंग्स में जाकर आपको नॉर्मल तरीके से अनइंस्टॉल करना ट्राई करके आप ये सब चीजें जो हैं वो ऑप्शंस को आप बार बार अगर वापिस जा रहा है और आप उसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको पता लग सकता है कि भी आपके फोन में कुछ ना कुछ गलत हो गया है। SMS या कॉल लॉग्स हैं, ऐसे में उसकी एंट्रीज अगर आपको दिख रही है जो कि आपने नहीं की है तो भी आपको पता लग जाएगा कि भी ये कुछ गड़बड़ इसमें हो गई है। बैंक की अनएक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शन की अलर्ट्स अगर आपके पास आ रही है तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि भी कुछ ना कुछ मेरे फोन में बैकग्राउंड में चल रहा है। अगर इनमें से किसी भी तरीके का कोई भी साइन आपके फोन में दिखे तो आपको तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है और वो आपको करना चाहिए।
0: मलेशियस ऐप इंस्टॉल होने के बाद फोन।
2: तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि किस प्रकार से अगर गलत ऐप्स यानी मलिशियस ऐप्स यानी कोई भी ऐसा वायरस है, कोई ऐसी ऐप है जो आपके डेटा चोरी करना चाहती है या कुछ और आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं, वो अगर इंस्टॉल हो गए हैं तो साइन क्या होंगे, कैसे पता चलेगा? जैसे उन्होंने बताया बैटरी ड्रेन होने लगेगी जल्दी, डेटा जल्दी ख़त्म होने लगेगा आपका, या फिर आप कुछ ऐप्स को अनइंस्टॉल कर रहे होंगे बट वो नहीं हो रही है, इस तरीके से बार बार बैंक के ट्रांजैक्शंस के मैसेजेस आ रहे हैं आपको, तो आपको पता चल सकता है कि आपके जो फ़ोन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो दोस्तों, अगर कोई स्कैम हो जाता है तो क्या करना है? आई थिंक रेडियो मधुबन जो सुनते हैं उन्हें तो ज़रूर मालूम होगा कि क्या करना है।
3: डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ माँ कसम।
2: ये एक मीम का इस्तेमाल करके यहाँ पे साइबर दोस्त ने ये बताया है कि भाई आप परेशान ना हो, डिप्रेस ना हो, लेकिन अगर कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट कीजिए 1930 पर, यानी कि 1930 पर। कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, कोई भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है जिसमें आपको लगता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो आप कंप्लेंट तुरंत कीजिए। जो पहले 24 घंटे होते हैं, जो पहले शुरुआत का समय होता है, उसको बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: प्रेशर में बैंक से लार्ज अमाउंट ट्रांसफर करने को बोले तो कस्टमर को ट्रांजैक्शन करने से पहले क्या करना चाहिए?
4: यहाँ पर सबसे बड़ा प्रेशर का खेल हो जाता है कि आप उनको इतना मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, इतनी प्रेशर डाल दे रहे हैं उन पर कि वो इसमें समझ नहीं पाता है कि क्या करना है। तो सबसे पहले तो इसमें उनको अपने कस्टमर्स अपने रिश्तेदार को बताना चाहिए। दूसरा, पुलिस अथॉरिटीज को बताने की जरूरत है कि ये ऐसा केस हो रहा है, या फिर वो किसी बैंक अपने शाखा में भी जा सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं पास्ट में जहां पर वो हमारी शाखा में आए हैं और हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा। सो हमारे अधिकारी इस बारे में अवेयर हैं कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं और इनसे कैसे बचा जाए।
2: तो दोस्तों, सुना आपने कि अगर इस तरह से कॉल आता है बैंक की तरफ से आपको बोला जाता है तो बिल्कुल भी वो ट्रांजैक्शन ओटीपी आपको नहीं बताना है, किसी को भी नहीं देना है। रिसेंटली इस तरह की चीज़ें और हुई हैं, लेकिन अगर आपको बोला भी जाता है ना, आप कुछ कहिए मत, आप बिजी हैं या जो भी है, फोन काट दीजिए और आप जाके बैंक में पता करिए, आप शाखा पे जाइए, मैनेजर से बात कीजिए या वहाँ जो लोग हैं उनसे कंफर्म कीजिए। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इसके बारे में जानकारियां भी होती हैं कई बार कि उनके बैंक के नाम से स्कैम हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे भी यूट्यूब पे लोग वीडियोस बना के डालते हैं, रिव्यूज छोड़ते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त कुछ भी एक्शन मत लीजिए, ओटीपी मत बता दीजिए, पैसे ट्रांसफर मत कर दीजिए। तो दोस्तों, रखिए इस बात का ख्याल, तब तक हम सुनाते हैं आपको एक बहुत सुंदर सा गाना। कार्यक्रम युवा मंच पर रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तंबाकू क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है, लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
4: गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप सुन रहे हैं उड़ान। आज के इस विशेष कार्यक्रम में डगर है मुश्किल अगला गीत जरूर होगा और उसके साथ चतुर किसान और राजा के बीच की बातें आप तक पहुंचाने मैं जरूर वाली हूं। तो चलिए दोस्तों, आज कहानियां आपके लिए होंगी। खास इस बात का ध्यान दें और आज वर्ल्ड साइट डे है। हर एक इंसान की नज़र बहुत इम्पॉर्टेंट है और नज़र किसी भी रीति चला ना जाए इसका ध्यान अवश्य रखना और स्वस्थ रहना, मुस्कुराते जरूर रहना।

0: डगर है मुश्किल, कठिन सफर है। जीवन में कई ऐसी बातें हमारे समक्ष आती है जो हमारे लिए कई बार वो कठिनाइयां शिक्षा का आधार भी बन जाती है। चतुर किसान और राजा की कहानी अब आपके लिए।
1: परिस्थिति के अनुसार वो अपनी ही कही बात को झूठा साबित कर देता था, अपनी बात से ऐसे बदलता था कि गिरगिट भी शर्मा जाए। सुधीर के भोले भाले और सच बोलने के स्वभाव के कारण हमेशा लोग उसका मजाक उड़ाते रहते थे। गुरुजी के पास लौटते समय,
2: सुरेश तू गुरुजी के पास झूठ क्यों बोला कि माँ बीमार थी, इसलिए तुम घर का सारा काम किए हो?
3: मैंने गुरुजी का घर पर दिया गया काम नहीं किया था। अगर मैं सच बोल देता तो गुरुजी से मार भी खाता और सभी बच्चे मजाक उड़ाते सो अलग।
2: लेकिन इसके लिए माँ को बीमार बताना ठीक नहीं है।
3: अच्छा तो सच बोलकर मार खाना ठीक है क्या?
2: हम वैसा काम ही नहीं करेंगे कि हमें झूठ बोलना पड़े।
1: दोनों भाई अपने अपनी बातों को सही ठहराते हुए घर आ जाते हैं। आ गए बेटा, चलो खाना खा लो, उसके बाद खेत पर जाकर पिताजी को खाना और दवा पहुंचा दो।
3: माँ मुझे ठंड लग रही है, सुधीर को भेज दो।
1: ठीक है, तो तुम घर का सारा साफ सफाई का काम कर दो, सुधीर खाना और दवाई लेकर चला जाएगा।
2: ठीक है माँ, मैं ही चला जा रहा हूँ पिताजी के पास।
1: ये ले और खाना खाकर जल्दी जा, वैद्य जी ने कहा है कि समय पर दवा देनी है। सुरेश खाना और दवा लेकर खेत की ओर चल देता है। रास्ते में कुछ दोस्त मिल जाते हैं और सुरेश उनके साथ खेलने लग जाता है। इधर खेत में ठंड ज्यादा पड़ रही थी, रतन को भूख भी लगी थी, लेकिन घर से कोई खाना लेकर अभी पहुंचा नहीं था। रतन बहुत देर तक इंतजार करता है, उसके बाद पानी पीने के लिए बगल की नदी के पास जाता है। तभी उसके दिमाग में एक झटका लगता है और उसे पैरालिसिस मार देता है, वो वहीं गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वहां सुरेश पहुंचता है।
2: पिताजी, पिताजी आप कहाँ हो? आपके लिए खाना और दवा लाया हूँ। पिताजी किधर हो, बोलते क्यों नहीं? अरे ये ऊ आह की आवाज किधर से आ रही है? पिताजी क्या आप ही बोल रहे हैं?
1: सुरेश दौड़कर रतन के पास पहुंचता है।
4: अरे पिताजी आपको क्या हो गया, आपका हाथ पैर कैसे मुड़ गए हैं? अरे कोई बचाओ, रामू काका, हरिया भैया दौड़कर यहाँ आओ, देखो ना पिताजी को क्या हो गया।
1: खेत पर काम कर रहे सभी लोग वहाँ दौड़ कर पहुँचते हैं। किसी तरह रतन को टांग कर घर लाया जाता है। घर पर सुनीता रोने लगती है, घर में कोहराम मच जाता है। वैद्य जी आते हैं और बताते हैं कि रतन को पैरालिसिस का अटैक आया है। कुछ दवाइयां देकर वो चले जाते हैं। अगले दिन सुबह,
5: देखो बेटा पिताजी से अब काम तो होगा नहीं, इसलिए अब खेत पर काम तुम दोनों को ही करना होगा।
4: भैया हमेशा पिताजी के साथ खेत पर जाते थे, इसलिए वे ही खेती करेंगे, मैं मंडी में अनाज बेच आऊंगा।
2: सुरेश ठीक कह रहा है माँ, मैं खेत पर चला जाऊंगा, पिताजी के दवा के लिए पैसे चाहिए। सुरेश कोठरी में जा, अनाज पड़े हैं और उन्हें मंडी में बेचा।
4: ठीक है भैया, मैं उसको 4 गुना कीमत पर बेचाऊंगा।
2: झूठ और बेईमानी मत करना।
1: दूसरे दिन सुबह सुरेश मंडी में जाकर लालची सेठ करोड़ी मल से कहता है,
3: सेठ जी आपके लिए ऐसा माल लाया हूँ कि आप दंग रह जाओगे।
6: ऐसा क्या लाए हो कि इतना गुप्त से बता रहे हो?
3: मेरे पास 3 क्विंटल ऐसे मकई हैं जिसे खाकर आदमी अमर हो जाएगा, वह जिस उम्र का है उसी उम्र में रह जाएगा।
6: अच्छा, पर मैं विश्वास कैसे कर लूं कि तुम्हारी मकई खाकर अमर हो जाऊंगा?
3: अच्छा विश्वास नहीं हो रहा हो तो ठीक है, मैं दूसरे सेठ से इसे बेच देता हूँ। वैसे भी उस सेठ को ज्यादा जरूरत है, वह कई दिनों से बीमार भी है। उसके रिश्तेदार तो चाहते हैं कि जल्दी मरे ताकि उसकी जीवन भर की संपत्ति को हड़प सके।
6: अरे अरे तुम तो नाराज हो गए, आज कल के नौजवानों में यही एक समस्या है, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हो। तोल मोल तो मेरा पेशा है, कितने में दोगे ये जादुई मकई?
3: 7,000 मोहरे प्रति क्विंटल के हिसाब से पूरे 21,000 मोहरे लगेंगी।
6: क्या 30,000 मोहरे प्रति क्विंटल मकई की कीमत 7,000 मोहर?
3: धीरे बोलो सेठ, कोई सुन लेगा तो पीछे पड़ जाएगा। ठीक है सेठ मैं चलता हूँ, आपकी जान की कीमत 30 मोहरे लायक ही है, दूसरे सेठ 30,000 मोहरे आराम से दे देंगे इसके।
6: बेटा तुम उत्तेजित बहुत जल्द हो जाते हो, मैंने कहा थोड़ा बहुत कम कर दो।
3: अरे सेठ चलो 20,000 मोहरे लगेंगी, अगर हाँ हो तो बोलो, नहीं तो मैं अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ाऊंगा।
6: एक पल रुको भाई, मैं अपने साला से पूछ लेता हूँ।
3: अच्छा सेठ जी एक बात बताइए कि आपका बेटा आपका व्यापार आपके बाद संभाल लेगा?
6: अरे वही ठीक होता तो साला को बुलाता कारोबार संभालने के लिए।
3: यानी आपके बाद आपके साला आपके जीवन भर की पूंजी का मालिक होगा। अच्छा आपका साला मूर्ख है क्या?
6: क्या बकते हो, वह व्यापार को दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ा सकता है, उसे हर नाफा नुकसान का ज्ञान है।
3: तो वह चाहेगा कि आप अमर हो जाएं और वह जीवन भर आपके यहाँ नौकरी करे?
6: नहीं नहीं कभी नहीं चाहेगा, वो तो चाहता है कि कब मैं आँख बंद करूं और वह मेरे बेटे को बेदखल कर राज करे। ऐसा करो तुम 20,000 मोहरे लो, मैं अपने आदमी से बोरिया उतरवा लेता हूँ।
3: तुमने बहुत ज्ञान की बात बताई है, अब एक और ज्ञान की बात सुन लो सेठ जी। ये मकई जादुई है, ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो कोई भी इसे चुरा लेगा और इसके जगह पर साधारण मकई रख देगा। और हाँ एक एक दाना रोज इसमें से खाना है।
5: सेठ करोड़ी मल से 210 मोहरों की मकई के बदले 20,000 मोहरे ठग कर सुरेश वापस अपने गांव चल देता है। इधर सुधीर अपने खेत पर हल चला रहा होता है, तभी उधर से जग्गी किसान आता है।
7: अरे बेटा सुधीर, मैं जरा अपने बेटे को नानी के घर पहुंचाने जा रहा हूँ, तुम मेरा खेत जोत दो।
2: ठीक है काका, आप जाओ मैं आपका खेत जोत दे रहा हूँ।
5: उधर सुरेश मंडी से लौट रहा था तो देखा कि सुधीर जग्गी काका का खेत जोत रहा है।
3: अरे भाई तू यहाँ क्यों काम कर रहा है, अपने खेत का काम पूरा हो गया क्या?
2: नहीं भाई, वो जग्गी काका अपने बेटा को नानी घर छोड़ने गए हैं, उन्होंने कहा है कि पहले मेरा खेत जोत देना।
3: अरे भाई वो तो अपना काम करने गया हुआ है और तू यहाँ अपना काम छोड़कर उसका काम कर रहा है। शाम हो गया है, चला बैलगाड़ी पर बैठ घर चलते हैं।
5: दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर घर चल देते हैं।
2: अरे ये बैलगाड़ी पर मिठाइयाँ और जलेबियाँ किसकी हैं? इतने सारे नए कपड़े कहाँ से आए?
3: अरे इसमें मेरे तुम्हारे माँ और पिताजी के लिए कपड़े हैं, उस पतीले में मिठाइयाँ हैं।
2: तुमने अनाज बेचकर शौक के सामान खरीद लिए, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं थी, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी पिताजी की दवाइयाँ और पौष्टिक खाने हैं।
3: अरे भैया मैं दवा भी लाया हूँ, वैद्य जी के घर होते हुए आया हूँ, पूरे महीने का दवा लेकर आ रहा हूँ, 120 मोहरे वैद्य जी को देकर आ रहा हूँ।
5: दोनों बातें करते हुए घर पहुँच जाते हैं। माँ सुनीता बाहर ही खड़ी दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे सुरेश तुम तो मंडी गए थे ना, फिर ये सुधीर कहाँ मिल गया तुम्हें?
3: माँ मैं मंडी से लौट रहा था तो देखा कि भैया अपना खेत छोड़कर जग्गी काका के खेत जोत रहा था, फिर मैं इसे गाड़ी पर बिठा कर ले आया।
5: क्यों सुधीर, अपना काम छोड़ दूसरे का काम क्यों कर रहा था?
2: वो माँ जग्गी काका अपने बेटे को उसके नानी घर छोड़ने गए हैं, उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरा खेत जोत दो।
3: अच्छा तो मना कर देते, बोल देते कि मुझे अपना काम है, मैं नहीं कर सकता आपका काम।
2: ऐसे कैसे बोल देता, वह हमसे बड़े हैं, उन्हें हम इस तरह नहीं बोल सकते। माँ देखो सुरेश अनाज बेचकर सारे पैसे का मिठाइयाँ और दवाई ले आया है, एक भी पैसा घर खर्च के लिए बचाकर नहीं लाया।
5: ये पूरा सामान तो लगभग 500 मोहरों का लग रहा है। सुरेश सच सच बता, तूने ये पैसे कहाँ से लिए?
3: कसम

0: माँ, मैं यह सारा सामान अनाज बेचकर ही लाया हूँ और यह 1500 मोहरे भी मेरे पास बचे हैं।
1: सुरेश बताता है कि किस तरह लालची सेठ को उल्लू बनाकर वो 20,000 मोहरे ऐड कर लाया है। सुधीर सुरेश को समझाता है कि ये बहुत बुरी बात है, कल जाकर वो उसकी मोहरे वापस कराए। उधर राजा का रसोईया सेठ करोड़ी मल के यहाँ राशन लेने जाता है और मकई की वही बोरियों को गाड़ियों पर लादने को कहता है।
2: महाराज जी, ये 3 बोरियां छोड़कर आप कोई भी मकई की बोरियां हमारे दुकान में से ले सकते हैं, पर मैं ये आपको नहीं दे सकता।
3: अच्छा, तो अच्छी गुणवत्ता वाली मकई अपने लिए और राज्य के मालिक राजा के लिए सामान्य मकई की बोरी? देखो सेठ, कान खोल कर सुन लो, राजन के लिए यही मकई जाएगा।
2: चाहे जो कुछ हो जाए, मैं ये बोरियां नहीं दे सकता।
4: क्या बात है मंत्री जी, ये शाही रसोईया को क्यों यहाँ लाए हैं?
0: महाराज, शाही रसोईया और सेठ करोड़ीमल दोनों बाजार में झगड़ रहे थे।
3: महाराज, ये सेठ करोड़ीमल अच्छे मकई को अपने खाने के लिए रखता है और खराब मकई को शाही भंडार में भेजता है।
2: महाराज की जय हो। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मकई की यह 3 बोरियों के अलावा दुकान में जितनी भी मकई की बोरियां हैं उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इन 3 बोरियों को नहीं दे सकता।
4: अच्छा, ऐसी क्या खास बात है इन 3 बोरी मकई में जो तुम हमें ये नहीं दे सकते?
2: महाराज, ये जादुई मकई की बोरियां हैं। इसको सेवन करने से आदमी अमर हो जाता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगा। इसे हमने एक किसान से 20,000 मोहरे देकर खरीदे हैं।
4: महाराज, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान को अमर बना दे। यह सेठ झूठ बोलकर हमें बहला रहा है। 200 मोहर के मकई को 20,000 मोहर में कौन बुद्धू खरीदेगा?
5: उस किसान को बुलाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
1: सैनिक सेठ करोड़ीमल के बताए हुए हुलिये पर सुरेश को पकड़कर राजा के पास पेश करते हैं। राजा के पास सुरेश सच सच बता देता है कि वो करोड़ीमल से पैसा ठगने के लिए ऐसा करके आया था।
4: सुरेश, तुमने बेईमानी और चालाकी से सेठ का मोहरे हेंट लिया है। इस अपराध के लिए हम तुम्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाते हैं, साथ ही करोड़ीमल को लालच न करने का चेतावनी दी जाती है।
6: महाराज की जय हो, मेरा नाम सुधीर है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। महाराज, हमारे गुरुजी बताए हैं कि अपराधी अगर अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो उसे सुधारने का अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए।
4: बातें तो बहुत अच्छी और समझदारी वाली करते हो बालक, लेकिन अपराध की सजा तो मिलनी ही चाहिए। क्या कहते हैं मंत्री जी?
0: जी महाराज, आप सही बोल रहे हैं।
4: ठीक है, कल सुबह जो भी पहला 3 लोग मदद के लिए आएंगे उनकी मदद तुम्हें करनी होगी। तुम्हारे पास 20,000 मोहरों में से 500 मोहरे अपने पास रख कर शेष मोहरों को मदद में लगाने की इजाजत है।
1: दूसरे दिन सुबह पहला फरियादी एक बूढ़ी औरत आती है।
7: महाराज की जय हो, कल रात आंधी में मेरा घर गिर गया, मेरी बकरी भी दबकर मर गई, मेरा कोई नहीं है, अब मैं क्या करूं? कैसे जीवन यापन करूं?
4: बताओ, इनकी मदद कैसे करनी चाहिए?
0: महाराज, इसे 5,000 मोहरे दे देते हैं।
4: सुधीर, तुम क्या कहना चाहते हो?
6: महाराज, मुझे लगता है कि 2 और फरियादी को पहले सुन लेते हैं, हो सकता है कि उन्हें इनसे ज्यादा की जरूरत हो।
4: बहुत अच्छे, और फरियादी बुलाए जाएं।
8: महाराज की जय हो, मैं एक राजमिस्त्री हूँ, मुझे काम 10 दिन बाद मिला है, 3 दिन से बैठा हूँ। 10 दिनों के घर खर्च के लिए कुछ मदद मिल जाती तो बहुत कृपा होती।
4: ठीक है, अभी बाहर प्रतीक्षा करो, तीसरा फरियादी को बुलाया जाए।
9: महाराज की जय हो, मैं एक पुजारी हूँ, मेरे मंदिर की कुटिया में अनाथ बच्चे रहते हैं, लेकिन जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हूँ।
4: आप कार्य तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं पुजारी जी, बताइए हम कैसे सहायता करें आपकी?
9: कृपया मेरे मंदिर के प्रांगण को पक्की 4 दीवारी घिरवाने की व्यवस्था की जाए और बच्चों की देखभाल करने के लिए एक आदमी की व्यवस्था की जाए।
4: अब बताओ, इनकी मदद कैसे किया जाए?
0: महाराज, इन सभी को बचे हुए 19,500 मोहरों में से मोहरे बांट कर दे देते हैं, सभी की जरूरत पूरी हो जाएगी।
4: सुधीर, तुम्हारा क्या विचार है?
6: महाराज, पुजारी जी को बच्चों को देखभाल और खाना पकाने के लिए एक आड़ की जरूरत है, राजमिस्त्री को काम की जरूरत है और बूढ़ी माँ को एक सहारे की जरूरत है।
4: हाँ, ये तो तीनों फरियादी ने बताया, अभी अब क्या करना है ये बताओ।
6: हमें लगता है कि पुजारी जी के अनाथ बच्चों के खाने और देखभाल के लिए बूढ़ी माँ उपयुक्त हैं। इनका कोई भी नहीं है तो एक दूसरे को सहारा हो जाएगा।
4: बहुत अच्छे बालक, लेकिन राजमिस्त्री के लिए क्या किया जाए?
6: महाराज, पुजारी के मंदिर के प्रांगण के चारों ओर चार दीवारी बहुत जरूरी है ताकि बच्चे जानवरों से सुरक्षित रहें। राजमिस्त्री को उसी काम में लगा दिया जाए।
4: बहुत अच्छा।
6: सेठ करोड़ीमल के बचे हुए मोहरों को मंदिर में दान कर दिया जाए ताकि उससे बच्चों का भला हो सके और चार दीवारी के लिए काम आए।
4: वाह, मैं तुम्हारे न्याय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे भाई का सजा माफ किया जाता है और तुम्हें मंत्री
10: अच्छी संगत के साथ आप अच्छी बातें जरूर सीख सकते हैं। तभी तो बड़े बुजुर्ग हमेशा हम सबको सलाह देते हैं कि अच्छी संगत रखो, और अच्छी संगत हमें नई चीजों को सीखने समझने में मदद करते। आज प्रातःकाल एक अजीब सा न्यूज मिला और हमारे बीच से नाना पाटेकर जी चले गए। तो चलिए, उनका एक फेवरेट गीत आज की उड़ान में मैं आप तक पहुंचाना जरूर चाहूंगी, और फिर एक और कहानी आपके लिए होगी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: காட்டு நோக்கர் ராஜு. आज बूढ़े असहाय अभय मुखर्जी मौत के बहुत करीब है।
1: लीजिए इस कागजात पर साइन कर दीजिए अभय साहब। आपने जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही बनाया है, देख लीजिए आप।

0: घर में कोई है?
1: आप कौन है, क्या चाहिए?
0: मैं एक परदेसी हूँ, ये घर आपका है?
1: हाँ, आपको चाहिए?
0: नहीं, वो दरअसल मेरा नाम बनिक मुखर्जी है, व्यापार के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। अगर कुछ दिन आप मुझे यहाँ रहने देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा।
1: लेकिन मेरे घर पे है क्यों?
0: यहाँ पर कोई होटल नहीं है और इस इलाके में रहने लायक कोई जगह भी दिखाई नहीं दे रही है। आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर रहने के लिए जितने पैसे लगेंगे वो मैं दूंगा।
1: पैसा दोगे? कितना दोगे बताइए ना।
0: जितना आप बोले, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं अभी भी कुछ एडवांस दे सकता हूँ।
1: आइए आइए आइए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। अरे आइए आइए आइए।
0: दरअसल आज मेरे पिता की बरसी है, इसलिए आज मैं चूड़ा दही और केला खाऊंगा।
1: अच्छा, दरअसल आज मेरे भी रिश्तेदार की मौत हुई थी, मैं भी वही खाऊंगा। लेकिन मेरे घर पे तो दही है नहीं।
0: बाजार तो पास में ही है, मैं जाकर दही ले आता हूँ, ठीक है?
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, ये क्या, यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं। अगर आप दुकान में गए तो दुकान वाला आपको बासी दही भी दे सकता है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपके लिए दही लेकर आऊंगा।
0: ठीक है, तो ये लीजिए पैसे।
1: आप पैसे दे रहे हो तो मैं क्यों ना बोलूं।

0: दरवाजा क्यों बंद रखा है? दरवाजा खोलिए, मैं देखो दही लेकर आ गया हूँ।
1: किसे ढूंढ रहे हैं?
0: अरे ये क्या बोल रहे हो आप, मेरे ही घर में मुझसे पूछ रहे हो कि किसका घर चाहिए?
1: ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये मेरा घर है।
0: अरे आपने ही तो कहा था कि बाहर जाके दही केला और थोड़ा चूड़ा लेकर, वही लेने गया था बस।
1: मैं दही लाने के लिए बोला था, बकवास बंद करो।
0: क्या बकवास? अरे बाप रे, अरे दरवाजा खोलिए वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, बता देता हूँ। हाँ
1: जो करना है कर लो, अभी जाओ यहाँ से।
0: व्यापारी बन के मेरे घर में घुसा है और मुझे कह रहा है यहाँ से जाओ, जबरदस्ती कर रहा है। देखो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुम बस देखते जाओ।
2: बनिक, तुम बोल रहे हो कि वो घर तुम्हारा है?
1: हाँ वो मेरा घर है।
0: बिल्कुल भी नहीं, देखिए देखिए वहाँ मिताई चाचा खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए मैं उस घर में रहता हूँ या नहीं।
2: हाँ ये सच है, इतने सालों से तो मैं उसी घर में राजू को देखते आ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि अभय मुखर्जी का बेटा ही राजू है।
1: आप लोगों को गलतफहमी हुई है।
0: किसी को गलतफहमी नहीं हुई है, आप झूठ बोल रहे हैं।
2: अच्छा राजू, वो घर तुम्हारा ही है ना, इस बात का सबूत दे सकते हो?
0: बिल्कुल दे सकता हूँ, मेरे पास कागजात भी है उसके।
2: ठीक है, फिर तुम उस घर में जाकर कागजात लेकर आ जाओ, सभी लोग फिर से आएंगे, कल फिर से सभा बैठेगी यहाँ पर।

0: अरे ये क्या, मैंने यही तो अभय मुखर्जी के कागजात साइन करके रखे थे, अरे लेकिन गए कहाँ?
1: कुछ ढूंढ रहे हो?
0: मेरे कागजात हटाकर मेरे ही साथ साजिश कर रहे हो? लाओ दे दो मुझे मेरे कागजात, वापस कर दो, बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे कागजात वापस करो।
1: वो नकली कागजात मैंने फाड़ दिए।
0: क्या बोल रहे हो?
1: मैं सब जानता हूँ। होशियारी करके अभय मुखर्जी के मौत के समय उनसे झूठ बोलकर तुमने ये घर अपने नाम लिखवाया था।
0: झूठ है ये, धोखेबाज मैं नहीं तुम हो।
1: धोखेबाज कौन है कल पता चल जाएगा। आज रात कहाँ बिताओगे वो सोचो। जाओ बाहर, जाओ जाओ।

0: कागजात के बिना तो साबित नहीं किया जा सकता है राजू कि वो घर तुम्हारा ही है।
1: इस आदमी ने मेरे घर पे से कागजात चोरी किए हैं। अब मुखर्जी जब मरे तब वकील को बुलाकर मेरा नाम उसके अंदर लिखवाया था। हाँ
0: ठीक है, फिर उस वकील को बुलाया जाए।
2: जानकारी मिली है कि वो वकील अब जिंदा नहीं है।
0: तब तो फिर अब कोई सबूत ही नहीं बचा है।
1: लेकिन मैं तो इस घर में बहुत सालों से रह रहा हूँ, सभी लोग मुझे पहचानते हैं, यही तो सबसे बड़ा सबूत है।
0: सिर्फ पहचान होने पर साबित नहीं हो सकता है कि वो घर तुम्हारा है। अब हम लोग क्या करेंगे?
3: सुनिए, इस गांव में अभी भी एक वृद्ध इंसान है, वो बूढ़ी दादी। मैंने सुना है उन्हें इस गांव के बारे में सब कुछ पता है।
0: ठीक है, फिर हम सभी उनके पास ही चलते हैं, शायद वो ही कोई समाधान कर दे।
4: देखो बच्चों, मैं अब आंखों से देख नहीं पाती हूँ, इसलिए तुम लोगों में से कौन उस घर का मालिक है ये मैं अपनी आंखों से देखकर बता नहीं पाऊंगी। और तुम लोग भी अब बड़े हो गए हो, तुम लोगों के चेहरे भी मुझे याद नहीं है।
0: तो फिर क्या उपाय है?
4: एक तरीका है जानने का, और वो है उस घर का इतिहास।
0: इतिहास? इतिहास जानकर क्या होगा?
4: इतिहास ही तो जवाब देगा। देखो बच्चों, मेरे तीन सवालों के जवाब जो सही देगा वही उस घर का असली मालिक होगा। तो मेरा पहला सवाल ये है, अभय मुखर्जी की मृत्यु के समय मुखर्जी भवन में नियम के अनुसार एक कील गाड़ी गई थी। वो कील जो दिखा देगा वही उस घर का मालिक होगा। मिताई, इन लोगों के साथ जाओ, देखकर मुझे बताओ।

0: sai de cada um. Vida já já, aí, de quê?
1: हाँ सच में वहाँ पर तो कील है।
0: तो साबित हो ही गया ना कि इस घर का मालिक मैं हूँ। रखवाली मैं करूँ और मेवा तुम खा लो।
2: ठीक है अभी के लिए वो घर राजू का है। अब ये रहा मेरा दूसरा सवाल। उस घर में एक बहुत पुराना वास्तु दोष का एक सांप रहता है। तुम दोनों में से ये कौन बता सकता है कि वो कहाँ पर रहता है?
0: बताओ।
3: मैं नहीं जानता।
0: मैं जानता हूँ, उत्तर दिशा में बरगद के पेड़ के नीचे, इसीलिए वो पेड़ कोई काट नहीं पाया।
2: सही बोला। अब ये रहा मेरा तीसरा सवाल।
0: दादी जी, मैं तीसरे सवाल का जवाब जानता हूँ, क्योंकि वो घर मेरा ही है।
2: ठीक है, लेकिन ये तीसरा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जवाब जो दे देगा, उसके बाद सब जान जाएंगे कि वही इंसान उस घर का मालिक है।
0: हाँ, पूछिए।
2: उस घर की मालकिन को किसी चीज का बहुत शौक था, वो क्या था? चलो बताओ बच्चों।
0: बागवानी बनने का?
3: नहीं, आसन बनाने का।
2: सही कहा, वो बहुत सुंदर आसन बनाया करती थी। वाह, उसके बेटे के मुंह झूठी के समय मैंने एक आसन के बीच में एक फूल बनाया था,
3: अलग अलग रंगों की।
2: हाँ बच्चे, उसने अपने पिता के घर जाते समय सिर्फ वही आसन लेकर एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने पिता के घर चली गई थी। वो बोल रही थी कि बस वही उसके ससुराल की निशानी है।
3: वो आसन अभी भी मेरे पास है, माँ ने बहुत जतन करके उसे रखा था, मरने के पहले उन्होंने मुझे दिया था। लीजिए ये देखिए, यही है वो आसन।
0: अरे ये तो बहुत ही अजीब इंसान है। दादी ने कहा कि उन्हें आँखों से दिखाई कम देता है, फिर वो कैसे देख पाएगी असली है या नकली?
2: बच्चे, असली नकली हर वक्त सिर्फ आँखों से नहीं देखा जाता है, आँखें भी धोखा दे सकती है, और तब देखना पड़ता है मन की आँखों से। ओ बच्चे कहाँ है, लाओ दो मुझे वो आसन, जरा देखूं।
0: दादी जी, हाथ लगा के कैसे मालूम पड़ेगा कि यह आसन नकली है या असली?
2: पता चलता है बच्चे। वाह, बहुरानी ने कितनी मेहनत से ये आसन बनाया था। ये आसन मेरी बहू का है। नाती, तुम ही मेरे असली नाती हो, उस घर के वंशज।
3: आपका बहुत धन्यवाद दादी जी। स्वर्गीय अभय मुखर्जी मेरे पिता हैं। इस बात का सारा सबूत मेरे पास है, मैंने जानबूझकर उसे छुपा कर रखा था।
1: इसका मतलब ये साबित होता है कि उस घर का मालिक ये है। आज से ये उसी घर में रहेगा और राजू को गांव से बाहर निकाल दिया जाए जल्द से जल्द।
0: मुझे माफ कर दीजिए, इतने सालों से मैं इस घर में रहा, इतने सालों से मालकिन की सेवा की, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, बताइए मुझे।
3: सिर्फ इसी वजह से मैं आपको माफ कर रहा हूँ। आप उसी घर में रहोगे मेरे बड़े भाई की तरह। इतने सालों तक जब आपने उस घर की देखभाल की है तो आगे भी देखभाल कीजिए। मैं विदेश में रहता हूँ लेकिन बीच बीच में आता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा गांव है।
0: जरूर आना भाई, जरूर आना, मैं तुम्हारा अपने भाई के जैसे ही ख्याल रखूँगा और एक भाई की तरह मैं इस घर को भी संभालूंगा, ठीक है?
4: देखा किस प्रकार झूठ समझदारी से हमारी दादी ने पहचान ही लिया। दादी माँ लोग प्यार के साथ साथ सारी चीजें जानती थी, समझती थी, और परख करना तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, मजेदार ये कहानियां आपको आज उड़ान में सुनाई। कल मिलने का वादा करती हूँ ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। टिक टिक टिक टिक चलती घड़ी।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्ते राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। सरकार का मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही है जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। ये सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदाय के लिए प्रस्तुतिकरण होता है, क्योंकि आसपास चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी वर्ग से मिलते हैं। तो आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज में पहुंचे, बहुत खुशी लगा क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय वो भी बालिका है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट को विशेषता को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रेडियो मधुबन का प्रस्तुति लेकर आए हैं। जो बच्चे बारी बारी अपना आवाज को हुनर को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे, हमें खुशी है। बच्चों का जो नैतिकता बौद्धिक विकास इस तरह मंच का माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। जब आकाशवाणी में इनका आवाज आएगी उनका परिवार वाले माँ बाप दोस्त लोग टीचर्सगण सुनेंगे, अरे ये तो हमारा उसका आवाज है उसकी आवाज है। और दोस्त लोग बोले यार तुम्हारा आवाज जब सुने आकाशवाणी में क्या आवाज था गजब पूरा। ऐसे आप आगे बढ़ते रहे ऐसे आशीर्वाद भी देंगे तो हमें खुशी है। तो देर किस बात की, पहला प्रस्तुति हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में अपना दिल का भावना को भाव को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए एक मंच का माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो आज रेडियो का कार्यक्रम में पहला प्रस्तुति एक माँ शारदा का गीत होगी जो कि हमारा छात्राएं उपस्थित है, तो आए सामने उनको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। क्योंकि हर प्रार्थना सत्र में बच्चे गाते हैं और मुझे खुशी लगता है क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का मिलित सहयोग से आज जो कार्यक्रम हो रही है सबको खुशी मिलेगा। सभी अपना परिचय देंगे और कहाँ से आते हैं और उनका जीवन में लक्ष्य आज क्या सीखे वो भी बताएंगे। पहले हमारा साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए नाम बताएंगे।
1: तमन्ना शर्मा।
0: और कौन सा क्लास?
1: 11th बी।
0: बड़े होकर क्या बनेगी तुम?
1: लॉयर।
0: बड़ा जज करेंगे, जज एक्चुअल है तो आत्मा जज है ही। हाँ तुम बता, नाम बता।
1: फलकनाश महावत।
0: और कौन सा क्लास?
1: 11th ए।
0: पढ़ाई आपको अच्छा लगता है?
1: यस सर।
0: बड़े होकर क्या बनेगी?
1: सोचा नहीं।
0: वेरी सस्पेंस, बाद में बताएगी। लेकिन आपका अच्छा दोस्त नाम बता पलक, कौन तुम्हारा अच्छा दोस्त गुड फ्रेंड?
1: सभी दोस्त
0: है। सभी मेरा दोस्त है, कोई मेरा शत्रु नहीं, ऐसे होता है। वेरी गुड। फलक के लिए एक हाथ का ताली, एक हाथ का ऐसे करो उनको सम्मान दो। देखो फलक तुम्हारा कितना दोस्त है, सभी हलक कर रहे, बहुत अच्छा दोस्त, सभी दोस्त तुमको अच्छा। देखो एक हाथ का ताली मंचे उसको हलक कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ और एक परी, क्या नाम है?
2: रवीना नाम दे।
0: रवीना कितना टीचर है? लगभग
2: 10
0: तो होगा, सोच कर बता रहे 10 तो होगा, बहुत अच्छा। चलिए और एक छात्रा है
3: सेजल कुमावत,
0: कौन नाम रखा है?
3: मम्मी पापा।
0: हाँ मम्मी पापा भगवान तुल्य होते हैं, भगवान तो नाम देते नहीं लेकिन माँ बाप भी कम नहीं है। माँ बाप को कभी भूलना नहीं है, भले किसको भूलो लेकिन माँ बाप को नहीं भूलना है। बराबर बोल भाई, माँ बाप को कभी भूलना नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं भूलना है, क्यों नहीं भूलना है माँ बाप को बताओ बहन?
2: क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, पाला है,
0: वो नहीं खाकर आपको खिलाते
2: हैं,
0: गरम गरम खिलाते हैं, टिफिन देते हैं, इसलिए उनको भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एक विराम लेते हैं, गीत का थोड़ा सस्पेंस रख देते हैं, फिर अगला कड़ी में गीत सुनेंगे सभीओं से, है ना? फलक
1: तबन्ना
2: सेजल
0: सेजल से सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट को आज हम जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बच्चे बिना झिझक से अपना आवाज को सुनाने के लिए प्रस्तुत है। पहला प्रस्तुति मैंने जैसे ब्रेक का पहले सुनाया था, एक गीत होगी प्रार्थना के रूप में सरस्वती वंदना। पीछे से आवाज आ रहा था वंस मोर होगा, लेकिन पहले सरस्वती वंदना। चलिए आपको वंदना करते। ओके शुरू करिए।

0: तार दे मा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और पहला प्रस्तुति में स्वर लय और ताल का साथ बच्चे सीख जाते हैं और करते हैं इस तरह संगठन रूप में जब प्रार्थना में करते हैं। कितने बच्चे होंगे आपका स्कूल में?
0: 600।
1: और बच्चियां बहुत दूर दूर से आते होंगे, है ना? विद्यार्थी जीवन में अटेंशन होकर सुनना। विद्यार्थी जीवन में विद्यालय में 5 घंटा पढ़ाई होता होगा, कितना घंटा?
0: 6 घंटे।
1: दिन में कितना घंटा होता है?
2: 24।
1: 6 घंटा माइनस करो, कितना घंटा बच्चा?
2: 18 घंटा।
1: 18 घंटा क्या करते हैं आप सब?
2: घर में 18 घंटा बिताते हैं।
1: पढ़ाई होता है ना खाली ऐसे ही?
0: पढ़ाई, घर का काम।
1: घर का काम क्या क्या घर में काम होता है?
0: झाड़ू पोछा पड़ता
1: है। आपको करना पड़ता है बच्चों को?
0: मम्मी का थोड़ा हाथ बटाते, उनसे नहीं होता फिर करते ऐसे।
1: फिर माँ को हाथ बटाते, पिताजी के लिए कुछ नहीं करते?
0: पिताजी बाहर कमाते।
1: फिर भी कोई जरूरत नहीं पड़ता आपको? उनका कपड़ा पारा सफाई कर देना, आयरन कर देना है?
0: पिताजी घर पे आते, खाना वगैरह देना, कपड़े कभी रहते हैं धो देना ऐसे।
1: वेरी गुड। अभी जब हम देंगे तब तुम हमको रिटर्न में मिलेगा, है कि ना? काला बॉल ऐसे फेंकेंगे तो काला बॉल ही आएगा ना, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल थोड़ा आएगा। जो देंगे
0: वही मिलेगा,
1: इसलिए ध्यान रखना है न्यूटन का जो नियम है, जो देंगे वो मिलेगा। खुशी देंगे तो
0: खुशी मिलेगी,
1: खुशी देंगे तो
0: खुशी मिलेगी।
1: बच्चे तो कोई किसको दुख तो नहीं देते होंगे? कोई बच्चे दुख देते हैं? नहीं, दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा बात बताया जी, मम्मी और पापा दोनों को हम सहयोग देते हैं, देना चाहिए ना नहीं
0: देना चाहिए?
1: और हम गाते हैं तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें वो भगवान को कहते, नेक्स्ट टू गॉड कहते माता पिता, है ना? हम तो वो भगवान को नहीं देखे, कि माता पिता को तो भगवान के रूप में देखे कि नहीं? जो चीज मांगते देते कि नहीं
0: देते?
1: पिताजी आपके लिए क्या देते?
0: पापा जो भी मांगो पापा सारी इच्छा पूरी करते।
1: पापा का जगह कोई ले नहीं सकता, पापा तो पापा ही होता है। पापा भी मम्मी को देते हैं, मम्मी हमें देते। पापा को कौन देता है?
0: पापा कमाते हैं,
1: पापा खुद कमाते हैं, इसलिए वो भी भगवान का
0: करते हैं। भगवान का सब दिया होता है।
1: हाँ, भगवान का बच्चों के लिए कुछ कराते। अच्छा, आप कुछ कहना चाहिए? बहुत शांत रह रहे, पूरा चुप रह रहे। आप आज का जो सेशन हुआ क्या आपको अच्छा लगा? एक पॉइंट बताओ, क्या आपको सीखने को मिला? जो चीज आपको पहले मालूम नहीं था, लेकिन इस सेशन का बाद चित्र का वीडियो का माध्यम से जो देखा है, तो आपको कौन सा चीज अच्छा लगा जो आपको पहले पता नहीं था?
3: कि हम एक आत्मा है,
1: ये पता नहीं था। वास्तविक है ना? ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वास्तविक। तो ये बहुत अच्छा बात बताए, तब सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति देने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, ओए इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो है?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़त हुई। अभी प्रार्थना में हम माँ शारदा जो कि सरस्वती वंदना सुन रहे थे, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी कहते हैं और हर विद्यालय में माँ सरस्वती को गणेश जी को याद करते, क्योंकि विद्या का दात्री और दाता है। और वो दोनों गणेश का पिताजी का नाम क्या है?
1: शिव जी।
0: शिव जी गणेश को देते हैं, गणेश हमें देते हैं, तो हो गया ना। गणेश का पिताजी कौन हो गया? शिव जी। अच्छा, सरस्वती का पिताजी कौन? आप तो सरस्वती वंदना किए ना चारों। अभी देखते हैं सरस्वती का माँ बाप तो होंगे ना?
2: ब्रह्मा जी।
0: हाँ ब्रह्मा जी, उसके लिए तो ऐसे धीरे धीरे ताली बजाओ। वाह, वेरी गुड आंसर। सरस्वती का बाप का नाम क्या था? ब्रह्मा का बेटी। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर। कोई बोल रहा था पीछे से, पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है?
2: अजमेर।
0: ब्रह्मा का मंदिर जीके भी हो गया है ना। चलिए, बहुत अच्छा। हमारा साथ एक छोटी सी परी आई, तो आप अपना नाम बताइए।
3: कोमल कुमारी।
0: कोमल, क्या नाम है, सुंदर नाम। कोमल, बहन तो कोमल होते है ना, कठोर नहीं, कोमल। ये और है हमारा बहन कोमल, नाम जैसे काम वैसे। चले कोमल बहन, आप बताओ क्या गीत गाएगी?
3: देशभक्ति।
0: देशभक्ति, चलिए शुरू करिए।
3: माँ

0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो श्रोता मित्र, खासकर आप सब सुन पा रहे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज के बच्चों को, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, बुलंद आवाज से पहला बार आए, कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे एक का बाद एक अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं, और इसका श्रेय तो मैम को जाता है, संस्था प्रधान को जाता है, और सभी स्टाफ को, और खासकर जो बच्चे भाग लिए थे उनका माता पिता को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि भारत माता की जय कहते हैं, वो भी माँ, भारत माँ कहते ना, इंडिया माँ, तो भारत माता के लिए आज क्या कहेंगे, भारत आपको महान कैसे लगता है? हम और भारत को घूमने के लिए पूरा विदेश लोग आते हैं, अमेरिका मदर नहीं कहते, तो माँ का विशेषता आज तो माँ बाप का जो सुनेंगे उन बोलेंगे हमारा बात कर रहे हैं, माँ बाप का ही चल रहा है, भगवान को भी बाप कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, अपना घर में भी माँ बाप है, और भारत देश माँ का नाम से पुकारते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और कोमल, खेल खेलते हैं, कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है?
0: मुझे बैडमिंटन।
1: बैडमिंटन, आपका जो बैडमिंटन का जो बुद्धि में आया खेलने के लिए, कौन सिखाया आपको, किससे सीखे?
0: मैं मेरे पापा से।
1: पापा बैडमिंटन खेलते हैं, पापा कम नहीं, पापा बोला था ना, पापा पापा होते हैं, पापा का काम को भी उनको सब दिया, मतलब बैडमिंटन खेलने में प्रोत्साहन। लेकिन बड़े होकर क्या बनेगी कोमल?
0: अभी तक सोचा नहीं।
1: सोचा नहीं, लेकिन सोचो, सभी लोग बोले सोचेंगे तो कब सोचेंगे, सोचेंगे समझेंगे चुप्पी तोड़ेंगे तब जाकर बनेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे तो कौन बताएगा, तोड़ना पड़ेगा ना चुप्पी, ना चुप रहेंगे, अपना बात को रखना है, कोई भी बात होता है किसके पास कहते आप, मम्मी के पास ना, पापा के ना, दोस्तों किसको समझा?
0: बुआ को।
1: बुआ को, वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अगला प्रस्तुति सुनेंगे, हमारा साथ और एक छात्रा है, कुछ बोलना चाहेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखला दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे?

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ। अभी तक हम सबसे बात रूबरू हो रहे थे क्योंकि अपना आवाज को बोल रहे हैं रेडियो का माध्यम से, तो हमारा साथ और एक छात्रा उपस्थित है, तो कौन सा क्लास के वो खुद का परिचय देंगे।
1: मैं फाल्गुनी यादव कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बताना चाहती हूँ। आज हमारे देश की बेटियाँ हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही हैं। उनकी सफलता से आज कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, चाहे वह राजनीति हो, खेल हो या अंतरिक्ष ही क्यों न हो। देश की उन्नति और विकास में बेटियाँ अपना पूर्ण योगदान दे रही है, परंतु आज भी बेटियों को बेटों के समान दर्जा नहीं दिया जाता। इसे एक सामाजिक दोष तथा विकृत परंपरा ही कहा जाएगा कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है। यह अंतर इस हद तक व्याप्त है कि परिवार में लड़के के जन्म पर खुशियां छा जाती है, जबकि कन्या का जन्म अशुभ परिवार पर बोझ, चिंताजनक तथा दुखमूलक समझा जाने लगा है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से लोगों की सोच को इस तरह जकड़ा हुआ है कि वे कन्या भ्रूण हत्या से भी नहीं कतराते। धार्मिक विश्वास के अनुसार पुत्र ही वंश चलाता है और पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उत्तराधिकारी कहलाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक सार्थक प्रयास है जो भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस अभियान की सफलता के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। हमें यह समझना होगा कि एक शिक्षित और सशक्त बेटी न केवल अपने परिवार का गौरव होती है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। जब तक हर घर में बेटी के जन्म का जश्न नहीं मनाया जाता और हर बेटी की शिक्षा को समान अधिकार नहीं मिलता, तब तक यह अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर शब्दों में कहा जाए तो आइए हम सभी अपनी बेटियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां वे बिना किसी भेदभाव के फल फूल सके। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले वर्ष भारत की बेटियों के लिए और भी अधिक प्रगति और अवसर लेकर आएंगे। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और बेटी है तो सब कुछ है। बेटी कितना कुल को उधार करती है, माँ बाप का चिराग है घर को बदलने के लिए। और खास कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज, और ऐसे बेटी का आवाज जब सुनेंगे सभी माँ बाप अपना बेटी के लिए नाच करेंगे और ऐसे गर्व महसूस करेंगे। आप एक बेटी है तो आपको महसूस होता है मैं भाई होता है तो थोड़ा कम, और बहन है तो मैं अच्छा महसूस कर रहा है। आपको बहन होने के नाते गर्व महसूस हो रहा है?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: क्यों?
1: क्योंकि जो पुत्र होता है वो तो सिर्फ वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन जो पुत्रियां होती हैं वो पूरे देश को आगे बढ़ाती हैं।
0: लेकिन पितृसत्ता और मातृसत्ता जो कहते हैं घर में परिवार में, दादा बाप बड़ा भैया चाचा काका इनका पूरा नाम होता है, किन्तु माताओं का बहन का दादी का नाम बहुत कम होता है। क्यों? कोई भी पूछता है तो उनका घर उनका माँ का नाम नहीं लेता, उनका पिताजी का नाम लेकर वहाँ पर पहुँचता है। अभी भी पितृसत्ता का जो मर्दांगी मर्द प्रधान देश हो गया।
1: हाँ जी, अभी भी पितृसत्तात्मक देश हम कह सकते हैं, लेकिन इस रूढ़िवाद जो परंपरा है ये बदलनी चाहिए। और अब सभी बेटियां जागृत हो रही हैं, पूरा देश जागृत हो रहा है, तो जल्द से जल्द ये मात्र सत्तात्मक देश बन सकता है।
0: क्या बात है, इसलिए कहते हैं समय बदल चुका है, बदलते रंग बदल रहा है, और हमारा समय ही हमें बदल दे रहा है। कोई मनुष्य हमको बदल नहीं पा रहा है, लेकिन हम समय को देखते हुए हमको खुद को बदलना चाहिए। और आने वाला जो समय होगा बेटियों का, बहनों का, माताओं का, काकी का, माँ का ही बोलबाला होगा, क्योंकि जो समय था सत्ययुग उसमें सीता राम, राम सीता नहीं, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी कोई बोलता है नहीं, पहले स्त्री का दर्जा इसका बाद पुरुष का, देखे होंगे सुने होंगे ना, तो और भारत माता ही कहते हैं। तो जहाँ पर नारी शक्ति का सम्मान होगा, जहाँ नारियों को सम्मान मिलेगा, वो देश महान बनेगा और बनने जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह संदर्भ में, जैसे मातृसत्ता को आगे लाने के लिए हमारा सोच को कैसे बदलना चाहिए?
1: जिस तरह से कई सारे अभियान चल रहे हैं, विद्यालयों में भी इसके लिए काफी सारे जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। आप जैसे जितने भी जागरूक लोग विद्यालय में विजिट करते हैं, सभी की बातें बच्चों पर प्रभाव डाल रही हैं और जल्द से जल्द ये बदलाव हमें दिखाई देगा।
0: सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और खासकर बेटियों को कभी भी नीचा नहीं सोचना चाहिए, हम भी कोई काम नहीं है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आप सब सुने होंगे देखे होंगे।
1: यस सर।
0: कितना दृढ़ता का साथ, आत्मविश्वास का साथ, क्या बोले, आत्मविश्वास, खुद का

0: विश्वास ट्रस्ट और यूनिट, ट्रस्ट और यूनिट, विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुन रहे हैं लिसनर, जो हमारा श्रोता खासकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज पिंडवाड़ा ब्लॉक के आज बच्चों को बारी बारी सुन रहे थे, और सभी का प्रतिभा है। आज ओपन रोड में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और सभी को नाम का साथ और संस्था के सभी स्टाफ और सभी बच्चों को एक एक कर सभी को धन्यवाद देते। और लास्ट में उनका नाम मैंने नहीं पूछा था, क्या नाम?
1: फाल्गुनी यादव।
0: फाल्गुनी, हाँ, फलक था और फाल्गुनी दोनों कम नहीं है, फौसे बहुत अच्छा। आपको कैसे लगा रेडियो मधुबन में पहला बार आपका इंटरव्यू लिया, तो आपको कैसे लगा? अचानक में आपको दिया गया टॉपिक और तुरंत आपने गूगल गर्ल जैसे पूरा रेडी हो गया, तो आपको क्या महसूस पहले हो रहा था और आज अभी क्या महसूस कर रहे
1: हैं? फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये भी है कि मेरी हॉबी है कि मैं आरजे बनूं, तो फिर मुझे रेडियो पे बोलना काफी पसंद है।
0: क्या बात, हमारा आरजे मिल गया, वेरी गुड। आरजे शब्द सुना कभी? देखो ये मैंने तो बोला ना, आरजे शब्द सुना था, पोस्ट, एक पोस्ट होता है आरजे,
1: रेडियो जॉकी।
0: कहाँ से कलेक्ट किया आप?
1: सर ये मेरी हॉबी
0: है, क्योंकि हमारा पोस्ट को ये कैसे, कोई बच्चे को मालूम है? टीचर तो मालूम है, इंजीनियर मालूम है, डॉक्टर मालूम है, लेकिन आरजे रेडियो जॉकी, खुद बोले रेडियो जॉकी, जो की मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में एक कोर्स होता है, वो कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो हमारे रेडियो मधुबन का फेलोशिपी के लिए आपको अभी बुक कर देंगे। कभी भी आपको मौका मिलेगा तुरंत हमारा रेडियो मधुबन में आइए और अपना बात को जन जन तक, जो चीज आपका मन में है देश को बोलना है, तो जैसे मन की बात, मन की बात पीएम मोदी का जैसे पूरा टप हो गया, तो आप भी ऐसे अपना बात को रख सकते हैं कि जो रूढ़िवादी, ये जो पितृसत्ता, घूंघट, वो सब दूर
1: हो जाएगा।
0: लेकिन आपको मौका पड़ा, अभी कौन सा क्लास में?
1: 12th।
0: नहीं तो डायरेक्ट आप फोन से भी हमसे कांटेक्ट करिए, रेडियो में आपका जाएगा, लोग से बात भी कर सकते हैं, जिस रेडियो में फरमाइश होता है, आप नंबर कॉल करेंगे तो रेडियो मधुबन को संपर्क करेगा, वहाँ आवाज सब लोग सुनेंगे, उस समय लाइव चल रहा है, लाइव फरमाइश जानते हैं।
1: यस सर।
0: फोन करेंगे तो सीधा स्टेशन में जाएगा, हेलो हेलो रेडियो मधुबन 107.8 FM, हेलो आप क्या चाहते हैं? मैं एक गीत सुनना चाहती हूँ, वो गीत का नाम ये है, तो तुरंत गीत प्रसारण हो जाएगा, अपना बात को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को फिर से धन्यवाद, आभार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कभी हमने नहीं

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं सलमा आगा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। किसे कहते हैं दोस्तों, हर किसी के जीवन अलग होती है। हर किसी के अंदर एक ख्वाब होता है, मुझे अपने जीवन को ऐसे जीना है। बचपन में हम माँ बाप के कहे हुए मार्ग पर चलते हैं और जैसे ही हम होश संभालते हैं और दुनिया को देखने लगते हैं, हम आसपास के लोगों को देखने लगते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ आशाएं उत्पन्न होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है और मैं अपने जीवन को इस तरीके से जीना चाहता हूँ। तो वो सपने और वो सोच बुनना शुरू हो जाता है। फिर फाइनली जब हम युवा अवस्था में आते हैं तो थोड़ी बहुत दिशा मिल जाती है और हम अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं जीवन जीना मतलब बाल्यकाल में स्कूल जाओ, युवावस्था में पढ़ाई पूरा करो, फिर नौकरी करो, फिर शादी करो, फिर सेट हो गया, फिर मिडिल एज में आकर के जिम्मेवारियां संभालो, फिर वृद्धापी में आ गया तो फिर बाल बच्चों के साथ खुश होके जीवन पूरा हो गया। या यही जीवन है, या हर कोई ऐसे जीना चाहते हैं, या कुछ हटके भी जी सकते हैं। आइए आज हम इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है इसमें जानेंगे। हमारे साथ है एक योगी जीवन जीने वाले, ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी जीवन को जीने वाले आदरणीय श्याम भाई जी। आप वर्तमान समय में हेडक्वार्टर्स में रहते हुए अनेक कार्यों को आप मार्गदर्शन करते हैं, तो वो क्या करते हैं और ये जीवन उन्होंने क्यों और कैसे चुना है, उनकी ही जीवन के अनुभवों से आज हम जानेंगे। श्याम भाई जी, आपको आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू रेडियो मधुबन वालों का हमको बुलाया उसके लिए।
0: शुक्रिया भाई जी, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने समय निकाला हमारे श्रोताओं के साथ अब अपनी जीवन की बहुमूल्य पलों के बारे में साझा करने के लिए। हम सबसे पहले उन पलों के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका जो बचपन रहा है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस परिवार में हुआ और आपकी लौकिक परिवार का क्या माहौल रहा है, आप कितने भाई बहन हैं, आपका अपना लौकिक जीवन का परिचय थोड़ा संक्षिप्त में बताए।
1: ओम शांति। मेरा पूरा नाम श्याम बाबू गुप्ता है और मैं भोपाल जोन पोरसा मध्य प्रदेश एमपी से निकला हुआ हूँ। एज मेरी 51 है अभी। और हमारे फादर जो थे 2012 में उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो हमारा पहले बिजनेस था, आड़त का काम था, जो सरसों गेहूं वगैरह जो खरीदने का होता है तो वो काम था हमारा। तो उस समय हम बिजनेस में भी रहते थे प्लस सेंटर की सेवाओं में भी अपना समय देते थे। तो हालांकि उस समय पिताजी थोड़े हमारे एंटी थे इस चीज से, ज्ञान में हम नहीं आए, वो सोचते थे कि हम शादी कर लें। तो उन्होंने काफी हमारे आजू बाजू और भी संपर्क वालों से कोशिश किया कि मैं कैसे भी करके शादी ये कर ले। और कभी कभी लोग बोलते थे कि आप दोनों शादी कर लो, भले ही ज्ञान में चलना शादी के बाद। तो और दूसरे लोगों का जो उदाहरण देते थे, उन्होंने भी शादी किया, रामचंद्र जी भी शादी किया, ऐसे करके देते थे। तो उनको हम उसी हिसाब से गाइड करते थे। फिर हमारा ज्ञान में आने का सिद्धांत यही रहा, क्योंकि हमें अपना जीवन जिस प्रकार से देश के लिए सेवा के लिए करना है, तो उस प्रकार से हमने अपने जीवन को एक संघर्ष माना, जीवन को सोचा चलाने के लिए। तो हमारी माता जी और हमारी लौकिक सिस्टर वो पहले से ही ज्ञान में थे,
0: मतलब ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो राज्यों की पढ़ाई है वो पढ़ते थे,
1: ईश्वरी विश्वविद्यालय की जो पढ़ाई पढ़ते थे पहले से ही। तो उनके माध्यम से भी हम संस्था से जुड़े और फिर इस संस्था में धीरे धीरे हम अपना आना जाना होता रहा और काफी चीजों का अनुभव मिला मुझे, जो ज्ञान का अनुभव नहीं था कि जीवन में जीने की कला क्या है। तो वो चीज हमें वहाँ सीखने को मिली, क्योंकि जीते तो सभी हैं लेकिन जीना कैसे है वो बाबा ने हमें सिखाया कि कैसे जीना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना है। कि दुनिया में लोग आते तो हैं और अपना जीवन सारे समय ऐसे ही निकाल देते हैं, जवानी से लेके बुढ़ापे में अपने गृहस्थ में ही जीवन निकाल दिया। लेकिन हमारा एक मतलब यही था कि अपने जीवन को हम अपना श्रेष्ठ बनाएं, यही हमारी एक भावना है।
0: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन श्रेष्ठ बनाने की इच्छा थी, देश की सेवा करने की इच्छा थी, तो बचपन में भी आपको ऐसा ही फील होता था। कहाँ तक पढ़ाई किया था आपने?
1: हमने 12th किया था पढ़ाई
0: जी। तो घर की माहौल ऐसी थी या फिर आपको कहीं से ऐसी?
1: घर का माहौल नहीं, हमारा क्या है, बचपन से ही एक बिजनेस का संस्कार पड़ गया था। तो हमारे लौकिक भाई थे, वो एमकॉम किया था उन्होंने, लेकिन हमारा क्या एक बनिया क्वालिटी में आते हैं ना, उनको नौकरी बहुत कम मिल पाती थी उस समय, तो इसलिए हमने कि नौकरी करके क्या करना है, करेंगे तो बिजनेस ही करना है, तो इसलिए हमारे काफी साथी भाई बहन थे जो, तो वो सब माना थोड़ा ही पढ़ के अपने बिजनेस में लग गए थे।
0: जी, आपकी सिस्टर कहाँ तक पढ़ाई की थी?
1: सिस्टर ने तो कुछ एमकॉम ऐसा कुछ एमबीए कुछ किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है।
0: तो आप दो भाई एक बहन हैं?
1: हम दो भाई और छह बहने हैं।
0: छह बहने,
1: जिसमें एक की शादी नहीं हुई है, जो समर्पित टीचर बहन है, और बाकी जो सिस्टर हैं वो सब ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान
0: से जुड़े हुए, अपना शादीशुदा जीवन जी,
1: जी जी शादीशुदा जीवन जी करके वो ज्ञान में
0: चल रहे हैं।
1: जी,
0: तो जैसे आपने कहा कि आपको ये ख्याल चलता था कि देश की सेवा करना है, ये आम जीवन मुझे नहीं जीना है, तो आपके जीवन में कोई आदर्श रहे जिनसे आप ऐसी प्रेरणा लेते थे, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आपको प्रेरित करते थे?
1: मुझे उस समय क्या है, बचपन था तो किसी से हमारा ऐसा संपर्क नहीं हो पाया कि भाई उनके साथ में रह करके और हम इस प्रकार से देश की सेवा कर सकें, तो वो संपर्क हमें ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद ही वो प्रेरणा मिली, वो हमें रास्ता मिला, तो उस प्रकार से हम उस रास्ते पे आकर के और अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे।
0: नहीं, बचपन में आपको क्यों लगा मुझे देश की सेवा करनी है?
1: क्योंकि केवल दुनिया में जीना है तो केवल अपने स्वयं के लिए जीना होता है, स्वयं के परिवार के लिए जीना होता है, लेकिन हमारा संकल्प हम देश के लिए जिए।
0: तो बचपन में आपको ऐसा फील होता था?
1: जी।
0: तो मतलब आपने कोई मूवी देखी थी या किसी फौजी को देखे थे?
1: मूवी वगैरह तो देखता था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं रहता है उस चीज का, क्योंकि
0: नेचुरली आपको फील होता था।
1: जी जी,
0: ऐसा देश की सेवा करना चाहिए।
1: जी जी,
0: इस तरीके से बहुत अच्छा। तो जब आपकी बचपन से ही ये देश की सेवा करने का इच्छा थी और आपको एक दिशा मिल गई वो सेवा की भावना को ब्रह्म कुमारी इसके आने के बाद, तो फिर ज्ञान जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो ज्ञान मिलता है वो सत्य ज्ञान है, इसके ऊपर निश्चय कैसे हुआ आपका?
1: उसके ऊपर निश्चय ये है कि भगवान हमें जो रोज मुरली सुनाता है, तो मुरली हम सुनते हैं और जो हमारे संकल्प आते थे तो वो संकल्प हमारे ऑलरेडी बाबा पूरा कर देता था। जैसे मान लो संकल्प तो अलग चीज है, लेकिन मैं 2003 की बात है समथिंग, तो उस समय ग्राम विकास अभियान की रैली निकल रही थी जो सारे विश्व में भ्रमण होता था, और माउंट आबू में उसका समापन समारोह था, तो उस समय
0: वो
1: मैं
0: पूरी भारत में वो रैली घूम के फिर माउंट आबू में समापन होता।
1: तो उस समय मैं वो गाड़ी को लेकर के माउंट आबू आने वाला था, तो गाड़ी की हम तैयारी कर रहे थे उस समय, तो वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी हमारे साथ। तो उस समय क्या है, हम एक लोहे का पाइप जो बाबा की गाड़ी में झंडा लगाने के लिए लेके आ रहे थे, तो एक घर के आगे एक लाइन थी 33,000 KV की, तो उस लाइन से मेरा वो ध्यान नहीं था उस समय, क्योंकि यंग एज होती है इतना वो नहीं होता है, तो पाइप क्या है वो 3 फीट दूर से खींच लेता है, तो ऐसे ही मुझे वो 3 फीट दूर से वो पाइप खींचा, लेकिन मैं तो एकदम अचानक
0: मतलब बिजली खींच गई थी।
1: जी जी, तो लाइट क्या है वो पाइप तो मुझे नहीं मालूम, मेरे के आगे तो एकदम अंधेरा हो गया, बिल्कुल केवल छाया चित्र रह गया आत्मा का। फिर मैं अंदर ही अंदर महसूस कर रहा हूँ कि मुझे करंट लग गया और मेरा इस दुनिया से खेल अभी पूरा हो गया। तो फिर धीरे धीरे मैं वहाँ गिर गया, और मुझे नहीं मालूम उस चीज का गिरने के बाद फिर क्या हुआ, लेकिन वो गिरे भी थे वो भी आत्मा महसूस कर रही थी, लेकिन उस समय मुझे बाबा की बात याद आई। बाबा ने बोला कि अंत समय में केवल मुझे ही याद करना है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। तो उसी समय में ये गिरने से पहले मैंने अपनी बुद्धि को और बाबा की याद से जोड़ लिया,
0: परमात्मा
1: की याद से जोड़ा, फिर मैं धीरे धीरे वहाँ गिर गया। उसके बाद बताते हैं कि मेरे कपड़ों में भी आग लग गई थी, तो वहाँ कुछ भाई बहन थे तो उन्होंने अपने दस्ताने पहने हुए थे, तो उन्होंने आग को बुझाया, फिर हॉस्पिटल लेके गए। तो कहने का भाव ये है कि उसमें मुझे 6 महीना कम्प्लीट ठीक होने में लगा, तो 3 महीना तो ज्यादातर हम बेड पे ही रहे, और उसके बाद धीरे धीरे एक चलना सीखा माना लाठी के सहारे, फिर धीरे धीरे अपने आप को माना ठीक हो पाए हम। तो उससे हमें विश्वास हुआ है, बाहर वाले भी दुनिया में भी लोग जब हमको देखने आ रहे थे हॉस्पिटल में, तो उस समय वो लोग यही बोल रहे थे कि इनका बचना नामुमकिन है, लेकिन परमात्मा की ऐसी दया होती है, परमात्मा की जो सेवा करते हैं तो उसमें परमात्मा भी हमें पूरा सहयोग देता है, और परमात्मा ने उस समय हमें उस जिंदगी को नया जीवन दिया। तो नया जीवन दिया तो हमें भी एक संकल्प आया कि हमें अभी पूर्ण रूप से देश की सेवा करनी है। फिर हम अपनी अच्छी तरह से ठीक हो गए और फिर हम बाबा की सेवा में पूर्ण रूप से अपना जीवन दे दिए।
0: जी, मतलब उस हादसे ने परमात्मा की महावाक्यों की सच्चाई आपको अनुभव कराई
1: जी,
0: जिसे आपको विश्वास हुआ कि ये सत्य ज्ञान है और यही परमात्मा है
1: जी,
0: और जीवन को उद्धार करते हैं
1: जी।
0: तो ये फिर आप रिकवर हुए और सब ठीक हो गया, लेकिन समर्पित होने का ख्याल कहाँ से आया आपको?
1: समर्पित
0: होने घर में पिताजी का विरोध तो था ही ना।
1: समर्पित होने का मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने जीवन में बाबा के आगे माना, एक यही संकल्प था मेरा तो, कि जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना करो। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन फल की इच्छा करना वो उसके बस में नहीं है। तो वो मेरा एक संकल्प रहता कि सेवा करते जाओ, कर्म करते जाओ, बाकी फल देने वाला भगवान है, वो मेरा काम नहीं है। तो मैं मधुबन में भी जब आया था 2006 में, तो मैं बहुत सीधा सिंपल था। तो कुछ लोग बोलते थे कपड़े भी थोड़े वैसे पहने जाते, हमारी एक वो होता है रीत रिवाज है जो भी है, तो लोगों को थोड़ा वैसा लगता था। तो लेकिन हमारा एक संकल्प था सेवा करते जाओ, तो हम अपनी सेवा करते गए। और 2006 में हम जब आए, तो उसके बाद हमें डायरेक्ट जुलाई में आए थे, पहले सेवा करके गए ऐसे 6 महीने करके, फिर उसके बाद हम 2007 में भी सेवा करने आए, फिर 2008 में हमें स्पेशल निर्मल दादी, शांता मणि दादी जो है हमारी, उनकी सेवा के लिए स्पेशल हमको जून में 24 जून मम्मा डे के समय हम आए थे, और
0: शांतामणि दादी के पास
1: जी, शांतामणि दादी के पास, निर्मल शांतामणि दादी, तो उनकी गाड़ी की रथवान के सेवा किया मैंने उनके पास। और हमारा अगस्त में ट्रायल फार्म भी भर गया, तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे अचानक सब कुछ हो गया। तो मैं तो वैसे जो भी कुछ होता था, जैसे 2006 में मैं आया था सेवा में, तो मैंने बाबा को यही बोला, बाबा मुझे अब कहीं नहीं जाना है, बस मुझे आपकी यहीं सेवा करनी है। तो बस बाबा को ही मैंने, योग में जब करते मेडिटेशन करते थे तो उस समय बाबा को मैं बता दिया, तो बाबा ने ऐसे फटाफट ये काम करा दिया मेरा।
0: तो आपको घर से छुट्टी मिल गई थी?
1: घर से हमारी माता जी तो हमारे पूरे सहयोगी थे, लेकिन पिताजी थोड़ा सा एंटी थे, तो पिताजी ने हमारे को यही बोला कि अगर आप दुकान पर नहीं रहेंगे तो फिर हम आपको हिस्सा नहीं देंगे।
0: अच्छा, प्रॉपर्टी में हिस्सा,
1: प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको नहीं देना, आप हमें नहीं चाहिए। तो हमने ऐसे कह करके उनको बता दिया, क्योंकि उस समय दुकान को छोड़ना, क्योंकि दुकान पे ज्यादातर हम ही पूरा संभालते थे, बाकी पिताजी थे और हमारे भाई थे, वो तो बाहर का कारोबार देखना वो रहता था उनका। तो इसलिए फिर मेरा संकल्प यही था कि मैं अपने लिए कमाऊं कि किसके लिए कमाऊं, भाई मैं तो अकेला हूं, मान लो माँ बाप है, जिम्मेवारी थी वो तो हमारी चलो पूरी हो गई थी, वो माँ बाप की सेवा के लिए भी चलो हमारे भाई हैं या कभी कभी जाना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी समझ करके हमारी जो भी जिम्मेदारी थी वो हमने अपनी पूरी कर दिया, उसके बाद हम बाबा के घर में समर्पित हो गए।
0: तो फिर आप जब मधुबन आए समर्पित होने, उस समय क्या उम्र थी आपकी?
1: उस समय हमारी उम्र हो गई लगभग 30 साल।
0: 30 साल की उम्र में आप, जब आप 30 साल की उम्र में आए परमात्मा के घर में समर्पित होके सेवा करने के लिए, उस समय जो आप अपने आप को देखते हैं और अभी आप अपने आप को देखते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं आप?
1: उस समय काफी अनुभव हमको बढ़ता है, क्योंकि शुरू शुरू में जब आते हैं तो उस समय इतना हमको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वो सब चीजें देखते हैं। धीरे धीरे जब यहाँ रहते हैं तो उस चीज का अनुभव बढ़ते, बड़ों से हमें पालना मिली, तो जैसे हमारे आदरणीय निरोल भाई साहब जो थे ब्रह्मा कुमारी के सेक्रेटरी जनरल, तो उनकी हम सेवा में रहे थे, रद्वान के रूप में भी सेवा किया था, और प्लस उनके अंग संग रह करके भी उनका साथ रह करके उनकी सेवा किया था। लेकिन बड़ों के साथ रह करके हमें दूसरों के साथ अपना कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे उनके साथ चलना चाहिए, तो भाई साहब ने हमेशा यही सिखाया कि हमेशा आपस में प्यार से रहने का होना चाहिए, कभी आपस में खटपट नहीं होना चाहिए। तो प्यार से रहने से वाइब्रेशन भी अच्छे रहते हैं, प्लस जो रहने वाले हैं वो भी, उनका माइंड भी अच्छा रहता है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ खटपट अगर होती है, जैसे बाहर की दुनिया में भी देखा है, अगर घरों में कभी खटपट होती है तो वो वायुमंडल खराब हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने हमें जैसे कहा कि आपस में प्यार से रह करके और एक दूसरे को आगे बढ़ाते जाओ।
0: तो कोई ऐसी चीजें है जो आपको लगता है कि अगर मैं बाबा के घर में या मधुबन में नहीं आता, समर्पित नहीं होता, तो मेरा जीवन का ये भाग्य नहीं बनता या मेरे जीवन में ये जो परिवर्तन है वो कभी नहीं हो पाता?
1: ये चीज तो हमने कभी सोचा नहीं था कि मेरा भाग्य नहीं है। ब्रह्म कुमारी संस्था से जब मैं जुड़ा तो सब सौंप दिया प्यारे प्रभु को। तो मैं तो यही सोचता हूँ बाबा के ऊपर है, बाबा को जो करना है वो जाने। मैं काफी बार कभी कभी अनुभव करता हूँ कि हम मनुष्य सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करण करावन हार जो शिव बाबा है उसे क्या मंजूर है वो तो वो ही जानता है। तो हमने तो अपने जीवन बाबा के हवाले कर दिया लेकिन बाबा को क्या करना है वो बाबा जाने। बाकी हमने ये कभी संकल्प ही नहीं किया कि बाबा के नहीं बनते तो हमारा जीवन क्या होता, वो हमने कभी संकल्प नहीं किया।
0: शुरू से आपको ये था मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरा है, बस हो गया। बहुत सुंदर भाई जी, ये भी कितनी अच्छी सोच है कि सिर्फ मैं और परमात्मा हमारा यही रिश्ता है। बहुत सुंदर भाई जी। तो अभी जब आपके परिवार वाले आपसे मिलते हैं, 20 साल से आप एक योगी जीवन जी रहे हैं और इस संस्था की जो मुख्य दादियां और भाई साहब थे उनके अंग संग रह करके आपने अपने आध्यात्मिक उन्नति की है, तो जब आपकी लौकिक परिवार अभी मिलते हैं तो फिर वो क्या महसूस करते हैं?
1: उन्हें यही एक अच्छा लगता है कि भाई देखो मधुबन में रह रहे हैं तो इन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा सफल कर लिया। वहाँ की दुनिया में तो हालत खराब होती है देखती हैं तो उन्हें एक ये चीज लगता है। दूसरा हमारे फादर जो तो है तो वो बाद में वो ज्ञान में आए तो फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिव होते गए। फिर मधुबन में भी आए तो मधुबन में भी उनको हमने सब घुमाया तो माना एक जो उनके अंदर नेगेटिवता थी वो पूरा पॉजिटिव में परिवर्तन हो गया कि उनको भी लगा कि हाँ अभी अच्छी जगह रह रहे हैं। तो वो भी अभी जो नेगेटिव अंदर भरा हुआ था वो सब निकल गया उनका, माना वो भी ज्ञान में काफी साल चले, 4-5 साल शायद मैं समझता हूँ ज्यादा भी हो गया।
0: शरीर छोड़ने से पहले?
1: हाँ शरीर छोड़ने से पहले लगभग 5-6 साल वो बाबा के यज्ञ में मुरली वगैरह रोज सुनना, गीत भी गाना बाबा के, वो उनकी लगन लग गई थी। हर गुरुवार को वो कुछ न कुछ फल वगैरह बाबा के लिए लेके जाते थे।
0: बहुत सुंदर। बचपन में पढ़ाई करते हुए आपने दुनिया की महान आत्माओं को भी देखे होंगे, सुने होंगे, और आप जब संस्था में आए यहाँ पे महान योगियों को देखा, आप क्या अंतर महसूस करते हैं?
1: मैं तो यही लगता कि हमने जानकी दादी को भी साथ में देखा है, गुलजार दादी के पास जब भाई साहब के साथ में हम जाते थे ना तो गुलजार दादी को भी हम एक बार ज्ञान सरोवर से नक्की लेके वगैरह गाड़ी से घुमाने लेके आ गए थे। तो उनका जीवन हमने जो देखा एकदम वैराग्य वृत्ति होता है, उनकी दृष्टि वृत्ति कृति एकदम शुद्ध प्योर, क्योंकि उनके साथ जो भी मिलने सामने जाएगा तो पूरा एकदम संपूर्ण जैसे कहें तृप्त आत्मा हो जाती है, ऐसे उनका जीवन एक अनुभव होता है उनको। तो उनकी तपस्या, जिन्होंने इतनी तपस्या की थी पहले से हमारी दादियों ने हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, तो उनकी तपस्या ही उनकी सेवा थी। क्योंकि बाबा भी हमेशा बोलता है ना कि आपके चेहरे से ही सेवा हो, तो ऐसे ही हमारी दादियां जो थी, हमारे बड़े भाई थे भाई साहब थे, तो उनके चेहरे से ही बाबा की सेवाएं अनेक होती हैं और हमें उससे ही सीख मिलती है कि हमें अपना जीवन भी इस प्रकार से योग तपस्या के माध्यम से ही अपने आप को परफेक्ट बनाएं जिससे सामने वाले को भी वो चीज अनुभव हो।
0: तो श्याम भाई जी, आपको जीवन में कब और कैसा महसूस हुआ कि यही जीवन है, इसे ही जीना कहते हैं या जीना इसी का नाम है? कोई ऐसा मोमेंट या कोई पल रहा जो आपको महसूस हुआ कि हाँ यही जीना इसी का नाम है, इसे कहते हैं?
1: मैं जब ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा था तो उस समय तो हम मंदिर वगैरह में भी जाते थे कभी कभी, कोई कोई धर्म के कर्म भागवत हो रहे या जो भी होता है तो उससे भी भावना वो रहती थी मंदिरों में जा करके। तो फिर जब ब्रह्म कुमारी से जुड़े तो हमने अपने आप को ओनली कोई संकल्प नहीं रखते थे, बस बाबा की सेवा, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते थे। जो बाबा की सेवा मिलती थी, हमारी ज्यादातर पहले शुरू शुरू में रथवान गाड़ी चलाने की सेवा रहती थी, तो गाड़ी से जो भी गेस्ट आते थे उनको अहमदाबाद लाना, उदयपुर से लाना, छोड़ना, ऐसे करके स्टेशन कभी छोड़ना, तो जो लोग हम सेवा करते थे तो वो लोग की अंदर से यही भावना निकलती थी कि ये लोग कितने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कभी भी किसी से कुछ लेना देना ऐसा नहीं रहता है इनका, तो वो लोग भी काफी संतुष्ट होकर के जाते थे। तो हमारी यही भावना रहता है कि हम कभी किसी की सोचा ही नहीं कि हमारा क्या होना है क्या नहीं होना है, वो हमने नहीं कभी सोचा।
0: बहुत सुंदर भाई जी, वर्तमान समय में आप क्या सेवा करते हैं मुख्यालय में?
1: वर्तमान समय हमारे आदरणीय ब्रह्म कुमारी के सेक्रेटरी जनरल निर्वर भाई साहब जो थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद तो हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्डा जी जो ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और हमारी आदरणीय शशि दीदी जो पांडवन को संभालते हैं, तो उनके द्वारा हमें जो भी गाड़ी अरेंजमेंट करने की सेवाएं रहती हैं तो उनको हम फिर गाड़ी अरेंज कराते हैं। और फिर उसके बाद कभी हमको भी जाना होता है, किसी कोई भी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको लाना ले जाना, प्लस हमारा महादानी कॉटेज जो है जो उनके मार्गदर्शन में ही उनके निमित्त है तो उसको संभालने के लिए हम निमित्त बनाया हुआ है बाबा ने।
0: बहुत सुंदर, मतलब जो भी गेस्ट होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का आप कारोबार देखते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: बहुत सुंदर भाई जी, तो अंत में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, एक योगी का जीवन या एक योगी एक आदर्श जिसे हम कहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कोई सोचते हैं कि मैं भी इस तरीके से जीवन जीऊं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: मेरा तो यही एक मानना है, क्योंकि हम इस सृष्टि पर जन्म लिया है तो इस जीवन को जितना भी हो सकता है दूसरों को सुख देने का काम करें। तो जितना आप दूसरों को सुख देंगे उतना आपकी पुण्य की पूंजी कहें, दुआएं कहें, वो आपकी जमा हो जाएंगी और वो ही दुआएं आपको जन्म जन्म वो आपके काम आती हैं। तो हमारा तो यही एक संकल्प है कि जो भी भाई बहन इस चीज को सुन रहे हैं तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और ब्रह्म कुमारी का जो हमने चुना है तो उसे भी अपने जीवन में अगर कुछ हमारा मेडिटेशन होता है राजयोग के द्वारा तो उसको भी अगर आप करेंगे साथ साथ तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा और आपकी जो गृहस्थ जीवन भी कहें जो गृहस्थ जीवन वाले भी हैं और उनका भी जीवन श्रेष्ठ बन सकता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आज आप अपनी अमूल्य समय लेकर के हमारे रेडियो मधुबन के स्टूडियोस में आए। जीना इसी का नाम है, इस कार्यक्रम के जरिए आपकी योगी जीवन की उन जीवन के अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।
1: थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं आप सभी से। अभी तक आप सुन रहे थे श्याम भाई जी को जो ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए योगी के साथ और उनके जीवन के अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: जब कबूतर को पता चलता है कि बिल्ली उसके पास आ गई है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे बिल्ली गायब हो गई है, पर ऐसा होता नहीं है बाबू। वैसे हम लोग कभी कभी यही तरीका अपनाते हैं, समस्या से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या इससे वो खत्म हो जाती है? घर ऑन एयर के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि राठौड़ परिवार बड़ी मुश्किल से नाश्ते की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर होती है एक नॉक। कौन पूछने पर गेट से जवाब आता है, पुलिस। अब यहाँ कबूतर है राठौड़ परिवार और बिल्ली है पुलिस। चलिए देखते हैं कि अब कबूतर करता क्या है।
1: बड़े भैया गेट मत खोलिए, मैंने सीरियल में देखा है, पुलिस एकदम से आती है अंदर और बिना कुछ बताए हथकड़ी लगाकर ले जाती है और फिर बहुत मारती है।
2: अरे अरे तो आप गेट मत खोलिए, आपको ले गए तो हमारा क्या होगा?
3: अरे पुलिस वालों के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि किसी को भी ले जाएं, और मुझे क्यों पकड़ेंगे, मैंने क्या किया है?
4: एक काम करते हैं, तुम लोग सब चुप हो जाओ, उनको लगेगा घर पे कोई नहीं है तो सब वापस चले जाएंगे।
5: माँ ऐसी थोड़ी होता है, आप
4: चुप कर किशन, जेल जाना है क्या?
6: माँ आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। बड़े भैया आप बैठिए, भाभी घबरा रही है, मैं देखता हूँ और आप लोग जरा शांत हो जाइए।
7: भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ।
6: ठीक है चलिए।
4: नहीं वीरेंद्र रुक, अरे रुक बेटा।
6: माँ आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ, कुछ नहीं होगा।
8: हम नजदीकी पुलिस थाने से आए हैं, हमें विजय की तलाश है।
7: आपका मतलब विजय दीनानाथ चौहान है?
8: आप पुलिस वाले से मजाक कर रहे हैं?
7: सॉरी सर, मैं नर्वस होता हूँ तो मजाक निकल जाता है।
8: ठीक है आप मेरी बात का ठीक से जवाब दीजिए, विजय कहाँ है?
6: जी विजय नाम का तो यहाँ कोई नहीं रहता।
8: देखिए हमें पता चला है यहीं रहता है, एक आरोपी को छुपाना कानूनन जुर्म है, इसलिए जल्दी बताइए विजय कहाँ है।
6: सर हम सच कह रहे हैं, यहाँ कोई विजय नहीं रहता।
8: देखिए हमारे पास प्रूफ है, विजय कुशवाहा आधार कार्ड डिटेल्स है, उसमें यहीं का एड्रेस दिया हुआ है।
9: अरे ये तो अपना विजय है।
8: हाँ हाँ पकड़े गए, मतलब हमसे झूठ बोल रहे थे, कौन विजय, अब कहते हो अपना विजय।
6: नहीं नहीं सर, मतलब क्या है ना, ये हमारे परिवार का मेंबर नहीं है, ये तो हमसे पहले इस मकान में रहता था तो इसलिए ये एड्रेस पड़ा होगा।

0: जाए तो फिर समझदारी ही तो काम आती है।
1: आपका आईडी प्रूफ आपका प्रमाण है। ध्यान रखिए कि आपके नाम, नंबर या एड्रेस का कोई और इस्तेमाल ना करे। अब पुलिस अपने विजय, मेरा मतलब है कि विजय को तो पकड़ ही लेगी, बैंक में जो फ्रॉड किया है। लेकिन क्या राठौड़ परिवार की समस्या कम होगी? अब ये तो बाद में पता चलेगा।
2: मर्दों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमसे हंस खेल के बात करने वाला वो विजय फ्रॉड निकला।
3: रागिनी दीदी, पहली बार सही बात बोली है आपने।
2: पहली बार तो क्या कहना चाहती है शांति? क्या मैं हमेशा गलत बात कहती हूँ?
4: भैया, ये हमारी बहने ही है ना, कहीं मंदिर से तो उठा कर नहीं लाए थे इन दोनों को?
2: किशन, तू तो पिटेगा मुझसे।
3: दीदी, आपसे और मुझसे, दोनों से।
2: रुक, अभी बताती हूँ।
3: पकड़ो दीदी, पकड़ो इसको, बहुत मजाक बनाता है हमारा।
4: अरे कोई बचाओ मुझे इन दोनों से, कोई छोड़ के आओ इनको वापस मंदिर में।
2: तुझे तो मंदिर में भी नहीं रखेंगे। रुक,
3: मारो दीदी, मारो मारो।
5: अरे क्या कर रहे हो तुम तीनों, बच्चों की तरह लड़ रहे हो।
6: थोड़ा लड़ने तो ही नहीं अंबिका, बड़े होकर भी बचपन जी लेना चाहिए कभी कभी। घर की रौनक इस मीठे प्यार वाले झगड़े से ही तो है। और देखो ये लोग इस बहाने एक तो हो गए ना।
7: इसलिए तो मैं भी प्यार से झगड़ती हूँ ताकि आप लोग खुश रहें।
5: बड़ी बहू, तू तो इतना खुश कर देती है कि खुशी के साथ मेरा बीपी भी बढ़ जाता है।
8: वैसे चंद्रावती, तुम तो बचपन में बड़ी शांत थी। तुम्हारी माताजी ने बताया था मुझे, कहीं शादी के लिए झूठ तो नहीं कह दिया था?
7: मैं तो सच में बड़ी शांत थी। अपने छोटे भाई पर कभी हाथ नहीं उठाया मैंने। और ये आपकी बहनों को देख लीजिए।
4: बड़े भैया, आप तो बहुत लकी हैं।
6: हाँ बिल्कुल, हमारी बड़ी बहू ने आते ही इस घर को संभाला, इस घर को एक करके रखा। जब इन दोनों की शादी हुई थी तो चंद्रावती 23 साल की थी और गजेंद्र 26 का। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी बहू पर ज्यादा थी। शादी होते ही एक लड़की से सब ऐसे उम्मीदें लगा लेते हैं जैसे एकदम से वो बदल जाए, अपनी उम्र से भी बड़ी होकर व्यवहार करने लगे और वही लड़के को छूट दे देते हैं, बस इसलिए कि वो एक लड़का है। इसलिए मैं तो सच में मानता हूँ मेरी बहू तो बहुत सयानी है।
7: थैंक यू पिताजी।
0: चलिए, कोई तो समझा कि बहू भी एक आम लड़की ही तो है जिसे अपनी सहेलियों से बात करना पसंद है, जिसकी आंखों में अपने भी कुछ सपने हैं। उसी लड़की को शादी की रस्मों के बाद एकदम से सब जिम्मेदारियों से लाद दिया जाता है और कहीं चूक हो जाए तो उसे बुरी बहू का खिताब दे दिया जाता है। उसकी गलतियों पर ताने कसने की जगह प्यार से समझा कर गले लगाकर तो देखिए, देखिए कि कैसे वो बहू बेटी बन जाती है। हाँ, वैसे बहू से याद आया कि राठौड़ परिवार की छोटी बहू रानी राजकुमारी जी नजर नहीं आ रही। ओहो, समझ गया, राजकुमारी जी किचन में है।
5: कुमारी, ये क्या कर रही हो? अरे ये कढ़ाई जमीन पर क्यों गिरी हुई है और ये दो तरफ से मुड़ी हुई क्यों है?
9: मासा, मैं तो आपने जो कहा था बस वही कर रही थी।
5: मैंने क्या कहा तुझे?
9: आपने ही तो कहा था मासा कि राजकुमारी हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, जा इसे बदल कर कुकर ला।
5: तो तूने कढ़ाई को हथौड़े से तोड़ दिया?
9: हाँ, मैं तो इसे कुकर बना रही थी मासा।
5: राजकुमारी बेटा, मैंने कढ़ाई को दुकान से बदल कर लाने को कहा था।
9: ओ, तभी मैं सोचूं कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, फिर मासा ने मुझे कुकर बनाने को क्यों बोला? लेकिन फिर मैंने सोचा, मासा ने बोला है कि कढ़ाई को बदल के कुकर ला तो मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए।
3: आपको क्या लगता है भाभी, इंजीनियर बर्तन बनाते हैं?
9: हाँ, मतलब वो पास वाली दुकान पे जो छोटू है ना, वो इंजीनियर ही तो है, बर्तन ठीक करके देता है सारे वो।
3: भाभी, वो उसके पापा की दुकान है, और वो इंजीनियरिंग की

0: पढ़ाई कर रहा है।
1: अच्छा, अब समझी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में शुरू में ही सिखा देते हैं बर्तन बनाना।
2: बेटा अच्छा हुआ तू इंजीनियर नहीं बनी, वरना सारे इंजीनियर दरिया में कूद जाते।
3: हमारी भाभी कितनी भोली है ना?
4: हाँ, भोली भी है और भाली भी।
0: जैसी भी है हमारी है।
3: मैं बहुत लकी हूँ मासा कि इस परिवार का हिस्सा हूँ।
5: ऐसा आज्ञाकारी देखा है आपने कि कोई कढ़ाई को कुकर बनाने की कोशिश करने लगे? वैसे हर परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, पर यही तो जिंदगी का मजा है। जैसे चाट होती है ना, थोड़ी खट्टी, आहा, थोड़ी मीठी और थोड़ी तीखी, हर स्वाद होता है। ऐसे ही जिंदगी में हर कोई हमारे जैसा सोचने, बोलने और करने लगे तो फिर बोरिंग ना हो जाएगी लाइफ। हाँ, तो चलिए आप और हम लोगों में छुपी हुई खूबसूरती को देखते हैं और उन्हें सराहते भी हैं। आखिर अपने तो अपने होते हैं। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, आपका साथ निभाने और राठौड़ परिवार की कहानी सुनाने फिर आऊंगा अगले एपिसोड में। इंतजार कीजिएगा हमारा, क्योंकि भाई ये राठौड़ परिवार है, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है यहाँ।
6: घर ऑन एयर पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। कैसे वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। अगर तेली त्वचा है तो देंगे आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे। और जी हाँ, जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। वो भी आप आशियाना सुनिए, आपसे चर्चा जरूर करेंगे और कुछ बनाएंगे खास। तो वो खास रेसिपी क्या बनाने वाली हूँ वो भी सस्पेंस रहेगी, अभी नहीं बताऊंगी। और आपको टंग ट्विस्टर पूछने वाली हूँ। तैयार हो ना सभी, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, ध्यान से सुनेंगे। आपकी समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थिति का सामना भी कर सकते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक कहानी के साथ करना चाहूँगी कि अवलदीन और उसकी माँ बहुत ही गरीब थे। उनका निर्वाह बहुत ही कठिनाई से होता था। कभी कभी तो उनके पास दो वक्त की रोटी तक का जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, एक दिन अवलदीन दिन भर काम ढूंढता रहा, परंतु उसे कोई काम नहीं मिला। शाम को थक करके जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने उसे बताया कि घर में अब चावल दाल थोड़ा ही बचा है। दोनों ही चिंता में पड़ गए कि कल भी काम नहीं मिला तो निर्वाह कैसे होगा। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े कि कहीं कोई अतिथि तो नहीं। अवलदीन ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफा दर्जी का घर यही है? अवलदीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौट रहा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अवलदीन की माँ ने उत्तर दिया, उनकी मौत को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है, घर की हालत बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, बेटा अवलदीन ये लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर करके खाना खाया। सोने से पहले परस्पर बातचीत करते हुए मुस्तफा के भाई ने कहा कि मैं पर्याप्त धन कमा करके आया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल सुबह अवलदीन को कुछ काम से बाहर ले जाऊँगा, हम लोग संध्या होने से पहले ही लौट आएंगे। वास्तव में वह मुस्तफा का भाई नहीं था, एक जादूगर था। प्रातः होने पर वह अवलदीन को लेकर के शहर से बाहर एक जंगल में पहुँच गया। वहाँ एक गुफा थी जिसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर के पत्थर को हटाया। वृद्ध ने भीतर एक रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतर करके सीधे अंदर चले जाओ, वहां एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाना। अवलदीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी जिसमें घुसते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। वह आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर देखने लगा। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी। अवलदीन ने उनमें से कुछ रत्न उठा करके जेब में भर लिए और कुछ अपनी झोली में डाल लिए। इतने में उसे अपने चाचा की आवाज सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अवलदीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वही कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था जिस पर धूल जमी हुई थी। अवलदीन ने दीपक उठाया और गुफा के द्वार पर पहुंचा। चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, उसने कहा। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। वृद्ध ने कहा कि भाई पहले दीपक मुझे पकड़ा दो। अवलदीन अपनी बात पर डटा रहा और जादूगर अपनी बात पर। इस तरह कुछ समय बीत गया तो जादूगर को गुस्सा आ गया और बोला, अच्छा तो फिर यही रहो। उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और स्वयं वहां से चला गया। अवलदीन बहुत चिल्लाया परंतु किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। थक करके वह जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक को किसी तरह रगड़ लग गई और एक जिन्न उसके सामने प्रकट हो गया। अवलदीन भय से कांपने लगा। इतने में ऊंची आवाज में वह जिन्न बोला, बोलिए मालिक, क्या आज्ञा है? अवलदीन ने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास ये दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अवलदीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन्न ने पलक झपकते ही अवलदीन को उसके घर पहुँचा दिया। अवलदीन ने जिन्न से कह करके एक बहुत बड़ा महल बनवाया और अपनी माँ के साथ उसमें सुख से रहने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर समझदारी और सूझबूझ से काम करते हैं तो सफलता भी मिलती है और परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार जिस पर जरूर ध्यान देंगे। और आइए सुनेंगे गीत, तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आपको देंगे बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। अगर तेली त्वचा है तो क्या करेंगे, यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो, तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगो करके चेहरे पर होले होले मलिए। इस क्रिया से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव करोगे। मेरी प्यारी बहनों, फिर से दोहरा रही हूँ कि यदि त्वचा इतनी तेली हो कि मेकअप भी नहीं ठहरता हो, तो बर्फ का टुकड़ा दूध में भिगोइए, फिर उसको चेहरे पर होले होले मलिए। ऐसा करने से त्वचा का चिकनापन दूर होगा और चेहरे पर ताजगी का अनुभव होगा। तो जिसके भी तेली त्वचा है तो इस नुस्खे को आजमा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई त्वचा, वो कहते हैं ना कि चेहरे का ध्यान सभी रखते हैं। अब चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं, झाइयाँ हो जाती है, दाग धब्बे होते हैं, तो अच्छे नहीं लगते हैं खुद को। ऐसा नहीं कि सामने वाले को, सामने वाले को क्या पड़ी है भाई, सामने वाले को तो सभी अपने अपने में व्यस्त रहते हैं ना, लेकिन खुद को ही अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या चेहरे पर झाइया वाइया हो गई है। तो इस नुस्खे को आप आजमा सकते हो। अगर शुष्क और रूखी त्वचा है तो फिर आप आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का टुकड़ा भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथों, इन सब मतलब इन अंगों पर आप 5-10 मिनट तक फेरिए नरमी से। आप देखेंगे कि रुई कितनी मेली हो गई है। 20 मिनट के बाद ठंडे या गुनगुने पानी से धो दीजिए। दुग्ध स्नान से त्वचा स्निग्ध बनती है। दूध के रोज प्रयोग से मुहासे, चेहरे की झाइया, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, ये सब दूर होता है, ठीक हो जाता है, और मुख मंडल की शोभा और कांति बढ़ती है और रंग भी निखरता है। कितने सारे फायदे, खाली एक चीज दूध बस, लेकिन कितने सारे फायदे हैं। फिर से दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनेंगे कि आधी कटोरी कच्चा या गुनगुना दूध में एक स्वच्छ रुई का फोहा डालना है, ठीक है? फोहे को भिगो करके चेहरे, गर्दन, हाथ या सभी को आपको मलना है, ठीक है? भले खाली चेहरे को मलिए, वो आप पर छोड़ा है कि आप कहाँ कहाँ दूध लगाते हैं, वो आप पर छोड़ा है। आप देखेंगे कि रुई, अगर हम इस तरह फोहे से दूध लगाएंगे तो फोहा तो मेला हो ही जाएगा। 20 मिनट के बाद ठंडे या फिर गुनगुने पानी से धो लीजिए। तो ऐसे करने से चेहरे की झाइया, मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रिया और खुरदरापन, यह सब ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मुखमंडल की शोभा और कांति बढ़ेगी और रंग निखरेगा। तो बहुत सारे फायदे है। और लास्ट नुस्खा यह है कि देखिए, त्रिफला तो आप सभी जानते हैं, त्रिफला का पाउडर होता है ना, उसको आप पानी में गर्म कर दीजिए। गर्म करके फिर आप ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये, इस पानी को छानना नहीं है, डायरेक्ट इस पानी से चेहरे को धोइए, ठीक है? और चेहरे को धो करके 5 मिनट बाद आप स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए। बस आपकी ये तेली त्वचा होगी ना, उसमें तुरंत ही फर्क पड़ेगा। आप तुरंत महसूस करेंगे, 2-3 दिनों में आप कहेंगे कि वास्तव में तेली त्वचा, जो बार बार पिंपल हो जाते थे, क्योंकि तेली त्वचा में बार बार पिंपल हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे कि चेहरे पर शाइनिंग भी आएगी, दाग धब्बे भी खत्म हो जाएंगे और पिंपल जो निकलते होंगे वो बंद हो जाएंगे। त्रिफला का पाउडर लीजिए। पाउडर को पानी में उबालना है। आपको क्या करना है, रोज रोज ये नहीं कर सकते हो ना, तो आप इकट्ठा ऐसे करके बोतल में भर दीजिए और बस खाली चेहरा धोना है, ठीक है? और चेहरे पर ज़्यादा पानी तो चाहिए नहीं, खाली एक बार आप एक कटोरी में निकाल दीजिए, आधी कटोरी से चेहरे को धो लीजिए, उसके बाद आप 5-7 मिनट रहने दीजिए और फिर स्वच्छ पानी से चेहरा धो लीजिए बस। तो इससे चेहरे पर शाइनिंग आएगी, तेली त्वचा की वजह से पिंपल्स निकलते होंगे वो भी नहीं निकलेंगे, निकलना ही बंद हो जाएगा, और झाइया, किल, मुहासे, दाग धब्बे ये भी सब छूट जाएंगे और चेहरा एकदम चमक उठेगा। ठीक है, तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब हैं, आप आजमा सकते हो। इसमें कोई मोटा मोटा खर्चा भी नहीं है और ऐसे कुछ टिप्स हम आजमाते हैं तो उसके लिए कोई डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाता है, वो अपने आप करते रहते हैं, तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब मैं आपको टंग ट्विस्टर सुना रही हूँ जो आपको बोल के सुनाना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। ये टंग ट्विस्टर है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो आप जरूर टंग ट्विस्टर बोल करके सुनाएंगे। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में ये विषय आपके सामने रखा है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि। नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: हम अच्छे हैं। सभी दोस्तों को, सुनने चाहने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
2: और बहुत ही सुंदर खुशनुमा जीवन के विचार लेके आए हो, और सुविचार भी बहुत ही सुंदर था
1: जी। थैंक यू।
2: कितनी तारीफें करें, कुछ शब्द ही नहीं है। मतलब शब्द कम पड़ गए, क्या तारीफ करें। इतना सुविचार तो बहुत ही सुंदर था
1: जी।
2: और मैं खुशनुमा जीवन के बारे में बात करना चाहूंगा। तो देखिए, जिंदगी मतलब ऐसी है कि इसको वो आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। कोई भी कार्य अपन जैसे कि कोई कार्य करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आसान नहीं बनेगा, उसको करना पड़ेगा, मन लगाएगा, उसको आसान अपन को करना है
1: जी। कैसे?
2: तो जैसे कि देखिए, कोई भी अपन कार्य कर रहे तो उसको मन लगा के करना पड़ेगा
1: जी।
2: तो वो जरूर आसान हो सकता है, परंतु आप बेमन से कोई भी कार्य करोगे तो वो बिगड़ने वाला है, वो मुश्किलें खड़ी करेगा
1: जी।
2: हाँ, तो मैं यही मतलब कहीं पे कोई भी हो, मतलब कहीं पे मतलब झगड़ा हो रहा है या कुछ भी उलझे हुए हैं, तो वहां भी अपन कुछ शांति देना चाहे तो मतलब अपने को पहले मन से दोनों को समझाने की कोशिश, शांति से पहले अपन को शांत होना पड़ेगा
1: जी।
2: तो अपन दूसरों को शांत करेंगे तो उनका मतलब झगड़ा निपटाने में अपन आसानी पैदा कर सकते हैं, नहीं तो अपन खुद ही शांत नहीं होंगे तो वहाँ मुश्किलें बढ़ सकती है
1: जी।
2: तो इसीलिए कहते हैं ना कि कोई भी कार्य करते हो तो अपने मतलब सोच कर अपने मन से दिल लगा के करना चाहिए
1: जी। जी जी, बहुत बहुत आभार सुरेश भाई, बहुत अच्छी तरह आपने स्पष्ट किया इसके लिए। और विषय बहुत ही अच्छा है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान बनानी पड़ती है। कुछ सब्र करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बहुत कुछ नजर अंदाज करना पड़ता है। तो ये आज का विषय है जिस पर आप जरूर चर्चा में अपनी राय व्यक्त कर सकते हो। और आज का टंग ट्विस्टर भी बहुत ही सुंदर है, जो लगभग आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि अक्सर जब महफिल जुड़ती है तो इस तरह की बातें, इस तरह के टंग ट्विस्टर सुनाए जाते हैं। तो मैं सुना रही हूँ आपको, आप ध्यान से सुनना। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, थोड़ा सा घेप लेकर के आप लिख भी सकते हो। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत ही सरल है, आप इजी वे में जवाब दे सकते हो। तो नंबर हमारे है 9914151415, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आज के विषय में भी आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हो, और टंग ट्विस्टर भी बोल करके सुना सकते हो। तो जैसे कि आज का विषय रखा है कि भाई जिंदगी आसान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, जिंदगी आसान नहीं है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको वो बचपन से जब गुजरता है तो बहुत ही इनोसेंट होता है, उसको ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है और ये जीवन इसी तरह चलता रहे। लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो पढ़ाई की टेंशन होने लगती है, पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं आए तो टेंशन, आ जाए अगर अच्छा तो और भी उम्मीदें बढ़ जाती है कि भाई इस बार 80% आए तो अगली बार 85% लाने ही है, फिर 90, फिर 95, आकांक्षाएं बढ़ती जाती है पेरेंट्स की भी और बच्चे की। फिर भी कोशिश करते हैं, लाते हैं, फिर जिम्मेवारी आती है बड़े होते, कुछ पढ़ाई पूरी होने के बाद जब जो जो भी करते हैं शादी ब्याह होता है, बहुत सारे वो कहते हैं कि परिस्थितियां आने लग जाती हैं। कभी कभी तो पैसे टकों से भी आती है, तो कभी कभी लोगों के द्वारा आती है, संबंधों के द्वारा आती है, व्यवहार बिगड़ने लगता है, बहुत सारी बातें आ जाती है जिंदगी में। हम ना चाहते हुए भी किसी न किसी से तकरार हो जाती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं ये सुलझेंगे भी या नहीं, या रिश्तों में ऐसा ही चलता रहेगा। हेलो,
3: हाँ दीदी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल अच्छे, आप सुनाइए।
3: बस हम भी अच्छे हैं और अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा रिश्ता भी है, दोनों विषय अच्छे हैं, दोनों बात अच्छी है
1: जी।
3: एक जिंदगी की बात कही, जिंदगी आसान नहीं होती है लेकिन उसके लिए हमको कुछ करके आसान करना पड़ता है।
1: हाँ जी,
3: कैसे करें ये भी सही बात है, और कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है कि जीवन में हम जो रिश्तेदार में रहते हैं, संबंध में रहते हैं, रिश्तों को भी निभाना पड़ता है और रिश्तों को भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कई रिश्ते टूट रहे हैं
1: जी।
3: और हमारे थोड़ी सी सहन शक्ति भी करनी पड़ती है
1: जी।
3: तो जिंदगी आसान बनाने के लिए दीदी पहले तो एक बात है कि हम ऐसा कोई काम ना करे कि हमको कुछ प्रॉब्लम आए
1: जी।
3: और आसान बनाने के लिए भी दीदी क्या है कि आसान इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और कुछ कहते हैं हमारे गुजराती में कुछ गड़ी पी जाना पड़ता है, खाने पे कुछ सहन करना पड़ता है
1: जी जी जी।
3: और सहन करके सहन किए भी करना पड़ता है, लेकिन सहन की जो हद होती है ये भी सही है। कई बार हम सहन करते हैं तो सहन करते करते करते हम खुद
1: थक जाते हैं,
3: हमारा भी बेहाल हो जाता है, ऐसा ना हो
1: जी।
3: हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन भी आसान हो जाएगा और हमारे रिश्ते भी बना रहेगा, और हमारे कुछ बर्दाश्त करके भी हम आसानी से रिश्तेदारी निभा सकते हैं। अब देखते हैं, मैं बताऊं दीदी कि जो हम शादी का कुछ मौसम होता है घर पे, और कई रिश्तेदारों को तो इतना मनाना पड़ता है, इतना मनाना, हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ किया भी नहीं है
1: जी,
3: फिर भी मनाना पड़ता है। इसी वक्त ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको खुद वहां जाना पड़ता है और कहते हैं भाई चलो भाई हमारी कोई भी भूल हो हम बर्दाश्त कर लेते हैं
1: जी जी,
3: और आप आइए और हमारे शामिल हो जाइए हमारे शादी में या प्रसंग में।
1: बिल्कुल, भले हम इजी वे में उनके यहाँ जाते हो लेकिन कभी कभी कोई कोई रिश्तेदार थोड़े भाव खाते हैं।
3: हाँ ऐसा होता है दीदी, जो अच्छे लोग हैं तो ऐसा करते नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए आसानी से चले जाते हैं
1: जी जी जी, जाना है तो जाना ही है।
3: कई लोग
1: जी,
3: कई लोग तो दीदी ऐसे ही होते कि जब ऐसा मौका मिला तो यही मौका लेते, फिर चलो भाई मौका मिल गया है जो हम कुछ करेंगे उसको हम कहेंगे तो करना पड़ेगा, ऐसा लोग कई लोग ऐसे होते हैं। तो बस जिंदगी तो आसान नहीं होते लेकिन हमको कुछ आसान करना पड़ता है कोई ऐसी वजह से
1: जी जी जी।
3: ठीक है दीदी, और आपने जो सेना आया है तो मैं बताऊं आपको।
1: हाँ जी,
3: चंद की चाची ने चंद के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: क्या बात है,
3: वो गाना बना दिया मैंने।
1: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका।

हमारे नंबर है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज का टंग ट्विस्टर सुना सकते हो। आइए सुन लेते हैं एक गीत, फिर से इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: जिंदगी हंसने खाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं।

0: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में भाई खुशनुमा जीवन की बात चल रही है कि जिंदगी आसान नहीं, आसान इसको बनाने पड़ती है, कुछ सब्र भी करना पड़ता है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। हेलो, हाँ जी नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बस बहन जी थोड़ा बाहर निकला हूँ बाइक लेके, तो आपका प्रोग्राम अभी बदल सुना तो साइड में रख के बाइक बात कर रहा हूँ।
0: जी जी, तो टंग ट्विस्टर सुनाएंगे आप?
1: हाँ वो तो सुना, सुरेश भाई ने सुनाया, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं, अभी थोड़ा बाहर ही हूँ हाईवे पे साइड में गाड़ी रख के।

0: बात कर रहा हूँ।
1: हाँ जी हाँ जी, आपने फोन लगाया तो हम पूछ रहे हैं, आप हाँ, सुनाना चाहो तो भले सुनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं।
0: और आज क्या क्या है आपका?
1: आज का विषय नहीं सुना आपने?
0: नहीं सुना तो था, लेकिन रेडियो तो सुनता था, लेकिन बाइक चालू था।
1: जी जी, तो जिंदगी आसान नहीं, इसको आसान बनानी पड़ती है, बहुत कुछ सब्र, मतलब सब्र भी करना पड़ता है तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और बहुत कुछ नजरअंदाज भी करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप, क्या ख्याल है?
0: बिल्कुल सही बात है कि जीवन है ना, एक एक संघर्ष है, हमें कुछ घुमाना भी पड़ता है, कोई हमारे ये होता है तो सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है।
1: जी
0: हाँ जी, तो इसमें तो ये कोई सगे संबंधी है, कोई उग्र स्वभाव का हो तो हमें शांत से पेश आना पड़ता है, घर परिवार में समाज में सबका स्वभाव देख के हमें रहना पड़ता है।
1: जी जी जी, बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। जी
0: जी बहन जी, थैंक यू
1: जी। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि देखिए जिंदगी आसान नहीं होती, जो दिखाई देती है, लोग हमेशा खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर झांक करके देखेंगे तो कुछ न कुछ टेंशन परेशानियां उनके जीवन में भी है। और सुरेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अक्सर लोग रंग कब दिखाते हैं, जब हमारे घर में प्रसंग आता है, प्रोग्राम आता है, तब तब लोग भाव खाएंगे, आना है आना है, ऐसे नहीं कि उनको नहीं आना है, लेकिन कुछ लोग क्या है, वो चाहेंगे कि यही मौका है कि इन लोगों से थोड़े से मनुहार कराई जाए, ये लोग थोड़े हमारे सामने हाथ जोड़े, पैर पड़े, फिर देखेंगे। बहुत जनों की आदत होती है, कोई कारण नहीं होता है, कोई भी कारण नहीं, और जब घर में इस तरह शादी ब्याह या कुछ प्रोग्राम आता है और उनको न्योता देने जाते हैं कि भाई ये प्रोग्राम है और आइए, तो उस समय अच्छी तरह बात नहीं करेंगे, फिर पुरानी बातें कुछ हुई होगी, भले गलती उन्हीं ही की होगी तो भी दोहराएंगे, उस वक्त ऐसा हो गया वैसा हो गया। बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है कि वो कहते चोरी और सीना झोरी, उस समय भी झगड़ा उन्होंने ही किया, फिर भी इस समय भी वो इस तरह नखरे दिखाते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, रामा भाई बोल रहे? हाँ जी रामा भाई नमस्कार, कैसे हो?
2: ओम शांति। ओम शांति, और मजे में।
1: हाँ जी ओम शांति। तो आज का टंग ट्विस्टर सुनाएंगे?
2: टंग ट्विस्टर भी सुनाएंगे, आज का विचार भी अच्छा बहुत है। टंग ट्विस्टर वो ये उल्टा बोलना है क्या, सही बोलना है?
1: नहीं सीधा ही बोलना है, जैसे मैंने बोला वैसे ही बोलना है। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
2: तो चंदू की चाची ने चंदू के चाचा ने चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: एक शब्द का फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं चलेगा, अच्छी कोशिश की है।
2: तो फिर बढ़ाइए।
1: कोई बात नहीं चलेगा। और विषय के बारे में आप क्या कहेंगे, आपके खुद के अनुभव कैसे रहे हैं, जिंदगी के अनुभव थोड़े सुनाएंगे आपके?
2: अनुभव ऐसा है कि जो मेहनत तो सभी को करनी पड़ती है, और मेहनत का फल होता है सभी को।
1: इसमें मेहनत की बात नहीं है, इसमें यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ हमको नजरअंदाज करना पड़ता है, जिंदगी आसान नहीं है, सब्र करना पड़ता है, तो धैर्यता रखनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप?
2: तो ये रखना ही पड़ता है, ये आपने सभी ने बोला, यही मैं कहता हूं, और क्या।
1: जी जी हाँ जी, आभार आपका। तो बहुत ही ये सुंदर विषय है कि अक्सर, जैसा कि मैंने आपको कहा है, सुरेश भाई ने भी सुनाया है कि जब घर में प्रोग्राम आते हैं तब लोग जरूर उस समय कोई ना कोई रंग जरूर बताएंगे, अपना असली रंग। हेलो, उस समय वो चाहेंगे कि मनुहार करे, और करते क्या करे, क्योंकि आज का समय तो थोड़ा चेंज हो गया, आज का समय में तो आज की युवा पीढ़ी क्या कहती है। हेलो,
3: गुड मॉर्निंग दीदी।
1: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
3: विजय कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
1: हाँ जी विजय कुमार जी, स्वागत आपका, कैसे हो?
3: ठीक है, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं।
3: काफी दिनों बाद बात हो रही है दीदी, प्रॉब्लम हो गया था, मेरा फोन तो खराब हो गया था, और दूसरी बात कि वो मेरा फोन जो लिया दूसरा तो उसमें ये स्टेशन नहीं पकड़ रहा था, तो काफी मकसद के बाद ये सब किया।
1: अच्छा अच्छा, चलिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
3: यही तो आप जो आज का सब्जेक्ट है जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी का तो यही विषय है कि मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जिंदगी में कोशिश करते रहो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।
1: लेकिन यहाँ पर तो परिवार की बात है कि जिंदगी आसान भी नहीं होती, सब्र भी करना पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है और नजरअंदाज भी करना पड़ता है।
3: सब सब सब कुछ करना कर सब सब कुछ करना पड़ता है, परिवार पालना है तो कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है।
1: जी जी जी, अपनों का ही
3: जो मतलब जो आज आज का जो आपने किया वो चंदू के चाचा वाला जो बताया आपने,
1: हाँ जी,
3: तो उसमें क्या है कि बताओ आप।
1: खाली उसको आपको दोहराना है, टंग ट्विस्टर है,
3: स्पीड से कि स्लो में,
1: मीडियम बोल सकते हैं आप, बहुत ही स्लो नहीं, बहुत फास्ट ही नहीं, मीडियम बोल सकते हैं। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
3: चंदू के चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई।
1: वाह वाह, क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका विजय भाई।
3: हाय, ये दीदी ये जो पहेली है ना, ये जो अभी है और वो पके पेड़ पर पका पपीता और वो सभी हम जब पढ़ते थे तभी ये सब ट्राई करते थे।
1: जी जी जी बिल्कुल, ये बचपन की बातें फिर से याद आ रही है।
3: आज आपने बचपन याद दिला दिया। थैंक यू।
1: हम भी बचपन में इस तरह का एक मतलब फ्रेंड्स के साथ चिट चिट करते थे इस तरह बोल बोल के।
3: हाँ यही तो नहीं, आज आज जो आपकी जो पहली जो आपने दोहराई ना, इसके हमें बचपन याद आ गया था। आज मंगल दीदी को फोन लगाता हूँ, दीदी से बात करते हैं।
1: बहुत बहुत आभार आपका,
3: बचपन की याद दिलाने के लिए धन्यवाद।
1: ओहो ऐसा। ओके जी, आभार आभार।
3: ठीक है दीदी।
1: तो बहुत ही सुंदर बात है कि देखिए आज की युवा पीढ़ी थोड़ी चेंज हो चुकी है। आज की युवा पीढ़ी की सोच क्या है, अगर वो आएंगे तो हम भी उनके याद जाएंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, मनहार नहीं करेंगे, हम भी इजी वे में जाएंगे और एक बार प्यार से बुलाया तो वो भी इजी वे में आवे। तो सही है, सही भी है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। और आज की युवा पीढ़ी अब अभी की लाइफ क्या है, हमारी एकदम फास्ट लाइफ हो चुकी है। पहले तो लोग बाग इतने बिजनेस में मतलब खेती बाड़ी में इनमें ही लगे रहते थे, अब तो आज बच्चे भी बाहर रहते हैं, अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, अब उनको इतना समय नहीं कि वो अपनी जॉब छोड़ करके छुट्टियां लेकर के आए और रिश्तेदारों के मनवार करते फिरे, उनको समय नहीं मिलता। पहले तो लोगों के पास काफ़ी समय मिलता था, पहले शादी ब्याह में भी तीन तीन चार चार पाँच पाँच दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते थे, लेकिन आज तो जैसे कि अभी ये विधि चल रही है तो विधि के कोई 10 मिनट पहले आएंगे, कोई 1 घंटा पहले आएंगे, ऐसा हो गया है। इसलिए समय के साथ परिवर्तन हुआ है। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर प्रोग्राम था और कुछ रिश्तेदार उनसे बिना कारण ही नाराज़ थे। उन्होंने एक बार प्यार से उनको घर पर जाकर के उनकी मनहार की कि भाई ये इस तरह का प्रोग्राम है, ये विद्या आपको आना है। बोले कि देखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद वो नहीं आए तो दूसरे रिश्तेदारों ने कहा कि अरे आपके वो रिश्तेदार नहीं दिखाई दे रहे, फोन कर दो। वो बोले नहीं, फोन अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं अपने घर में विधिया है तो उन विधि को मैं संपूर्ण करूंगा या मैं फोन करता फिरूंगा, अगर वो नहीं आए तो कल मुझे भी नहीं जाना है। और नहीं आए वो जबरदस्ती नाराज हो गए तो वो भी फिर उनके प्रोग्राम में नहीं जाते, तो ऐसा हो रहा है। इसलिए बर्दाश्त ठीक है, एक हद तक सभी बर्दाश्त करते हैं, सब्र भी करते हैं, नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं कि चलो जाने दो जाने दो जाने दो, भले वो बोल रहे हैं, भले उल्टा सुलटा सुना रहे हैं, काफी कुछ बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं, नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आ जाता है तो लोग थक जाते हैं, फिर यही या तो रिश्ता टूटता है या फिर उनके सामने पूरे ही दंडवत हो जाते हैं, झुक जाते हैं कि भाई आना ही है आपको, कोई भी गलती नहीं है। तो लेकिन समय के साथ चेंज आया है तो अब ऐसा है कि मैं आपके यहाँ आऊंगी, अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं भी आऊंगी, बिना मनुहार आपको भी आना है, बिना मनुहार मैं भी आऊंगी। अगर मनुहार किया तो आजकल कोई मनुहार नहीं करते, वो लोग क्या है जबरदस्ती नहीं आए, उन्होंने सोचा कि ये लोग फिर से एट ए टाइम आएंगे और हमारे हाथ जोड़ेंगे, वो इंतजार करते रहे, इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई हमने कभी कोई गलती नहीं की, इनके यहाँ पर जो भी प्रोग्राम थे हम इजी वे में गए, तो आज हम हाथ क्यों जोड़े, वो भी आओ सरलता से आ जाओ, उनका ही कार्य है आकर के अपने हाथ से करें। लेकिन नहीं आए, तो वो प्रोग्राम तो हो गया, उसके बाद लोगों ने बातें की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बोले कि हमारी मनवार नहीं की। सामने वाले को पूछा तो बोले कि भी मनवार जब मैंने कभी करा ही नहीं तो मैं क्यों करूं, मैं भी आराम से जा रहा था, वो भी आ जाते हैं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल से मैं भी नहीं जाऊंगा। तो आजकल तो ऐसा ही है जैसे को तैसा, इसलिए ध्यान रखे, बर्दाश्त की हद होती है, बर्दाश्त जो बर्दाश्त की सीमा टूटती है, सब्र की सीमा टूटती है, नज़रअंदाज की सीमा टूटती है, तो रिश्ते बिखर जाते हैं। अब ये इसको संवारना है या बिखेरना है वो अपने हाथ में है, ठीक है। और आज का टंग ट्विस्टर है कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सरल है, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। बहुत सरल है, आप जवाब दे सकते हो, बोल के सुना सकते हो। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो। और आइए फिर से सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: प्यार में हंसी मजाक नोक झोंक चलता ही रहता है। पत्नी जब पति को कहती है कि उसे नीम की निमोली कड़वी लगती है, तो पति उसको मिश्री का बाग लगाने के लिए कहता है, यही तो प्यार है।

0: Hi, this is Gracie Singh, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो आशियाना के किचन में पधारिए. आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बालूशाही. तो बालूशाही आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ. इसको आप बना करके 8-10 दिन भी स्टोर कर सकते हैं, खा सकते हैं. 8-10 दिन की इकट्ठी भी बना सकते हैं. तो सामग्री आपको लिखवा रही हूँ. बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी ले लीजिए 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, खाने वाला सोडा थोड़ा सा, मीठा सोडा बोलते ना जिसको, वो. फिर से सामग्री दोहरा रही हूँ. बालूशाही के लिए मैदा लेना है 1 किलो, घी 1.5 किलो, चीनी भी 1.5 किलो, और दही 100 ग्राम, फिर खाने वाला सोडा थोड़ा सा. अब मैं आपको बनाने का तरीका भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ कि मैदे को छान लीजिए. छान करके फिर बराबर का घी डालिए मैदे में, ठीक है, और सोडा भी डाल दीजिए, और फिर दही डाल करके अच्छी तरह मथिए. मैदे को इस तरह आपको गूंद लेना है. फिर छोटी छोटी उसकी गोलियां बना लेनी है. उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके इसको थोड़ा सा दबाइए. अब आप कढ़ाई में घी डालिए. घी गर्म हो जाए तो हल्की आंच पर आप बालूशाही को तल लीजिए. अगर ये दोनों तरफ से लाल हो जाए तो फिर निकाल दीजिए. फिर 3 तार की चाशनी बनानी है, उसमें थोड़ी देर तक डुबोइए बालूशाही को, उसके बाद निकाल दीजिए. तो ये बन गई बालूशाही. बहुत स्वादिष्ट लगती है बालूशाही भी, और अक्सर राजस्थान में तो देखा है कि प्रतिभोज होते हैं ना, उसमें बालूशाही बनती है. तो फिर से मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ कि मैदे को छानिए. छान करके ये इसमें बराबर का घी डालिए मोवन के तौर पर, फिर सोडा भी डाल दीजिए. दही को मथ लेना है, और फिर मैदे में डाल करके अच्छी तरह गूंदना है, ठीक है. फिर छोटी छोटी इसकी गोलियां बना लीजिए, और उंगलियों से बालूशाही का आकार दे करके दबाइए हल्का सा. अब आप घी रखिए, कढ़ाई में डालिए, गरम करिए, और हल्की आंच पर बालूशाही को तल लीजिए. दोनों तरफ से लाल लाल हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए. इस तरह सारी बालूशाही तल लीजिए, और आपको दूसरे गैस पर चाशनी बना देनी है 3 तार की, और बालूशाही को उसमें डालना है, और डुबो डुबो करके उसको निकालना है, ठीक है. थोड़ी सी देर ही उसमें रखना है, फिर निकाल देना है. इस तरह सारी बालूशाही आपको बना लेनी है. तो बहुत ही सरल तरीका, आराम से आप बना सकते हो, और इजी वे में बना करके खा सकते हो. बहुत ही तरीका इसका सरल है, और स्वादिष्ट मिठाई है ये, तो आराम से आप बना सकते हो. चलिए अभी तो एक गीत सुनेंगे, उसके बाद फिर से एक आपको एक रेसिपी खाऊंगी. तो आज का ट्विस्टर आपको सुना रही हूँ. चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई. ये टंग ट्विस्टर आपको बोल के सुनाना है. नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आज टंग ट्विस्टर सुना सकते हो. अब बढ़ते हैं फिर से गीत की तरफ. तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन.

0: अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा था बालूशाही। अब आपको सिखा देते हैं बेसन की खट्टी पूरी, भाई नमकीन और मीठा दोनों के जोड़ा कहलाता है ना, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो मीठा हो और नमकीन ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा, नमकीन हो और मीठा ना हो तो भी मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए बेसन की खट्टी पूरी के लिए मैं आपको सामग्री लिखवा रही हूँ। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है, 200 ग्राम लेना है बेसन। फिर आप लीजिए चुटकी भर हींग और 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी ले लीजिए। हरा धनिया लेना है आवश्यकता के अनुसार, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। और 2 चम्मच आपको लेना है अमचूर और आवश्यकता के अनुसार तेल। फिर से दोहरा रही हूँ सामग्री को, ध्यान दीजिएगा। 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल लेना है सबसे पहले तो, फिर 200 ग्राम बेसन ले लीजिए, चुटकी भर हींग लेना है तो 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी लेना है, हरा धनिया, नमक, पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। और 2 चम्मच अमचूर लेना है, आवश्यकता के अनुसार तेल ले लीजिए। अब बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि बेसन में 2 चम्मच तेल डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए, ठीक है, मोहन के तौर पर। और अब बेसन को पानी के साथ बहुत ही कड़क गूंदना है, आवश्यकता के अनुसार पानी डाल करके। फिर गूंदते समय सब सूखे व हरे मसाले मिला दीजिए और फिर छोटी छोटी लोई बना करके पूरी बना लीजिए और तेल में करारी करारी तल लीजिए। तो ये बन गए बेसन की खट्टी पूरी। फिर से आपको विधि बता रही हूँ कि बेसन को छानिए, छान करके इसमें जो 2 चम्मच तेल लिए है ना वो डालिए मोहन के तौर पर, अच्छी तरह मिक्स करिए। फिर इसमें सारे मसाले डाल दीजिए, हींग, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, कलौंजी वगैरह सब डाल देना है। डाल करके अच्छी तरह कड़क गूंद लीजिए, ठीक है। गूंद करके बस लुए बना करके पूरी की तरह बेल लीजिए और तेल में तल लीजिए। तो ये बन गई बेसन की खट्टी पूरी। तो बेसन की खट्टी पूरी तैयार है, बालूशाही तैयार है। तो बस देर किस बात की, लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में दोनों ही सामग्री रखिए और भी कुछ आपने बनाया हो तो वो भी रख दीजिए। तुलसी पत्र और जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा बालूशाही और बेसन की खट्टी पूरी का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुना ही है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा है। और आज का टंग ट्विस्टर था, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चमची से चटनी चटाई। तो जवाब आज सभी का सही रहा है। विषय में भी आपने बहुत ही अच्छी अपनी राय व्यक्त की है। सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई जोटाना से, जीतू भाई खेड़ ब्रह्मा से, और रामा भाई वासना से, विजय कुमार जी, कंचन भाई ने विषय पर चर्चा की लेकिन टंग ट्विस्टर नहीं सुनाया, बाकी सभी ने सुनाया। आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां। और अब मैं एक प्यारा सा आपको भाव भजन सुनाऊंगी। आज का अनमोल वचन है कि बात सीधी सी है, आप कुदरत का ख्याल रखिए, कुदरत आपका ख्याल रखेंगे। और अब मैं आपको प्यारा सा भाव भजन सुनाऊंगी, कृष्ण भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। जग में

0: रुक ओए रुक रुक, तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वंदे मातरम गीत देश के क्रांतिकारियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत था। ये आजाद हिंद फौज के सैनिकों का भी मूल मंत्र था। वही आजाद हिंद फौज जिसकी नींव भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे महान नेताओं और सूत्रधारों में से एक राज बिहारी बोस ने की थी, जिसकी कमान बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथों में चली गई। कहते हैं कि अगर अरबिंदो घोष को यंग इंडिया का मैजनी माना जाता है, तो राज बिहारी बोस को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का कैवूर कहना गलत नहीं होगा। उन्होंने विदेशी धरती पर रहकर भारतीय राष्ट्रवाद की लौ जलाए रखी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की आज की कड़ी में हम सुनेंगे भारत के इन्हीं दिलेर क्रांतिकारी राज बिहारी बोस की वीरता एवं जाबाजी की कहानी।
1: दीदी, ये वही क्रांतिकारी तो नहीं जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले के मुख्य सूत्रधार थे?
2: बिल्कुल सही पहचाना बन्नू, तुम्हें याद रहा? ये बड़ी बात है।
1: हाँ दीदी, भिकाजी कामा और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साहसिक किस्से सुनाते समय आपने इनका जिक्र किया था।
2: दरअसल राज बिहारी बोस तभी चर्चा में आए थे जब उनका नाम भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमले में आया था।
0: बड़ी शानदार योजना बनाई गई थी क्रांतिकारियों द्वारा चंदन नगर में हुई उस बैठक में। हार्डिंग पर हमले का सुझाव देने वाले कोई और नहीं, राज बिहारी के निडर दोस्त श्रीश घोष थे। लेकिन बैठक में मौजूद कुछ लोगों को ये अव्यवहारिक लगा।
3: मुझे शंका है कि हम हार्डिंग पर बम से हमला कर पाएंगे, उसके आसपास बहुत सुरक्षा रहती है।
4: हम तैयार और दृढ़ है, लेकिन हमारी दो शर्तें हैं। हमें शक्तिशाली बम दिया जाए और पक्के क्रांतिकारी चरित्र वाला एक युवा मिले।
0: राज बिहारी की दोनों शर्तें पूरी की गईं। 1911 की दिवाली पर चारों ओर पटाखों की आवाज के बीच पहली रिहर्सल भी हुई। बम राज बिहारी की उम्मीद के मुताबिक फटे, लेकिन उन्हें एक साल से अधिक इंतजार करना पड़ा। फिर आया 22 दिसंबर 1912 का दिन। राज बिहारी बोस अपनी युवा गर्लफ्रेंड को टोंगा में बिठाकर चांदनी चौक की सड़कों पर ले गए, जहां अगले दिन हमले की योजना बनी थी।
4: बसंत, तुम चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक के पास क्लॉक टावर वाले जगह पर रहोगे, महिलाओं के बीच महिलाओं के वेश में। बम तभी फेंकना जब वायसराय का हाथी ठीक सामने हो। अगर तुम चूकोगे तो मैं और अवध बिहारी हमले को अंजाम देंगे।
5: जी गुरुजी।
6: तुम्हें डर तो नहीं लग रहा बसंत?
5: नहीं, डर किस बात का, महीनों अभ्यास किया है, आज के दिन का ही तो इंतजार था।
0: वाइसरॉय और उनकी पत्नी हाथी पर सवार गली में प्रवेश करते हैं। महिलाएं जुलूस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बसंत, जो कि एक लड़की के भेष में था, वो भी उन्हीं के बीच उपस्थित था। तभी अचानक राज बिहारी का ध्यान आता है और वो अपनी शंका अवध बिहारी से साझा करते हैं।
4: देहरादून में सिगरेट के डिब्बे में बम फेंकने की जो प्रैक्टिस की गई थी, यह काम नहीं आएगी।
6: क्यों, ऐसा क्या हो गया?
4: यह हमें पहले जमीन से हाथी पर बैठे टारगेट तक की ऊंचाई का अंदाजा लगाना होगा। वसंत, तुम अपना कपड़ा बदल लो और नीचे आ जाओ।
0: कहने को तो लॉर्ड हार्डिंग पर हमले के पूरे ऑपरेशन की योजना बहुत चतुराई से बनाई गई थी, लेकिन 23 दिसंबर 1912 का ये हमला दुर्भाग्य से विफल रहा। बसंत बिल्डिंग के नीचे गया और फुटपाथ पर भीड़ में घुल मिल गया, लेकिन बम अवध बिहारी ने फेंके। इसमें वॉइसरॉय पूरी तरह घायल हो गए। उन्हें पास के एक डॉक्टर एस सी सेन के पास ले जाया गया। रास बिहारी तो बच निकले, मगर हत्या की नाकाम कोशिश के बाद बोस के 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला। उनमें से एक को उम्र कैद की सजा हुई, बाकी अवध बिहारी गिरफ्तार समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई।

0: क्रांतिकारी कार्रवाई की योजना बनाने और उसे अंजाम देने वाले वही थे।
1: मुझे 1908 की घटना याद आ रही है। उन्हें अलीपुर बम केस में फंसाया गया था, जेल भी भेज दिया गया, लेकिन वहां से रिहा होते ही फिर से वे क्रांतिकारियों के साथ गुप्त रूप में संपर्क में रहने लगे।
2: दीदी, भिकाजी कामा ने भी रास बिहारी जी से बम और हथियार इकट्ठा करने को कहा था ना?
3: हाँ, दरअसल रास बिहारी बोस एक बहुत ही काबिल क्रांतिकारी नेता थे। स्कूली दिनों से उनकी दिलचस्पी क्रांतिकारी गतिविधियों में रहने लगी थी। मैट्रिक पास करने से पहले ही देसी बम बनाना सीख लिया था। ऐसे में जब वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए तो उनकी भूमिका बढ़ गई। उन पर लेखक, कवि और विचारक बंकिम चंद्र चैटर्जी के क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ का काफी प्रभाव था।
4: आनंद मठ के अलावा राज बिहारी ने मशहूर बंगाली कवि नवीन सेन की देशभक्तिपूर्ण कविताओं का संग्रह प्लासीर युद्ध भी पढ़ा। समय के साथ उन्होंने और भी क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ी। उन्होंने वक्ता और क्रांतिकारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी भाषण पढ़े। चंदन नगर में उनके शिक्षक चारू चंद्र, जो क्रांतिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे, उन्होंने रास बिहारी को क्रांतिकारी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वो कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए।
5: मैंने फोर्ट विलियम में तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली, तुम वहाँ चले जाओ।
6: जी, जैसा आप कहे।
4: रास बिहारी फोर्ट विलियम चले गए, लेकिन वहाँ का माहौल उन्हें रास नहीं आ रहा था। पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनका तबादला शिमला में सरकारी प्रेस में हो जाए। इस तरह उन्हें प्रेस में कॉपी होल्डर नियुक्त किया गया। रास बिहारी ने अंग्रेजी और टाइपराइटिंग में महारत हासिल कर ली। कुछ समय बाद वो कसौली के पाश्चर इंस्टीट्यूट चले गए, लेकिन ये नौकरियां उन्हें रास नहीं आ रही थी। वो खुश नहीं थे।
6: मुझे ये काम अच्छे नहीं लग रहे, क्या करूं, उलझन में हूँ।
7: आप देहरादून क्यों नहीं जाते? वहां प्रथमनाथ टैगोर के घर पर गार्जियन ट्यूटर की जगह खाली है, मैं बात करता हूँ।
6: जरूर करे बात मेरे लिए।
4: इस तरह वो एक ट्यूटर के तौर पर काम करने लगे। फिर उन्हें देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क की नौकरी मिली, जहाँ कड़ी मेहनत से वो हेड क्लर्क बन गए।
3: जानती हो बन्नो, बोस का मन नौकरी में क्यों नहीं लग रहा था?
2: क्यों दीदी?
3: वजह थी 1905 में हुआ बंगाल का बंटवारा और उसके बाद हुई घटनाएं। तब रास बिहारी बोस अपनी किशोर अवस्था में थे। बंटवारे का कारण प्रशासनिक बताया गया था, लेकिन असल में वो धार्मिक आधार पर किया गया प्रतीत हो रहा था। दूसरे बंगाली हिंदू राष्ट्रवादियों की तरह बोस इससे बहुत नाराज थे।
4: भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का मुख्य केंद्र बंगाल था। बंगाली हिंदुओं को लगा कि अंग्रेज उनकी ताकत को कमजोर करने के लिए ये बंटवारा कर रहे हैं। मुसलमानों ने इस कदम का काफी समर्थन किया। पूरे बंगाल में राष्ट्रवादी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। द न्यू एशिया ऑफ रास बिहारी बोस, इंडिया जापान एंड द लिमिट्स ऑफ द इंटरनेशनल 1912 से 1945 के लेखक जोसेफ मैक्वेट के अनुसार,
8: अहिंसक गुट ने आर्थिक बहिष्कार के जरिए ब्रिटिश शासन को कमजोर करने की कोशिश की, जबकि एक ज्यादा कठोर गुट ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश की।
4: रास बिहारी बोस गदर क्रांति के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे। मैक्वेट अपनी एक किताब में लिखते हैं,
8: जब अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में उलझे हुए थे, तब रास बिहारी बोस ने 1857 के विद्रोह जैसा ही एक विद्रोह भड़काने की योजना बनाई। तब ब्रिटिश शासकों के अधीन काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी थी। पहले विद्रोह शुरू करने की तारीख 21 फरवरी 1915 तय की गई थी। स्थान था लाहौर। 1914 तक लगभग 4000 गदर आंदोलनकारी हथियार और पैसे लेकर अमेरिका, कनाडा और सुदूर पूर्व से भारत आ चुके थे, लेकिन उनके पास कोई सही नेता नहीं था। तब रास बिहारी बोस ने उनका

0: नेतृत्व एवं मार्गदर्शन किया। जनवरी 1915 के मध्य में रास बिहारी ने बनारस में एक निजी बैठक में आगामी क्रांति को लेकर पहली बार चर्चा की।
1: यूरोप में युद्ध शुरू हो चुका है। देश में केवल 30,000 सैनिक ही बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर भारतीय हैं और उनकी वफादारी आसानी से जीती जा सकती है। योजना ये है कि भरोसेमंद गदर आंदोलनकारियों को सेना की छावनियों में भेजा जाए। देशभक्तों की क्रांतिकारी कार्रवाई के बिना ब्रिटिश सरकार नहीं मानेगी।
2: आप सही कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ।
3: राज बिहारी द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप खैरों, फिरोजपुर और लाहौर में कुछ रिहर्सल भी आयोजित किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना को अंजाम नहीं दिया जा सका। वो जल्द ही विफल हो गई। यूं कहें कि ब्रिटिश सरकार ने संघर्ष को शुरू होने से पहले ही कुचल दिया। एस्टन और कवाबे अपनी किताब में लिखते हैं,
4: जैसे ही जासूसों ने आंदोलन में घुसपैठ की, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों से हथियार छीनना शुरू कर दिया। बिना डरे बोस ने विद्रोह शुरू करने की तारीख 19 फरवरी कर दी, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए इस योजना को दबा दिया गया। कई क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, जेल में डाला गया और यहां तक कि देश निकाला दे दिया गया।
3: ब्रिटिश अधिकारियों के पीछे पड़ने और सिर पर इनाम घोषित होने के बाद राज बिहारी बोस ने तय किया कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है। 12 मई 1915 को राज बिहारी कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के रिश्तेदार का भेष बदलकर कोलकाता बंदरगाह से जापान के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वो गदर पार्टी के हैरम लाल गुप्ता और भगवान सिंह से मिले।
1: मैं एक भगोड़े की तरह रहकर थक चुका हूँ, 17 बार अपना ठिकाना बदला है।
5: आपको और हैरम लाल को जापान से वापस भेजने की कोशिश करता हूँ।
3: भले ही 1902 से 1923 के बीच जापान ब्रिटेन का सहयोगी था, बावजूद इसके उसने उन क्रांतिकारियों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे थे जो भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना चाहते थे। पता चला कि हैरम लाल अमेरिका भाग गए और राज बिहारी ने तोसिको सोमा से शादी करके जापान की नागरिकता ले ली।
6: पन्नो, राज बिहारी बोस ने ही जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और बाद में आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसकी कमान बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। हालांकि इस संगठन का प्रमुख स्लोगन वंदे मातरम ही रहा। बंगाल के सभी क्रांतिकारियों की तरह राज बिहारी बोस के लिए ये केवल एक गीत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नारा था।
3: जापान में 3 दशकों से ज्यादा समय तक निर्वासित रहने के दौरान राज बिहारी भारत की आजादी के लिए लगातार काम करते रहे। वहां उन्होंने एक भारतीय बुद्धिजीवी, दार्शनिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर ऊंचा मुकाम हासिल किया। उसकी मिसाल आज भी नहीं मिलती। उन्होंने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी प्रतीकों को बढ़ावा दिया। राज बिहारी का मानना था कि INA उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एकता के प्रतीक के तौर पर काम करेगी, ताकि वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का मौका पा सके। असल में INA राज बिहारी बोस के आजादी के लिए उनके सशस्त्र संघर्ष के 30 साल की लंबी कोशिश का परिणाम था। वो कहते थे,
1: मैं एक व्यवहारिक और राष्ट्रवादी सोच रखता हूँ। मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में एकता और एकजुट रुख की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। यह संगठन दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में भारत की आजादी की लड़ाई के लिए जनमत और समर्थन जुटाने में एक असरदार और गतिशील संस्था के रूप में काम करेगा। वैसे ही वंदे मातरम महज एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता का बड़ा प्रतीक है। इसमें प्रवासी भारतीयों को एकजुट करने की क्षमता है।
3: राज बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई दादा कालीचरण के देखरेख में सुबलदाहा में हुई। उनका निधन 1945 में हुआ, यानी 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी मिलने से ठीक पहले। ये एक ऐसी जीत थी जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और वीर क्रांतिकारी से। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

खिलते हैं तब जब उसकी रहमत हो। उससे मिलने की तरकीब कहूं गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। नहीं अब हक मुझको।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। सरकार का मंशा है आसपास गांव और अंचल में जो गतिविधि हो रही है जन जन तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच एक स्टेज देती है। ये सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है, क्योंकि आसपास चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो सभी वर्ग से मिलते हैं। तो आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज में पहुंचे, बहुत खुशी लगा क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय वो भी बालिका है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनों विद्यालय का मिलित सहयोग से बच्चों का टैलेंट को विशेषता को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज रेडियो मधुबन का प्रस्तुति लेकर आए हैं। जो बच्चे बारी बारी अपना आवाज को हुनर को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे, हमें खुशी है। बच्चों का जो नैतिकता बौद्धिक विकास इस तरह मंच का माध्यम से जन जन तक पहुंचेगा। जब आकाशवाणी में इनका आवाज आएगी उनका परिवार वाले माँ बाप दोस्त लोग टीचर्सगण सुनेंगे, अरे ये तो हमारा उसका आवाज है उसकी आवाज है। और दोस्त लोग बोले यार तुम्हारा आवाज जब सुने आकाशवाणी में क्या आवाज था, गजब पूरा। ऐसे आप आगे बढ़ते रहे ऐसे आशीर्वाद भी देंगे तो हमें खुशी है। तो देर किस बात की, पहला प्रस्तुति हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में अपना दिल का भावना को भाव को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए एक मंच का माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो आज रेडियो का कार्यक्रम में पहला प्रस्तुति एक माँ शारदा का गीत होगी जो कि हमारा छात्राएं उपस्थित है, तो आए सामने उनको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से, क्योंकि हर प्रार्थना सत्र में बच्चे गाते हैं और

0: मुझे खुशी लगता है क्योंकि इस पर विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का मिलित सहयोग से आज जो कार्यक्रम हो रही है सबको खुशी मिलेगा। सभी अपना परिचय देंगे और कहाँ से आते हैं और उनका जीवन में लक्ष्य आज क्या सीखे वो भी बताएंगे। पहले हमारा साथ इस कार्यक्रम को साझा निकले नाम बताएंगे।
1: तमन्ना शर्मा।
0: और कौन सा क्लास?
1: 11th बी।
0: बड़े होकर क्या बनेगी तुम?
1: लॉयर।
0: बड़ा जज करेंगे, जज एक्चुअल है तो आत्मा जज है ही। हाँ तुम बता, नाम बता।
2: फलकनाश महावत।
0: और कौन सा क्लास?
2: 11th है।
0: पढ़े आपको अच्छा लगता है?
2: यस सर।
0: बड़े होकर क्या बनेगी?
2: सोचा नहीं।
0: वेरी सस्पेंस, बाद में बताएगी। लेकिन लेकिन आपका अच्छा दोस्त नाम बता पलक, कौन तुम्हारा अच्छा दोस्त, गुड फ्रेंड?
2: सभी दोस्त
0: है। सभी मेरा दोस्त है, कोई मेरा शत्रु नहीं, ऐसे होता है। वेरी गुड। फलक के लिए एक हाथ का ताली, एक हाथ का, सब ऐसे करो, उनको सम्मान दो। देखो फलक तुम्हारा कितना दोस्त है, सभी हलक कर रहे, बहुत अच्छा दोस्त, सभी दोस्त तुमको अच्छा। देखो एक हाथ का ताली मंचे, उसको हलक कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ और एक परी, क्या नाम है?
3: रवीना नाम दे।
0: रवीना कितने टीचर है? लगभग
3: 10
0: तो होगा, सोचकर बता रहे 10 तो होगा, बहुत अच्छा। चलिए और एक छात्रा है,
4: सेजल कुमावत।
0: कौन नाम रखा है?
4: मम्मी पापा।
0: हाँ मम्मी पापा भगवान तुल्य होते हैं, भगवान तो नाम देते नहीं, लेकिन माँ बाप भी कम नहीं है। माँ बाप को कभी भूलना नहीं है, भले किसको भूलो लेकिन माँ बाप को नहीं भूलना है। बराबर बोल भाई, माँ बाप को कभी भूलना नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं भूलना है, क्यों नहीं भूलना है माँ बाप को बताओ बहन?
3: क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, पाला है,
0: वो नहीं खाकर आपको खिलाते हैं, गरम गरम खिलाते हैं, टिफिन देते हैं, इसलिए उनको भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एक विराम लेते हैं, गीत का थोड़ा सस्पेंस रख देते हैं, फिर अगला कड़ी में गीत सुनेंगे सभीओं से, है ना? फलक
1: तबन्ना
3: सेजल
0: सेजल से सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खासकर विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट को आज हम जन जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बच्चे बिना झिझक से अपना आवाज को सुनाने के लिए प्रस्तुत है। पहला प्रस्तुति मैंने जैसे ब्रेक का पहले सुनाया था, एक गीत होगी प्रार्थना के रूप में सरस्वती वंदना, पीछे से आवाज आ रहा था वंस मोर होगा, लेकिन पहले सरस्वती वंदना। चलिए आपको वंदना करते, ओके शुरू करिए।

0: तार दे माँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। पहला प्रस्तुति में स्वर लय और ताल का साथ बच्चे सीख जाते हैं और करते हैं इस तरह संगठन रूप में जब प्रार्थना में करते हैं। कितने बच्चे होंगे आपका स्कूल में?
0: 600।
1: और बच्चियां बहुत दूर दूर से आते होंगे, है ना? विद्यार्थी जीवन में अटेंशन होकर सुनना। विद्यार्थी जीवन में विद्यालय में 5 घंटा पढ़ाई होता होगा, कितना घंटा?
0: 6 घंटे।
1: दिन में कितना घंटा होता है?
2: 24।
1: 6 घंटा माइनस करो, कितना घंटा बच्चा?
3: 18 घंटा।
1: 18 घंटा क्या करते हैं आप?
3: घर में 18 घंटा बिताते हैं।
1: पढ़ाई होता है ना खाली ऐसे ही?
0: पढ़ाई, घर का काम।
1: घर का काम क्या क्या घर में काम होता है?
0: झाड़ू पोछा पड़ना
1: आपको करना पड़ता है बच्चों को?
0: मम्मी का थोड़ा हाथ बटाते, उनसे नहीं होता फिर करते ऐसे।
1: फिर माँ को ही हाथ बटा, पिताजी के लिए कुछ नहीं करते?
0: पिताजी बाहर कमाते।
1: फिर भी कोई जरूरत नहीं पड़ता आपको? उनका कपड़ा पारा सफाई कर देना, आयरन कर देना है?
0: पिताजी घर पे आते, खाना वगैरह देना, कपड़े कभी रहते हैं धो देना ऐसे।
1: वेरी गुड। अभी जब हम देंगे तब तुम हमको रिटर्न में मिलेगा, है ना? काला बॉल ऐसे फेंकेंगे तो काला बॉल ही आएगा ना, ब्लैक बॉल, व्हाइट बॉल थोड़ा आएगा। जो देंगे
0: वही मिलेगा,
1: इसलिए ध्यान रखना है न्यूटन का जो नियम है, जो देंगे वो मिलेगा। खुशी देंगे तो
0: खुशी मिलेगी,
1: खुशी देंगे तो
0: खुशी मिलेगी।
1: बच्चे तो कोई किसको दुख तो नहीं देते होंगे? कोई बच्चे दुख देते हैं? नहीं, दुख नहीं देना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा बात बताया जी, मम्मी और पापा दोनों को हम सहयोग देते हैं, देना चाहिए ना? नहीं
0: देना चाहिए।
1: और हम गाते तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो भगवान को कहते, और नेक्स्ट टू गॉड कहते माता पिता, है ना? हम तो वो भगवान को नहीं देखे, कि माता पिता को तो भगवान के रूप में देखे कि नहीं? जो चीज मांगते देते कि नहीं?
0: देते।
1: पिताजी आपके लिए क्या देते?
0: पापा जो भी मांगो पापा सारी इच्छा पूरी करते।
1: पापा का जगह कोई ले नहीं सकता, पापा तो पापा ही होता है। पापा भी मम्मी को देते हैं, मम्मी हमें देते। पापा को कौन देता है?
0: पापा कमाते हैं।
1: पापा खुद कमाते हैं, इसलिए वो भी भगवान का
0: करते, भगवान का सब दिया होता है।
1: हाँ, भगवान का बच्चों के लिए कुछ कराते। अच्छा, आप कुछ कहना चाहिए? बहुत शांत रह रहे, पूरा चुप रह रहे। आप आज का जो सेशन हुआ क्या आपको अच्छा लगा? एक पॉइंट बताओ, क्या आपको सीखने को मिला? जो चीज आपको पहले मालूम नहीं था, लेकिन इस सेशन का बाद चित्र का वीडियो का माध्यम से जो देखा है, तो आपको कौन सा चीज अच्छा लगा जो आपको पहले पता नहीं था?
4: कि हम एक आत्मा है,
1: ये पता नहीं था। वास्तविक है ना? ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, वास्तविक। तो ये बहुत अच्छा बात बताए, तब सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति देने के लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।

0: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
1: सर वो सर सर
0: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ।
2: ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
1: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
2: तो आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो हैं?
0: पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अभी प्रार्थना में हम माँ शारदा जो कि सरस्वती वंदना सुन रहे थे, क्योंकि सरस्वती ज्ञान की देवी कहते हैं और हर विद्यालय में माँ सरस्वती को गणेश जी को याद करते, क्योंकि विद्या का दात्री और दाता है। और वो दोनों गणेश का पिताजी का नाम क्या है?
1: शिव जी।
0: शिव जी गणेश को देते हैं, गणेश हमें देते हैं, तो हो गया ना, गणेश का पिताजी कौन हो गया?
2: शिव जी।
0: अच्छा, सरस्वती का पिताजी कौन? अब तो सरस्वती वंदना किए ना चारों, अभी देखते सरस्वती का माँ बाप तो होंगे ना?
2: ब्रह्मा जी।
0: हाँ ब्रह्मा जी, उसके लिए तो ऐसे धीरे धीरे ताली बजाओ। वाह, वेरी गुड आंसर। सरस्वती का बाप का नाम क्या था? ब्रह्मा का बेटी। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर। कोई बोल रहा था पीछे से, पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है?
2: अजमेर।
0: हाँ, ब्रह्मा का मंदिर। जीके भी हो गया है ना? चलिए, बहुत अच्छा। हमारे साथ एक छोटी सी परी आई, तो आप अपना नाम बताइए।
3: कोमल कुमारी।
0: कोमल, क्या नाम है, सुंदर नाम, कोमल। बहन तो कोमल होते है ना, कठोर नहीं, कोमल। ये और है ही हमारा बहन कोमल, नाम जैसे काम वैसे। चले कोमल बहन, आप बताओ क्या गीत गाएगी?
3: देशभक्ति।
0: देशभक्ति, चलिए शुरू करिए।
3: माँ

0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो श्रोता मित्र, खासकर आप सब सुन पा रहे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज के बच्चों को। कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, बुलंद आवाज से पहला बार आए, कोई सूचना नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था, फिर भी बच्चे एक का बाद एक अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हैं, और इसका श्रेय तो मैम को जाता है, संस्था प्रधान को जाता है, और सब स्टाफ को, और खासकर जो बच्चे भाग लिए थे उनका माता पिता को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि भारत माता की जय कहते हैं, वो भी माँ, भारत माँ कहते ना, इंडिया माँ, तो भारत माता के लिए आज क्या कहेंगे, भारत आपको महान कैसे।

0: लगता है हम और भारत को घूमने के लिए पूरा विदेश लोग आते हैं, अमेरिका मदर नहीं कहते, तो माँ का विशेषता आज तो माँ बाप का जो सुनेंगे वो बोलेंगे हमारा बात कर रहे हैं, माँ बाप का ही चल रहा है, भगवान को भी बाप कहते हैं, माँ बाप कहते हैं, अपना घर में भी माँ बाप है और भारत देश माँ का नाम से पुकारते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और कोमल खेल खेलते हैं, कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है?
1: मुझे बैडमिंटन।
0: बैडमिंटन, आपका जो बैडमिंटन का जो बुद्धि में आया खेलने के लिए, कौन सिखाया आपको, किससे सीखे?
1: मैं मेरे पापा से।
0: पापा बैडमिंटन खेलते हैं, पापा कम नहीं, पापा बोला था ना पापा पापा होते हैं, पापा का काम को भी उनको सब दिया, मतलब बैडमिंटन खेलने में प्रोत्साहन। लेकिन बड़े होकर क्या बनेगी कमल?
1: अभी तक सोचा नहीं।
0: सोचा नहीं, लेकिन सोचो, सभी लोग बोले सोचेंगे तो कब सोचेंगे, सोचेंगे समझेंगे चुप्पी तोड़ेंगे तब जाकर बनेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे तो कौन बताएगा, तोड़ना पड़ेगा ना चुप्पी ना चुप रहेंगे, अपना बात को रखना है, कोई भी बात होता है किसके पास कहते आप, मम्मी के पास ना पापा के ना दोस्तों, किसको समझाते?
1: बुआ को।
0: बुआ को, वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। अगला प्रस्तुति सुनेंगे, हमारा साथ और एक छात्रा है, कुछ बोलना चाहेंगे लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: ओए रुको रुको रुको, हाँ जी थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, पर जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे, और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे, और रोड पे कोई हो न हो सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे, और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा साथ अभी तक हम सभी से बात रूबरू हो रहे थे क्योंकि अपना आवाज को बोल रहे हैं रेडियो का माध्यम से, तो हमारा साथ और एक छात्रा उपस्थित है, तो कौन सा क्लास के वो खुद का परिचय देंगे।
4: मैं फाल्गुनी यादव कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बताना चाहती हूँ। आज हमारे देश की बेटियाँ हर मुकाम पर सफलता प्राप्त कर रही है। उनकी सफलता से आज कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, चाहे वह राजनीति हो, खेल हो या अंतरिक्ष ही क्यों न हो। देश की उन्नति और विकास में बेटियाँ अपना पूर्ण योगदान दे रही है, परंतु आज भी बेटियों को बेटों के समान दर्जा नहीं दिया जाता। इसे एक सामाजिक दोष तथा विकृत परंपरा ही कहा जाएगा कि बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता है। यह अंतर इस हद तक व्याप्त है कि परिवार में लड़के के जन्म पर खुशियां छा जाती है, जबकि कन्या का जन्म अशुभ परिवार पर बोझ, चिंताजनक तथा दुखमूलक समझा जाने लगा है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से लोगों की सोच को इस तरह जकड़ा हुआ है कि वे कन्या भ्रूण हत्या से भी नहीं कतराते। धार्मिक विश्वास के अनुसार पुत्र ही वंश चलाता है और पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही उत्तराधिकारी कहलाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक सार्थक प्रयास है जो भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि इस अभियान की सफलता के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। हमें यह समझना होगा कि एक शिक्षित और सशक्त बेटी न केवल अपने परिवार का गौरव होती है, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। जब तक हर घर में बेटी के जन्म का जश्न नहीं मनाया जाता और हर बेटी की शिक्षा को समान अधिकार नहीं मिलता, तब तक यह अभियान पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर शब्दों में कहा जाए तो आइए हम सभी अपनी बेटियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करें और एक ऐसा समाज बनाए जहां वे बिना किसी भेदभाव के फल फूल सके। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले वर्ष भारत की बेटियों के लिए और भी अधिक प्रगति और अवसर लेकर आएंगे। धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और बेटी है तो सब कुछ है, बेटी कितना कुल को उधार करती है, माँ बाप का चिराग है घर को बदलने के लिए। और खास कर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज और ऐसे बेटी का

0: माताओं का, बहन का, दादी का नाम बहुत कम होता है। क्यों? कोई भी पूछता तो उनका घर, उनका माँ का नाम नहीं लेता, उनका पिताजी का नाम लेकर वहाँ पर पहुँचता है। अभी भी पितृसत्ता का जो मर्दांगी, मर्द प्रधान देश हो गया।
1: हाँ जी, अभी भी पितृसत्तात्मक देश हम कह सकते हैं, लेकिन इस रूढ़िवाद जो परंपरा है ये बदलनी चाहिए। और अब सभी बेटियां जागृत हो रही हैं, पूरा देश जागृत हो रहा है, तो जल्द से जल्द ये मात्र सत्तात्मक देश बन सकता है।
0: क्या बात है, इसलिए कहते हैं समय बदल चुका है, बदलते रंग बदल रहा है, और हमारा समय ही हमें बदल दे रहा है। कोई मनुष्य हमको बदल नहीं पा रहा है, लेकिन हम समय को देखते हुए हमको खुद को बदलना चाहिए। और आने वाला जो समय होगा, बेटियों का, बहनों का, माताओं का, काकी का, माँ का ही बोलबाला होगा, क्योंकि जो समय था सत्ययुग उसमें सीता राम, राम सीता नहीं, लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी कोई बोलता है नहीं, पहले स्त्री का दर्जा, इसके बाद पुरुष का। देखे होंगे, सुने होंगे ना, तो और भारत माता ही कहते हैं। तो जहाँ पर नारी शक्ति का सम्मान होगा, जहाँ नारियों को सम्मान मिलेगा, वो देश महान बनेगा और बनने जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह संदर्भ में, जैसे मातृसत्ता को आगे लाने के लिए हमारा सोच को कैसे बदलना चाहिए?
1: जिस तरह से कई सारे अभियान चल रहे हैं, विद्यालयों में भी इसके लिए काफी सारे जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। आप जैसे जितने भी जागरूक लोग विद्यालय में विजिट करते हैं, सभी की बातें बच्चों पर प्रभाव डाल रही हैं, और जल्द से जल्द ये बदलाव हमें दिखाई देगा।
0: सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और खासकर बेटियों को कभी भी नीचा नहीं सोचना चाहिए, हम भी कोई काम नहीं है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आप सब सुने होंगे, देखे होंगे।
1: यस सर।
0: कितना दृढ़ता का साथ, आत्मविश्वास का साथ, क्या बोले, आत्मविश्वास, खुद का पर विश्वास, ट्रस्ट और यूनिट, ट्रस्ट और यूनिट, विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुन रहे हैं लिसनर, जो हमारा श्रोता, खासकर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूपगंज पिंडवाड़ा ब्लॉक के, आज बच्चों को बारी बारी सुन रहे थे, और सभी का प्रतिभा है। आज ओपन रोड में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, और सभी को नाम का साथ, और संस्था के सभी स्टाफ और सभी बच्चों को एक एक कर सभी को धन्यवाद देते। और लास्ट उनका नाम मैंने नहीं पूछा था, क्या नाम?
1: फाल्गुनी यादव।
0: फाल्गुनी, हाँ, फलक था और फाल्गुनी, दोनों कम नहीं है, फौसे बहुत अच्छा। आपको कैसे लगा रेडियो मधुबन में पहला बार आपका इंटरव्यू लिया, तो आपको कैसे लगा? अचानक में आपको दिया गया टॉपिक और तुरंत आपने गूगल गर्ल जैसे पूरा रेडी हो गया, तो आपको क्या महसूस पहले हो रहा था और आज अभी क्या महसूस कर रहे
1: हैं? फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये भी है कि मेरी हॉबी है कि मैं आरजे बनूं, तो फिर मुझे रेडियो पे बोलना काफी पसंद है।
0: क्या बात, हमारा आरजे मिल गया, वेरी गुड। आरजे शब्द सुना कभी? देखो ये मैंने तो बोला ना, आरजे शब्द सुना था, एक पोस्ट होता है आरजे,
1: रेडियो जॉकी।
0: कहाँ से कलेक्ट किया आप?
1: सर ये मेरी हॉबी
0: है। तो हमारा पोस्ट को ये कैसे, कोई बच्चे को मालूम है? टीचर तो मालूम है, इंजीनियर मालूम है, डॉक्टर मालूम है, लेकिन आरजे रेडियो जॉकी, खुद बोले रेडियो जॉकी, जो की मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में एक कोर्स होता है, वो कोर्स में ज्वाइन करेंगे तो हमारे रेडियो मधुबन का फेलोशिप के लिए आपको अभी बुक कर देंगे। कभी भी आपको मौका मिलेगा तुरंत हमारा रेडियो मधुबन में आइए और अपना बात को जन जन तक, जो चीज आपका मन में है देश को बोलना है। तो जैसे मन की बात पीएम मोदी का जैसे पूरा टप हो गया, तो आप भी ऐसे अपना बात को रख सकते हैं कि जो रूढ़िवादी, ये जो पितृसत्ता, घूंघट, वो सब दूर
1: हो जाएगा।
0: लेकिन आपको मौका पड़ा है, अभी कौन सा क्लास में?
1: 12th।
0: नहीं तो डायरेक्ट आप फोन से भी हमसे कांटेक्ट करिए, रेडियो में आपका जाएगा, लोग से बात भी कर सकते हैं। जिस रेडियो में फरमाइश होता है, आप नंबर कॉल करेंगे तो रेडियो मधुबन को संपर्क करेगा, वहाँ आवाज सब लोग सुनेंगे, उस समय लाइव चल रहा है, लाइव फरमाइश जानते हैं।
1: यस सर।
0: फोन करेंगे तो सीधा स्टेशन में जाएगा, हेलो हेलो रेडियो मधुबन 107.8 FM, हेलो आप क्या चाहते हैं? मैं एक गीत सुनना चाहती हूँ, वो गीत का नाम ये है, तो तुरंत गीत प्रसारण हो जाएगा, अपना बात भी रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, सभी को फिर से धन्यवाद, आभार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है, उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है। उस गांव का नाम आइए जानते हैं, और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धानपुर।
0: जी धानपुर। जी
1: यस,
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए, और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं। तो
1: बिल्कुल।
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलेंटियरिज्म की।
1: तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपिपला शहर से बिलोंग करता हूं, और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है, और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है, और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है, और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपिपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था, और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई, और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया, और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है, और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा। और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है, और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए, इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: एक डिबेट बनी हुई है। परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपीपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपीपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
1: हाँ,
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं,

0: हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
1: जी
0: और इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
1: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
0: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपीपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
1: जी, ये बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है और हमें तो
0: बिल्कुल
1: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
0: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
1: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
0: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
1: जी
0: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
1: जी
0: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
1: जी
0: बिल्कुल
1: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चाहे
0: कोई भी
1: स्पोर्ट्स का
0: सेक्टर
1: क्षेत्र।
0: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
1: जी, तो आपकी
0: बिल्कुल
1: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
0: टैलेंट शो अब जब हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो। और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है, क्योंकि देखो सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
1: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं
0: बिल्कुल
1: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
0: जान
1: हमें
0: रहे हैं।
1: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खास तौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
0: बिल्कुल
1: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
0: बिल्कुल
1: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
0: बिल्कुल,
1: करते
0: वही
1: हैं?
0: वही वही काम इधर इधर वही
1: अवेयरनेस
0: काम
1: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी।
0: बिल्कुल, हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूं।
1: जी,
0: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को

0: किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
1: सोचा हूँ जो हमसे
0: और
1: हाँ
0: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं।
1: आपके
0: और
1: काम जी
0: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
1: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप साझा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो
1: जी
0: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
1: जी
0: बिल्कुल। और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
1: हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
0: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
1: जी खैर
0: हाँ
1: कोई
0: बस।
1: बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
0: बिल्कुल। देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
1: जी
0: बिल्कुल। वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
1: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारे
0: बिल्कुल। ऐसा
1: रास्ते।
0: ही
1: जी
0: मेरे साथ में हुआ है।
1: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा
0: हाँ
1: सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
0: हाँ उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
1: जी
0: और उनके पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
1: आपकी
0: मैं।
1: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
0: बिल्कुल। और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
1: जी
0: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं। हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है? डेली आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: मेरी मदर।
1: जी, तो क्या
0: हाँ
1: वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी
0: पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
1: जी
0: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में की है, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी हाँ, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
0: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
1: जी मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए? कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े? तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर्ड को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे। हाँ
1: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
0: बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े। और उनको
1: कम्युनिटी हाउसिंग।
0: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं। पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
1: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
0: यस, नर्मदा राजपिपला।
1: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
0: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं। हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
1: जी, कितने
0: बिल्कुल,
1: लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
0: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
1: ये आप
0: डिसेबल लोगों के लिए।
1: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग, राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब
1: जी, नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों।
0: बिल्कुल नजदीक है। मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
1: जी,
0: सेवेंटी फाइव यस।
1: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
0: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार्य के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
0: बिल्कुल,
1: और लोगों से जुड़ने की
0: लोगों
1: आवश्यकता है।
0: के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
0: बिल्कुल,
1: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
0: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
1: जी
0: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं। और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है, आप सुनना। मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ, वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ, और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ, और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं, और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है, और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
1: जी, तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे प्यारे से श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आप पहचान रहे होंगे एक जानी पहचानी आवाज, इस शो का होस्ट शरद त्रिपाठी। और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आपने दुनिया को देखा है, तो मैंने उनको कहा हाँ देखा है, पर मेरी मन की आंखों से। और आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.0 लाया है एक नया मेहमान। और हमारे मेहमान का नाम है सचिन सिंह जाधौन, जो आते हैं देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा से लगे हुए करौली जिले से। करौली एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, और वहां से आने वाले हमारे एक आज के नेत्रहीन साथी हैं, दृष्टिबाधित साथी हैं, सचिन सिंह जाधौन। सचिन, स्वागत है आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
0: सचिन, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी भाषण प्रतियोगिता में, और आप उस भाषण प्रतियोगिता के विनर थे, और मुझे मालूम भी नहीं चला कि आप दृष्टिबाधित हैं। लेकिन वो मेरे लिए एक नया अनुभव था। आप आए और चुपचाप आए, बिना किसी जद्दोजहद के आपने अपना एक शानदार भाषण दिया, और आप उस प्रतियोगिता के विनर रहे, वो मुझे आज भी याद है। तो सचिन, इस समस्या और चुनौती के बावजूद, या मैं कहूं कि इस शारीरिक चुनौती के बावजूद, आप यहां तक कैसे पहुंचे उसको जानना है। तो पहले आते हैं आपके बचपन पर। तो ये चुनौती आपको कैसे प्राप्त हुई और कैसे आप इससे उभरे?
1: जी सर, धन्यवाद। जी सर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी आप मेरे बारे में जो आपने बताया वो सिर्फ एक समस्या को बताया है कि जो मुझे आंखों की समस्या है उसके साथ में ही एक हड्डियों की गंभीर समस्या है जिसका नाम है ऑस्टियोपेट्रोसिस, जिसके कारण से अगर हम गलती से भी चेयर से भी यदि गिर जाते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं। और अब तक कम से कम 25 से 30 फ्रैक्चर मेरे बॉडी में हो चुके हैं, जिसके 4-5 तो मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ। ये एक गंभीर समस्या है जिससे पार पाना मैं कहूंगा कि जो आंखों की समस्या है उससे भी कहीं कठिन समस्या है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि बचपन की मैं बात करूं तो जिस उम्र में जो उम्र खिलौनों की होती है, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में मेरे फ्रैक्चर्स हो जाते थे और मैं प्लास्टर से ग्रसित रहता था। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बॉडी में सबसे जो पहला फ्रैक्चर था वो महज 3 साल की आयु में, जिस समय बच्चा सिर्फ खिलौने पकड़ना सीखता है, धीरे धीरे चलना सीखता है, उस समय मैं किसी की गोद से गलती से गिर गया था। उस समय मेरे फ्रैक्चर हो गया था और मुझे प्लास्टर लग गया। कभी कभी तो ऐसा समय आया कि मैं साल में 8-8, 9-9 महीने फ्रैक्चर्स रहते थे, प्लास्टर्स रहते थे, ना कहीं खेलना ना कहीं जाना, क्योंकि कभी एक प्लास्टर कटा आप कहो कि वो दूसरा में लग जाती थी, क्योंकि बच्चे का जो दिमाग है सर वो बहुत ही चंचल दिमाग है। आज तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे ये करना है, यहाँ नहीं जाना है, किंतु जब बच्चा दूसरे बच्चे को देखेगा कि आम बच्चे खेल रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उसका भी मन करेगा, वो इतना परपक नहीं होता है। तो सर जो बचपन रहा है वो काफी चुनौतियां पूर्ण रहा है, लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति रही वो हमेशा यही रही कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। यानी कि जब उद्देश्य बना लिए हैं जीवन में, अपन को एक जीवन को सार्थक जीवन बनाना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है, तो मैं यहां तक जो पहुंचा हूं वो बहुत ही जद्दोजहद करके या बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आया हूँ। और जो बचपन रहा है वो लोगों का बचपन सुखद रहता है, किंतु मेरे साथ में जो समस्याएं थी और जो बचपन मेरा था वो मैं नहीं कहूंगा कि इतना खुशहाल बचपन रहा जो कि एक आम बच्चे से उम्मीद की जाती है।
0: जी सचिन, आपकी बात सुन के तो मैं भी अभी भावुक हो रहा हूं, लेकिन भावनाओं से आगे निकल जाने की यात्रा ही इंसान की यात्रा है। तो इस डबल चुनौती, या कहें कि दोहरी चुनौती के साथ आप आ रहे हैं, और हम तो एक हड्डी के फ्रैक्चर को जब झेलते हैं तो हमें मालूम है कि कितना पेनफुल होता है। और आपने इस कम उम्र में, आप बता रहे हैं कि आपने दर्जनों फ्रैक्चर अब तक आप अपने जीवन में देख चुके हैं, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस दोहरी चुनौती के साथ में, जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपकी दृष्टिबाधिता है, उसके साथ में आपके स्कूल का जीवन कैसा रहा, और आप कैसे रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास, एक महत्वपूर्ण है। शारीरिक चुनौती होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उस व्यक्ति को पुनर्वास करने का अवसर मिला कि नहीं। तो आपको पुनर्वास करने के लिए किस प्रकार के लोगों के सहयोग मिला, परिवार का सहयोग कैसे मिला, आपके विद्यालय के अध्यापकों ने क्या इस बारे में चर्चा की, थोड़ा इस बारे में बताइए ना,
1: जी सर,
0: खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन।
1: जी सर, मैं प्रारंभ से प्रारंभ करता हूँ कि एक जो दृष्टिबाधित बच्चे से, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत है, किंतु जब उस समय, और हम जो आते हैं वो एक छोटे शहर से आते हैं, यहाँ पर इतने अवसर नहीं मिल सकते क्योंकि इतने कंप्यूटर से या इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। तो हमें जब कोई शिक्षा के बारे में बोलता था तो कुछ लोग तो पहले ऐसे भी थे, मुझे ध्यान है, वो कहते थे तो भाई अब बड़े हो रहे हो, धीरे धीरे कुछ ढोलक वगैरह सीख लो तो जीवन यापन हो जाएगा। मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उनका कहना भी उनकी जगह सही है। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती थी तो सिर्फ एक चीज थी कि आप ब्रेल लिपि सीख लो, उससे वो जो डॉट्स होती हैं उससे आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो कुछ जीवन यापन हो जाएगा, आपको कुछ बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी। लेकिन जब ब्रेल लिपि का सवाल आता था तो घर वालों के डर एक ही था कि यदि आंखों की समस्या हो तो छूट सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहां पे, जो स्कूल्स भी चल रहे हैं। किंतु हम एक बार गए एजुकेशन के लिए तो उन्होंने कहा कि यदि इनको आंखों की समस्या होती तो हम इनको हमारे यहाँ पर रखते और इनको प्राइमरी एजुकेशन देते। किंतु इनके साथ समस्याएं दूसरी भी है कि यदि गलती से भी किसी बच्चे को जो और रह रहे हैं उनको भी नहीं दिख रहा है, गलती से किसी बच्चे से ये टच हो गई या टकरा गया तो इनके तो फ्रैक्चर हो जाएंगे और घर वालों में लगेंगे 24 घंटे से ज्यादा। तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जितना भी होता है आप इनको घर पर ही रिहेबिलिटेट करें और इनको जो एजुकेशन दे सकते हैं वो घर पर ही दें, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। तो एक हमारी आशा खत्म हो चुकी थी बिल्कुल कि अब तो उन्होंने भी मना कर दिया एजुकेशन के नाम पे, तो हम तो जीरो हो गए थे उधर फ्रैक्चर्स के, तो घर वालों के भी दिमाग में नहीं था। फिर हमारे शहर में एक वीड़ा मेमोरियल जो संस्थान है उनके काफी कॉलेजेस स्कूल चलते हैं, तो वो पहले चलता था, उनमें एक प्रिंसिपल आई थी, श्री योगिता मैडम थी जयपुर से। वो एक दिन मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे ही बात की, तो उन्होंने हमारी फैमिली को कन्विंस किया कि देखो हम सब लोग इनका सपोर्ट करेंगे, हम सब लोग इनको अलग बैठाएंगे, आग हाथ पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन आप इनको घर से बाहर निकालो। उन्होंने कहा जब तक ये घर को नहीं छोड़ेंगे ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कुछ नहीं पढ़ेंगे वहां पे बैठेंगे। तो घर वालों की तो मन में नहीं थी, लेकिन तब तक मैं भी समझने लगा था और मुझे पढ़ाई की तो इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई थी, लेकिन ये था कि यार दुनिया के दोस्त होते हैं, सब लोग बाहर जाते हैं, अपनी जिंदगी क्या है, खाया पिया और सो गई। तब तो फोन भी नहीं था जो दुनियादारी से पता चलता, तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो जाऊंगा। तो मैं गया, पहले तो लगभग 15 दिन गया वहां पे बैठा, तो मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ समझ में, मेरी जो माताजी ने जो प्रारंभिक शिक्षा दी जैसे गिनती सिखाना है, ANR 12 KD, ये ABCD ये सब सिखाना है, या कुछ मतलब जो वर्बल एजुकेशन वो दे सकते थे वो मुझे दी उनने, क्योंकि ब्रेल लिपि तो उनको ही नहीं आती थी जो मुझे सिखाए, और टेक्नोलॉजी थी नहीं हमारे यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी सीख सके, तो ओरल एजुकेशन उन्होंने मुझे दी। फिर मैं वहां पे गया तो कुछ दिनों तक तो मैं रोता था, क्योंकि वो बोल रहे हैं, एक टीचर जा रहे हैं, दूसरे टीचर आ रहे हैं, बोल रहे हैं ना मैं नोट्स बना रहा हूँ ना मैं बैठा हूँ। आप एक बच्चे जो सिर्फ घर पे खाने और सोने से फुर्सत नहीं है, वो बच्चा के कोई और उद्देश्य नहीं है जीवन में, वो बच्चा सिर्फ 8 घंटे बैठा है, तो उसकी यात्रा आप समझ सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं मैं बैठूंगा। मैं वहां पे 15 दिन बैठा, 20 दिन बैठा, फिर क्या है कि पहले वो मुझे ले गए थे कि अब मेरी क्या एज भी हो गई थी, मैं पढ़ने नहीं गया था। वो उन्होंने कहा कि यार जब एजुकेशन देनी है अब इसको नर्सरी में बिठाएं तो भी कोई मतलब नहीं है कि जाके ये 20 साल की उम्र पे जाके 10वीं करेगा, तो वो भी एक चुनौती थी। तो उन्होंने मुझे पहली बार बैठाया सेकंड क्लास में, एक मैडम थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे माँ की तरह ख्याल रखा मेरा। फिर मैं 2 दिन सेकंड क्लास में बैठा तो मुझे लगा कि यार बड़ा बहुत बेसिक एजुकेशन दी हुई है और जो माता जी ने भी दिया हुआ है, तो क्यों ना हम एक क्लास और आगे जाएं। तो फिर मैं गया थर्ड क्लास में, तो सर थर्ड क्लास में मेरा सिर्फ वही था कि जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, टिफिन खोला, लंच हो गए, टिफिन खाया, और एक आदमी बस में आके बैठा गया, घर पे आके लोगों ने उतार लिया, मेरा ऐसे ही चला, कुछ नहीं था, बस मैं जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। फिर मैं थर्ड क्लास में पढ़ा, लेकिन क्या है कि मुझे पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ाई से वंचित रहा तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा था कि कुछ तो करना है, बस पढ़ना तो है, मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं खेल सकता, ना मैं क्लब जा सकता, ना मैं कुछ कर सकता, करौली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं थे। तो मैंने कहा अब तो पढ़ना है, तो मैं सुनता था वो क्या बता रहे हैं, तो जितना सुन के मैं ले पाता था। फिर मैंने वार्षिक एग्जाम हुए, उसमें मेरी ठीक ठाक अंक आए, जो औसत क्लास में आते हैं, जबकि मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए और लिखने वाला दूसरा लिया, एक बच्चे से और से लिखवाए थे। तो फिर घर वालों को, टीचर्स को लगा कि यार थोड़ा बहुत कर सकता है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्यों ना इसको एक क्लास और जंप करवाई जाए। तो मैंने 5th क्लास में पहुंचा डायरेक्ट में। अब सर मुझे दिखता नहीं है, पहले तो मैं 1 साल तो थर्ड क्लास के बच्चों के साथ एडजस्ट किया मैंने, अब मैं सर 5th क्लास में गया तो वहां तो मतलब पूरा सीन ही बदल गया। एक तो स्टैंडर्ड बढ़ गया पढ़ाई का, और उसमें बच्चे नहीं मिले, मैं तो कोई ना मेरे से बात करे ना कोई मुझे बिठाए, टीचर बैठा जाए, मैं वहीं बैठा हूँ अकेला और बस टीचर चल रही है। लेकिन अब अपन मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पे समाज की भी जरूरत पड़ती है। तो हमने धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, बच्चों से शुरुआत की, तो कुछ लोग मुझे समझ पाए, कुछ लोगों ने तो मुझे हमेशा नेग्लेक्ट किया कि यार ये तो ऐसा ही, अपना एडजस्ट नहीं होगा इसके साथ, लेकिन कुछ लोग समझ पाए तो मेरी उनके साथ कंपनी बनी। फिर मैं वहां पे धीरे धीरे पढ़ा, फिर मैं 5th क्लास और जो 6th क्लास मैंने वहां पे 2 क्लास पढ़ी बच्चों के साथ, और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। सिक्स क्लास में हमने एक जब जैसे क्या है कि फिजिक्स के वो हिस्ट्री सोशल पॉलिटिकल साइंस और हमारे में सेंट्रल बोर्ड का था ही एजुकेशन जो मैंने लिए स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हुई है। तो सर वहाँ पे सिक्स क्लास में मैं आया तो और सिलेबस ब्रॉड हो गया, वहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें साइंस पढ़ाने लग गए, ईबीएस खत्म हो गई। तो हमको लगा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे एक वेस्ट बंगाल से टीचर हैं मैं पंकज यादव सर, अभी नहीं है वो थे पहले, अभी यहाँ से जा चुके हैं, तो उनको हमने घर पे हायर किया। तो वो मुझे घर पे पढ़ाने आते थे तो वो भी मुझे ओरल एजुकेशन दे रहे हैं, यदि वो लिखें तो मैं नहीं पढ़ पाऊं, और ब्रेल उनको आती नहीं ना कंप्यूटर, तो वो सिर्फ मुंह से बोल के सिखा रहे हैं वो। तो
0: जी
1: वो आए फिर सिक्स क्लास में, धीरे धीरे मुझे लगा तो मैंने वहां पे और बेहतर अपने आप को किया थोड़ा सा। मैंने कहा आप समझ में आ रहा है सर से पूछना, यहाँ पे मेरे भैया भी हैं बड़े भैया, मैं उनसे भी पूछता था, जो घर में मिल रहा है उससे पूछ रहा हूँ। माता जी को इंग्लिश नहीं आती तो उनसे हिंदी की किताब पढ़वा रहा हूँ कि आप हिंदी सुना सकते हो हिंदी तो सुनाओ। तो ऐसे चीजें चली मुझे, हालांकि इस दौरान मैथ्स में काफी दिक्कत आई, पर एक टीचर जो हमने हायर किए थे उनने मुझे काफी सहयोग किया। फिर ऐसा लगा कि यार अब फिफ्थ सिक्स पढ़ लिए तो क्यों ना एक क्लास और जंप करवाएं। तो सर मैंने सेवन्थ क्लास जंप किया, अब मैं पहुंचा हूँ एट्थ में।
0: जी
1: अब मैं डायरेक्ट एट्थ में गया तो एक तो सिलेबस बढ़ रहा है एक साल का, आप अंतर समझ सकते हैं कि जब स्कूलिंग में एक साल की जो सिलेबस है वो कैसे कवर करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि पहले और वो भी मेरे कंडीशन में। तो सर
0: जी
1: वहां पे हमारे साथ एक तो वही समस्या पहले वाली कि वहां पे नई कंपनी कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, बच्चे को दिख नहीं रहा है कौन मुझे लेके जाएगा, कौन लेके आएगा, कौन वॉशरूम ले जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो एक दो महीने तो एडजस्ट करने में चली गई। फिर मैं एट्थ क्लास में गया, फिर एक उसी दौरान एक हमारे हुआ था, मैं बोलता अच्छा था, मुझे बोलने का शुरू से शौक था, चाहे मुझे छोटी
0: जी
1: जगह मिली। हमारे यहाँ पे लोक गायन शैली होती है होली पे ख्याल वगैरह, जो राजस्थानी की गायन शैली है, शायद आप उससे परिचित होंगे। मैं
0: जी
1: यहाँ पे बहुत अच्छा गाता था तो सब लोग मुझे गाने के लिए बुला लेते थे पहले, तो तब से मेरी झिझक निकल गई बिल्कुल बोलने की।
0: जी
1: तो एक हुआ सर यहाँ पे डिबेट कंपटीशन हुआ था हिंदी दिवस पे, कि अंग्रेजी और हिंदी कुछ इस तरीके की भाषाओं पे के उस पर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी।
0: जी
1: तो एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास का हुआ था सर, उसमें मैं चला गया था, तैयारी तो कुछ नहीं थी क्योंकि नोट्स वगैरह बना नहीं सकता था। तो उसमें सर मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हमारी टीम ने नाइन्थ क्लास को हरा दिया। सर मेरी उस समय से स्कूल में एक इमेज बदली, बच्चों ने सोचा कि यार कुछ चीज नहीं है लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो किसी के पास नहीं है। तो
0: जी
1: फिर मुझसे उन्होंने दोस्ती बढ़ाई और हाथ बढ़ाया, तो सर मेरी दोस्ती सबसे बढ़ गई। फिर आती है नाइन्थ क्लास, एट्थ क्लास में बढ़िया उत्तीर्ण हो गया मैं। फिर नाइन्थ क्लास आई तो सर नाइन्थ क्लास में ये होता है कि SST और ये सब तो थी, पर अब यहाँ पे साइंस के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब अलग कर दी इन्होंने, अलग अलग हो गई, बाइफरकेशन हो गया इनका।
0: जी
1: और फिजिक्स में चले कैलकुलेशन और ये इक्वेशंस चलते हैं उसमें, डेरिवेशंस होते हैं। तो
0: जी
1: मैथ्स में मैं शुरू से ही इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैथ्स क्या है कि देख के करनी पड़ती है।
0: जी
1: तो फिर भी मैंने जद्दोजहद की और सर मैं नाइन्थ निकला, थोड़ा थोड़ा मेरा फेमिलियर हुआ इनसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। फिर मैंने 10th क्लास में पहुंचा मैं। तो
0: जी
1: सर हमारी तो क्या है कि कोई गिनती थी नहीं क्योंकि लोग एक्स्ट्रा क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन चल रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए हैं,
0: जी
1: लेकिन मैं अपने वो कछुए की गति से चलता रहा। सब लोगों का सहयोग मिला, टीचर से हमने प्राचार्य महोदय से रिक्वेस्ट की थी और हमारे स्कूल ने भी इतना अच्छा मुझे कॉपरेट किया कि कभी किसी चीज की कमी, मतलब मैं खड़ा हो जाता था, मुझे हमेशा आगे बैठाया उन्होंने, कभी नहीं कहा। बच्चों का रोटेशन चलता था लेकिन मेरी सीट हमेशा फिक्स थी,
0: जी
1: हालांकि मैं कभी देख नहीं पाता था लेकिन जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो सुनता था मैं। तो हमने उनसे इतना सा निवेदन किया कि सर जब भी कोई टीचर जैसे फ्री हो तो इसको एक आधा पौना घंटा स्कूल में अलग दे दिया करे 10th क्लास में जाके, क्योंकि
0: जी
1: केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब क्या है क्लास में तो वो उनके हिसाब से पढ़ा रहे हैं तो मुझे वो उतना लिख नहीं रहे, ओरली बताएं। तो थोड़ा थोड़ा पॉसिबल हुआ जितना हमने अलग अलग टीचर्स को, जो जो फ्री होते थे, तो
0: जी
1: उनने हमका व्यक्तिगत रूप से सहयोग किया। सर सेंट्रल बोर्ड ये CBSE में जब रिजल्ट आता है 10th का, तो सर जो अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट थे उनकी परसेंट कम रहती है और आश्चर्यजनक मेरी परसेंट बन जाती है 89%।
0: जी
1: अब सर धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग, मेरी एक तरीके से इमेज और बन गई कि ना तो लड़के ने नोट्स, अब मैं मुझे ये था कि यदि टीचर पढ़ा रहा है मैंने अभी नहीं सुना तो मुझे बाद में पढ़ाने वाला कोई नहीं है, जब तो यूट्यूब मेरे पास पर्सनल फोन भी नहीं था, मैं पढ़ूंगा कैसे। तो मैं
0: जी
1: उसको इतना ध्यान से पढ़ता था और लिखने की यदि मैं अच्छा बोल लेता था तो विचारों का आदान प्रदान अच्छा था। और CBSE का नियम है कि यहाँ पे फैक्ट पे बात कम करते हैं, ये कॉन्सेप्ट पे बात ज्यादा होती है। तो
0: जी
1: जो जितना भी मुझे आता था वो मैं उसको अच्छे से लिखना, अब राइटर किया हमने, वो भी 9th क्लास का था तो उसने मेरी बातों को अच्छे से लिखा, तो सर मेरी बनती 89% फिक्स।
0: जी
1: अब सर जो मेरे से अच्छे थे पढ़ने वाले उन बच्चों की भी इतनी अच्छी परसेंट नहीं बनी, मैं उस समय 3rd रैंक पे रहा था पूरे स्कूल में।
0: जी
1: मैं कहूंगा कि सर कुछ बच्चे तो TC लेकर चले गए कि स्कूल ने कुछ ना कुछ फेवर किया, इस बच्चे को दिखता नहीं, इसकी इतनी परसेंट कैसे बनी, हमारी क्यों नहीं बनी।
0: जी
1: ऐसी भी फीलिंग आई उनकी,
0: आपने अपनी
1: फिर से
0: शारीरिक चुनौती से उनको मानसिक
1: हाँ
0: चुनौती
1: मानसिक चुनौती दे दी मैंने, तो उनको उस चीज में मतलब एक तरीके से
0: दे दी।
1: डेरोगेटरी फील हुआ, तो उनने
0: जी,
1: टीसी भी ले ली, दो तीन
0: जबकि
1: बच्चों की टीसी
0: हमारा
1: चली
0: उद्देश्य
1: गई।
0: नहीं, जबकि हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था। जी
1: मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन सर वो दुनिया अलग तरह से ले जाती है, तो
0: हाँ,
1: अब मैं क्या कर सकता हूँ
0: बचपन
1: इसमें।
0: से ही, मतलब बचपन से ही लेती है ना। जी
1: हाँ फिर सर हम आए 11th क्लास में, तो अब मैंने कहा साइंस लूँ तो वही दिक्कत कि उसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया कि यार आप अच्छा बोल लेते हो, विचार
0: जी
1: अच्छे आदान प्रदान करते हो, आपको अच्छी नॉलेज है, आप लो आर्ट्स। तो सर मैंने 11th में आर्ट्स ली, वहाँ पे हमारी मैडम थी अनीता मैडम, तो वो बहुत अच्छा बच्चों को रखती है, एकदम माँ की तरह रखा था उन्होंने। मैंने ली हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी।
0: जी
1: सर मैं अच्छे से पढ़ता, अब मेरी हालत ये हो गई कि 11th में हम कमी बच्चे थे, अब उन बच्चों को कोई समस्या होती तो मैं इतना अच्छे से पढ़ लेता कि वो किताब पढ़ के मुझे सुनाते, उसका मैं उनको अर्थ समझाने लग गया, वो टीचर से नहीं समझते थे, और
0: जी
1: मुझे इसमें मजा आने लग गया।
0: जी
1: मुझे शुरू से जो जिस चीज को किसी को समझाने में, बताने में, बातों को, उसमें मजा आता है। तो अब होता
0: जी
1: क्या था कि मैं टीचर से पढ़ लेता था, वो भी पढ़ते थे, उनको कम समझ में आता था, वो किताब लाते थे, वो एक सेंटेंस पढ़ते थे, मैं उनको समझाता था, वो दूसरा पढ़ते थे। अब उनको फायदा हो रहा है कि बढ़िया फ्री में टीचर मिल गया, टीचर तो बार बार नहीं पढ़ाएगा ये, तो मतलब जब तक स्कूल में 8 घंटे फ्री मिल गया हमको, बढ़िया। और मुझे
0: जी
1: फायदा ये हुआ कि सर मेरी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो गई उससे।
0: जी
1: अब वो पढ़े मुझे लगभग लगभग बुक याद हो गई। इस तरीके से मैंने 11th की, 11th में बहुत अच्छा रहा। फिर हम आ गए 12th में, तो 12th में भी सर यही सिलसिला चलता रहा। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई इंडिया की, इंडियन हिस्ट्री आ गई, इधर अपने ये कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आ गई, और यहाँ पे नई नई चीज सीखने को मिली मुझे, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मिली, कोल्ड वॉर एरा, ये सारी चीजें, तो इसमें इंटरेस्ट आता था। इधर बच्चे मेरे से पूछते थे, वो पढ़ते थे, तो मुझे एनसीईआरटी याद सी हो गई। तो सर 12th में जाते जाते तो मुझे ऐसा हो गया कि मैंने प्रिंसिपल से सर से कहा, सर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आप लोगे नहीं, एनसीईआरटी इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि जो टीचर पढ़ा रहा है आपके, आप यदि मुझे मौका दो तो शायद बच्चों को उससे अच्छी तरीके से मैं समझा सकूं। उनने कहा कि आप तो बहुत अच्छी तरीके से, आप पढ़ो और आप हमको रिजल्ट दो पहले। सर मैंने पूरी श्रद्धा से तैयारी करी और मेरी बनी 90.20% क्लास 12th आर्ट्स में। सर मैंने तो दोबारा सरप्राइज कर दिया सबको, और उसके बाद क्या है कि सरप्राइज मैंने कर दिया, फिर मेरी स्कूलिंग खत्म हो गई। फिर मैंने एक पीटीईटी का एग्जाम दिया, यहाँ पे बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 ईयर का, उसमें सर मैंने कॉलेज टॉप किया, मतलब मेल में कॉलेज टॉप किया था मैंने, और वैसे पूरे कॉलेज में मैं आया था 2nd नंबर पे। उससे हमको बीड़ा मेमोरियल कॉलेज मिला, जिनका स्कूल चलता है उनका हायर स्टडीज के लिए कॉलेज है, तो वो घर से कॉलेज मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, फिर आपके जो भी ये युवा दिवस के कंपटीशन हुए, उसमें आपका जो हुआ था विकसित भारत के लिए, उसमें मैं जिले में प्रथम आया। एक गहलोत सरकार के टाइम पे हुआ था अपना ये विकसित राजस्थान 2030, उसमें मैं गया था ऐसे, तो मैं उसमें आया 3rd रैंक पे डिस्ट्रिक्ट में। तो
0: जी
1: सर ऐसे जो भी 2-3 कार्यक्रम और हुए, युवा दिवस पे आपने मुझे सम्मानित करवाया था आपके माध्यम से, सांसद महोदय से, तत्कालीन सांसद महोदय से, तो इन
0: जी
1: चीजों ने ऐसा बूस्टअप किया। फिर मैं धीरे धीरे, ये प्रोग्राम है, आप सब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप इनमें ज्वाइन करो, तो मैं यहाँ पे जाने लगा। तो आज मैं ऐसा खड़ा हुआ हूँ कि मुझे प्रोग्राम में जाने में, भाषण देने में, इन सब में मजे आते हैं, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, साथ ही में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और आगे भी मैं अपनी जो मेहनत की है उसको ऐसे ही बरकरार रखना चाहूंगा जैसे अभी रखी है। और यहाँ तक की जर्नी तो कुछ स्कूलिंग इस प्रकार रही थी, संक्षेप में मैंने बताया आप।
0: जी सचिन, डेफिनेटली बचपन से लेकर एक हायर एजुकेशन तक आने में नेगलेक्ट या कहें कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कदम कदम पर फेस करते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब आप किसी से बात कर रहे हैं और वो आपके सामने से उठ के चला जाए, और या फिर जैसा आपने बताया कि एक कोने में आप खड़े हैं तो खड़े ही रह जा रहे हैं 2-2 घंटे तक, कोई आपको अटेंड ही नहीं करने आ रहा, कोई ये भी पूछने नहीं आ रहा कि तू तू भाई भूखा है कि तू
1: जी
0: कुछ
1: जी
0: खाएगा कि नहीं खाएगा। इन परिस्थितियों में हम लोग स्कूलों से निकल कर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो ये एक
1: जी
0: लंबी कहानी है और ये तो हमने देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने अपने दो टीचर्स को अपने जीवन में अप्रिशिएट किया और उन टीचर्स की बदौलत आप यहाँ पर हैं, और आंखें नहीं होते हुए भी आप मन की आंखों से आज आप काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुकाम आपका जीवन में निश्चित रूप से बनेगा। तो सचिन,
1: जी
0: ये तो डेफिनेटली आपने कहा, और लेकिन दो 9th-10th में एलजेब्रा और फिजिक्स की समस्या है, वो आपने कैसे फेस की वो बताइए थोड़ा सा।
1: जी सर मैं थोड़ा सा वो बताना चाहूंगा, आपने सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हमेशा दिल में दर्द रहा है इस चीज का, कि इतनी
0: जी
1: मेहनत करने के बाद भी शायद मैं एक एरिया ऐसा है वहां पे उतना अपना 100% नहीं कर पा रहा हूँ। तो
0: जी
1: सर सीबीएसई में हमारे सिस्टम चालू हुआ था कि आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी है, बेसिक मैथ्स लेनी है। वो कुछ
0: जी
1: भगवान की दया ऐसी थी कि शायद मेरे टाइम पे चालू हुआ था वो, तो सर
0: जी
1: अपन तो मैथ्स में कर नहीं पा रहे थे, तो मैंने तो बेसिक मैथ्स लिया, तो एक तो उसका स्टैंडर्ड जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह उनका डाउन हुआ था, और मैंने सर उनको टीचर लिख के मुझे मतलब टीचर बता रहा है ये लिख रहा हूँ, वो मुझे बता रहा है, मैं बता रहा हूँ सर फॉर्मूले वगैरह याद करके। और एक तरीके से उसमें मैंने उतना अच्छा नहीं किया, पर जितनी बर्बल ले सकता था उतनी मैंने ली। फिर राइटर को बताया कि इसमें ये फॉर्मूला लगाओ, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लगेगा, इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। और इतना वो बढ़िया था, मतलब थोड़ा जो राइटर था वो भी, कि वो मेरी बात समझ पा रहा था कि फॉर्मूला लग गया, अब मैं उसको बता रहा हूँ इसको सॉल्व करो, तो वो हर चीज मेरे से ये नहीं पूछ रहा था कि इसमें प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, क्योंकि मैंने उसको फॉर्मूला बता दिया, उसको इक्वेशन बता दी, तो उससे वो सॉल्व कर ले जा रहा था। तो मेरे मैथ्स में एक मीडियम मार्क्स आए थे, और
0: जी, नहीं, निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, वो एक
1: मैंने
0: चुनौती।
1: जो इसकी जो कमी पूर्ति थी वो मैंने इंग्लिश, हिंदी, साइंस जैसे, बायोलॉजी जैसे इन विषयों में पूरी की, तो वो परसेंट वहां पे अच्छी बनी थी।
0: तो आपकी कहानी से मालूम चलता है कि आपकी कहानी में आपको कोई जो शैक्षिक बदलाव किए गए हैं, करिकुलम में जो बदलाव किए जाते हैं नेत्रहीन व्यक्ति के लिए, या शैक्षिक उसका जो परिदृश्य है बिल्कुल अलग होता है, उसको जो सपोर्ट सिस्टम जिस तरह का मिलना चाहिए, जिस प्रकार की टेक्निकल बदलाव उसको मिलने चाहिए, वो आपको कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक मानवीय, आपके एक शिक्षक का भावुक सहयोग और आपकी आगे जीवन जीने की जिज्ञासा जो है उसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, मुझे लगता है। और करौली जैसे जिले में हम ये सब शैक्षिक बदलाव या कहें कि जो तो नई तकनीक आई है वो ना होते हुए भी आपने जो सफलता पाई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं कहूं कि अब तो बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई हमारे दिव्यांग बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं, खासतौर पे गणित और तो इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में तो उन्होंने झंडा गाड़ दिया है नया। और लोगों के सामने जो जो समस्या आपने पैदा की ना अपने पियर ग्रुप के सामने, वो कुछ वैसी वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज और IITs में कर रहे हैं। तो वो सारे बदलाव करने की आवश्यकता होती है, शायद आपको बदलाव मिले होते तो शायद आप गणित में से 100 आप भी ला रहे होते हैं। लेकिन खैर, वो जो भी आपके साथ हुआ के बारे में तो आप चर्चा ही की जा सकती है, या कहें उस पर एक विचार ही किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके आगे के क्या प्लान्स हैं, और विकसित भारत 2047 को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बात कर रहे हैं, तो आप कैसा विकसित भारत देखना चाहते हैं आप मन की आंखों से?
1: जी सर, सर आप इस जो दो प्रश्न हैं इनका मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहला तो कि ये मेरे आगे क्या प्लान है, तो सर मैं अभी कर रहा हूँ RAS की तैयारी कर रहा हूँ स्प्रिंग बोर्ड से। अब आपने कहा कि उस समय मुझे बदलाव नहीं मिले, किंतु जब मैं जैसे 12वीं क्लास में आया, फिर मैं थोड़ा थोड़ा फोन से फेमिलियर हुआ, तो वहां पे यूट्यूब वगैरह का हेल्प मुझे मिली थी 12th क्लास से, फिर ग्रेजुएशन में मिली। अब ग्रेजुएशन में भी समस्या ये आई कि मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम से, हमारे करौली में इंग्लिश मीडियम का कोई कोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सारी चीजों से समस्या थी। अब हाल ही में क्या है कि जो यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो मैं ऑनलाइन स्प्रिंग बोर्ड से कोर्स ले रहा हूं, और मेरी ग्रेजुएशन की वो चल रही है, मैं परीक्षा दे रहा हूं। अभी मेरा प्लान है कि मैं RAS जैसी सेवाओं में जाऊं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी सेवाओं में जाऊं, उससे मैं कुछ एग्जाम्पल सेट करूं, मैं दिखाऊं कि मुझे क्या समस्याएं थी, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे किसी को बताऊंगा तो शायद मुझे कोई उतना सीरियसली लेगा नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा लोग परिणाम देखते हैं, मेहनत तो शायद कुछ ही लोग देख पाते हैं, छुपी हुआ है तो परिणाम देखते हैं। तो अभी मेरी ये है, और साथ ही में मेरा ये है कि ये तो एक जो जॉब लेनी है या जॉब लगना है, अपने आप को समाज सेवा के लिए तैयार करना है, उसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को अपने विचारों से प्रेरित करूं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाऊं, बड़ी बड़ी अच्छी पर्सनैलिटीज से मिलूं, जिससे कि अपनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो और अपने और भी बौद्धिक विकास कर सकूं। दूसरा ये है कि 2047 में मैंने विकसित भारत में कई बार प्रोग्राम में मैंने सहयोग, जो एक प्रतिभागी के रूप में सहयोग किया है, मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो भारत किसी भी प्रकार की बंधनों से मुक्त हो, जो भारत रूढ़िवादी मानसिकता से मुक्त हो, जिसमें कि ये लड़की है इसकी ये मानसिकता है, ये बाहर जाएगी, ये तो दिव्यांग है, इसको ऐसा, ये काम उसके लिए थोड़ी बना है। तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि साहब जितने आप ओलंपिक्स में मेडल लेके आ रहे हैं, उससे ज्यादा भारत पैरा ओलंपिक्स में ला रहा है मेडल। तो इस पे ये चीजें हमारे को सोचने वाली बात है कि हम ओलंपिक्स में जो नहीं कर पा रहे हैं वो हमारे भाई पैरा ओलंपिक्स में कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है।
0: निश्चित रूप से, निश्चित रूप से हमारी
1: और मैं चाह रहा हूं कि हम
0: परफॉर्मेंस, उन सो कॉल्ड सकलांगों के मुकाबले 3 गुना है वो पैरालंपिक के अंदर।
1: आप देखिए सर पैरा ओलंपिक्स में मेडल देखिए, और हम जो नॉर्मल लेके आ रहे हैं ओलंपिक्स में उनके मेडल देखिए। तो
0: जी, मुझे तो हंसी आ रही है
1: हाँ,
0: सकलांग लोगों पर आज।
1: तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समा मतलब एक इंक्लूजन की फीलिंग आए, यहाँ पे एक्सक्लूजन ना हो, मैं सोसाइटी में इंक्लूजन की फीलिंग बनाए। सो एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड, नो बेस्ड, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी देयर, नॉट इवन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, लैंग्वेज, आजकल ये लैंग्वेज का भी बड़ा चल रहा है। तो यदि इंडिया को वास्तव में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली तो काम करना पड़ेगा, हमको सोशली और एजुकेशनली भी बहुत कुछ अचीव करने की आवश्यकता है अभी,
0: जी
1: क्योंकि हमको यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना यह कि अब ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है और हमको ऐसा सिस्टम लाएं कि हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट याद ना करें कि 1857 में क्या हुआ था, हम
0: जी
1: ये भी समझें कि 1857 में हम पे लोगों ने राज क्यों किया था, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे और शायद हम
0: जी
1: आज भी उससे मुक्त नहीं हो। तो
0: जी
1: मैं चाह रहा हूँ कि इस मानसिकता को छोड़ के आगे बढ़ें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाएं, सबका साथ सबका विकास वाली मानसिकता पर काम करें, और
0: जी
1: अवश्य ही यदि हम वो कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में उड़ान होगा, दुनिया सलामी देगी, कदमों में आसमान होगा, और वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु मेरा ये हिंदुस्तान होगा।
0: डेफिनेटली हमारा देश जो है विश्व गुरु फिर से हिंदुस्तान होगा। बहुत शानदार सचिन, लेकिन चलते चलते कुछ हल्की फुल्की बात भी आपसे करने का मन हो रहा है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे हास्यास्पद चीजें हमारे साथ हो जाती है, हमारी दृष्टि
1: जी
0: बाधित पर चलते हुए। छोटा सा
1: जी
0: इंसिडेंस जो किसी के साथ हुआ, मतलब वो ऐसा था कि किसी ने हमको कहा कि भी मैं नीचे आ रहा हूँ आपकी बिल्डिंग पर
1: जी
0: और मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए ऊपर आने में। तो
1: जी
0: उन सज्जन ने उनके लिए दो सिक्योरिटी गार्ड भेज दिए
1: जी
0: उनको
1: सर
0: लेके आने के लिए, और सिक्योरिटी गार्ड आए और उन्होंने कुछ ना पूछा ना ताछा, सीधे दोनों कंधों से उठाया और उसको लिटरली हैंगिंग पोजीशन में ऊपर वापस
1: यही यही चीज
0: गए। तो बेसिकली क्या है कि भाई वो इंसान चल तो सकता है ना, या कई बार आप
1: जी
0: देखेंगे कि आपसे लोग पूछे, आपसे नहीं पूछेंगे कि आप खाओगे या ये चाय पियोगे क्या, आपके पड़ोस में जो खड़ा है आपके परिवारजन उससे पूछेंगे कि ये
1: जी
0: चाय पीते हैं क्या। अरे भाई साहब, मैं देख नहीं सकता लेकिन मैं
1: जी
0: लेकिन सुन सकता हूँ और आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ आज कि मैं चाय पीना पसंद करूंगा या नहीं। तो कोई ऐसी हास्यास्पद स्थिति आपके साथ पैदा हुई हो थोड़ा बताइए ना चलते
1: एक
0: चलते।
1: बार हुई थी सर, एक हमारे स्कूल में ही हुआ था ये, कि एक हमारे टीचर थे केमिस्ट्री के स्कूल में, उस समय मैं उस क्लास में नहीं था कि वो हमको क्लास नहीं लेते थे, मैं शायद थर्ड फोर्थ थर्ड की बात है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो एक ऐसे ही बाहर लोग बैठे थे, गर्मी लग रही थी, तो वहां पे चेयर पड़ी थी, मैं भी चेयर पे बैठा हुआ था, किसी ने बैठा दिया। एक टीचर आते हैं, उनको मेरे बारे में पता नहीं था, पर उनको ऐसा पता था कि इसको देखता नहीं है, तो वो बोल रही थी किसी उन मतलब उनको कैसा है कि चेयर पे बैठा हुआ था, सामने एक बाउंड्री थी तो बच्चे बाउंड्री पे बैठ जाते थे, मैं वैसे ही चेयर पे बैठा था, मुझे इतना पता भी नहीं था, डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा मतलब भी पता नहीं था। तो उनको चेयर चाहिए थी, तो उनने कहा, एक लड़के को बुलाया दूर से कि इधर आना, फिर के इनको बोल के एक बार इनसे कहो कि ये चेयर पे से उठ जाए और ये थोड़ा बाउंड्री बैठ जाए तो मैं बैठ जाऊं। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, मैंने कहा सर ये बात तो आप मुझे भी बोल सकते थे, उस लड़के को बुला के उससे बोलने क्या बात थी इसमें। तो वो कह रहे हैं नहीं हमको क्या पता नहीं था, थोड़ा डर लग रहा था। तो मैंने मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा क्या बात है आपको मेरे से डर लग रहा है। हाँ
0: हाँ, तो लोगों को बताना पड़ता है कि दिव्यांग इज नॉट डेविल्स, वी आर फ्रेंड्स।
1: तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ।
0: जी, हमें डेविल्स बताने की कोशिश लोग शुरू से ही करते हैं, तो हम उनको
1: जी
0: बताते हैं वी आर नॉट डेविल्स एंड वी आर नॉट ड्रेकुलास, वी आर योर
1: जी
0: फ्रेंड्स, लेस
1: जी
0: डायलॉग
1: जी
0: विद अस।
1: जी
0: सो आज हमारी अच्छी बातचीत हुई, एक अच्छा डायलॉग हमारे बीच में हुआ सचिन। और
1: जी
0: श्रोताओं, आप जो हमसे लेट जुड़े वे जान लें, हमारे साथ थे सचिन सिंह जादौन जो करौली जिले से आते हैं। सचिन एक ग्रेजुएट हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं, दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, और आप हमें सुन रहे थे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर। और जो लोग माउंट आबू की वादियों से जुड़े हुए हैं वे हमें सुन रहे थे हमारे एफएम बैंड 107.8 पर, और इसके साथ साथ आप हमें सुन सकते हैं हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन। सो श्रोताओं, एक अच्छी बातचीत और एक शानदार प्रोग्राम मन की आंखों को से में हम फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार ताकतवर साहसी प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया,
1: ठीक
0: नमस्कार।
1: है।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गाँव रेवन वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनता रहो और मुस्कुराता रहो।

शांति। आज 9 अक्टूबर 2026 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते कि बच्चे, परमात्मा का टाइटल है कि वो पतित पावन है, गति सदगति दाता है। क्योंकि बाबा इस समय इस संसार में आकर के मनुष्य आत्माओं को पहले पतित से पावन बनाते हैं। जो बच्चे पढ़ाई के आधार से पावन बनते हैं, बाबा को याद करते हुए पावन बनते हैं, वो बाबा के साथ परमधाम घर में जाते हैं। फिर पहले पहले वही नीचे उतरते हैं। और जो आत्माएं पढ़ाई नहीं पढ़ती है, बाबा कहते वो भी साथ चलेंगे परमधाम तो, परंतु वो धर्मराजपुरी में सजाएं खा करके पावन बन करके चलेगी। इसीलिए वो जाकर के ऊपर परमधाम में कुछ समय रेस्ट करती है और नीचे सतयुग सूर्य वंश आरंभ होता है। तो जो पावन बन करके गई है वो सीधा उस सतयुगी सूर्य वंश में उतरती है और फिर धीरे धीरे एक एक जन्म करते हुए 84 जन्म के चक्र को पूरा करती है। जो बाद में जाएंगे वो 84 के चक्र को पूरा नहीं कर सकते हैं, उनके कम जन्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय बेहद बाप आए ही है सबको पढ़ाई पढ़ा करके पावन बना करके साथ ले जाने के लिए। चलो या न चलो, श्रीमत पर चल करके पावन बनो या न बनो, लेकिन जाना तो हरेक को है ही, क्योंकि अभी परिवर्तन के समय में ये महान परिवर्तन से सृष्टि को गुजरना ही है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जानते हो कि सभी आत्माएं बेहद के बाप से पढ़ेगी नहीं, लेकिन साथ में जरूर जाएंगी। आज की मुरली से प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत कदर होगा? उत्तर है, उन्हें पढ़ाई का बहुत कदर होगा। कहां भी रहते पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, साथ साथ मित्र संबंधियों से तोड़ निभाते याद में रहने का अभ्यास करेंगे और सबको यही पैगाम देंगे कि बाप को याद करो तो शांति धाम सुखधाम में चले जाएंगे। इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलने वाले बच्चे ही चक्रवर्ती बनते हैं। पढ़ाई का कदर होगा और मित्र संबंधियों के साथ रहते तोड़ जरूर निभाने का अभ्यास होगा। ओम शांति। बाप को, सभी रूहानी बच्चों को, साथ साथ जो भी सृष्टि भर में जीवात्माएं हैं, उन सब जीवात्माओं को वापस ले जाना ही है ना, कोई चाहे या न चाहे, बाबा को सब जीवात्माओं को साथ में ले जाना ही है। क्योंकि अब अंधेरी रात पूरी होती है, पुरानी दुनिया पूरी हो, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है परंतु पुरानी से नई होती है। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है। बाप समझाते हैं, उन्होंने पुनर्जन्म लेते लेते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। इस समय सब पाठधारी तमो प्रधान हो गए हैं। चाहते भी है राम राज्य, नई दुनिया, नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना, बाबा कहते जैसे छोटे बच्चे अपने माता पिता से कहते हमको फलानी नई चीज चाहिए, तो यह भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमको नए वस्त्र चाहिए, नया शरीर चाहिए। बाबा कहते दीप माला पर मनुष्य नए वस्त्र पहनते हैं,
श्री कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती, खास दीप माला पर नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। दीप माला पर ज्योत जगाते हैं, तुम्हारी अब ज्योत जगी है, तुम्हें फिर औरों की भी ज्योत जगानी है। उन्हों की है भक्ति मार्ग की दीपमाला और तुम्हारी है ज्ञान की दीपमाला। तुमको कोई कपड़े आदि नहीं बदलने हैं, तुम्हारी जब पूरी ज्योत जग जाएगी तो फिर नई दुनिया में नए वस्त्र मिलेंगे। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा, कोई चाहे व न चाहे। हाँ, बाबा का आज का ये अंडरलाइन का पॉइंट है, कोई चाहे व न चाहे बाबा सबको ले जाएगा। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, वह फिर कहते हैं लिबरेटर आओ। कोई किस भाषा में कहते, कोई किस भाषा में, मैं कल्प कल्प आकर सबको ले जाता हूं। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अब कितने ढेर पाठधारी है। यह है जीवात्माएं, शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूं, नहीं, वो जीव तो यहीं खत्म हो जाता। आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि जीव कहता है कि मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूं, नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। परंतु यह भी किसको पता नहीं है कि हम 84 जन्म लेते हैं। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं, सबका अपना हिसाब है। जो पहले पहले आते हैं वह जरूर जास्ती जन्म लेंगे, जास्ती से जास्ती 84 जन्म, कम से कम एक जन्म भी होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं, सबको तो नहीं पढ़ाएंगे परंतु सबको साथ जरूर ले जाएगा। ब्रह्मा प्लान अनुसार मेरा पार्ट है सबको साथ ले जाने का। दुनिया ये नहीं जानती कि पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप आकर जरूर नई दुनिया की स्थापना करेंगे। मनुष्य को रचता और रचना के आदि मध्यंत का रिंचक मात्र भी नॉलेज नहीं है। हाँ, भक्ति मार्ग का पता है, भक्ति मार्ग की रसम रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रसम रिवाज बिल्कुल ही अलग है। यह तो हो नहीं सकता कि सतयुग से कलयुग तक भक्ति ही है। हाँ, बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता कि सतयुग से लेकर कलयुग तक भक्ति ही हो। गाया भी जाता है ज्ञान दिन भक्ति रात, अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते ठिक्कर बित्तर में जाकर मुझे ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, कोई हनुमान का साक्षात्कार करते, कोई गणेश का साक्षात्कार करते। अब वह सब भगवान तो नहीं है, वह सब भगवान तो नहीं है, मेरा अपना शरीर तो कोई है नहीं, माया रावण ने सबको बुद्धू बना दिया है। भारतवासी को यह भी पता नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है। यह ध्यान में भी आता है, बाबा कहते ये ध्यान में भी आता है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य इस दुनिया पर था। सिर्फ कह देते हैं राम राज्य चाहिए, राम कोई रघुपति वाला नहीं, उनके लिए शास्त्र में बहुत उल्टी बातें लिख दी है। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, अभी तो ढेर मरने वाले हैं, होलसेल में मौत होने वाली है, उनके लिए क्या कहेंगे। बाप को बुलाया ही है कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले चलो, शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाएंगे, वहां तो आत्माएं जाएगी। बाबा कहते शांति धाम में शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा, वहां तो आत्माएं जाएंगी, यह तो पुराना छीछी शरीर है। बम्बोर को आग लगनी है,
इसलिए आग का गोला बॉम्ब्स बना रहे हैं। भंबोर को आग लगेगी तो बाबा कहे वो बॉम्ब्स भी तो चाहिए, आग के गोले भी तो चाहिए। अब वह कहते हैं बॉम्ब्स न बनाए, एक दूसरे से ट्रीटी साइन कराते हैं कि हम बॉम्ब्स नहीं बनाएंगे, तुम भी नहीं बनाओ। अब इतनी भी समझ नहीं है कि जिनके पास जास्ती बॉम्ब्स होंगे वो जरूर शक्तिशाली हो जाएंगे, फिर दूसरे अपने को बचा कैसे सकेंगे अगर बॉम्ब्स न बनाए तो। अब वह जब सब समुद्र में डाले, बाबा कहते अब वह सब जब समुद्र में डाले तब वह भी बनाना बंद करे, परंतु समुद्र से भी बादल पानी खींचता है, वह बरसात पड़ेगी तो सारा नुकसान हो जाएगा, खेती आदि जल जाएगी। रेडिएशन वाली चीज अगर समुद्र में डाल दिए तो बाबा कहे समुद्र का पानी पूरा रेडिएशन वाला हो जाएगा, तो खेती में भी नुकसान करेगा अगर ऐसी बरसात पड़ी तो, खेती आदि जल जाएंगी। इसलिए ड्रामा में युक्ति रची हुई है, पहले ये बॉम्ब्स नहीं थे अब निकले हैं, इसलिए सारी दम दम मच रही है। हाँ बाबा का, इसलिए सारी दम दम मच रही है। अब यह तुम जानते हो ये सब है भावी, तुम्हारे में भी बहुतों को विनाश की भावी का निश्चय नहीं है, अगर होता तो योग में बहुत अच्छी तरह रहते। योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है, तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, सिखलाने वाला भी गुप्त है, इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं। अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है कि मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, अहम आत्मा अविनाशी है, यह अति गुह्य बात। आत्मा इतनी छोटी, उसमें पार्ट इतना अविनाशी भरा हुआ, बाबा कहते ये बहुत गुह्य बात है। अखबार में भी लिखा है कि आत्मा क्या है जो शरीर में रहती है, ये कोई बताए तो उनको लाखों रुपया मिल सकता है, इनाम घोषित किया था। आत्मा क्या है, कहां से आती है, कैसे पार्ट बजाती है, ये कोई भी नहीं जानते। कोई कहते बुदबुदा है, कोई कहते ब्रह्म तत्व बड़ी ज्योति है, उसमें आत्माएं लीन हो जाएंगे, अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी समान है, उसमें पार्ट बजाने की नूंद है। ये ड्रामा अनादि बना बनाया है, उनका कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा भी अविनाशी है, उनको वही पाठ बजाना है, फर्क नहीं पड़ सकता। ये सब बातें उनकी बुद्धि में बैठेगी जिनके कल्प पहले बैठी होगी। बाबा कहते हैं इतने ढेर मनुष्य को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, हाँ इतना बच्चे समझेंगे कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। सबको पैगाम मिलेगा, बाप ये मंत्र देते हैं सबके लिए। बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, अवगुणों को छोड़ना है, देह अभिमान को छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं है, उन विचारों को क्या मिलेगा, एक दो से प्यार से नहीं चलते हैं, तुमको बहुत मीठा बनना है। बाप प्यार का सागर है, तुम भी उनके बच्चे हो तो तुमको बहुत प्यारा बनना है। कभी कोई कितना भी गुस्सा करे, तुति निंदा आदि सब कुछ सहन करना है। कोई दिवाला मारता है तो समझते हैं बाबा अब सहायता करें, अरे ये तो तुम्हारा कर्म भोग है, सो तो तुमको सहन करना है। देवाला आदि मारा है तो बाबा कहिए तुम्हारा कर्म भोग है, ये तो सहन करना है, बाप इसमें क्या करे, बाप आया हुआ है सब आत्माओं को ले जाने। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में सब घोर अंधेरे में है। भक्ति मार्ग में जरूर भक्तों का मान होना चाहिए,
शंकराचार्य आदि ये सब भगत है, उनको कहेंगे पवित्र भगत। शंकराचार्य महात्मा ये आदि है पवित्र भगत। भक्ति कल्ट तो है ना, जो पवित्र रहते हैं उन्हों के बड़े बड़े अखाड़े बने हुए हैं, उनका मान कितना है। रिलीजियस किताबों का भी बहुत मान है, उनको बड़ी बड़ी परिक्रमा दिलाते हैं, भक्ति का मान बहुत है। ज्ञान का किसको भी पता नहीं है। तुम जब देवता बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिनके माँ बाप किसी न किसी मंदिर आदि में नहीं जाते होंगे। कुछ न कुछ भक्ति के चिन्ह घर में जरूर होते हैं। हे भगवान कहना ये भी भक्ति मार्ग है। अब तुम बेहद बाप के बने हो, ये बाप ये दादा, इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बड़ा अच्छा है। भल कोई कहे दादा को क्यों रखा है, अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहां चाहिए ना, ये तो झाड़ में नीचे तपस्या में बैठे हैं। परंतु वह बदलते रहते हैं। यह जो मुख्य है वह सदैव कायम है। इसमें बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, बात कम करनी चाहिए। हाँ देखो बाबा कितने सुंदर हमें फजीलत सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं। बाबा कहते हैं बात कम करनी चाहिए, पहले पहले बाप का परिचय देना है। जास्ती टिक टिक करना फालतू है, बहुत थोड़ा बोलो। तुमने भी भक्ति मार्ग में बहुत बोला है, रड़ी मारी है, कितने धक्के खाए हैं। अब तुमको सिंपल समझाते हैं। क्या सिंपल बात समझाते हैं? सिर्फ बाबा को याद करो तो योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। आगे चल ये पता पड़ेगा नंबर वार कौन कौन क्या बनते हैं। प्रजा का हिसाब थोड़ी निकालेंगे, वह तो लाखों करोड़ों में हो जाएंगे। तो जो ब्राह्मण बनेंगे वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। आगे चलकर बहुत याद करने लग पड़ेंगे। जब मौत सामने आएगा फिर वैराग्य आएगा। ये वही महाभारत लड़ाई है। सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। इसको कयामत का समय कहा जाता है। इतने सब शरीर खत्म होंगे, नेचुरल कैलामिटीज होनी है। यह भी ड्रामा में नोंद है, नई बात नहीं है। बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं है। फैमिन यानी अकाल के कारण मनुष्य भूखों मरते हैं। बाप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत दुखी है। रहम दिल बाबा को रहम आता है जब देखते हैं संसार में कि मेरे बच्चे बहुत दुखी है। सबको दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाऊंगा। बाप कहते ये सब आपस में लड़ेंगे, मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। मुख में चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, कृष्ण का मुख खोल करके दिखाया उसकी माँ को के चंद्रमा का साक्षात्कार करते थे ना, मुख में विश्व का गोला आ जाता है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, सारी सृष्टि जैसे तुम्हारी मुट्ठी में है। मुख में भी मुट्ठी में भी दिखाते हैं ना, मुख में भी है तो मुट्ठी में भी है। अब स्वर्ग का गोला तुम्हारे मुख में है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ मिलती है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। परंतु बच्चों को इतना कदर नहीं है। किस चीज का? पढ़ाई का। बच्चों को इतना कदर नहीं है पढ़ाई का। बल बदली हो जाते हैं, परंतु बाप कहते हैं कहां भी रहो लेकिन पढ़ो जरूर, पवित्र रहो, खान पान शुद्ध रखो, सबसे तोड़ भी निभाना है, यह दुनिया दुख देने वाली है। मुख्य है काम कटारी चलाना।
वह भी मुश्किल छोड़ते हैं, कुछ कहो तो ट्रेटर हो जाते हैं। बाबा का इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते हैं, कुछ कहो तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर अबलाओं पर कितने विघ्न आते हैं। ये आर्य समाजी तो अभी आए हैं, पिछाड़ी की टाली है, देवताओं को मानने वाले नहीं है। महावीर हनुमान का नाम है, वीरता दिखाई है, जैनियों ने भी महावीर नाम रख दिया है। अभी अर्थ तो तुम समझते हो, तुम बच्चे भी महावीर हो जो रावण पर जीत पाते हो। तो ये टाइटल बाबा कहे महावीर का तुम बच्चों का है। यह है सारी योग बल की बात, तुम बाप को याद करते हो, उससे तुम्हारा विकर्म विनाश होंगे, फिर शांति सुख में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। ये स्थापना बड़ी वंडरफुल है, इनको कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई भी अंदर विकार नहीं होने चाहिए। आत्मा को बाप ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा विकारी बनती है, सब कुछ आत्मा ही करती है, तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए। सतगुरु के सन्मुख रहकर निंदा कराई तो ठौर नहीं पा सकेंगे। कोई भी पाप करना या निंदा हुई, टीचर की मत पर नहीं चलेंगे तो ठौर नहीं पाएंगे, ना पास हो जाएंगे। टीचर की शिक्षा लेते रहेंगे तो पास विथ ऑनर होंगे। वह है हद की बातें, यह है बेहद की बातें। भगवान कौन है? दुनिया में ये किसको भी मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। माया भी सतो रजो तमो होती है। बाबा कहते माया भी सतो रजो तमो होती है। अब माया भी तमो प्रधान है, कलयुग के अंत में माया भी तमो प्रधान है। देखो क्या क्या करते रहते हैं, कोई में बुद्धि नहीं है कि हम किसको आग लगाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है। यादवों का प्लान, कौरवों का प्लान और पांडवों का प्लान क्या क्या करत भाई। पांडवों को ऊंच से ऊंच प्लान बताने वाला है बाप। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो मोस्ट बिलवेड बाप से मोस्ट बिलवेड बच्चे वर्षा ले रहे हो। बाप बिगर कोई कह न सके कि हम तुमको साथ ले जाएंगे, वह कह देते सब परमात्मा ही परमात्मा है। फिर यह कहना आएगा कैसे? ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। ये सारी बातें बाबा कहे तुम बच्चे ही जानते हो और न जाने कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विनाश की भावी को जान, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। याद के बल से विश्व के बादशाही लेने का पुरुषार्थ करना है। अपनी जगी हुई ज्योत से सबकी ज्योत जगाकर सच्ची दीपावली मनानी है। दूसरा, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करते हुए बाप समान प्यार का सागर बनना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, बात बहुत कम करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूरत भव। समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूरत भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्नों के वश हो जाएंगे।
अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रखने दो। यूज करो तब विजयी बन सकेंगे और वाहरे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। आज का स्लोगन है, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या है, अखंडानी है, वही परोपकारी है। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया। पहले बच्चे नाम बच्चे का, काम अपना, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम में भी परोपकारी बने। ऐसे फॉलो फादर करो, ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा,